FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 2 जुलाई सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की सभा आरंभ होती है। सुप्रभात।

0: कितनी सुहानी है आज की ये सुबह।
1: सच है, इसे और सुहाना बना रही है निमाड़ की सुरीली धड़कन।
0: जी हाँ, सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा।
2: आस्था के स्वर।

लीजिए अब सुनिए हरिओम शरण और नंदिनी शरण का गाया ये भक्ति गीत, रचना पंडित किरण मिश्रा की है और धुन बनाई त्रिवेणी भवानी ने।

आकाशवाणी खंडवा से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आस्था के स्वर। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति में पेश है शांता सक्सेना की आवाज में ये भक्ति रचना।

0: सुबह बनारस, शामे अवध और शबे मालवा की तो क्या बात है।
1: लेकिन जब साथ में हो निमाड़ की सुरीली धड़कन, तो यहाँ की सुबह भी किसी से कम नहीं है ना?
0: जी हाँ, सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा।
2: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आस्था के स्वर, FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। लीजिए अब सुनिए चिंतन।
3: भविष्य की दुनिया की आहटें जिन्होंने भी सुनी हैं, उन सब ने प्रायः यही कहा है कि कल की दुनिया शहरों की नहीं गांवों की होगी, क्योंकि जीवन के शहरीकरण ने ही पर्यावरण संकट की शुरुआत की है और आज ये विश्व संकट बनकर समूची दुनिया के सिर पर मौत की तरह मंडरा रहा है। स्थिति को भांपते हुए इंसानी दिमागों ने अपनी भूल स्वीकार कर ली है। संसार भर के वैज्ञानिक और विचारशील व्यक्ति अपनी मानसिक संकीर्णता पर प्रायः पछतावा व्यक्त करते हुए सुने जा सकते हैं। उन्हें यह एहसास होने लगा है कि विश्व केवल मानव विश्व नहीं, अपितु इसमें मानव के साथ प्राणी, पशु, पक्षी, वृक्ष, वनस्पतियाँ, पृथ्वी, जल, वायु, प्रकाश, आकाश, सभी का समायोजन है। इन सभी का संतुलन जरूरी है। विश्व के संरक्षण एवं विकास में मानव, पशु, पक्षी, वनस्पति और भौतिक पदार्थों को हम अलग करके नहीं सोच सकते। आज मानव स्वार्थ पर आधारित भोगवाद की संस्कृति में सर्व सुविधा युक्त शहरों को बढ़ाकर इकोलॉजिकल बैलेंस को इस कदर बिगाड़ रहा है कि पर्यावरण का संकट उत्पन्न हो आया है, जिसके सामने परमाणु युद्ध का संकट भी अत्यंत क्षुद्र और छोटा महसूस होता है। हमने अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने चढ़ाने के लिए गांवों को उजाड़ दिया, लेकिन परिस्थिति के संतुलन के नष्ट हो जाने का ध्यान नहीं रखा। हम भूल गए कि प्रकृति तो समग्रता में है। हमने विकृत, संकीर्ण और स्वार्थ युक्त बुद्धि से जिस विश्व का निर्माण किया, उसमें मानव के अस्तित्व की ही नहीं, प्राणी मात्र के साथ संपूर्ण जगत विनाश की चेतावनी है। यदि हम जीना चाहते हैं तो इसका दूसरा कोई विकल्प नहीं, हमें गांवों की ओर लौटना होगा, जहां हमें प्रकृति के अंचल की सुखद छांव मिले। प्रकृति हमारी रक्षक माता है, उसी की गोद में हम ठीक से पल सकते हैं। वहीं माता को अपंग और विखंडित बनाकर जीवन की कामना संभव ही नहीं। सादगी एवं संयम की ग्रामीण संस्कृति ही मानव को उसके वर्तमान अंधेरों से निकालकर उज्ज्वल भविष्य का आश्वासन दे सकती है, और यह तभी संभव है जब ग्रामीण जीवन की ओर वापसी के लिए हम आदर्श ग्रामों का निर्माण कर लें। गांवों की बदबूदार नालियों, अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों, अस्वच्छता एवं पारस्परिक वैमनस्य को दूर करके हम उन गांवों को सुधारें। आज की हालत में गांवों को सबसे पहले उनका खोया हुआ अतीत लौटाना होगा, अर्थात ग्रामीण अंचल उतने ही सुरम्य, पवित्र और प्राकृतिक वन संपदा से भरे पूरे हों जितने वैदिक काल में हुआ करते थे। सुविधाओं की दृष्टि से भले ही आज के शहरी जीवन की अपेक्षा वे कुछ न्यून रहे हों, लेकिन यहाँ की सोच, समझ और मानसिकता आज से कहीं अधिक बढ़ी चढ़ी थी। विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में अनेकों स्थानों पर न केवल ग्राम शब्द का उल्लेख है, बल्कि ग्रामीण जीवन की सुंदरता और महत्ता के अनेकों प्रमाण मिलते हैं। आज भी लगातार प्राकृतिक जीवन के सुरक्षा कवच पर्यावरण को तहस नहस करने के प्रयास जारी हैं। स्थिति यहाँ तक आ पहुँची है कि ग्रामीण जीवन को पुनर्जीवित करने के अलावा मानव मात्र के पास और कोई विकल्प नहीं बचा है। क्यों ना आज इसी विषय पर चिंतन करें।
2: आप सुन रहे थे चिंतन। आलेख था सुरेश कुमार खयालदास का और निवेदक थे रवि कुमार सोनी। FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान में आज का प्रसंग।

श्री राम और उनके तीनों अनुजों का विवाह संस्कार संपन्न हो चुका है और अब वधुओं की विदाई की वेला निकट आ चली है। प्रतिदिन अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, किंतु जनक जी के स्नेह भरे आग्रह पर उन्हें रुक जाना पड़ता है। बारातियों का आदर सत्कार पूर्ववत जारी है। कई दिन बीत जाने के बाद विदा की घड़ी आ ही पहुंची। महर्षि विश्वामित्र तथा वधुकुल के पुरोहित शतानंद ने राजा जनक को समझाया, आप स्नेहवश उन्हें विदा नहीं करना चाहते, परंतु विदा तो देनी ही है। जब रनिवास में यह समाचार पहुंचा तो सभी लोग इस प्रकार उदास हो गए जैसे संध्या होने पर कमल मुरझा जाते हैं। अनगिनत बैलों पर लादकर बारातियों के लिए मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री भेजी गई। साथ ही 1,00,000 घोड़े, 25,000 सजे सजाए रथ, 10,000 हाथी तथा गाड़ियों में भर भर कर उपहार स्वरूप वस्त्र आभूषण। उधर रनिवास में सीता समेत अन्य वधुओं की विदाई का करुण, अत्यंत मार्मिक तथा हृदय विदारक दृश्य उपस्थित है।

0: महेंद्र कपूर और मिताली बी सिंह का आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कृषि चर्चा।
1: किसान भाई बहनों ने राम राम। आज कृषि चर्चा में हम बात करांगा फूल गोभी न पत्ता गोभी की उन्नत तकनीक का बारे में। भाई बहनों ने गोभी की खेती का लेना अच्छा जल निकास वाली बालोई न दोमट मिट्टी उपयुक्त रहे। मिट्टी को पीएच मान 5.5 से 6.8 का बीच होना चाहिए। सबसे पहले खेत की गहरी जुताई करी न हैरो से क्रॉस जुताई करी न मिट्टी का भुरभुरी करी न खेत में पाटो चलाई न खेत का समतल करी लेना चाहिए। अब बात करें फूल गोभी की उन्नत किस्म न की। अगेती किस्म न की बात करा तो पूसा कार्तिकी कल्याणपुर, अगेती पूसा दीपाली, पूसा अर्ली सिंथेटिक किस्म न छे। न मध्य अवधि की फूलगोभी की उन्नत किस्म न छे पूसा सिंथेटिक, पूसा अघानी, पूसा हिमज्योति, पूसा हाइब्रिड, पंत शुभ्रा न पूसा शुभ्रा। भाई बहनोनी अब बात करा पत्ता गोभी की उन्नत किस्म न की। प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता न पूसा अगेती। भाई बहनोनी अब बात करा पौधशाला न बीज की बुआई का बारा में। पौधशाला में क्यारी न को आकार 3 मीटर लंबो, 1 मीटर चौड़ो न 15 सेंटीमीटर ऊंचो रखनो चाहिए। पौध गलन का रोग को प्रकोप कम करना कारण क्यारी न में गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट का साथ ट्राइकोडर्मा सी भूमि ख उपचारित करी देनो चाहिए। बीज बुआई से पहले थायरम 1.5 ग्राम का साथ या कार्बेंडाजिम 1.5, ट्राइकोडर्मा 4 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीज ख उपचारित करी न बोनो चाहिए। एकासी बीज जनित बीमारी न ख कम करियो जा सके। भाई बहनोनी अगर भूमि ख ट्राइकोडर्मा विरंडी सी उपचारित करियो हुए तो रासायनिक दवा न को उपयोग बीज ख उपचारित करना का लेना नहीं करना चाहिए। बीज न की बुआई कतार में 8-10 सेंटीमीटर की दूरी पर करना चाहिए। बुआई का समय हजारा से सिंचाई करना चाहिए। पौधशाला में पौधा 30 से 35 दिन बाद पौधरोपण का लेना तैयार हो जाए। पौधा की रोपाई ठंडा वक्त पर करना चाहिए। गोभी की अगेती फसल का लेना 500 से 750 ग्राम बीज न की प्रति एकड़ जरूरत पड़े। न मध्यम न देर की अवधि वाली फसल का लेना 400 से 500 ग्राम बीज की जरूरत पड़े। अब बात करें खाद न उर्वरक की। फूल गोभी न पत्ता गोभी की फसल में 250 क्विंटल गोबर की खाद पौध रोपाई का 3 से 4 सप्ताह पहले खेत में डाली देना चाहिए। गोबर की खाद का साथ 100 से 150 किलो नत्रजन, 75 से 100 किलो स्फुर न 90 किलो पोटाश प्रति हेक्टर की दर से खेत में डालना चाहिए। साथ ही भाई बहनों ने अगर आप रासायनिक उर्वरक खेत में डाली रहा हो तो मिट्टी परीक्षण का बाद डालना चाहिए। खेत की अंतिम तैयारी का समय स्फुर न पोटाश की पूरी मात्रा का साथ 30-40% नत्रजन ख खेत में मिले देनो चाहिए। नत्रजन की बाकी बचेल मात्रा ख 2 से 3 भाग न बाटी न रोपाई का 25 से 30 दिन बाद न दूसरी 45 से 50 दिन बाद खड़ी फसल में पौधा न का चारे ओर डाली देनो चाहिए। न ऊपर मिट्टी चढ़ी देनो चाहिए। न फूल बढ़ता समय न बढ़ता समय उचित नमी खेत में बनाई न रखनो चाहिए। अब बात करा निंदई गुड़ाई की। गोभी की जड़ न उथली रहे एकलना हल्की निंदई गुड़ाई की जरूरत पड़े। गोभी की फसल में 2 सिंचाई का बाद दूसरी कृषि क्रिया न करता रहना चाहिए। यूरिया की ट्रॉप ड्रेसिंग करने का बाद पौधा की जड़ पर मिट्टी चढ़ाओ जरूरी छे। खरपतवार नियंत्रण का लेना फ्लूक्लोरिन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व का प्रति हेक्टर की दर से खेत में उपयोग करना चाहिए। खरपतवार नाशी का लेना फ्लैट फैन या फ्लैट जेट नोजल को प्रयोग करना चाहिए। तो किसान भाई बहनों ने आज की कृषि चर्चा में बस इतोज।
0: कृषि चर्चा में आज का विषय था फूल गोभी पत्ता गोभी की उन्नत खेती। वाचक स्वर था

0: वाणी महोदय का, आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है।
1: बड़े अच्छे लगते हैं
2: क्या
1: ये धरती, ये नदिया, ये रैना।
3: आकाशवाणी खंडवा सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन।
0: जी हाँ श्रोताओं, सुनते रहे निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।

कार्यक्रम विवरण में जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। अब से थोड़ी देर बाद सुबह 7 बजे विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे वार्ता विश्व खेल पत्रकार दिवस। वार्ताकार होंगी ओमाना अर्शीन खान। 7:20 पर सुनिएगा साप्ताहिक कार्यक्रम सुनारे पत्र। आज इस कार्यक्रम में आपके ईमेल और पत्रों का जवाब देंगे कार्यक्रम प्रमुख चिन्मय दीक्षित। आठ बजकर 15 मिनट पर सुगम संगीत में आपको पंकज उदास की गाई कुछ गजलें सुनवाएंगे। 8:30 पर कार्यक्रम वतन का राग आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे।

सुबह 9 बजे से 10 बजे तक हम राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित करते हैं। 10 बजे जिले की चिट्ठी आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित की जाएगी।

प्रति गुरुवार फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम आपकी पसंद होता है, यह कार्यक्रम सुनिएगा 10:05 पर।

10:40 पर निमाड़ी लोकगीतों का प्रसारण करेंगे। दिन में 11 बजे से शाम 5:30 तक विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे। हमारे सांध्यकालीन कार्यक्रमों में शाम 5:30 पर सुनिएगा प्रायोजित शैक्षिक कार्यक्रम NCERT। शाम 6 बजे युवाणी कार्यक्रम का आज का आकर्षण होगा क्रम इंद्रधनुष। 6:30 पर आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का। 7:21 पर किसानवाणी कार्यक्रम होगा।

रात्रि 8 बजे से हम विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित करेंगे। रात्रि 10:30 से हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के मध्य द ओवल लंदन में खेले जाने वाले दूसरे सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल, मैच की समाप्ति तक।

0: श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
2: कुछ सोच के बोला होगा तुमने,
1: सोच कर ही बोला है कि सुनते रहे निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा, प्यार हो जाएगा।
3: ताजा खबर में प्रस्तुत है आज के समाचार पत्रों से ली गई कुछ प्रमुख सुर्खियां।

0: एक जुलाई को डॉक्टर्स डे के अवसर पर जिला अस्पताल खंडवा के चिकित्सकों द्वारा रक्तदान किया गया। इसके साथ ही परिसर में वृक्षारोपण का कार्य भी किया गया। विपणन वर्ष 2026-27 के लिए ग्रीष्मकालीन मूंग खरीदी केंद्र के लिए उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। जिला कलेक्टर के अनुसार सेवा सहकारी समिति बड़गांव माली के लिए खंडवा तहसील और सहकारी विपणन संघ का उपार्जन केंद्र सेंट्रल वेयरहाउस आनंद नगर में बनाया गया है। मंगलवार को सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खंडवा में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विद्यार्थियों को मौलिक अधिकार और कर्तव्यों की जानकारी दी गई। VBG रामजी योजना का जिला स्तरीय शुभारंभ आज प्रातः 11 बजे ग्राम पंचायत बमन गांव में किया जाएगा। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस श्री नीलकंठेश्वर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खंडवा में 3 दिवसीय दीक्षारंभ कार्यक्रम के अंतर्गत खंडवा विधायक श्रीमती कंचन तन्वे द्वारा नव प्रवेशित विद्यार्थियों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। अब खेल समाचार। भारत और इंग्लैंड के मध्य शुरू 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच खेला गया, किंतु बारिश के कारण मैच रद्द रहा। आज ICC महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के मध्य दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा। अब एक नजर तापमान पर। खंडवा जिले में पिछले 24 घंटों में 21.2 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई। वर्षा के चलते कल जिले का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आप सुन रहे थे ताजा खबर। समाचार संकलन किया अपूर्वा दशोरे ने।
1: आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।

0: 8700142424 लो अभी फोन लगाता हूँ 8700142424 पर।
1: एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 7 बजे हैं। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत लीजिए अब सुनिए वार्ता विश्व खेल पत्रकार दिवस। वार्ताकार हैं ओमाना अर्शीन खान।
2: आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को ओमाना अर्शीन खान का सादर नमस्कार। श्रोताओं, आज 2 जुलाई विश्व खेल पत्रकार दिवस है। इस अवसर पर मैं आज आप श्रोताओं के मध्य चर्चा के लिए उपस्थित हूँ। जब मैदान पर कोई खिलाड़ी अपने देश की जर्सी पहनकर उतरता है और अपनी पूरी जान लगा देता है, जब आखिरी सेकंड में कोई हारा हुआ मैच अचानक पलट जाता है, या जब ओलंपिक के पोडियम पर तिरंगा लहराता है और राष्ट्रगान की धुन बजती है, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम अपनी सीट से उछल पड़ते हैं, तालियां बजाते हैं, चिल्लाते हैं और कभी कभी हमारी आँखों से आंसू भी आ जाते हैं। खेल का यह रोमांच, यह जज्बा इंसानी भावनाओं का सबसे खूबसूरत रूप है। लेकिन कभी ठंडे दिमाग से सोचिए, बंद कमरों में, घरों में, टीवी स्क्रीन के सामने या हाथ में स्मार्टफोन पकड़े बैठे हम सब तब तक मैदान के उस रोमांच की एक एक सांस को, वहां बहने वाले पसीने, तनाव और जज्बे को हूबहू कौन पहुँचाता है? जी हाँ, वो है हमारे खेल पत्रकार, स्पोर्ट जर्नलिस्ट। आज 2 जुलाई है, यानी विश्व खेल पत्रकार दिवस। तो आज की यह विशेष वार्ता समर्पित है खेल के उन अनसंग हीरोज के नाम, जो खुद तो कभी मेडल नहीं जीतते, कभी पोडियम पर नहीं खड़े रहते, लेकिन हर खिलाड़ी की जीत और हार की कहानी को अपने शब्दों में पिरोकर इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर बना देते हैं। आइए सबसे पहले थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं कि आखिर 2 जुलाई की तारीख का क्या महत्व है। बात करीब एक सदी पुरानी है, साल 1924 की। फ्रांस की राजधानी पेरिस में उस समय ओलंपिक खेल चल रहे थे। दुनिया भर के पत्रकार वहां खेल को कवर करने पहुंचे थे। उसी दौरान 2 जुलाई 1924 को खेल पत्रकारों ने एकजुट होकर वैश्विक संस्था की नींव रखी, जिसका नाम था इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन, यानी AIPS। इस संस्था का मकसद था दुनिया भर के खेल पत्रकारों के अधिकार की रक्षा करना और खेल पत्रकारिता के स्तर को ऊंचा उठाना। इसके ठीक 70 साल बाद, यानी 1994 में AIPS ने अपनी स्थापना की वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए हर साल 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। भारत में भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया इसी भावना के साथ खेल पत्रकारों को एक मंच प्रदान करता है और उनके काम को सराहता है। यह दिन सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, यह जश्न है उस निष्पक्षता का, निडरता और ईमानदारी का, जिसके बिना खेल की दुनिया अधूरी है। खेल पत्रकारिता का मतलब सिर्फ यह बताना नहीं है किसने कितने रन बनाए, किसने कितने गोल किए या किसने कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा, यह तो केवल आंकड़े है। असली खेल पत्रकारिता का है जो खेल के पीछे छिपे कड़े संघर्ष को सामने लाती है। वह उस खिलाड़ी की कहानी बताती है जो सुबह 4 बजे उठकर फटे जूतों में दौड़ता था। वह खेल के भीतर की राजनीति, भ्रष्टाचार और डोपिंग जैसी बुराइयों के खिलाफ एक सजग प्रहरी की तरह खड़ी होती है। अगर खेल पत्रकार ना हो तो खेल सिर्फ एक व्यवसायिक तमाशा बनकर रह जाएगा, उसकी आत्मा खो जाएगी। अगर हम खेल पत्रकारिता के बदलते स्वरूप पर नज़र डालें तो भारत में इसका एक बेहद सुनहरा और भावुक इतिहास रहा है। एक दौर था जब लोगों के सुबह की शुरुआत अखबार के आखिरी पन्ने से होती थी, यानी स्पोर्ट्स पेज। ब्लैक एंड वाइट तस्वीरों के बीच छपी वो सुर्खियां, मैच का वो आंखों देखा हाल पढ़ना एक अलग ही सुकून देता था। KN प्रभु, बॉबी तलियार खान और डिकी रुतनगर जैसे दिग्गजों की कलम जब चलती थी तो लगता था कि शब्दों के जरिए मैदान जीवंत हो उठा है। फिर जो आया रेडियो का, आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो पर जब मैच की कमेंट्री शुरू होती थी तो पूरा का पूरा मोहल्ला ट्रांजिस्टर के इर्द गिर्द जमा हो जाता था। जसदेव सिंह की जादुई आवाज़ में हॉकी का आंखों देखा हाल सुनना या सुशील दोषी की हिंदी कमेंट्री के मुहावरे सुनना भारतीय खेल प्रेमियों के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया था। आज समय बदल चुका है, प्रिंट और रेडियो से आगे बढ़कर खेल पत्रकारिता अब डिजिटल युग में

0: प्रवेश कर चुकी है। आज खेल पत्रकारिता आपके स्मार्टफोन के नोटिफिकेशन, लाइव ट्वीट्स, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब वीडियो और पॉडकास्ट में समा गई है। आज का खेल पत्रकार सिर्फ मैच खत्म होने का इंतजार नहीं करता, वह पल पल की रणनीति, पिच की रिपोर्ट और ड्रेसिंग रूम के माहौल को रियल टाइम में आप तक पहुँचाता है। लेकिन तकनीक चाहे कितनी भी आधुनिक हो जाए, जो चीज़ आज भी नहीं बदलती वह एक पत्रकार की पैनी नज़र, उसकी निष्पक्षता और खेल के प्रति उसका बेइंतहा प्यार। इसके साथ ही एक और सुखद बदलाव का जिक्र करना बेहद ज़रूरी है और वह है खेल पत्रकारिता में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी। एक समय था जब खेल के मैदान में को और खेल की रिपोर्टिंग को सिर्फ पुरुषों का क्षेत्र माना जाता था, लेकिन आज रूढ़ियों को तोड़कर महिलाएं खेल पत्रकार, फोटोग्राफर और कमेंटर्स न सिर्फ इस क्षेत्र में आ रही है बल्कि अपनी बेहतरीन समझ और बेबाक अंदाज से नए आयाम स्थापित कर रही है। वे आज की युवा लड़कियों के लिए एक बड़ी प्रेरणा बन चुकी है। हमारे प्यारे देश भारत में खेल पत्रकारिता ने एक बहुत लंबा और शानदार सफ़र तय किया है। आज हमारा देश सिर्फ एक खेल यानी क्रिकेट का दीवाना नहीं रहा, आज ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, कुश्ती और एथलेटिक्स जैसे खेलों को भी मुख्य धारा के मीडिया में पूरी जगह मिल रही है। और यकीन मानिए, इस बदलाव में बहुत बड़ा योगदान हमारे देश के खेल पत्रकारों का है। उन्होंने देश के सुदूर गाँव, जंगलों और छोटे कस्बों से आने वाले प्रतिभावान खिलाड़ियों की कहानियों को ढूंढा, उनकी गरीबी और संघर्ष को दुनिया के सामने रखा और उन्हें एक गुमनाम खिलाड़ी से देश का नेशनल हीरो बनाने में एक सेतु का काम किया। चलते चलते बस इतना ही कहूंगी दोस्तों कि खेल सिर्फ हार जीत, मेडल या ट्रॉफी का नाम नहीं है। खेल तो हमें गिरकर दोबारा खड़े होना सिखाता है, खेल हमें टीम वर्क और जीवन जीने का सलीका सिखाता है और खेल की इस खूबसूरत भावना को, इसी इंसानी जज्बे को हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रखने वाले दुनिया भर के तमाम खेल पत्रकारों, फोटोग्राफर, कैमरामैन, एडिटर्स और कमेंटर्स को आज के विशेष दिन पर हमें पूरे दिल से सलाम करना चाहिए। आज हम आप कोई खेल की खबर पढ़ रहे हैं या मैच देखें तो आप पर्दे के पीछे काम करने वाले इन कलम के सिपाहियों को ज़रूर याद कीजिएगा। खेल की इस खूबसूरत दुनिया का लुत्फ उठाते रहिए, खेलों का समर्थन करते रहिए। आप सभी को विश्व खेल पत्रकार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय
1: विश्व खेल पत्रकार दिवस के अवसर पर आप सुन रहे थे यह विशेष वार्ता। वार्ताकार थी ओमाना अर्शीन खान। हम आकाशवाणी खंडवा से बोल रहे हैं, यही निमाड़ की सुरीली धड़कन।
2: एहसास की जो जुबान बन गए,
1: ध्वनि तरंगों से जुड़ा है ये मोहब्बत का एहसास, उफ की दूर होने नहीं देता।
2: आप हमारी जान बन गए।
1: सुनते रहे निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।

0: पराग जी, मैं सोच रही हूँ कि ये जो अब नया सत्र शुरू होने वाला है तो क्यों ना मैं भी अपना एक नया काम कर लूँ।
1: कौन सा काम?
0: मैं सोच रही हूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट डाल लिया जाए।
1: अरे वाह, बहुत अच्छा आइडिया है ये तो।
0: पर मैं अपने काम का प्रचार प्रसार कैसे करूँ?
1: कैसी बात कर रही हो, आकाशवाणी के माध्यम से करो।
0: हाँ, आकाशवाणी तो मैं रोज सुनती हूँ।
1: रोज सुनती हो तो उस पे विज्ञापन दे सकती हो, या फिर तुम किसी कार्यक्रम को भी प्रायोजित कर सकती हो।
0: अच्छा, कौन सा कार्यक्रम?
1: जैसे हमारे श्रोता कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता अपनी प्रतिभा को भी अपनी बातचीत के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं।
0: मतलब मैं अपने कोचिंग की विस्तृत जानकारी श्रोताओं तक इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचा सकती हूं।
1: बिल्कुल, और इसके अलावा और भी कार्यक्रम होते हैं जिन्हें आप प्रायोजित कर सकती हो, और साथ ही साथ इन कार्यक्रमों में अपनी संस्था के विज्ञापन भी दे सकती हो।
0: ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है।
1: तो कब जा रही हो आकाशवाणी खंडवा?
0: अभी।
2: FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 7

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री के बीच आज होगी द्विपक्षीय वार्ता। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, धान की फसल पर भावांतर राशि दी जाएगी। प्रदेश में मॉनसून सक्रिय, लोगों को झमाझम बारिश का इंतजार। और भारत इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण ड्रॉ रहा, दूसरा मैच शनिवार को होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता करेंगे। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री ताकाइची की ये पहली भारत की आधिकारिक यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है और ये यात्रा इसे आगे ले जाने में सहायक होगी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल है। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के धान उत्पादक किसानों के हित में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अब धान की फसल पर भी भावांतर योजना का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारे हालधर किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, इस धरा के वास्तविक शुभंकर हैं। किसानों की खुशहाली ही हमारी सरकार का संकल्प है, क्योंकि किसान समृद्ध होगा तभी हमारा प्रदेश और देश समृद्ध होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि महाकौशल की धरती धान उत्पादन के लिए जग प्रसिद्ध है। क्षत्रिय धान को अब भौगोलिक संकेतक जाई टैग मिल गया है। श्री यादव ने कहा,
2: धान पर भी हम भावांतर देने वाले जोरदार ताली बजाए, भावांतर योजना। आप धान लगाओगे, जो भाव आपको मंडी में बेचे अच्छे से अच्छा भाव दिलाने का प्रयास करेंगे, लेकिन अगर नहीं मिला तो बीज का अंतर वो हमारी सरकार आपको देने वाली है। आपके माध्यम से हमारी सरकार खेत से लेके कारखाने तक और बाग से लेके बाजार तक हरेक क्षेत्र में मूल्य संवर्धन श्रृंखला लगा रही है। हरेक किसान को उसकी फसल का ठीक से लाभ मिले, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री डॉ. यादव कल सिवनी जिला मुख्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय धान महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि

0: जीएसटी को लागू करना एक राष्ट्र एक कर एक बाजार की अवधारणा तक सीमित नहीं होकर एक राष्ट्र एक संकल्प और एक साझा उत्तरदायित्व का जीवंत प्रतीक है। राज्यपाल श्री पटेल कल जीएसटी के 9वें वर्ष के अवसर पर भोपाल के रविन्द्र भवन में सुगम कर सशक्त भारत थीम पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जीएसटी की 9 वर्षों की इस यात्रा से देश को दशकों पुराने इंस्पेक्टर राज और जटिल कर तरीकों के जाल से मुक्ति मिली है। यह ऐतिहासिक यात्रा इस बात का प्रमाण है जब केंद्र और राज्य एकजुट होकर कार्य करते हैं तो आर्थिक सुधार केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं रह जाते बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप लेते हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में कल फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा पथिका का अनावरण किया गया। पद्म विभूषण बांसुरीवादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने उसका उद्घाटन किया। गैलरी में भारत रत्न पुरस्कार विजेताओं के चित्र शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान पंडित रूपक कुलकर्णी द्वारा बांसुरी वादन प्रस्तुत किया गया। इस दौरान प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी तथा डीडी न्यूज के महानिदेशक राजीव कुमार जैन उपस्थित थे। सभा को संबोधित करते हुए श्री द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत की समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा,
2: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने 24 घंटे नवकरणीय ऊर्जा उपलब्ध कराने के महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत कर दी है। उन्होंने बताया कि दावोस में की गई घोषणा के अनुरूप प्रदेश 24 घंटे हरित ऊर्जा देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मध्य प्रदेश भवन नई दिल्ली में आयोजित प्रीबिड मीटिंग को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। प्रदेश में मॉनसून सक्रिय है। कल उज्जैन, बालाघाट, कटनी, सीहोर, उमरिया, धार और मंडला समेत 7 जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल और सागर संभाग को मॉनसून पूरी तरह कवर कर चुका है जबकि उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभाग में दस्तक बाकी है। राजधानी भोपाल में आज सुबह से बादल छाए हुए हैं। कल भी दिनभर यहां रुक रुक कर बारिश होती रही। प्रदेश में मॉनसून सक्रिय होने के बाद लोगों को झमाझम बारिश का इंतजार है। मौसम विभाग ने कल के लिए बालाघाट और डिंडौरी में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला गया पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। इसके साथ ही श्रृंखला 0-0 से बराबरी पर है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 189 रन बनाए। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले की पिपरिया स्थित शहीद भगत सिंह शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कल से 9 प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए 3 दिवसीय दीक्षांत कार्यक्रम का आयोजन शुरू हुआ। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय ईश्वरदास रोहाणी की स्मृति में कल जबलपुर के मानस भवन में गौरव शिखर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। शिवपुरी में अवैध कब्जों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने पुहरी के ग्राम अनभौरा में लगभग 3 करोड़ रुपए की 150 बीघा से अधिक पट्टे की भूमि को दबंगों के कब्जे से मुक्त कराया। खंडवा में बीबीजी रामजी योजना का जिला स्तरीय शुभारंभ आज विकासखंड की ग्राम पंचायत बमन गांव आखई में होगा। वहीं बीबीजी रामजी योजना का आगरमालवा में जिला स्तरीय शुभारंभ 2 जुलाई को यानी आज सुबह ग्राम पंचायत पिपलिया चाचा में किया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य बारेलाल अहिरवार आज अशोकनगर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला अधिकारियों के साथ विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक लेंगे। झाबुआ कलेक्टर ने रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया। शिविर में 67 यूनिट रक्तदान हुआ। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरे पत्र।

0: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। मैं हूं श्रोताओं आपका दोस्त प्रशांत मालवीय। और श्रोताओं, आपके पत्रों और ईमेल का जवाब देने के लिए आज आकाशवाणी खंडवा में उपस्थित है कार्यक्रम प्रमुख चिन्मय दीक्षित जी। दीक्षित जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है मेरी ओर से और सभी श्रोताओं की ओर से।
1: सभी श्रोताओं को और आपको मेरा नमस्कार। साथियों, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके लिए, आपके प्यारे से इस खत के मजमू को लेकर। तो बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं हमारे श्रोताओं से मिले पत्रों एवं ईमेलों का सिलसिला।
0: बिल्कुल, क्योंकि इस प्रोग्राम का इंतजार हमारे श्रोता पूरे सप्ताह भर
1: करते हैं। बिल्कुल सही।
0: तो चलिए शुरू करते हैं। ग्राम पंजोनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया है।
1: हाँ,
0: लिखते हैं कि सप्रेम नमस्कार, आकाशवाणी खंडवा के सभी प्रोग्राम हमको बहुत अच्छे लगते हैं। आपके मीतिया गीत प्रोग्राम तो सर्वाधिक लोकप्रिय है। हमारे अनाउंसर भाई बहन बहुत अच्छी प्रस्तुति देते हैं। अदिति नागदिवे, अंतिम बाला पटेल, आयशा मंसूरी, कीर्ति जी, विशाखा जी, मनीष शर्मा जी, पराग गोखले, नाजमा परवीन, विद्याधर मूल्य, आरती शर्मा और सबके नाम लिखे हैं सर। सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बंधुवर, आपने आज इन सभी को जो है खुश कर दिया है, पर हम ये जानना चाहेंगे और साथ ही साथ ये सभी भी जानना चाहेंगे कि इनकी कौन कौन सी प्रस्तुतियां आपको अच्छी लगी, उन प्रस्तुतियों में क्या विशेष लगा, ये लिखकर हमें जरूर बताइएगा अगले पत्र में।
0: बिहार स्टेट बक्सर से शरफुद्दीन अंसारी, राज अंसारी और फातिमा जी हैं। लिखती हैं कि 25 जून का सुनहरे पत्र प्रोग्राम सुनकर दिल बाग बाग हो गया। मूले सर और राखी जैन जी को कोटि कोटि बधाई। फिल्म एक दूजे के लिए की कहानी और गीत अच्छी लगी। रेडियो खंडवा को बधाई। 30 जून को प्रसारित आपके मीत ये गीत प्रोग्राम भी अच्छा लगा। दीपमाला जी को बधाई।
1: क्या बात है, आपको सभी कार्यक्रम पसंद आए जिनमें हमारे समस्त श्रोताओं ने भी शिरकत की थी, ये इनके इन प्रकारेण। तो ये जानकर हमें पसंद आए, मतलब ये अच्छा लगा कि आपकी पसंद समझ में आई कि आपको क्या क्या अच्छा लग रहा है। हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे कंपेयर्ड कार्यक्रम जिनमें कुछ विशेष मेहनत होती है, उस वो कौन कौन से आपको पसंद आते हैं और उसमें आपकी क्या रुचि है।
0: 25 जून को मूलेसर और राखी जैन जी की प्रस्तुति सुनहरे पत्र अच्छा लगा। ये भी लिखा है इन्होंने, डोंडी लोहारा, खिंजीर कॉलोनी, छत्तीसगढ़ से प्रभा रानी खिंजीर, अंजलि रानी, दयाशंकर और आशा देवी खिंजीर।
1: अच्छा।
0: और आगे भी लिखते हैं कि 26 और 30 जून का आपके मीतिये गीत तो प्रोग्राम लाजवाब था। नाजमा जी, दीपमाला जी को बधाई। एक ही फिल्म में एक दूजे की कहानी और गीत इनको पसंद आए। और इसी तरह हमारी फरमाइश जो हमने की थी एक ही फिल्म में एक दूजे के लिए, वो आकाशवाणी खंडवा ने हमारी फरमाइश का ख्याल रखा। और ये भी लिखा है कि मोबाइल एक पर आपका प्रोग्राम 27 जून को बंद रहा पहली सभा में।
1: अच्छा, तो ये तो हमें पता है कि वो कभी ये कार्यक्रम कब कब बंद हो जाते हैं, कब उनका प्रसारण बाधित होता है, क्योंकि इसकी सबसे पहली खबर जो है वो हमें ही प्राप्त हो जाती है यहाँ पर। वो अपरिहार्य कारणों से इस मौसम में कभी कभी लाइन टूट जाने से इंटरनेट की ऐसा व्यवधान आता है। बहरहाल, रेडियो पर आप इसे अनवरत सुन सकते हैं, इसकी हम तस्दीक करते हैं। और आपने बताया कि आपको कौन कौन से कार्यक्रम अच्छे लगे,

0: जानकर हमें खुशी हुई। पत्र लिखने के लिए धन्यवाद
1: जी। ये जो पहला पत्र था इसके पहले वाला ऐसा ही बिल्कुल यही कई मजमून लिखा हुआ है बेताब रेडियो लिसनर्स क्लब बिहार से वसीम अकरम, अजीम वकार और गुड़िया खातून। इन्होंने पिछला प्रोग्राम सुनहरे पत्र पसंद किया और नाजमा जी दीपमाला जी का आपकी मीते गीत प्रोग्राम पसंद किया। एक दूजे के लिए फिल्में इनको पसंद आई।
0: क्या बात है, धन्यवाद आपका आपके इस पत्र के लिए।
1: पालदा नाका इंदौर से हसीना भी मंसूरी, अमीना भी मंसूरी और बबलू मंसूरी है। दामन में खुशी और चेहरे पे मुस्कान हो, दिल से जो सोचो वो पूरे अरमान हो। दुआ करते हैं हम कि मुस्कुराते रहो आप उम्र भर, चाहे जिंदगी का कोई भी इम्तिहान हो।
0: क्या बात है,
1: इतनी खूबसूरत शायरी लिखी है इन्होंने और लिखा है कि 25 जून का सुनहरे पत्र लाजवाब था, दिलकश था, बेहतरीन अंदाज में प्रस्तुत किया। इसी दिन का 10 बजे आपकी पसंद कार्यक्रम सुना जो राखी जैन ने प्रस्तुत किया, बहुत ही उम्दा प्रोग्राम था। और 28 जून रविवार को आपकी मीडिया गीत

0: इतनी खूबसूरत शायरी लिखी है इन्होंने, और लिखा है कि 25 जून का सुनहरे पत्र लाजवाब था, दिलकश था, बेहतरीन अंदाज में प्रस्तुत किया। इसी दिन का 10 बजे आपकी पसंद कार्यक्रम सुना, जो राखी जैन ने प्रस्तुत किया, बहुत ही उम्दा प्रोग्राम था। और 28 जून रविवार को आपके मीडिय गीत कीर्ति जी गोखले ने पेश किया, ढेर सारे श्रोताओं की ईमेल शामिल किए।
1: बहुत बढ़िया। देखिए, ऐसा है कि आपके शेर व शायरी की बारिश के साथ साथ प्राकृतिक बारिश भी आरंभ हो ही चुकी है। हमें बहुत अच्छा लगा कि आपको कार्यक्रमों की प्रस्तुति पसंद आई, और अब हम चाहेंगे कि अभी अपने सभी श्रोताओं को एक और हम उनसे आग्रह कर लें। साथियों, हम लोग अपने कार्यक्रमों के माध्यम से आप तक बहुत सारे संदेश, बहुत सारी जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयत्न करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक जानकारी जो किसी के लिए महत्वपूर्ण है, वो किसी अन्य के लिए रिपीटेशन हो सकती है। हमें लिखकर आप ज़रूर बताएं कि आपको किस किस प्रकार की जानकारी पसंद आ रही है, कौन सी सूचना आप फिर से पुनः सुनना चाहेंगे, और किस प्रकार की सामयिक चर्चा वार्ता आपको पसंद आती है।
0: जी, बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मारकंडे और संजय मारकंडे लिखते हैं कि गुजरे सप्ताह आपके मीत ये गीत कार्यक्रम में कीर्ति जी, दीपमाला जी, आरती शर्मा जी, विद्याधर मूले, प्रशांत जी, काफी संख्या में पत्र और ईमेल इन्होंने शामिल किए और रेडियो श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। मूले जी का शाम का फिल्म संगीत बहुत ही शानदार होता है, और लिखा है कि कृषि चर्चा में मनीषा चौबे जी ने रबी फसलों के बीज उपचार पर उपयुक्त जानकारी दी थी। सभी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।
1: क्या बात है, आपने कृषि चर्चा का जिक्र किया और सुना उसके विषय को भी, ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। आपका इस पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बंधु।
0: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी लिखते हैं कि नमस्कार, हम आपके सभी प्रोग्राम सुनते हैं। 25 जून का सुनहरे पत्र लाजवाब था, राखी जैन जी ने आपकी पसंद बेहतरीन पेश किया, 27 जून को विद्याधर मूले जी, 28 जून को कीर्ति गोखले जी, और सही वक्त पर हम मेल भेजते हैं पर हमारे शामिल नहीं होते हैं। बड़े अफसोस की बात है, कृपया ध्यान दीजिएगा, बड़ी दूर से आए हम उम्मीद लेकर।
1: अरे बंधु, और देखिए, एक निदा फाजली करके शायर हुए हैं, उनका एक शेर था कि बरसात का बादल तो दीवाना है, क्या जाने किस राह से बचना है, किस छत को भिगोना है। तो बस वैसी ही बात है कि हम जो हैं वो कोई पक्षपात करते नहीं हैं। हमारे सामने जितने ईमेल आते हैं हम उनको जरूर शामिल करते हैं। हाँ, बस उनमें पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटेशन से बचने का प्रयत्न किया जाता है कि एक ही श्रोता एक ही दिन में एक ही कार्यक्रम में कई बार ना आए, या एक ही दिन में उसी का नाम सिर्फ ना आता रहे, इसका हम जरूर ख्याल रखते हैं। इसके अतिरिक्त हम कभी भी किसी भी श्रोता को ना शामिल करें ऐसा असंभव है, ऐसा होता नहीं है, है ना। छंटनी का कोई हमारे यहाँ हमारी व्यवस्था नहीं है। हाँ, बस ये प्रयत्न करते हैं कि जितने अधिक से अधिक श्रोता शामिल हो सकें उतना अच्छा है। अब बहरहाल, बारिश की बात हो ही गई है, शेर भी कुछ आ गए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि हमारे श्रोताओं के लिए एक प्यारा सा बादल वाला सुंदर सा अच्छा सा नगमा भी प्रस्तुत किया जाए।
0: बिल्कुल, बादल तो ऐसे घुमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं जिसका सभी को इंतजार है, और हमारे श्रोताओं को भी इंतजार है इस बारिश के बादल वाले गाने का।
1: बिल्कुल, लीजिए, आपके लिए प्रस्तुत है ये गीत।

0: सच में देखकर तो जान पड़ता ही है कि वाकई में दीवाने हो रहे हैं बादल, और इस दीवानेपन का सभी को इंतज़ार भी है, बारिश का सभी को इंतज़ार है, झमाझम बारिश का।
1: बिल्कुल, और यहाँ की जो भूमि है, खंडवा का जो क्षेत्र है, वो तो वैसे भी काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहा है बारिश का। ऐसा लगता है कि बारिश भी समय देखकर होती है, यहाँ शाम 4 से 6 के बीच में ही होंगे।
0: जैसे कि जो मानसून के बादल होते हैं वो सात समंदर पार से चले आते हैं, ऐसे ही समंदर पार से एक ईमेल आया है।
1: अरे वाह, क्या बात।
0: उसको शामिल कर लेता हूँ, नाम बताता हूँ श्रोताओं के। अशोक मेहता, वंदना मेहता, कृतिका, वरुण, ई गौरव पालीवाल, यूएस दीपिका पालीवाल, यूएस मास्टर, आरुल सामदेव, ये हैं।
1: ये ऑस्ट्रेलिया से हैं।
0: जी हाँ जी, सिडनी ऑस्ट्रेलिया के हमारे श्रोता है, नियमित हमारे प्रोग्राम सुनते हैं। इनका खत ईमेल पढ़े देता हूँ। दीक्षित जी, 19 जून का सुनहरे पत्र कार्यक्रम सुना, पहली बार हमारा पत्र शामिल हुआ, बहुत खुशी हुई। AIR ऐप के द्वारा हम आकाशवाणी खंडवा के कार्यक्रमों का प्रसारण देश विदेश में हो रहा है और हम इसे सुनते हैं। उच्च गुणवत्ता के कारण हम लोग आपके केंद्र से प्रसारित सारे कार्यक्रमों का भरपूर आनंद ले रहे हैं।
1: क्या बात है।
0: जैसे कि 19 जून को सिकल दिवस पर सुनहरे पल कार्यक्रम में अच्छी जानकारी दी गई, महामहिम राष्ट्रपति महोदया के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण अच्छा लगा। इसके अतिरिक्त चिंतन, आज की ताज़ा खबर, रामचरित मानस गान, गुड मॉर्निंग खंडवा, युवाणी कार्यक्रम, आपकी मितीय गीत, प्रादेशिक समाचार, सुगम संगीत, निमाड़ी लोकगीत, और हम दिन भर के कार्यक्रम, विविध भारती के कार्यक्रम भी सुनते हैं। आपके सारे कार्यक्रम हम परिवार सहित सुन रहे हैं, और यूएस अमेरिका में रह रहे हमारे बेटी दामाद भी वहाँ पर सुनते हैं। आप सभी हम सभी ये श्रोता आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं, और ये लिखा है कि आगे भी आप हमारे पत्रों को शामिल करेंगे। और आखिरी बात इन्होंने लिखी है कि आपने विगत कार्यक्रम में यहाँ के समय की जानकारी चाही थी।
1: हाँ, तो कि आप कितने बजे हमारे कार्यक्रम सुनते हैं।
0: हाँ जी, तो ये बता रहे हैं हमें कि यहाँ हम लोग आपकी प्रातःकालीन सभा के सभी कार्यक्रम 10:30 बजे सवेरे से सुनना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि यहाँ का समय 4:30 घंटे आगे होता है।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया। हमें बहुत अच्छा लगा कि आपको न केवल समस्त कार्यक्रमों की प्रस्तुति पसंद आती है, आपने हमारे पिछले पूछे गए प्रश्न का भी उत्तर दिया, और साथ साथ हमें ये जानकर भी बहुत खुशी हुई है कि आपने लगभग सभी कार्यक्रमों का जिक्र किया है, कि आपको हमारी सभा के लगभग सारे कार्यक्रम आपने बता ही दिए इसमें, और वो आपको पसंद आ रहे हैं और आप सुन रहे हैं। मैं आपसे एक और प्रश्न करना चाहूँगा कि आप लोग क्या जो डिक्सिंग होती है वो भी करते हैं? इसको भी हमें लिखकर बताइएगा, क्योंकि हमारा एक श्रोता वर्ग है जो रेडियो डिक्सिंग के लिए काफ़ी विख्यात रहा है, और यदि आप उनमें हैं तो फिर तो आपका रेडियो से जुड़ाव मेरे ख्याल से काफ़ी वर्षों पुराना हो सकता है, दशकों पुराना। तो ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी मुझे भी और मेरे साथी श्रोताओं को भी। तो हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा। पत्र लिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बंधु।
0: पुराना तालाब डुमराव से वली उल्लाह अंसारी, निशा परवीन, हुमा और अस्मा नाज अंसारी है। लिखा है कि हमारा पुरखुलुस आदाब, 25 जून का प्रोग्राम सुनहरे पत्र मूल्य जी राखी जी का अच्छा लगा, और सभी प्रोग्राम्स की तारीफ लिखी है। 25 जून कृषि चर्चा में प्रसारित वार्ता इनको अच्छी लगी। विद्या मुकेश चौहान द्वारा संकलित आज की ताज़ा खबर भी इनको काफ़ी अच्छी लगी। पुराने पत्र भी शामिल किए जाते हैं, ये सुनकर भी हमको खुशी हुई। मूल्य जी जिस प्रोग्राम में तशरीफ लाते हैं उस प्रोग्राम के प्रति पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देते हैं, और सभी प्रोग्राम्स की

0: ने तारीफ लिखी है और मोबाइल ऐप ने बेवफाई करी थी 27 जून को, ऐसा भी लिखा हुआ है।
1: ये बात सच है, मोबाइल ऐप ने वास्तव दरअसल मोबाइल ऐप ने बेवफाई नहीं करी आपसे, ये जो बेतार के तार है ना इंटरनेट जिसे कहते हैं
0: जी,
1: इस सुविधा ने आपके साथ बेवफाई करी। आपके क्या हमारे साथ भी बेवफाई करी, हमने इतनी मेहनत से ये प्रस्तुत किया हमारे सभी श्रोताओं के लिए और वो आप तक पहुंच नहीं पाया, तो इसके लिए हम भी बाध्य हैं। जब अन्य पर निर्भर होते हैं तो ऐसी ही अवस्था होती है। प्रसार भारती जो है वो उनकी स्वयं की इंटरनेट सेवा नहीं है, अन्यथा आप तक निर्बाध प्रसारण पहुंचता, जो कि वेव्स जो ऐप है उसके माध्यम से आप सुन सकते हैं। हालांकि वेव्स ऐप में अभी आकाशवाणी खंडवा शामिल नहीं है, लेकिन आकाशवाणी भोपाल उस चुनिंदा रेडियो स्टेशंस में शामिल है जो वेव्स ऐप पर उपलब्ध हैं, तो आप चाहें तो उसका भी आनंद ले सकते हैं। और इस ऐप को, इस OTT ऐप को ज़रूर देखिएगा, ये प्रसार भारती की बनाई गई बहुत मेहनत से एक अच्छी प्रस्तुति है जो निःशुल्क रूप से आप सभी के लिए उपलब्ध है, तो आप ज़रूर इसे देखें। ये वेव्स मोबाइल ऐप भी है और वेव्स आपके TV पर भी आपको OTT के रूप में बहुत बड़ा, बहुत वृहद कंटेंट प्रोवाइड करती है, प्रस्तुत करती है, जो मेरे व्यक्तिगत अनुसंधान के अनुसार किसी अन्य ऐप पर इतना ज़्यादा उपलब्ध नहीं है। भारतीय सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य एवं समस्त योजनाओं को भी शामिल करते हुए मैं ये कह रहा हूँ। हाँ जी, पर आपने पत्र लिखकर हमें बताया कि आपको क्या क्या अच्छा लगा, मुले जी की प्रस्तुति पसंद आई, ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई। आपका पत्र लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जोहरी और पूजा और पायल भी लिखते हैं कि हम आकाशवाणी खंडवा निमाड़ की सुरीली धड़कन के सभी प्रोग्राम सुनते हैं, और खासकर इन्होंने लिखा है कि 30 जून का बद्री प्रसाद और साथियों का गाया निमाड़ी लोकगीत का कार्यक्रम इनको पसंद आया।
1: अरे वाह।
0: और विद्याधर मुले जी, कीर्ति गोखले जी का आपके मित्र गीत प्रोग्राम भी इनको लाजवाब लगा।
1: क्या बात है, मुझे लगा राग रंग की भी तारीफ करेंगे, तो पर कोई बात नहीं। आपके इस पत्र के लिए आपका बहुत बहुत आभार बंधु। हमें बहुत अच्छा लगा जानकर कि आपको बद्री प्रसाद मालवीय जी की प्रस्तुतियाँ पसंद आई हैं। हालांकि वो तो एक बहुत बड़ा नाम है लोकगीत की दुनिया का, परंतु ये जानकर खुशी होती है कि हमारे श्रोताओं को लोक गीतों की प्रस्तुतियां पसंद आ रही हैं। जो धन्यवाद आपका इस पत्र के लिए।
0: प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा के श्रोता हैं आनंद जोशी और तनुजा जोशी, लिखते हैं कि शनिवार को चेतना कार्यक्रम में डॉक्टर श्रद्धा दवे जी से विद्याधर मूल्य की एनेस्थीसिया पर बातचीत प्रभावित कर गई। रविवार को हमारे श्रोता में अपेक्षा बोरगांवकर जी से कीर्ति गोखले जी की बातचीत और उसी दिन का सुनहरे पल प्रोग्राम बहुत ही यादगार रहा। सोमवार को डॉक्टर विशाल श्रीवास्तव जी और डॉक्टर गौरव अग्रवाल जी ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। मंगलवार का सुनहरे पल और आपके मित्र गीत प्रोग्राम दीपमाला जी ने प्रभावी प्रस्तुत किया।
1: बहुत बढ़िया, आपको अच्छा लगा ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जितने सारे प्रस्तोताओं के उद्घोषक साथियों के आपने नाम लिए हैं, कंपियर्स के नाम लिए हैं, उन्हें भी खुशी होगी ये जानकर कि उनकी मेहनत आप तक अच्छे से पहुंची है और आपको पसंद भी आई है। तो आपका इस पत्र के लिए आभार बंधु।
0: ग्राम खंगवाड़ा से दगड़ू जी सेन, धर्मेंद्र जी, रामसेन, कलाबाई, सावित्रीबाई, निशाबाई, आयुष, दीपांशु, आरुषि और लक्षिता हैं
1: जी।
0: एक ही फिल्म कार्यक्रम में विवाह फिल्म के गाने और स्टोरी लाजवाब थे। आपके मित्र गीत भी अच्छा था, सुगम संगीत भी अच्छा था और फिल्म संगीत भी अच्छा था, निमाड़ी लोकगीत भी अच्छा था, लोक रंजनी कार्यक्रम भी अच्छा लगा, सभी प्रोग्राम इनको अच्छे लगे हैं।
1: गीतों से भरे हुए समस्त कार्यक्रम आपको पसंद आए हैं, क्या बात है।
0: दो प्रोग्राम और लिखे हैं, फोन करेगी सुने और हेलो फ्रेंड्स, ये भी इनको लाजवाब लगे और रामचरितमानस गान भी इनको लाजवाब लगता है, ऐसा लिखा है।
1: तो बंधुवर, ऐसा लग रहा है कि आप जो है वो संगीत प्रेमी है, तो हमें ये जानकर बहुत खुशी हुई कि हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले संगीत के समस्त कार्यक्रम आपको लाजवाब और अच्छे लग रहे हैं। आपके इस पत्र के लिए बहुत बहुत आभार बंधु।
0: नर्मदा श्रोता परिवार शिव कोठी के हमारे नियमित श्रोता हैं राकेश, पप्पू सेन और इनकी पूरी फैमिली,
1: हाँ।
0: निशा और द्वारिका बाई और इंदौर से गिरधारी लाल चौधरी और मनीषा भाई चौधरी, इन्होंने काफी बड़ा पत्र लिखा और लिखा है कि पिछले सप्ताह का सुनहरे पत्र चिन्मय जी, मनीष शर्मा जी के साथ सुना, काफी अच्छा लगा, पत्रों के अच्छे जवाब दिए और गुड मॉर्निंग खंडवा की जानकारी भी अच्छी थी, आरती शर्मा जी को धन्यवाद, आपकी मित्र गीत प्रोग्राम पंकज लाड़ जी द्वारा ने बेहद अच्छे से पेश किया, दीपमाला जी, ममता डोडिया जी ने, श्वेता सोनी जी ने, पराग जी ने, सभी तमाम श्रोताओं के तमाम उद्घोषकों

0: के प्रोग्राम हमको पसंद आए और निमाड़ की संस्कृति पर आधारित निमाड़ी लोकगीत कार्यक्रम लोक रंजनी हम हर सप्ताह सुनते हैं। बहन विशाखा सोनी जी को धन्यवाद।
1: क्या बात है, लोक रंजनी वैसे भी एक बड़ा ही अपने केंद्र का अनोखा कार्यक्रम है और मुझे भी वो बहुत ज़्यादा पसंद है। बतौर श्रोता मैं आप सभी के साथ इसमें शामिल होता हूँ कि ये जो कार्यक्रम है ये मुझे वास्तव में एक निमाड़ की जो भीनी सी मिट्टी की खुशबू है उसकी ओर खींचता है और अवगत भी कराता है। तो धन्यवाद आपका आपके इस पत्र के लिए और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे समस्त उद्घोषक भाई बंधु जो हैं वो आपके इस पत्र से आज प्रसन्न तो हुए होंगे तो आगे भी हमें अपनी इच्छाओं से अवगत कराते हुए पत्र लिखते भेजते रहिएगा
0: जी। हमारे नियमित और एक सुधी श्रोता है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका और संप्रीत पंचोलिया।
1: हाँ,
0: लिखते हैं कि निमाड़ी लोक गीतों का प्रोग्राम लोक रंजनी हम सुनते रहते हैं। इसमें निमाड़ की लोक संस्कृति और तीज त्योहार पर पारंपरिक रीति रिवाज लहरिया गीतों को सुनकर आनंद आता है। बेहतरीन प्रस्तुतियां रहती है और हर मंगलवार को ये प्रोग्राम पूर्व से रिकॉर्डेड किया हुआ ही सुनने को मिल रहा है। तो इस प्रोग्राम को लाइव प्रस्तुत करने की कृपा करें।
1: देखिए क्या होता है कि कई बार लाइव प्रस्तुत करने में बंधुवर ऐसा होता है कि कोई ना कोई व्यवधान उत्पन्न हो सकता है कि कोई बात जो हम अपने श्रोताओं तक रखना चाह रहे हैं वो हमारे इस वार्तालाप के दौरान या लाइव प्रस्तुति के दौरान निकल जाए दिमाग से और वो हम अपने सामने ना रख पाएं। तो उसका सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आप पहले ही एक अच्छे से उसको स्क्रिप्ट तैयार करके और फिर उसे बनाएं ताकि जितनी सारी जो समावेश किया जा सकता है सर्वश्रेष्ठ उस सीमित अवधि में वो हमारे श्रोताओं तक पहुंच सके। इस हेतु ये कुछ कार्यक्रम हैं जो रिकॉर्डेड आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं और कई कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा विचार करना, बहुत ज़्यादा शोध की आवश्यकता होती नहीं है। उनको हम लाइव करना बहुत हम यानी कि कोई भी प्रसारक के द्वारा लाइव किया जाना बहुत सरल होता है और वो मतलब उसके लिए तैयार भी रहते हैं कि ऑन एयर प्रस्तुति में हमसे कोई त्रुटि ना हो, इतना हम ध्यान रख सकते हैं, परंतु कुछ ऐसी महत्वपूर्ण विशेष बात नहीं है जो छूट जाए तो बहुत नुकसान हो, तो इसलिए वो कार्यक्रम लाइव होते हैं। फिर भी आपने ये बताया कि आपको इसकी प्रस्तुति पसंद है और ये रिकॉर्डेड आपके पास आ रहे हैं और उसके बावजूद आप ये चाहते हैं कि इन्हें लाइव प्रस्तुत किया जाए, तो आपके इस पत्र के लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और आपके सुझाव पर हम विचार भी कर सकते हैं हमारे प्रस्तोताओं के साथ जो वो आपके समक्ष रख रहे हैं हमारे उद्घोषक भाई बंधु, उनसे बात करके कि क्या ऐसा संभव है, देखते हैं क्या होता है।
0: हनुमंत शिंदे ऋषिकेश शिंदे ग्राम शिरटे जिला सांगली से है, लिखते हैं कि 1 जुलाई को सुबह प्रसारित किया गया प्रोग्राम एक ही फिल्म से बहुत अच्छा लगा। विवाह फिल्म के बारे में जानकारी दी गई, मनोरंजक लगी, फिल्म के गीत सभी अच्छे थे, प्रसारण के लिए धन्यवाद।
1: क्या बात है, धन्यवाद आपका इस पत्र के लिए, हमें बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आपने 1 जुलाई यानी कि कल का ही कार्यक्रम जो है वो उसके विषय में अपनी टिप्पणी दी है। आगे भी हमें सुनकर ऐसे ही त्वरित प्रतिक्रिया आपकी प्राप्त होती रहे ऐसा हम ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। आभार आपका इस ईमेल के लिए।
0: पश्चिम निमाड़ जिला खरगोन झिरनिया रतनपुर से जितेंद्र सिंह गोड़, नरेंद्र सिंह गोड़, सचिन प्रीति भावना, अंतिम पलक श्रुति यशराज और देवराज साबी रिद्धिमा लिखते हैं कि सोमवार शाम का फिल्म संगीत इनको बेहद पसंद आया क्योंकि बारिश शीर्षक के गाने इसमें विद्याधर मूले जी ने सुनवाए, मंगलवार का विविधा सुनहरे पल, दीपमाला जी का बुधवार का एक ही फिल्म से प्रोग्राम, विवाह के गाने, स्टोरी राखी जैन जी ने सुनाए, अच्छा लगा।
1: जानकर हमें बहुत खुशी हुई कि आपको कार्यक्रमों की प्रस्तुति पसंद आई। आगे भी हमें अपनी इच्छाओं से, पसंद से और अपेक्षाओं से अवगत कराते रहिएगा। आपके ईमेल का हमें इंतजार रहेगा बंधु
0: जी। हमारे नियमित श्रोता ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार, मोइन छोटू पवार और दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े और वनीता लिखते हैं कि हमें सोमवार का गुड मॉर्निंग खंडवा जो पेशकश किया गया इस यह हमें अच्छा लगा। इसी दिन का आपकी मीति ये गीत, लोक रंजनी कार्यक्रम, मंगलवार का सोंधी मिट्टी, निमाड़ की सोंधी मिट्टी की खुशबू का एहसास हुआ उस दिन, हमें ऐसा लिखते हैं। एक ही फिल्म में विवाह के गाने और स्टोरी अच्छी लगी, राखी जैन जी का धन्यवाद और चिन्मय दीक्षित जी ने जो पत्रोत्तर प्रोग्राम पेश किया वो भी अच्छा लगा, साधुवाद और सभी

0: श्रोताओं की तारीफ लिखी है, प्रोग्राम्स के बारे में भी लिखा है इन्होंने।
1: क्या बात है, हमें बहुत जानकर खुशी होती है कि आपको हमारी प्रस्तुतियां पसंद आती हैं। बंधु, हम ये भी जानना चाहेंगे कि इन प्रस्तुतियों में कौन सी ऐसी बात रही जो आपके दिल को छू गई, जिसने आपको पत्र लिखने के लिए कलम उठाने की ओर आकर्षित किया, ये हमें लिखकर जरूर बताइएगा आगे भी कि कार्यक्रम का कौन सा वो पहलू था जो आपको बहुत अच्छा लगा, कौन सा वो हिस्सा था जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया।
0: जी, रिंग रोड नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, ऋषभ कनक, भावना लिखते हैं और साथ में हैं ग्राम खेगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, निकेश, धर्मेंद्र और ममता भाई वर्मा। गुड मॉर्निंग, हमें आकाशवाणी खंडवा के सभी प्रोग्राम अच्छे लगते हैं। दिनांक 30 जून का युवाणी कार्यक्रम हमको बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में हमारे शहर क्रम के अंतर्गत दी गई जानकारी बहुत अच्छी थी और गीत भी अच्छे लगे।
1: क्या बात है, हमारे शहर के अंतर्गत हमने 30 जून को शायद जामनगर की बात करी थी, तो आपको जामनगर की प्रस्तुति पसंद आई ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई, और हमारे वो जो कंपेयर रहे होंगे इस कार्यक्रम के, उन्हें भी ये जानकर प्रसन्नता होगी कि आपने उनका कार्यक्रम न केवल सुना बल्कि पसंद भी किया। तो आपके इस पत्र के लिए आभार बंधु।
0: जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से नरेंद्र डोम, निशा डोमीन, प्यारी टुक टुक, लुड्डू कुमार और प्रभा देवी डोमीन लिखते हैं कि 25 जून का लोकप्रिय कार्यक्रम सुना, सुनहरे पत्र की बात कर रहे हैं। दिल से शुक्रिया, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और 1 जुलाई को राखी जी द्वारा पेश किया गया आपकी मीति की प्रोग्राम भी अच्छा लगा, और दीपमाला जी, नाजमा जी के प्रोग्राम भी अच्छे थे। फिल्म एक दूजे की कहानी दिल को छू गई, ऐसा लिखा है।
1: क्या बात है, आपको गीतों की भरी प्रस्तुतियां ज्यादा पसंद आई हैं ये जानकर हमें अच्छा लगा, और इसके अतिरिक्त आप कौन से कार्यक्रम सुनते हैं ये लिखकर हमें जरूर बताइएगा।
0: चमन पार्क दिल्ली से सोनम, सना और अदीबा हैं, लिखते हैं कि सुनहरे पत्र प्रोग्राम हमारा पसंदीदा प्रोग्राम है।
1: क्या बात है,
0: मूले सर राखी जैन जी को धन्यवाद, जो 25 जून को इन्होंने कार्यक्रम पेश किया, वो काफी सारे पत्रों को लिया था और इस पत्र को भी शामिल कीजिएगा, ऐसा लिखा है। 26 और 30 जून का आपकी मीते गीत प्रोग्राम दीपमाला नाजमा जी का अच्छा था। फिल्म एक दूजे की स्टोरी और कहानी इनको, स्टोरी और गाने इनको पसंद आए, और 1 जुलाई का आपकी मीते गीत भी इनको अच्छा लगा जो राखी जी ने प्रस्तुत किया था।
1: क्या बात है, देखिए आज आपके इस पत्र को हमने जरूर शामिल कर लिया है बिल्कुल भी छूटा नहीं है। और हमारे एक श्रोता ने कहा था कि हम कुछ पत्रों को जो छूट जाते हैं वो शामिल करते हैं, ये हमारा नियम है बंधु। मान लीजिए कि समय अभाव के चलते आपका पत्र या आपका ईमेल आज शामिल नहीं हो सका, तो अगली बार वो जरूर शामिल होगा, आप निश्चिंत रहिए इस मामले में।
0: सुहाना चौक ग्राम जसवाड़ी से सूरज कुमार ढाक से साक्षी, ऋतुराज और पूर्णिमा पटेल लिखते हैं कि हमें आकाशवाणी खंडवा के सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। 1 जुलाई का बुधवार का कार्यक्रम आस्था के स्वर बहुत अच्छा लगा। आकाशवाणी के खंडवा के कार्यक्रमों में इन दिनों कुछ बदलाव महसूस हो रहा है जो हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ दिनों से आपके मीतिए गीत प्रोग्राम में हमारे ईमेल शामिल नहीं हुए।
1: अच्छा,
0: स्थानीय श्रोताओं के नाम भी शामिल किया करें, ऐसा लिखा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हमारे देखिए ये प्रयत्न तो रहते हैं कि हमारे सभी श्रोताओं के जिनके ईमेल हमें मिल रहे हैं वो शामिल हों। बहरहाल आपको कार्यक्रम में सुबह का आस्था के स्वर इसकी प्रस्तुति पसंद आई ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई, और ये भी समझ में आया कि आप सुबह प्रातःकालीन सेवा जब आरंभ होती है उसी समय से हमारे सुधी श्रोता बनते हैं और उसे नियमित सुनना भी शुरू करते हैं, तो ये बहुत हमारे लिए प्रेरणादायक और हौसला वर्धन करने वाली बात है। आपके इस पत्र के लिए और इस जानकारी के लिए धन्यवाद आपका।
0: कहारवाड़ी मोहल्ला ग्राम जसवाड़ी से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुम भाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार हैं, ये लिखते हैं कि 1 जुलाई का एक ही फिल्म से कार्यक्रम इनको अच्छा लगा, प्रस्तुति के लिए राखी जैन जी को बधाई।
1: धन्यवाद आपका, आपको आपके इस पत्र के लिए हमें अच्छा लगा जानकर आपको क्या प्रस्तुति पसंद आई।
0: चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की, नानू, रविंद्र, रौनक सेन हैं, लिखते हैं कि समय बदलते देर नहीं लगता, समय की रफ्तार हमें भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दिया करते हैं। एक ऐसा समय था कि हम आकाशवाणी खंडवा से नहीं जुड़े थे, नहीं जानते थे कि यहाँ पर एक से बढ़कर एक सुंदर सुंदर मनमोहक प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत होती है, और जब से हम आकाशवाणी खंडवा से हमारा सेन परिवार जुड़ा है तब से हमारा हटने का मन ही नहीं करता, लगता है कि प्रोग्राम सुना ही करें, यहाँ के उद्घोषकों ने हम पर कोई जादू चला दिया है, और जादू क्यों न चले, जब आप लोग इतनी बेहतरीन मुखारविंद से एक से बढ़कर एक कार्यक्रम पेश करते हैं तो हमें आनंद ही आ जाता है, और काफी सारे प्रोग्राम्स की तारीफ लिखी इन्होंने।
1: क्या बात है बंधुवर, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे तो

0: सीधे सीधे अलंकारों की जो है समावेश हो गया है, सौंदर्य अलंकार का तो अतिरेक ही है। हमें बहुत अच्छा लगा आपका इस पत्र को पढ़कर। समय कम होने के कारण हम उसको पूरा नहीं पढ़ पा रहे हैं, पर हमने आपके मन की भावनाओं को समझ लिया है और हमें बहुत ये जानकर भी खुशी हुई है कि आपको आकाशवाणी खंडवा से जुड़कर प्रसन्नता हुई। देखिए, ये तो हमारे लिए भी एक गौरव का पल है जब हमारे श्रोता को ऐसा लगता है कि हम इससे अभी तक जुड़े क्यों नहीं थे, या हम जुड़ गए हैं तो अब हम हट ही नहीं सकते। तो ये हम एक बतौर प्रस्तोता ये एक बहुत ही हर्ष का विषय हो जाता है। आपके इस पत्र के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम यथाशक्ति प्रयत्न करते रहेंगे कि अपने श्रोताओं के लिए विविध प्रस्तुतियों को समाहित करते हुए उनके सामने एक अच्छा सा गुलदस्ता प्रस्तुत कर सके प्रसारण का, पर तब तक आप हमें सुनते जरूर रहिएगा।
1: जिला खरगोन सनावद से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान और भाई राजकुमार बोडाना, और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, मोहित रितु और मुकेश जगताप लिखते हैं कि सोमवार का ग्राम लक्ष्मी प्रोग्राम में वार्ता वर्षा काल में होने वाले रोग उपचार और सावधानियां वार्ताकार वर्षा रानी से जो सुनी वो काफी लाभप्रद थी, और कुछ बातें कुछ गीत जो क्रम था युवाणी में वो हमको पसंद आया। मंगलवार की विशेष वार्ता में दैनिक जीवन में गणित का महत्व वार्ताकार वंदना मिश्रा जी को सुना, और विविधा के अंतर्गत कवि और साहित्यकार संतोष परिहार से काव्य पाठ सुना। मंगलवार दैनिक जीवन में गणित का महत्व और विशेष प्रोग्राम में एक वार्ता थी जो नमिता जैन जी से वार्ता सुनी, वो भी इनको पसंद आई एक ही फिल्म से, और सभी प्रोग्राम्स की इन्होंने तारीफ लिखी है।
0: क्या बात है, धन्यवाद आपका। आपको आपने विस्तार से हमें बताया आपको कौन कौन से कार्यक्रम और उसमें क्या क्या प्रस्तुतियां पसंद आई, जानकर हमें बहुत खुशी हुई, और हम आगे भी आपसे इसी प्रकार के विस्तृत कार्यक्रम के जो अंश आपको पसंद आए उस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने की आशा रखते हैं। आगे भी ईमेल्स के माध्यम से हमें ऐसा बताते रहिएगा कि आपको कार्यक्रम का कौन सा अंश जो था वो दिल को आपके छू गया।
1: खरगोन जिले के सनावद से हुकुमचंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, बाबूलाल चौधरी, मिश्रा गोल्डन, केपी सिंह चौहान, अनिल पाठक, दीपक सचिन कटारिया, कृष्णा विराज, अर्णव, काव्यांशी, कृतिका और प्रभा कटारिया लिखते हैं कि 25 जून का सुनहरे पत्र प्रोग्राम राखी जी मूले जी का बहुत लाजवाब था। 26 जून का सुनहरे पल प्रोग्राम में मुहर्रम के इस पवित्र अवसर पर सुनहरे पल कार्यक्रम में इबादत, मोहब्बत और मकसद, इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए गीतों का समावेश किया गया। इस सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोता कार्यक्रम के अंतर्गत 28 जून को शहर की बहन अपेक्षा बोरगांवकर जी से कीर्ति गोखले की चर्चा अच्छी लगी, आप दोनों को धन्यवाद। 29 जून को विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत जल संरक्षण पर श्वेता शाह जी से जो बातचीत सुनने को मिली वो भी अच्छा लगा। गुड मॉर्निंग प्रोग्राम आरती शर्मा जी ने पेश किया, अच्छा लगा। और इसके अलावा पूरे प्रोग्राम की डिटेल लिखी है कि गुड मॉर्निंग खंडवा में क्या लिखा था, और विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत संतोष परिहार की वर्षा पर आधारित कविताएं अच्छी लगी, दीपमाला जी का आपकी मिति गीत अच्छा लगा, और काफ़ी सभी कार्यक्रमों की तारीफ लिखी है जो आपकी मिति गीत में पेश किए गए।
0: क्या बात है, हमें बहुत खुशी हुई जानकर कि आपको गुड मॉर्निंग खंडवा का अंश पसंद आया। ये भी बहुत अच्छा लगा जानकर कि ना केवल आपको मुहर्रम के विशेष प्रस्तुति जो थी वो अच्छी लगी, बल्कि जो गुड मॉर्निंग खंडवा के अंदर आरती शर्मा जी ने विस्तृत जानकारी दी थी त्रिदेवों की, बरगद के अंदर निवास की इत्यादि इत्यादि, वो भी आपको बहुत पसंद आई है। भारत जवर से चार्टर्ड अकाउंटेंट के विषय में की गई बातचीत का भी आपने जिक्र किया है अपने पत्र में। हम समय अभाव के चलते आपके इस पत्र के उस विस्तृत अंश को नहीं ले पाए क्योंकि पत्र बहुत बड़ा हो गया था, परंतु हमें बहुत खुशी हुई जानकर कि आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आई और आपने हमारे उस आग्रह का मान रखा जिसमें हम अपने श्रोताओं से ये कह रहे हैं कि कार्यक्रम का कौन सा अंश आपको अच्छा लगा वो हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो आपके इस ईमेल के लिए आपका आभार बंधुवर।
1: रेडियो के दीवाने ग्रुप दिल्ली से रेशमा अंसारी, जमीला, शकीला, प्रमिला और मोहम्मद सईद लिखते हैं कि 25 जून का सुनहरे पत्र प्रोग्राम अच्छा था, मोले जी राखी जी को बधाई, और आपकी मीति गीत प्रोग्राम भी अच्छा लगा, और एक दूजे की कहानी और गीत इनको पसंद आए।
0: क्या बात है, आपको अच्छा लगा गीतों भरी प्रस्तुतियों का कार्यक्रम, ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई। आगे भी हमें ईमेल भेजते रहिएगा और बताइएगा कि इसके अतिरिक्त कौन से कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं।
1: दादाजी धुनी वाले मार्ग खंडवा से हस्सू बाबा, मोइन छोटू, मोहम्मद फाजिल, जामा मस्जिद रोड भिकन गाँव से, साफिया अरहान खोकर और

0: खोकर लिखते हैं कि पिछला सुनहरे पत्र प्रोग्राम अच्छा था और एक ही फिल्म में विवाह के गीत और कहानी इनको अच्छी लगी,
1: बढ़िया,
0: और नारी जगत, बाल जगत, युवाणी, हेलो फ्रेंड्स, किसान वाणी, सभी प्रोग्राम इनको अच्छे लगते हैं, ऐसा लिखा है।
1: धन्यवाद आपका इस पत्र के लिए, हमें अच्छा लगा कि आपने, आपको कौन कौन सी प्रस्तुतियां पसंद आई ये लिखकर आपने हमें बताया
0: जी। और ग्राम जसवाड़ी से उखल्लू बड़वाहे यशवंत गोपाल नागनपुरे और रविशंकर कवर से हैं, इन्होंने भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स की तारीफ लिखी है कि हम आकाशवाणी खंडवा के सभी प्रोग्राम सुनते हैं और हमें सभी प्रोग्राम पसंद आते हैं।
1: धन्यवाद आपका आपके इस ईमेल के लिए बंधुवर, हमें ऐसा लग रहा है कि आप शायद, मैंने आपका नाम इसके पहले सुना नहीं है, तो मेरी ओर से आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, और अगर आप हमारे पुराने श्रोता हैं तो पुनः स्वागत है
0: जी। उखल्लू बड़वा हैं जसवाड़ी से, इन्होंने खासकर ये लिखा है कि जो निमाड़ी लोकगीत के प्रोग्राम होते हैं, संगीत, आस्था के स्वर और खेती गृहस्थी कार्यक्रम इनको पसंद आते हैं।
1: क्या बात है, क्या बात है। तो देखिए, ये हमारे एक ऐसे श्रोता रहे जिन्हें खेती गृहस्थी से जुड़े कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं। हमें अच्छा लगेगा अगर आप कृषि चर्चा से संबंधित कोई विशेष प्रस्तुति का जिक्र करें, या जो हमारी आज की बात किसानवाणी या खेती गृहस्थी में जाती है उसके विषय में अपने पत्र को जरूर उससे सारगर्भित करें
0: जी। कल्लनगंज खंडवा से कोसर बी पवार, हसीना बी, हीना सईद खोकर, अलमाज बानो और सबीना जहीर पवार है, इन्होंने भी लिखा है कि एक ही फिल्म में विवाह की गानी, गाने और कहानी इनको अच्छी लगी, राखी जैन जी ने प्रस्तुत किया था, आपकी मीते की सुनहरे पल, राग रंग, सुगम संगीत, युवाणी, ये कार्यक्रम हमको पसंद आते हैं, उद्घोषक भाई बहन बड़ी मेहनत से प्रोग्राम तैयार करते हैं और हमको भी पसंद आते हैं।
1: क्या बात है, धन्यवाद आपका, आपने इस मेहनत को जो है वो आपने उनकी मेहनत का जिक्र करके उनके मान को बढ़ाया, आपके इस पत्र के लिए आपका आभार बंधु।
0: सुदर्शन शाह और पल्लवी शाह है नेपा नगर के हमारे नियमित श्रोता, और ये लिखते हैं कि दिनांक 25 जून का सुबह 6 बजे भक्ति संगीत का प्रोग्राम आस्था के स्वर काफी अच्छा था, भक्ति गीतों को सुनाया गया, विशेष रूप से ओम व्यास और साथियों द्वारा भक्ति गीत सीताराम सीताराम सीताराम कहिए बहुत ही पसंद आया, और आज काफी समय के बाद ये भक्ति गीत आकाशवाणी खंडवा के माध्यम से सुनने को मिला, राखी जैन दीदी को इसके लिए धन्यवाद। इसी क्रम में सुबह 7 बजे योगेंद्र पगारे जी की वार्ता सुनी, वार्ता का विषय था रीवा, रीवा तट पर बसे तीर्थ स्थान,
1: रीवा तट पर,
0: हाँ, और पवन पुण्य सलीला माँ नर्मदा के उद्गम से लेकर उसके प्रवाह में आने वाले समस्त तीर्थ स्थलों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई, माँ नर्मदा नदी के महत्व पर प्रकाश डाला गया, सफल प्रस्तुति के लिए आपको धन्यवाद।
1: आपके इस पत्र के लिए आपको धन्यवाद बंधुवर, हमें बहुत अच्छा लगा जानकर कि इस दिन की प्रस्तुति आपको पसंद आई, और रेवा तट पर तो हम सभी के प्राण बसते हैं, तो हमारी सबकी संजीवनी है ये माँ रेवा। बहरहाल इसी के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के कार्यक्रम को यहाँ पे विराम देने का वक्त आ चुका है
0: जी।
1: हमारे पास कुछ अन्य पत्र तो नहीं बचे हैं,
0: एक ईमेल है, केवल नाम पढ़े देता हूँ, ये है शेगांव महाराष्ट्र के बड़गांव के हमारे श्रोता हैं, उनका ईमेल आज शामिल नहीं हो पाया, बहरहाल हमारे कार्यक्रम का समय पूरा हो रहा है
1: तो बस अब आपसे अनुमति लेते हैं, ये हमारे जो श्रोता बंधु हैं आपका ईमेल हम अगले कार्यक्रम में शामिल करेंगे
0: जी।
1: लेकिन तब तक के लिए आप सभी से सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा, आप सभी से फिर होगी मुलाकात, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: सुनहरे पत्र।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पत्र, आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं समाचार प्रभात, आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की

0: घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाची के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय दान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाईची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। 12वीं उपसमिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि EPFO योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बढ़ाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य EPF अंशदान कर्मचारी और दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, E-पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर जोर दिया गया है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
2: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को

0: लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। श्री नागेश कपूर 4 दशक से वायुसेना में हैं। उनके पास 3,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उधर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने थल सेना उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिस्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के दिया है। श्री मिस्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के अंतर्गत केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी पंपों से ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से निचले स्तर के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डिजी रोवर की शुरुआत की है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार हैं। जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों के वितरण के लिए समाप्त होगा। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा ई गवर्नेंस संबंधी उत्कृष्ट पहलों के लिए प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थ यात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल से होकर गुजरती है। तीर्थयात्रियों को केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ही यात्रा करनी होगी। मुगल रोड और धार रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों पर तीर्थयात्रा का आवागमन वर्जित है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4 लाख तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। खेलों में फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलीमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अमरीका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं एक अन्य मैच में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा दिया। अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत इंग्लैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहीं ड्यूरेंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक

0: होगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। दो क्वार्टर फाइनल, एक सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कोलकाता में होंगे। ये पहला मौका है जब डूरन कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर सोनूलाल पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनूलाल ने असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का सशक्त संदेश दिया। केंद्र सरकार ने असम में हाल ही में बाढ़ से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले दो दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्लीवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। कमर्शियल गैस एटीएफ में राहत, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर इंतजार, जुलाई के पहले सप्ताह ही जेब पर पड़ेगा अच्छा असर, राजस्थान पत्रिका की खबर है। प्रदूषण हो या ना हो, 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली में ग्रैब की पाबंदियां 4 महीने तक स्वतः लागू रहेंगी, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की आज सुर्खी बनी है। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी का कार्यकाल बढ़ा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक बढ़ाई समय सीमा, वीर अर्जुन की खबर है। दोहा में मध्यस्थों के जरिए अमरीका और ईरान में बातचीत, देश बंधु की सुर्खी है। भारत पहुंची जापान की पीएम, रणनीतिक संबंधों पर जोर, पीएम मोदी के साथ शिखर वार्ता आज, दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की खबर है। आयात के दम पर जीएसटी संग्रह 14% बढ़ा, वृद्धि की रफ्तार 13 माह में सबसे तेज, चुनौतियों के बावजूद विदेशी उत्पादों के बंपर आयात में जून में भरी सरकार की झोली, अमर उजाला के कारोबार पन्ने की ये खबर ध्यान खींचती है। आज और कल भी कभी भी एनसीआर में दस्तक दे सकता है मानसून, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवेश के बाद अगली मंजिल एनसीआर, हरियाणा और पंजाब, दैनिक जागरण ने यह खबर सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है, उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ हेली सेवा स्थगित, उड़ाने डायवर्ट, चारधाम यात्रा में कुछ ही दिनों में अंतर दिखने का समाचार दैनिक भास्कर ने आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 20 दिन में बदली तस्वीर, दर्शनार्थियों की दौड़ में केदारनाथ से आगे निकला बद्रीनाथ, छोटे शहरों में ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज, कंपनियां बढ़ा रही हैं निवेश, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। वीर अर्जुन ने ग्राम सभा पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, गांव की लोकतांत्रिक आत्मा क्या कागजों पर सिमट रही है, ग्राम सभाएं। लेख में कहा गया है कि ग्राम सभा को विकास कार्यों के सोशल ऑडिट का वास्तविक अधिकार मिलना चाहिए। जब लोगों को दिखेगा कि उनके द्वारा किए गए ऑडिट से भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है तो उनकी भागीदारी स्वतः बढ़ेगी।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया। और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत। श्रोताओं, सुगम संगीत में आज के हमारे कलाकार हैं पंकज उदास।

सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे पंकज उदास की गाई कुछ गजलें। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी खंडवा से बोल रहे हैं। सुबह के 8:30 होने वाले हैं। प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम किस क्रांतिकारी पर केंद्रित था। इसका सही जवाब है लक्ष्मण प्रसाद दुबे। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, जबलपुर से वृंदा हिंगनीकर और उज्जैन से संजीव जैन। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार

भारतीय स्वाधीनता का इतिहास ऐसे अनेक राष्ट्रभक्तों की कहानी कहता है जो समय की प्रचंड आंधियों के बीच दीप नहीं दिशा बनकर उभरे। भारत की आजादी के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले एक ऐसे ही महान क्रांतिकारी थे गणेश घोष। उनकी यात्रा उस नदी की तरह थी जो चट्टानों से टकरा कर भी अपना मार्ग बनाना जानती है। उनका संकल्प उस अग्नि की तरह था जो स्वयं तप कर भी अपने आसपास उजाला बिखेरती है। गणेश घोष का जन्म 22 जून सन 1900 को अविभाजित भारत के जैसोर नामक स्थान पर हुआ था जो बांग्लादेश के खुलना जिले के पास स्थित है। उनके पिता का नाम विनोद बिहारी घोष था। गणेश घोष बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे तथा अपने आसपास की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति देखकर बहुत अधिक उद्वेलित हुआ करते थे। उनकी शिक्षा आगे बढ़ती रही और आरंभ में उन्होंने ब्रिटिश रेलवे में काम भी किया, लेकिन 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इसी दौरान कोलकाता के बंगाल तकनीकी संस्थान में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए उन्होंने चिटगांव में एक स्वदेशी कपड़े की दुकान भी खोली थी। उन्होंने जो मैकेनिकल और तकनीकी कौशल की शिक्षा ग्रहण की थी वो शिक्षा केवल आजीविका के लिए नहीं थी, बल्कि इस कौशल का प्रयोग वो देश को आजाद कराने के लिए हथियार और बम बनाने के लिए भी करने का विचार करने लगे। भारत की आजादी उनकी आंखों का पहला सपना था। अंग्रेजों की गुलामी से वो अत्यधिक आक्रोशित रहा करते थे तथा मन ही मन क्रांति पथ पर चलने का उन्होंने संकल्प ले लिया। उन्हें विश्वास था कि भारत बहुत जल्द आजाद होगा।

कलकत्ता में पढ़ाई के दौरान ही गणेश घोष बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी संगठन युगांतर के संपर्क में आ गए थे। वो बहुत जल्द इस संगठन के सक्रिय सदस्य बन गए। चटगांव में रहते हुए ही उनकी भेंट मास्टर सूर्यसेन से हो चुकी थी। सूर्यसेन की सादगी और दृढ़ संकल्प से वो अत्यधिक प्रभावित हुए और उनके सहयोगी बन गए। बहुत जल्द चटगांव में क्रांतिकारियों का समूह बना, जिसमें सूर्यसेन के साथ गणेश घोष, अनंत सिंह और लोकेन बल शामिल थे। इन्हें चटगांव में क्रांतिकारियों की त्रिमूर्ति कहा जाता था। गणेश घोष ने चटगांव के युवाओं को व्यायाम शालाओं के माध्यम से संगठित करना शुरू किया। वो युवाओं को शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाने, लाठी चलाने और अनुशासन सिखाने के प्रभारी थे। वो मास्टर सूर्यसेन द्वारा स्थापित चटगांव रिपब्लिकन आर्मी में सघन रूप से सक्रिय हो गए। ये एक सशस्त्र क्रांतिकारी संगठन था, जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन से चटगांव को मुक्त कराना तथा पूरे देश में विद्रोह की चिंगारी भड़काना। इस तरह इस क्रांतिकारी संगठन ने मजबूत आकार ले लिया। सन 1930 आते आते चटगांव की धरती पर एक बड़ी योजना आकार लेने लगी और इसके सूत्रधार थे मास्टर सूर्यसेन, गणेश घोष और अनंत सिंह। इन्होंने निश्चय किया कि अंग्रेजी शासन को सीधे चुनौती दी जाए। योजना बनी कि चटगांव के दोनों शस्त्रागारों पर कब्जा कर लिया जाए, संचार व्यवस्था को ठप कर दिया जाए, रेलवे संपर्क काट दिया जाए ताकि ब्रिटिश सेना की सहायता वहां तक न पहुंच सके। 18 अप्रैल सन 1930 गुड फ्राइडे का दिन था। रात करीब 10 बजे भारतीय रिपब्लिकन आर्मी की वर्दी पहने क्रांतिकारियों ने हमला बोल दिया। गणेश घोष ने पुलिस शस्त्रागार पर हमला करने वाले दस्ते का नेतृत्व किया। उन्होंने बड़े ही साहस और चतुराई से वहां मौजूद पहरेदारों को निष्क्रिय कर दिया तथा भारी मात्रा में बंदूकें और मस्कट जब्त कर लिया। उधर अनंत सिंह के समूह ने सहायक बल शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। शस्त्रागार पर पूरी तरह कब्जा करने के बाद सभी क्रांतिकारी पुलिस शस्त्रागार के बाहर इकट्ठा हो गए। वहां मास्टर सूर्यसेन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, सैन्य सलामी दी गई और अस्थायी क्रांतिकारी सरकार के गठन की घोषणा कर दी गई। गणेश घोष इस नवगठित क्रांतिकारी व्यवस्था में महत्वपूर्ण दायित्वों के साथ संलग्न हुए, लेकिन अंग्रेजी साम्राज्य इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। कुछ ही दिनों में ब्रिटिश सेना ने चटगांव को चारों ओर से घेर लिया। परिस्थिति देखकर क्रांतिकारी दल जलालाबाद की पहाड़ियों की ओर बढ़ चला।

अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस युद्ध में गणेश घोष ने युवाओं का ऐसा हौसला बढ़ाया कि क्रांतिकारियों की सटीक फायरिंग के सामने ब्रिटिश सेना टिक नहीं पाई, उसे पीछे लौटना पड़ा। इसके बाद मास्टर सूर्यसेन ने क्रांतिकारियों को छोटी छोटी टुकड़ियों में बंटकर गांवों में छिपने का आदेश दिया। गणेश घोष, अनंत सिंह, लोकेन बल और आनंद गुप्ता हुगली जिले के चंदन नगर में पहुंचे, जो उस समय फ्रांसीसी उपनिवेश था, इसलिए ये स्थान ब्रिटिश पुलिस के सीधे अधिकार क्षेत्र से बाहर था। यहां क्रांतिकारी सुहासिनी गांगुली और शशधर आचार्य ने पति पत्नी होने का नाटक कर एक घर किराए पर ले लिया, जहां गणेश घोष और उनके साथी छिपे हुए थे। ब्रिटिश खुफिया विभाग को इस ठिकाने का पता चल गया। पुलिस ने इसे घेरकर भयंकर गोलाबारी शुरू की। इस मुठभेड़ में गणेश घोष के साथी मखनलाल घोष शहीद हो गए और गणेश घोष को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा चला, उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया गया। अपनी जेल यात्रा में भी वो चुप नहीं बैठे। उन्होंने जेल में दो बड़ी भूख हड़ताल भी की थी। उनकी रिहाई के लिए देशव्यापी आंदोलन चले। महात्मा गांधी, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर और अन्य शीर्ष नेताओं ने ब्रिटिश सरकार पर लगातार दबाव बनाया और अंततः 1946 में वो रिहा हुए। आजादी के बाद उन्होंने शस्त्र छोड़कर जन आंदोलन और चुनावी राजनीति का रास्ता चुना। वो पश्चिम बंगाल के गरीब और शोषित वर्ग की आवाज बनकर उभरे। आजादी के बाद वो लगातार 3 बार पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य चुने गए। सदन में वो अपनी प्रखर वाणी और शोषितों की आवाज उठाने के लिए जाने जाते थे। सन 1967 में उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा। वो दक्षिण कलकत्ता की सीट से चुनाव जीतकर 4th लोकसभा के सदस्य बने। अपने जीवन के अंतिम 2 दशकों में उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि चटगांव विद्रोह और उनके शहीदों का इतिहास आने वाली पीढ़ियों तक अवश्य पहुंचे। उन्होंने इसी उद्देश्य से बंगाली और अंग्रेजी में कई संस्मरण, लेख और पुस्तकें लिखीं। उनकी अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है चट्टग्राम विप्लवेर बन्ही शिखा। ये उस दौर का सबसे प्रामाणिक दस्तावेज माना जाता है। वो जीवन के अंत तक कोलकाता के एक छोटे से मकान में बहुत ही सादगी से रहे। उन्हें जो भी पेंशन या भत्ते मिलते थे, उसे वो जन कल्याण हेतु दान कर दिया करते थे। अपने जीवन का पल पल भारत भूमि को समर्पित करते हुए उन्होंने 16 अक्टूबर सन 1994 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन लें, कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। इसे हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित कर रहे थे FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब हम राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित करेंगे।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

यमला पगला दीवाना फिर से, ये फिल्म थी जिसका गीत आप सुन रहे थे सचेत टंडन की आवाज में, पुलकित ऋषि ने इसे लिखा, सचेत परंपरा का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और आज बात हो रही है नींद की, कि भाई नींद पूरी क्यों नहीं हो रही है, किसकी नजर लगी हमारी नींद पर, क्यों ना उसे हम हटा दें और अच्छी नींद पा लें। लेकिन ज्ञान देना बड़ा आसान होता है, असली बात कौन बताएगा, भाई हम ही बताएंगे। तो अच्छे समय पर सोने के लिए आप ये कर सकते हैं कि सोने का एक समय पहले निर्धारित कर लें कि भाई इस समय में मुझे सोना है, और रोज़ाना रात का 10 बजे हो, 9 बजे हो, जो भी हो, एक समय निर्धारित कर लें। और ये तो हम नहीं कह सकते कि फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि कई बार बहुत ज़रूरी काम भी होते हैं और इससे हम दूर उतने ज़्यादा नहीं हो सकते, तो ये एक व्यवहारिक तौर पर हम कह सकते हैं। तो फ़ोन का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन सिर्फ उतना ही जितना ज़रूरी हो। कोई बहुत ज़रूरी काम हो, बहुत ज़रूरी मेल भेजना हो, बहुत ज़रूरी संदेश भेजना हो, तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, और बाकी सारी चीज़ें वगैरह देखने के लिए ना करें फ़ोन का इस्तेमाल। कोई शांत सा संगीत लगा लीजिए, और चाहे तो मेडिटेशन कर सकते हैं उस वक्त भी, या डायरी लिखने की एक आदत आप डाल सकते हैं रोज़ाना रात में, तो इससे भी मन शांत होता है और पूरे दिन क्या क्या हुआ इसका लेखा जोखा तो मिलता ही है। साथ ही आपको भी पता चलता है कि आपके मन के अंदर क्या चल रहा है, क्या भावनाएँ हैं आपकी। और आप चाहें तो किताब पढ़ सकते हैं, या घर में बच्चे हों तो उनको कहानी सुनाने का एक समय निर्धारित कर लें रात का, तो उनकी भी जो देर से सोने की आदत है या फ़ोन देखने की आदत है वो सब भी दूर होती जाएगी, तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे। और इसके साथ ही साथ सोने का जो अपना एक स्थान तो तय होता ही है, तो उस स्थान पर चले जाएं उस वक्त, तो एक मन को संदेश मिलता है कि हाँ अब सोने का वक्त हो चला है, तो वो जो बहुत ज़्यादा खुश रहता है या बहुत ज़्यादा कुछ काम करने के लिए एक्टिव रहता है वो धीरे धीरे शांत होने लगता है और समय पर आपको नींद आ जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि एक तरह से एक जिद पाल लें कि सोना है समय पर,

निकिता गांधी की आवाज में रश्मि रॉकेट फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। कौशल मुनीर के बोल, अमित त्रिवेदी का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। तो भाई, किस तरह से अच्छी नींद हो आपकी, इसके बारे में तो हमने आपको सब कुछ बता दिया है। अब आप इतनी जल्दी तो जल्दी सोने की आदत पड़ेगी नहीं, तो जब तक आप देर तक जाग रहे हैं तो आपको एक बात और बता दें कि विविध भारती आप दिन में कभी भी किसी भी समय सुन सकते हैं। दिन रात 24 घंटे आप विविध भारती कभी भी सुन सकते हैं हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप के जरिए। तो बस जब तक जाग रहे हैं तो विविध भारती तो आपके साथ ही बनी ही रहेगी।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
2: कार्यक्रम चित्रलोक में एक छोटे से अंतराल का वक्त है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक, और हम बात कर रहे थे नींद की, कि नींद क्यों समय पर पूरी नहीं होती। तो कई बार ऐसा होता है कि हम कोई मैच देखने के लिए भी जागते हैं और ये मैच हम तक पहुंचाते हैं खेल पत्रकार, जिन जो आंखों देखा हाल अपना सुनाते हैं या हमें दिखाते हैं, और साथ ही साथ कमेंट्री भी होती रहती है। बहुत कुछ होता है इसके पीछे और इसकी वजह से हम जागते रहते हैं और रोमांच बना रहता है। आज है विश्व खेल पत्रकार दिवस, जो कि प्रतिवर्ष 2 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी साल 1994 में। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रेस संघ यानी कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन ने इस दिन को मनाने की शुरुआत की थी और इसीलिए इस संघ के स्थापना दिवस को ही विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाने के लिए चुना गया। और ये दिन उन मेहनती पत्रकारों की भूमिका को उजागर करने का है जो दिन रात लगातार खेल के मैदान से आंखों देखा हाल रेडियो, टीवी और अन्य माध्यमों से हम तक पहुंचाते हैं, और इनकी पत्रकारिता निष्पक्षता, शांति, एकजुटता और खेल भावना का संदेश आम जन तक पहुंचाती है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है जो ये करते हैं। तो आज विश्व खेल पत्रकार दिवस पर हम सभी खेल पत्रकारों को शुभकामनाएं देते हैं और उनके कामों के लिए देते हैं उन्हें धन्यवाद।
1: India in deep trouble now, having lost 2 matches in a row.
2: अपना है दिल ये आज का।
3: मैं मैग्नीफोन ले आऊंगा।

0: अकेली हूँ, पहले ही कंधे घेर दोगे फिर कैसे लड़ूं?
1: जब तुम फिंगर डालते हो तो बात

रांझणा फिल्म का ये गीत आपने सुना सिराज उप्पल और जसविंदर सिंह की आवाजें, इरशाद कामिल के बोल, ए.आर. रहमान का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक में अब आपको सुनवा रहे हैं नीति मोहन, विशाल ददलानी, के.के. और शंकर महादेवन की आवाजों में ये गीत, जिसे लिखा इरशाद कामिल ने, विशाल शेखर का संगीत, फिल्म हैप्पी न्यू ईयर।

स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए, दिन भर में जहां भी रहिए रहिए विविध भारती के साथ, और दीजिए अपनी दोस्त नेहा शर्मा को इजाजत। चित्रलोक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता।

लीजिए पेश है प्रोग्राम आज के फनकार। सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों आज के फनकार हैं जाने माने पार्श्व गायक मोहम्मद।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: दोस्तों, लखन नाम तो फिल्म राम लखन में अभिनेता अनिल कपूर का नाम था, लेकिन इस गाने की मकबूलियत ने पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज को सुनने वालों के दिलों में इस तरह बसा दिया जैसे सीप में मोती और किसी अंगूठी में कोई शानदार नगीना।
1: उंगली में

0: नगीना,
1: उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना,
0: उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना।
2: 2 जुलाई 1954 को गुमा वेस्ट बंगाल में जन्मे मोहम्मद अजीज का पूरा नाम था सैयद मोहम्मद अजीज उन नबी। शुरुआती कुछ फिल्मी गाने उन्होंने मुन्ना अजीज के नाम से भी गाए, बाद में उनकी पहचान बनी बतौर पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज के नाम से। मोहम्मद अजीज जाने माने पार्श्व गायक मोहम्मद रफी के बड़े प्रशंसक थे।
0: न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, न फनकार तुझसा

0: मोहम्मद अजीज को अपने जीवन में फिल्मी गायन का पहला मौका मिला बंगाली फिल्म ज्योति से। दोस्तों, आपको यहाँ याद दिलाना चाहेंगे कि बंगाली फिल्मों में मोहम्मद अजीज के तमाम गाए गीत बेहद मशहूर हुए। उसके बाद 1984 में हिंदी फिल्म अंबर में भी उन्होंने पार्श्व गायन का सिलसिला जारी रखा, लेकिन हिंदी फिल्म संगीत जगत में उनकी पहचान बनी मर्द फिल्म के इस गाने से।
1: मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, हे मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला, ओ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर।

0: हर क्यों भाई बादल क्यों भाई मोदी, मैं सचेता हूँ मर्द टांगे वाला, मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त ऊपर वाला, मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त ऊपर वाला।
1: अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म मर्द का ये सुपरहिट गीत गाकर मोहम्मद अजीज रातों रात पार्श्व गायन की ऊंची पायदान पर जा पहुंचे। इस फिल्म का संगीत दिया अनु मलिक ने और लोगों ने पहले तो ये समझा कि ये गाना शब्बीर कुमार ने गाया, लेकिन जब गौर किया गया तो पता चला मोहम्मद अजीज की आवाज है और बाद में इस आवाज ने धूम मचा।

मोहम्मद अजीज का बंगाली और उड़िया फिल्म इंडस्ट्री से भी जो गहरा नाता रहा है उसका जिक्र हम शुरू में ही कर चुके हैं। हिंदी फिल्म जगत की नामी संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ भी मोहम्मद अजीज का जुड़ाव दोस्तों लंबी अवधि तक बना रहा।

मोहम्मद अजीज ने अपने गायन जीवन में अपनी समकालीन दिग्गज गायिकाओं के साथ गीत गाए। लता जी के साथ उनका गाया ये गीत हम कैसे भुला सकते हैं, जो सिंदूर फिल्म का है।

दोस्तों, मोहम्मद अजीज ने, जैसे कि हम बता चुके हैं, अपनी समकालीन हिट सुपरहिट गायिकाओं के साथ भी गाने गाए हैं, तो उसमें अलका याग्निक का जिक्र ना हो तो प्रोग्राम थोड़ा अधूरा सा लगेगा। आइए सुनवाते हैं आपको बंजारन फिल्म का ये गाना।

दोस्तों यहाँ ये भी जिक्र करना जरूरी होगा कि मोहम्मद अजीज ने हिंदी फिल्म जगत के तमाम बड़े सितारों के लिए पार्श्व गायन किया है, जैसे अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, अनिल कपूर और गोविंदा के साथ साथ और भी कई कलाकार हैं। ऋषि कपूर के लिए मोहम्मद अजीज का गाया फिल्म नगीना का ये गीत बेहद मकबूल रहा है।

बहुमुखी गायन प्रतिभा के मालिक मोहम्मद अजीज ने विभिन्न भारतीय भाषाओं में लगभग 20,000 गीत गाए हैं। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी बर्मन, नौशाद, ओपी नैयर, राजेश रोशन, राम लक्ष्मण और रविंद्र जैन से लेकर उषा खन्ना, आनंद मिलिंद, नदीम श्रवण, जतिन ललित, अनु मलिक, आनंद राज आनंद और आदेश श्रीवास्तव तक तमाम संगीतकारों के निर्देशन में मोहम्मद अजीज ने गीत गाकर सभी को लुभाया है, बहलाया है। अनुराधा पौड़वाल के साथ मोहम्मद अजीज का गाया ये गीत आज भी 90 के दशक के फिल्म संगीत की यादों को ताजा कर देता है।

के अलावा विदेशों में भी जाकर मंच पर अपने कई प्राइवेट कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। उड़िया और बांग्ला भाषाओं में कई फिल्मी गाने उन्होंने अनुराधा पौडवाल के साथ भी गाए और तमाम कई फीमेल सिंगर के साथ भी उनके गाए गीत मकबूल हुए हैं। और जहां तक भजन का सवाल है तो आपको हम ये बता दें कि उड़िया भाषा में उनके कई भजन मशहूर रहे हैं और कई अवसरों पर गाए जाते हैं।

27 नवंबर 2018 को अचानक हुए हृदयाघात यानी हार्ट अटैक की वजह से मोहम्मद अजीज हमारे बीच नहीं रहे। दोस्तों कहते हैं ना, जिस्मानी तौर पर भले ही कलाकार हमारे बीच ना हो, लेकिन अपनी विधा के बल पर वो अपने चाहने वालों के दिलों में बसा करते हैं। इसी तरह पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज भी अपनी आवाज के जरिए हमेशा हमेशा अपने चाहने वालों के मन में जीवित रहेंगे।

0: तो दोस्तों ये था आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज पर। तकनीकी सहयोग दिया वंदना ठाकुर ने और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। अब दीजिए अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।
2: अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 10 बजने वाले हैं। जिले की चिट्ठी अब हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे।
3: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
4: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बैतूल जिले की चिट्ठी। आलेख मयंक भार्गव, वाचन स्वर दीपा सिंह। सतपुड़ा की सुरम्य वादियों में बसे आदिवासी बाहुल्य बैतूल जिले में गत माह प्रदेश के मुखिया डॉ. मोहन यादव के दौरे, जलगंगा संवर्धन अभियान का समापन और योग दिवस आदि प्रमुख घटनाएं चर्चा में रहीं। वहीं जून माह के आखिरी में शुरू हुई मॉनसून की बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। जिले में बोनी का कार्य शुरू हो गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपने 2 दिवसीय बैतूल जिले के हिल स्टेशन कुकरू पहुंचे। यहां उन्होंने कृष्णा आजीविका स्वसहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित आजीविका गतिविधियों का अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने समूह द्वारा तैयार किए गए मावा और रबड़ी का स्वाद लिया, महिलाओं से आत्मीय संवाद कर उनके कार्यों की सराहना की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि स्वसहायता समूह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के साथ साथ महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रदेश सरकार महिलाओं की सशक्तिकरण और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कुकरू प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में विकसित होने की अपार संभावनाएं रखता है। प्रवास के दौरान रात्रि चौपाल में ग्रामीणों से आत्मीय संवाद किया। इस दौरान रात्रि चौपाल में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ग्रामीणों से आत्मीय भाव से खुले मिले। ग्रामीणों ने स्थानीय कुरकू

0: भाषा में पारंपरिक गीत प्रस्तुत किए। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भी गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो भजन सुनाकर सभी का मन मोह लिया। इसी बीच प्रदेश व्यापी जलगंगा संवर्धन अभियान के समापन अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन ग्राम पंचायत खेड़ी सावलीगढ़ में किया गया। कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री जिले के प्रभारी मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। श्री पटेल ने जलगंगा संवर्धन अभियान के सफल संचालन के लिए जिले वासियों को बधाई दी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का संदेश पढ़कर सुनाया। उधर खरीफ सीजन में किसानों को कृषि कार्यों के लिए डीजल की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि किसानों को निर्धारित पहचान पत्र और आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन के उपरांत प्लास्टिक केनों में अधिकतम 50 लीटर तक डीजल उपलब्ध कराया जाए। दूसरी ओर जिले में कनूठा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम ग्राम पंचायत घाट पिपरिया में आयोजित किया गया। आयोग के ब्रांड एम्बेसडर सारिका घारू के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और सुधार करवाने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण पारंपरिक पपेट शो रहा, जिसने स्थानीय भाषा में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की कहानी को बेहद रोचक अंदाज में पेश किया। उधर गर्भावस्था से संबंधित जटिलताओं का पता लगाने और समय रहते उनका उपचार सुनिश्चित कर सुरक्षित प्रसव करवाने के लिए प्रतिमाह 9 और 25 तारीख को प्रधानमंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ. जगदीश ठकोरे ने बताया कि जिले में 25 जून को आयोजित प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान शिविर में 508 गर्भवती महिलाओं की जाँच की गयी और 222 हाई रिस्क चिन्हित कर 50 की सोनोग्राफी भी की गयी। वहीं आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अंतर्गत शासकीय स्कूलों के शिक्षकों का 23 जून से 25 जून तक 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें किशोर बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और उनके सर्वांगीण विकास पर जोर दिया गया। उधर शहर में नशा मुक्ति दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक कर नशा मुक्त समाज का निर्माण करना रहा। कार्यक्रम में नशे से होने वाले शारीरिक मानसिक और सामाजिक नुकसानों पर पोस्टर प्रदर्शनी भी लगाई गई। उपस्थित युवाओं को नशा मुक्ति हेल्पलाइन की जानकारी भी दी गई। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को जिले भर में सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल, जन अभियान प्रदेश उपाध्यक्ष श्री मोहन नागर, जिला विकास सलाहकार समिति सदस्य सुधाकर पंवार उपस्थित थे। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। इसमें आज आपने आलेख मयंक भार्गव का था, वाचन था दीपा सिंह का और इसका प्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। ये आकाशवाणी है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
2: बैतूल जिले की चिट्ठी अभी हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित कर रहे थे। आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है।
3: मीठी मीठी निमाड़ की सुरीली धड़कन,
4: जहाँ होती है मीठी मीठी बातें और सुनाए जाते हैं प्यारे प्यारे गाने।
5: इश्क़ दी चाशने, ओ मीठी मीठी चाशने।
3: तो आप भी इसकी मिठास में खो जाएं, सुनते रहें निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
5: ओ मिठी मिठी चाशनी।
2: जी हां श्रोताओं, सुनते रहें निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा। सुबह के 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी पसंद।

नमस्ते श्रोता, हूँ मैं हूँ आपका दोस्त प्रशांत मालवी और प्रोग्राम है आपकी पसंद। आपकी पसंद के गाने आपको सुनवाएंगे। कार्यक्रम के पहले गीत की फरमाइश करता हमारे श्रोता कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा, कश्मीरी गेट दिल्ली से

मालती शर्मा, माया, दिव्या और सीमा शर्मा, नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफर डावर, खुशनसीब अब्दुल हक, जियाउल हक, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप, बजाज पटिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित और तानिया, प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा से आनंद जोशी, तनुजा, ध्रुवी जोशी और फाल्गुनी, ऊपर कोट मोहल्ला चोखंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन और शाहनवाज अब्बासी, सरफराज, फरदीन, सुहान अब्बासी, अरजान और अबान, भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से हैं अशोक, श्याम कुंवर, प्रमिला, आसमा और दीपक, अनुश्री, सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित और बेबी गर्वी, स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, पप्पी भाटिया और सोनू, ग्राम बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से परमेश्वर साहू, राजबत्ती, काजल पूर्वी, हेजल, रेशमा और राजेश साहू, जवाहर नगर उदयपुर से बाबू भाई और भारती देवी, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा और सीटी दीवाना, गांव नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा और अलका मिड्ढा, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, मेंडी, सोरो, साइना, निवान और इनके साथी, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा, जिला नांदेड़ येताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल, शुभम प्रसाद और कुमारी दुर्गेश्वरी, अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा और सुच्चा सिंह पाठक, बन्ने बुजुर्ग पलेरा टिकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा, ग्राम छिगांव देवी जिला खंडवा से अशोक कुमार वागे, वंदना वागे, भूपेंद्र झवर और तनुश्री, ग्राम जामली कला से माणकचंद राठौड़ और पुष्पाबाई, यादव मोहल्ला सनाव से दिलीप मालाकार, सुनीता, मुस्कान और योगेश, अहमदपुर के गांव खंडवा से कैलाश फुलमाली, दीपक, समर फुलमाली और वेदिका, सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से प्रकाश बोरगांव का, प्रांजलि, सोहम, सुषमा, अंशुमन और ओवी, बड़ा बमचौक खंडवा से ममता मारकंडे, संजय और बेबी किट्टू, ततरेंगी के भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता और रुद्र वर्मा, जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबिया, अनस और रेहान, राजकमल रेडियो लिसनर्स क्लब आष्टी, जिला जालना मराठवाड़ा से सैयद यूनुस, सैयद नोमान, तनवीर मसरत, निजामुद्दीन और राम भोतांदले, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा और सिटी, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया और शेख रहीमुन्ना, धर्मपुरी से शेख फहीम, मोहम्मद तस्लीम, शेख मुजफ्फर और इनके साथी अयान, फैजान, सुमेरा, साइमा, हसनैन और खुशी हैं। और आप सभी ने जो गाना पसंद किया, बड़ा ही खूबसूरत गाना, जान तेरे नाम फिल्म का गाना है, आशा भोसले कुमार सानू की आवाज़, नदीम श्रवण का संगीत, अजीज खान और साहनी का लिखा है गाना, फिल्म जान तेरे नाम का आपकी पसंद का ये गाना।

0: नदीम श्रवण के संगीत से सजा ये गाना था जिसे आशा भोसले और कुमार शानू ने अपनी आवाजें दी। फिल्म जान तेरे नाम का ही गाना था। हाजिर होंगे इस अंतराल के बाद।
1: आप सुन रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: फिर से
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
5: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
5: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
4: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
2: 2 लाख
6: क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
4: अरे
2: काट दिया।
6: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
6: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे।
7: RBI कहता है
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: भाई, एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
4: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
3: मतलब
4: ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से HIV एड्स और अन्य संक्रामक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
3: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हों।
5: आप भी सतर्कता अपनाएं और HIV के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
6: आप सुन रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।
7: चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम के अगले गीत की ओर बढ़ेंगे और इस गीत को पसंद किया आप सभी श्रोताओं ने। दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन, अनजान साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद और मिफरा नवाज। गाड़गे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल और रक्षत। गाँव कुमारहेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन और नाजिया इब्राहिम। और ग्राम बग बड़ुआ पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम। शिवकोठी ओमकारेश्वर से राकेश पप्पू सेन, ओम सपना, धर्मेंद्र मुकेश और ईश्वर और वैष्णवी। लक्ष्मीबाई अनाज मंडी रोड वंदना नगर इंदौर से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, गणेश कार्तिक, संजना परी, मालती और स्वाति प्रयाग चौधरी। लेवा खेल मोहल्ला चांदपुर बिस्वा से नारायण भाऊ विठल राव खर्चे।

और इनके साथी इंदिरा विहार रायगढ़ से अकरम नूरजहां, डब्लू नूरजहां, वसीम वली उल्लाह और राजनंदगांव से याकूब आसमा, यूसुफ इमरान और इरफान आसमा, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी और अदीबा, गांव रतनपुर तहसील झिरनिया जिला खरगोन से भागीरथ नायक, जितेंद्र नायक, सुभाष नायक, रविंद्र शिवानी, अश्विनी हर्षराज, अरविंद्र, आदित्य, गुनगुन और इनका पूरा परिवार, सागर निम्भोरा महाराष्ट्र से बबनराव जोशी, हेमंत जोशी, मनीषा, अभिजीत, करिश्माताई, अशोक देशमुख और आलोक कुलकर्णी, रामनगर रोड शांतिनगर इंदौर से कुमारी देविका चौधरी, कविता वाणी और इनके साथी, कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार है जिसमें मुकेश, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता, ग्राम चसवाड़ी से दुर्गेश नागनपुरे, वंदना बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से, कवर कॉलोनी बढ़वा से प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, आदित्य अदिति, शिवानी और मीनूराज शिमाली, ग्राम बुड़गहन से राम दुलारी और इनके साथी हैं, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका और संप्रीत पंचोलिया, जसवाड़ी रोड मेन माता चौक खंडवा से एनडी धानु, श्रीमती सुशीला, वर्षा रानी, संतोष, प्रीति, अतुल धानु, श्रीमती सीमा, संदेश, सूर्यांश, वेदांश और कुमारी अंशिका धानु चकोर, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले, पाटिल, राजीदीप, राशि और श्रीमती शीतल राजेश हैं। आप सभी ने जो गाना पसंद किया वो है फिल्म सातवां आसमान का, लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजें, राम लक्ष्मण का संगीत है, सूरज सानीम का लिखा है गाना, फिल्म सातवां आसमान का, आपकी पसंद का ये गाना।

सातवां आसमान फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजें, और राम लक्ष्मण का संगीत था। अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज में यह गाना होगा, खिलाड़ी फिल्म का है, जतिन ललित का संगीत, अनवर सागर का लिखा है गाना। पसंद आप सभी श्रोताओं की है। नाम बताए देते हैं, राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडा ने, अर्चना प्रणय प्रसिद्धि रामन शेंडे और महेश रामटेके, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिंपा और पूजा परिहार, नूर महल महसूल सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहां नाज, तलत जहां फरहत और रिफात, नुजहत नाज साजिया शाही नाज और नाजिया नूरी नाज, नजमुल होदा इसम जावेद शगुप्ता अंजुम और इनके साथी गुमला झारखंड से, गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जोरी, एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से नारायण और इनके साथी हैं, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका और भानु प्रकाश, महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत मिथिल और प्रगति, ततरंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि पुष्पेंद्र और नोखिलाल वर्मा, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल और तन्वी बोट, स्थान कापसेड़ा बॉर्डर दिल्ली से आमना नसरीन, आसमा परवीन बागवान, मंजिल छोटी बलिया से नूर आयशा अहमद बागबान, नबासी आशु अहमद बागबान, दुखना रानी, जू इकबाल छतरी टोल तेघरा बेगूसराय से अदीबा अफसरी इस्माइल आज़ाद और शाहो भाई वली आलम,

बोरखेड़ा पितरामल जिला उज्जैन से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक मुणत, चेतन नाटा और दिलीप सिंह पवार। हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़के, श्रीमती नंदा बोड़के, हनुमान और उत्तम जमदाड़े। आकोट से विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, विजय, शुभम, पवन जरिए और संजीव डाबेराव। बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा। चंडीगढ़ से राजरुल खुराना, रचिता खुराना और इनके साथी। दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जमानिया गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल। मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर यमेकर, प्रमोद और प्रदीप यमेकर। मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही। कुंभार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, प्रतीक्षा प्रथमेश और पांडुरंग कुंभार। जिला सांगली महाराष्ट्र से हनुमंत शिंदे, संगीता और ऋषिकेश और वसुंधरा। गिरगांव महाराष्ट्र से गजानन नादरे, मारुतराव पांचाल। ग्राम धरदई सरगांव छत्तीसगढ़ से चंदुलाल पटवा, श्रीमती सुनीता पटवा, हर्ष कुमार और विनीत कुमार और कुमारी कृष्टि पटवा। डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद और कुमार गौरव। गांव डाकघर निम्नाबाद, जिला जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत और करमजीत कौर। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर और नयन पांडे। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान और नरगिस खातून। बुल्ढाना वड़शिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभाताई मानकर और दीपाली और श्लोक। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से निर्मला और विशाल हैं। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा, अमित कुमार, हैप्पी राय। दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक और इनके साथी हैं।

साथ में रोशनी और परांजल भी है, आकोड़ से विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, विजय, पवन और संजीव, आकार हाइट्स बहादुर बहादुरा नागपुर से, वैशाली शैलेश गवाणकर, श्वेता कुमारी ध्वनि परी, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, कीर्ति भूमिका और ममता अरोड़ा, पंजाबी बाग दिल्ली से परमजीत कौर, हरप्रीत कौर, हरदीप सिंह दलजोत और दिलबाग सिंह और इनके सभी साथी हैं। आप सभी की पसंद पर सुनवा रहे हैं अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज में खिलाड़ी फिल्म का यह गाना।

0: अपनी पसंद पर आप सुन रहे थे खिलाड़ी फिल्म का गाना। अभिजीत और अलका याग्निक की आवाजें थी, जतिन ललित का संगीत और अनवर सागर का लिखा है गाना था। इसके साथ ही कार्यक्रम आपकी पसंद अब यहीं संपन्न होता है। नमस्कार।
1: एहसास की जो जुबान बन गए,
2: ध्वनि तरंगों से जुड़ा है ये मोहब्बत का एहसास, उफ की दूर होने नहीं देता।
1: आप हमारी जान बन गए।
2: सुनते रहे निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।

इस समय सुबह के 10:40 हुए हैं। प्रस्तुत है निमाड़ी लोकगीत। श्रोताओं, निमाड़ी लोकगीत के इस कार्यक्रम में आज हम आपको जयराम सावनेर और साथियों के गाए कुछ लोकगीत सुनवा रहे हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे जयराम सावनेर और साथियों के गाए निमाड़ी लोकगीत। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।
1: आप सुनी रहे आज निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।

एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। इस समय दिन के 11 बजने वाले हैं। अब हम राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित करेंगे।

दिव्य कुमार और अदिति सिंह शर्मा की आवाजों में आपने सुना ये पारंपरिक गीत। आइए रंग तरंग कार्यक्रम का ये अगला गीत सुनते हैं।

0: ये थी ऋचा शर्मा की आवाज़। और आइए अब आपको सुनवाते हैं सुलक्षणा पंडित और आरती मुखर्जी का गाया हुआ ये गाना। लिखा है माया गोविंद ने, धुन बनाई है राज कमल ने।
1: धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत

0: की बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका।

0: सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: रंग तरंग कार्यक्रम में अब सुनवा रहे हैं राजेंद्र मेहता और नीना मेहता की गाई ये गजल।

जुबिन नौटियाल की आवाज में आपने सुना ये गाना, गुरप्रीत सैनी के बोल थे, रोचक कोहली का संगीत था। और आइए अब आपको सुनवाते हैं दिलराज कौर की आवाज, मोहसिन नकवी का कलाम।

ये थी रंग तरंग कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती। रंग

0: लगता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता कर रहे हैं। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। आज सुबह प्रधानमंत्री ताकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंची। प्रधानमंत्री ताकाइची का ये भारत का पहला आधिकारिक दौरा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा है कि आतंकवाद को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंडों की कड़ी आलोचना करते हुए एक मजबूत और एकजुट वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने ये बात कही। श्री हरीश ने कहा कि भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद का शिकार होता रहा है और इसलिए मानता है कि आतंकवाद के सभी रूपों की स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि बाढ़ से 13 जिलों के करीब 72,000 लोग प्रभावित हुए हैं। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि योजना का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्य आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी

0: आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 11 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले इस सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर हिस्सों और राजस्थान के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। राजधानी में बारिश से गर्मी और उमस से भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन में मानसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टिलमैंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

अभी आपने सुना यादों की बारात फिल्म का गाना किशोर कुमार और मोहम्मद रफी की आवाजों में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे और राहुल देव बर्मन का संगीत। और अब सुनते हैं फिल्म उमर कैद का ये गाना, लता मंगेशकर मुकेश का गाया हुआ, गुलशन बावरा का गीत, सोनी ओमी का संगीत।

0: फिल्म सावन का ये गाना सुन रहे थे, जिसे लिखा था असद भोपाली ने, धुन बनाई थी हंसराज बहल ने, आवाज थी लता मंगेशकर की।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: यादों की महफिल कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में। गीत लिखा है गुलजार ने, धुन बनाई है खयाम ने।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आप सुन रहे थे वारिस फिल्म का ये गाना। वर्मा मलिक के बोल, उत्तम जगदीश का संगीत था। और आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म सौदागर का ये गाना।

आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में फिल्म फांसी का ये गाना, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

योगेश की शब्द रचना, सचिन देव बर्मन का संगीत, किशोर कुमार की आवाज में आपने सुना फिल्म मिली का ये गाना। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म राजपूत का गीत किशोर कुमार और साथियों के स्वरों में। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन।

जावेद अख्तर के बोल, हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत, फिल्म मशाल का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। ये थी आज की यादों के महफिल की अंतिम प्रस्तुति। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन।

आप सभी को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। सुरीला सफर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में जो इबारत हमने फेसबुक पर पोस्ट की है वो आपने पढ़ी और बहुत सारे संदेश भेजे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने अभी नहीं पढ़ी है उनके लिए हम एक बार यहाँ पढ़ देते हैं। खिलते नगमों की कलियाँ चुनने वाली दिलकश बहार का मौसम, 100 सालों से बंधन अनजाना बांध के चलने का मौसम, ये कहता है दिल थाम लोगर रंग साथ अभी खिल जाएंगे, बन सुगंध सुमन मिल जाओ तो सब एक ताल बंध जाएंगे, रजनी गंधा संग खिलता मन बांधे अनजाना सा बंधन, ये मौसम धीरे धीरे से जीवन में घुल मिल जाता है, पर जाता है तो बीते लम्हों की कसक छोड़ कर जाता है। तो ये है आज की इबारत और इस इबारत को लेकर बहुत सारे गानों के बारे में भी आपने कहा है, तो बस ये देखना है कि आज जो गाने प्ले होने वाले हैं उनसे आपकी लिस्ट कितनी मैच कर रही है, हमें ज़रूर बताइएगा। हो सकता है कि आपने अभी अभी जो गाना सोचा हो वो हमारी इस लिस्ट में हो, तो अगर अभी भी कोई दिमाग में गाना आ रहा हो तो जल्दी से हमें बताएं। बहरहाल आज मौसम को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं और हमारे श्रोताओं ने भी मौसम के बारे में कई संदेश भेजे हैं। एक संदेश में कहा है कि एक हम हैं जो उदास होकर चुपचाप अपने काम कर रहे हैं और आप कितनी प्यारी सी इबारत लेकर आई हैं, जबकि हम जानते हैं कि ऐसा करना ठीक नहीं है। कितना प्यारा मौसम और प्यारा सा विविध भारती का साथ, फिर भी ना जाने क्यों ये दिल बार बार उदास हो जाता है, पर हमने अपने दिल से कह दिया कि हमें मुस्कुराना है और हमें उदासी दूर होती नजर आई और हम हो गए शामिल सुरीला सफ़र में। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे लिखते हैं कि आपकी इबारत में हमें फूल और कलियां नज़र आईं, तो हमने अपने गमले में एक बात नोटिस की, 3 दिन से हिबिस्कस यानी गुड़हल के एक पौधे में 3 दिन से 3-3 फूल खिल रहे हैं। आज 3रा दिन है और कल 4थे दिन के लिए भी उसमें 3 कलियाँ हैं। इन छोटी छोटी बातों पर हमारा ध्यान नहीं

0: जाता, पर कभी कभी ये सब देखना भी अच्छा होता है क्योंकि इस बहाने हम प्रकृति से जुड़ते हैं और फिर ये पौधे तो कितनी खुशियां देते हैं हमको। बहुत सुंदर बात कही आपने और संदेशों में बहुत सारी बातों के साथ साथ ये भी कहा गया है कि इस कार्यक्रम में विविध भारती और उसके श्रोता साथ साथ मिलकर चलते हैं तो मौसम के साथ सजन का लुत्फ ही कुछ और है। न जाने कितनी गीत कविताएं इनके सानिध्य में परवान चढ़ी हैं। कवि और गीतकारों की कलम का जादू जब कोरे कागज पर उतरता है तो सावन भादो बरखा पतझड़ हर मौसम के गीत बन जाते हैं। मौसम जीवन में वो सब अनुभूतियां देता है जिसे हम खुशी का नाम दे सकते हैं। शायर बशीर बद्र के माध्यम से कहें तो अजब मौसम है मेरे हर कदम पर फूल रखता है मोहब्बत में मोहब्बत का फरिश्ता साथ चलता है। बहुत सुंदर। तो मौसम की इतनी बातें हो गई हैं तो क्यों ना उन सभी गीतों पर एक नज़र डालते चलें जो कि आपकी पसंद हैं। एक एक कर उनकी एक झलक सुनते जाते हैं।
1: झूमता मौसम।

दरअसल मौसम को लेके इतने खूबसूरत गीत हैं कि अगर हम उनको थोड़ा थोड़ा भी प्ले करते चलें तो आज के कार्यक्रम का वक्त ही पूरा हो जाएगा, इसलिए कुछ गीतों को हमने छांट कर लिया है, चुनकर लिया है। अब जो गीत हमने चुना है वो तो आपको सुनवाएंगे ही, आपसे पूछेंगे फिल्म का नाम और कलाकारों के नाम, लेकिन एक सवाल और है। आज की इबारत में शुरुआत में एक गीत के अंतरे की कुछ पंक्तियाँ छिपी हुई हैं, आपको वो गीत पहचानना है, फिल्म का नाम बताना है और साथ ही वो अंतरा भी बताना है कि वो अंतरा असल में क्या है, उसमें से कुछ शब्द लिए हैं अंतरे के। तो अब ये गीत और बताइए फिल्म का नाम और मुख्य कलाकारों के नाम।

बहुत बहुत शुक्रिया हमारे श्रोताओं के उन जवाबों के लिए जो उन्होंने तुरंत भेजे हैं। बताया है कि फिल्म ओपेरा हाउस का ये गाना जिसमें प्रमुख कलाकार रहे अजीत और बी सरोजा देवी। और जो दूसरा सवाल हमने पूछा था, मैं पल दो पल का शायर हूँ गीत की ये कुछ पंक्तियाँ थीं, कुछ शब्द असल में चुने थे उसके एक अंतरे से। और बताया है कि कभी कभी कभी फिल्म में अमित जी स्टेज पर गा रहे हैं। हमने ये भी कहा था कि अगर वो अंतरा आपको याद आ रहा हो तो ज़रूर लिखें, अभी कोई वैसा जवाब दिख नहीं रहा है। वैसे मौसम का जब भी हम जिक्र करते हैं तो खूबसूरती का और तमाम उन चीज़ों का जो प्रकृति से जोड़ती हैं हमें, उन सब की बातें करते हैं, लेकिन साथ ही साथ मौसम एक चीज़ और सिखाता है कि आज जो है वो कल नहीं रहेगा और जो कल है वो परसों नहीं रहेगा। यानी निरंतर बदलाव की ओर भी संकेत करता है मौसम, और ये भी बताता है कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले। तो चलिए अब अगले गाने की तरफ बढ़ें, लेकिन उससे पहले ये संदेश है। एक श्रोता ने कहा है कि आज की ये कविता में इबारत जीवन के उस सुखद दौर का उत्सव है जो आते ही चारों तरफ सकारात्मकता बिखेर देता है, लेकिन जाते जाते हमें यादों के साए में छोड़ जाता है। ये पद्य हमें याद दिलाता है कि जीवन में अच्छे दिन या खूबसूरत लम्हे हमेशा नहीं ठहरते। उनका आना जितना सुखद होता है, उनका जाना उतना ही भावुक कर देने वाला होता है। कविता में प्रकृति के मौसम को मानवीय भावनाओं, विशेषकर प्रेम और विरह से बेहद खूबसूरती से जोड़ा गया है। क्या बात है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि मौसम अपने साथ बहुत से परिवर्तन लेकर आता है जो हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा देता है। जब चारों तरफ फूलों की सुगंध और हरियाली बिखरी होती है तब हम भी मन से इसमें घुल मिल जाते हैं, पर प्रकृति हमें समय समय पर अपने नए नए रूप से अवगत कराती रहती है और हमें ये संदेश देती है कि हर मौसम कुछ समय के लिए आता है, इसके बाद फिर परिवर्तन है और इसमें हमें अपने आप को ढालना है। हर मौसम हमें कुछ देकर जाता है, इसकी यादें हमारे मन मस्तिष्क पर छा जाती हैं। बहुत सुंदर बात कही आपने। एक और श्रोता ने कहा है कि प्रकृति का सौंदर्य केवल आंखों को नहीं आत्मा को भी स्पर्श करता है। फूलों की मुस्कान, रजनीगंधा की भीनी सुगंध और सुहाने मौसम का ये सम्मिलित स्पर्श जीवन के उन अनमोल क्षणों का स्मरण कराता है जहाँ सुख किसी बड़े उत्सव में नहीं बल्कि प्रकृति की सहज छटा में छिपा होता है। जब चारों ओर सृष्टि अपने सौंदर्य का संगीत बिखेरती है तब मन भी अनायास ही भावों के सुर छेड़ देता है और जीवन एक मधुर गीत सा प्रतीत होने लगता है। बहुत सुंदर बात कही। तो चलिए इसी बात पर एक सुंदर सा गीत आपको बताना है कि फिल्म का संगीत किन्होंने दिया था और प्रमुख भूमिकाएं किन्होंने निभाई थीं।

देवानंद और आशा पारेख ने जब प्यार किसी से होता है फिल्म में प्रमुख भूमिकाएं निभाई थीं। बहुत बहुत धन्यवाद जवाब के लिए। लेकिन हमने संगीतकार का नाम भी पूछा था, शंकर जयकिशन का संगीत था इस फिल्म में। और हमारे एक श्रोता ने कहा है कि मौसम बादलों बयारों और बौछारों का है, भीगने का है, यादों की रिमझिम बूंदों की जुगलबंदी में कुछ गुनगुनाने का है। जिस तरह पावस के बादल धरती का मैल धोकर उसे उजला कर देते हैं, उसी तरह हमारे मन की परतों पर ठहरा आपाधापी अशांति और बेचैनी का गुबार भी बौछारों से धुलकर उज्जवल हो सकता है। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि भाई मौसम की बहुत बातें हो रही हैं और बारिश डर डर कर आ रही है। तो यकीन मानिए कि बारिश को हम बुला रहे हैं, बल्कि डर नहीं रही है, बल्कि आने के लिए मजबूर होती जा रही है। और बारिश जल्द ही आ जाए, हम तो यही दुआ करेंगे। एक और श्रोता ने बताया है कि वो आज शिमला में मौसम बहुत अच्छा हो गया है और मेलोडियस सॉन्ग सुनते हुए बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे श्रोताओं के इन संदेशों के साथ ही साथ मौसम की जो बातें चलती जा रही हैं उनमें बहुत सुंदर तरीके से गीतों की इबारत पिरोई है हमारे एक श्रोता ने। लिखते हैं कि हे विविध भारती, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, सालों पुराना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना। 100 साल पहले तो नहीं, 66 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो आओ मिल जाएं हम सुगंध और सुमन की तरह, एक हो जाएं चलो हवा के संग, प्रसारण तरंगों की तरह। क्या बात?

बात है। पिछले 3 दिनों से मौसम ने भी करवट ली है। भीगा भीगा प्यार का समय है, सुहाना सुहाना बरसात के नशे में जहां है, किसी को किसी की खबर ही कहां है। बीते हुए लम्हों की कसक याद करते हुए तड़प ये दिन रात की, कसक ये जिन बिन बात की। हे विविध भारती, तुझे सुनने का भला ये रोग है कैसा, आप तो बता दे। भाई रोग तो नहीं, ये तो आपकी बातों से लगता है कि किसी मर्ज का इलाज है। विविध भारती सुनना, हमने सही कहा ना। एक और श्रोता कह रहे हैं कि मौसम का मिजाज समय अनुसार बदलता जाता है और इसके अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है। बहारों का मौसम रंग बिरंगे फूल और सुगंध मन मस्तिष्क में घुल जाता है। धीरे धीरे ये बंधन दूर चला जाता है और उन लम्हों को याद करते रह जाते हैं। तो याद की बात हुई है, अब इस गीत को जरा सुनते हैं। आप हमें ये बताइए कि इस फिल्म में जो प्रमुख कलाकार हैं उनके नाम क्या थे।

जब आप मिला वासु की भूमिका कमल हासन ने निभाई थी और सपना बनी थी रति अग्निहोत्री फिल्म एक दूजे के लिए का ये गाना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। कितनी खूबसूरत पंक्तियाँ लिखी हैं आनंद बख्शी साहब ने, दुनिया में प्यार की एक ही बोली। तो बताइए कि इस एक ही बोली के साथ साथ कितने सारे गीत बनते चले जाते हैं और वो कौन सा गीत है जो आपको सबसे ज़्यादा मन को लुभाता है? बताइए हमें कि इस भाव के साथ लिखा गया वो कौन सा गीत है जो आपको सबसे ज़्यादा लुभाता है। हमारे श्रोताओं के कुछ संदेश हैं। मन किसी गीत नगमे की तरह खेल रहा है और किसी खास इंसान अनजाना रिश्ते की तरफ अपने भीतर छिपे किसी एहसास की तरफ आकर्षित हो रहा है। ये मौसम की नायत भी हो सकती है और प्यार का एहसास भी। हमारे एक श्रोता ने बताया कि सुरीला सफ़र शुरू होते ही बनारस में बारिश शुरू हो गई। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई बारिश की, ये मौसम की पहली बारिश, बहुत बहुत मुबारक। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि आज तो सुरीला सफ़र में शायद विवाह की बात होगी। एक ऐसा रिश्ता अनजान होते हुए भी एक दूसरे को सब कुछ सौंप देना, प्यार की असीम खुशी के साथ जीवन जीने की इच्छा और सात जन्म तक साथ निभाने का वादा करना ही जीवन है। एक और श्रोता ने कहा है कि कहा जाता है कि बंधनों के कई रूप होते हैं, सात फेरों का बंधन, सात जन्मों का बंधन, जन्म जन्मांतर का बंधन, परंतु एक बंधन और हो भी होता है, मन से मन का। बहुत सुंदर। रेशम सा कोमल, बहते हुए नीर सा पवित्र, हवाओं में खुली हुई चंदन और फूलों की महक सा जो मन से मन की डोर को बांध कर रखता है। जब यह बंधन बनता है तो एक चुप सा मौन सा बन जाता है। यहाँ दिव्य प्रेम की अनुभूति होने लगती है जिसमें किसी अग्नि साक्षी, किसी हवन, यहाँ तक कि किसी सात वचन की भी कोई भूमिका नहीं है। यहाँ जो प्रेम डोर में बंधन होता है उसे आपस में केवल मन से मन को एक मौन ने स्वीकार किया है। न बांधने की चाहत, न छूटने का डर, क्योंकि ये है मन से मन का बंधन। बहुत सुंदर बात कही आपने। और अब अगला गीत सुन रहे हैं, सुनिए और बताइए कि इस फिल्म के संगीतकार कौन हैं। और हाँ, मौसम को लेकर जो प्यार की बोली की बात है उसमें आपको सबसे सुंदर, सबसे प्यारा, मन के करीब गाना कौन सा लगता है?

0: इकबाल कुरैशी का संगीत था इस फिल्म में लव इन शिमला का। ये गाना आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में। और हमने जो गानों के का जिक्र किया था कि ऐसे दिल के बोल, दिल की प्यार की बोली बोलने वाले कौन से गाने आपको पसंद हैं, तो हमारे श्रोताओं ने कई गाने, बड़े सुंदर सुंदर गाने लिख भेजे हैं। मीठे बोल बोले बोले पायलिया, और पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, रफ़ी जी सुमन जी शगुन फिल्म का गाना, और एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आना तो आके कभी अब जाना नहीं। एक श्रोता लिख रही है कि बाहर बरसात हो रही है और रेडियो सेट पर गानों की क्या बात है। एक और श्रोता ने बताया नज़रों से कह दो प्यार में मिलने का मौसम आ गया। एक श्रोता पूछ रहे हैं कि रुम्बा कहाँ की भाषा है, इसका क्या मतलब है जी। तो अच्छा होगा कि हमारे जो कोई दक्षिण भारतीय साथी इस समय हों फेसबुक पर वो बताएं। एक बड़ा खूबसूरत सा गाना हमारे एक श्रोता ने लिख भेजा है, अरे ओ शोख कलियों मुस्कुरा देना, जो वो जब आए सुनो फूलों महक अपनी लुटा देना, वो जब आए। फिल्म जब याद किसी की आती है का ये बड़ा ही सुंदर सा गीत इन्होंने हमारे साथ साझा किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक श्रोता बता रहे हैं कि फिल्म एक दूजे के लिए मैंने 1982 में पहला मैटनी शो देखा था, उस समय मैं फोर्थ ईयर कॉलेज में था। इस फिल्म ने सभी को पागल बना दिया था। और बहुत सारे संदेश और भी हैं। हमारे एक श्रोता ने कहा है कि मौसम अंगड़ाई में गदराई वसुधा के रूप सौंदर्य से बौराए आशिक मिजाजी दीवानगी को और भी दहनशील बनाती इबारत है, सुमन सुगंध व्याप्त कुसुम दल के मधुरस पान कराती और प्रेम रस बिखेरती इबारत में दीवानगी की हदें पार हो जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। एक और श्रोता ने कहा है कि प्रकृति का सौंदर्य, फूलों की मुस्कान एवं भीनी खुशबू और मौसम का मनमोहक मिजाज आपस में मिलकर एक ऐसी जीवंत कविता रचते हैं जो तन और मन को गहराई से भिगो देती है। ये वो त्रिवेणी है जहां हर एक तत्व दूसरे का पूरक बनकर इस धरा को स्वर्ग जैसा अनुभव कराता है। सौंदर्य सुगंध और मौसम के संगम का सीधा असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। क्या बात कही है, बदलते मौसम के साथ प्रकृति का मिजाज भी बदलता है। आसमान में तैरते बादलों की लुका छिपी कभी रिमझिम फुहारें और क्षितिज पर बिखरती सूर्य की किरणें ऐसा समा बांधती हैं कि प्रकृति का हर कण जीवंत हो उठता है, जो आसमान के साथ जीवन में भी सतरंगी इंद्रधनुष रच देता है। तो बताइए कि ये जो इंद्रधनुष रचता है सतरंगी आसमान में बारिश के दिनों में, उस इंद्रधनुष के साथ रंगों का प्रयोग इस गाने में तो हो ही रहा है जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, और कहाँ कहाँ पर होता है, और क्या आज भी आप वैसे ही ललक कर इंद्रधनुष देखने छत पर जाते हैं या बाहर निकलते हैं जैसे बचपन में जाया करते थे?
1: नहीं नहीं,

सलील चौधरी का संगीतबद्ध किया हुआ ये सुरीला सा गाना आनंद फिल्म से मुकेश की आवाज़ में आपने सुना, और बहुत सारे श्रोताओं ने बताया वो गाना जो उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। एक श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा, ये भी मुझे पसंद है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि इस मौसम का सबसे बेहतरीन सुंदर गीत जो मेरा और विविध भारती का पेटेंट परमानेंट गीत है, रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन। इस गीत का फिल्म का नाम मैंने विविध भारती रखा है, वैसे इस फिल्म का नाम है मंजिल। क्या बात है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि रफ़ी साहब की आवाज़ है ये तो पहचाने, इन्होंने शायद लव इन शिमला फिल्म के उस गाने की बात की है। कहा बात इसी गाने के लिए, हमारे एक और श्रोता ने बताया है कि इस गाने में इलेक्ट्रिकल हवाईयन गिटार स्वर्गीय सरदार हजारा सिंह जी द्वारा बजाया गया है, और बड़ा प्यारा गीत दिल थाम चले हम। जब भी बारिश होती है तो पहले ये गाना होठों पर तैर जाता है, बरखा रानी जरा जम के बरसो, और ये पर्वतों के दायरे ये शाम का समा, ये गाना बहुत पसंद है हमारे एक और श्रोता को। मौसम आधारित गीतों में सबसे ज़्यादा पसंद है ये गाना हमारे एक और श्रोता को, मौसम मौसम ये लवली मौसम, और दूसरा लोफर का आज मौसम बड़ा बेईमान है। और हमारे कुछ श्रोताओं ने दिल थाम चले गीत के बारे में बताया है कि बहुत ही रोमांटिक गाना है। एक श्रोता बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा लुभाने वाला फिल्म गीत है तीसरी कसम का, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। और ये एक और श्रोता ने कहा है कि इस गीत के बारे में केवल ये पता है कि रफ़ी साहब गा रहे हैं। तो चलिए, हमारे जिन श्रोताओं को पता है कि इस फिल्म में रफ़ी साहब की गीत के इस आवाज़ को पर्दे पर कौन अपने होठ हिला रहे हैं, तो अगर आपको पता हो तो हमें ज़रूर लिख भेजें। एक और श्रोता ने केदारनाथ फिल्म के गाने का जिक्र किया है, काफिराना सा है इश्क है या क्या है, ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो जैसे मिल रही हो इत्र से हवा, बहुत सुंदर गाना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, ये इनका गाना बहुत इन्हें प्रिय है। तमिल भाषा का शब्द है रुम्बा, हमारे एक

श्रोता ने बताया है। और एक और श्रोता कह रही हैं कि आपकी दुआ का असर हुआ है, कल बनारस में रात को एक घंटा रिमझिम बारिश हुई थी, हमारे सभी पेड़ पौधे बारिश के पानी से भीग गया था, जैसे खिल गया सब पेड़ पौधे, बनारस में मौसम सहनीय हो गया है, आपको ढेर सारा शुभेच्छा। आप नहीं वर्षा के बाशिंदों को दुआ भेजिए जी, ज़रूर वहाँ बारिश होगा। क्या बात है भाई, हम तो बिल्कुल भेज रहे हैं अपने उन सभी श्रोताओं के लिए, ठंडे ठंडे बादल वहाँ तक पहुँचे। और अब ये गाना आप सब के लिए, ज़रा इस गीत को सुनिए, फिल्म का नाम और प्रमुख कलाकारों के नाम बताइए।

इंद्रधनुष को लेकर हमने जो सवाल पूछा था उसके जवाब कई देखने को मिले। इंद्रधनुष को देखना अच्छा लगता है बचपन में भी और अब भी, इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। और एक और श्रोता ने बताया कि मैं अमेरिका के नियाग्रा फॉल देखने गई थी, वहाँ मैंने एक ही जगह पर ही छोटे छोटे बहुत से इंद्रधनुष हर थोड़ी थोड़ी दूर पर देखे जो बहुत अजूबे से लगे। वाकई हम तो सोच रहे हैं कि क्या नज़ारा होगा वो। एक और श्रोता ने कहा है कि असल जिंदगी में मुंबई में

इंद्रधनुष नहीं दिखता। आज का प्रोग्राम मुझे प्रोत्साहित कर रहा है कि मुंबई से बाहर जाके इंद्रधनुष देखूं। क्या बात है। एक और श्रोता ने कहा है कि इंद्रधनुष जब भी बादलों से झांकता था हम रंग गिनने लग जाते थे, शहरों में कम दिखाई देता है, मिस यू। सच में इंद्रधनुष जब भी दिखता है तो लगता है वाह वो दिन लौट आए। एक और श्रोता ने कहा है कि हम तो अभी भी इंद्रधनुष उतनी ही ललक के साथ देखते हैं, और एक बार तो दो एक साथ इंद्रधनुष निकले थे तो इच्छा भी मांग ली। हाँ, ये टोटका तो बहुत ही ज़्यादा कारगर होता था, और कितना इसको जो सबसे पक्की सहेलियाँ होती थी वो तुरंत दौड़कर बुला ले जाती थी कि चलो चलो दो इंद्रधनुष निकले हैं, जो मांगना है मांग लो। और बहुत बार मांगा जाता था कि भाई गणित का पर्चा बड़ा ख़राब होने वाला है, नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो वो उसमें अच्छे नंबर आ जाए, या कि हमें ये ड्रेस मिल जाए, कुछ इस तरह की ख्वाहिशें होती थी। आपने क्या कभी ऐसी कोई ख्वाहिश की है हमें ज़रूर बताइएगा। एक और श्रोता कह रहे हैं कि रुम्बा ये तमिल शब्द है, मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत या बहुत ज़्यादा। एक और श्रोता ने कहा है रंग तो जीवन शैली का अभिन्न अंग है, शिक्षा हो, सजावट हो, प्रकृति हो, विज्ञान हो या जीवन ही क्यों ना हो, ये सात रंग ही असली हैं, बाकी सब नकली है। बरसातों में दूर पहाड़ पर ये इंद्रधनुष मनमोहक होता है। और ये भी तो बताइए कि इन सात रंगों का, इन सात की ये गिनती जो है वो सुरों में भी इस्तेमाल होती है, सात सतरंगी सपने भी होते हैं और इंद्रधनुष तो होता ही होता है। एक श्रोता ने कहा है कि हमारी सगाई के बाद जब पारिवारिक फंक्शन में होने वाली धर्मपत्नी से मुलाकात हुई थी तो मौका देखकर अकेले में ये गीत गाकर सुनाया था, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, ये सुनकर वो मुस्कुराई, ये प्यार आज तक कायम है और अंतिम सांस तक रहेगा। वाह बहुत सुंदर बात। एक और श्रोता कह रहे हैं वाह बहुत सुंदर, मैंने तेरे लिए सात रंग के सपने, सुरीले सपने चुने, हर अंतरे में कई भावों को बांध कर दिल की बातें करता हुआ प्रतीत होता है, मुकेश जी की आवाज़। और ये हमारे श्रोताओं ने कुछ संदेश में कहा है रजनीगंधा की बात। रजनीगंधा संग खिलता मन अक्सर किसी अनजाने से बंधन की महक से सराबोर हो जाता है, जिंदगी की आपाधापी में जब कोई ख़ास करीब आता है तो भावनाएं धीरे धीरे से दिल में अपनी जगह बनाने लगती हैं, शुरुआत भले ही खामोश हो लेकिन जैसे ही दिलों के तार जुड़ते हैं जीवन के सारे सुर सुरमई हो जाते हैं और बिखरे हुए जज्बात सिमट कर एक मुकम्मल ताल में बन जाते हैं। बड़ी सुंदर बात कही आपने। तो चलिए अब अगला गाना सुनते हैं। इस गाने को सुनकर बताइए कि इस फिल्म में प्रमुख भूमिका में अभिनेत्री कौन थी, और साथ ही आपको ये भी बताना है कि ये जो फूल है रजनीगंधा ये गुलदानों में बहुत लोकप्रिय होता है, या कभी हम जब किसी को बुके गिफ्ट करते हैं, आपको अपने फ्लावर वेज में कौन सा फूल सबसे सुंदर लगेगा अगर आप किसी को देना चाहें या घर में सजाना चाहें, कौन सा फूल सबसे सुंदर लगता है।

पिछले गीत के सवाल का जवाब नजर आया। हमारे श्रोताओं ने बताया कि प्रेम गीत फिल्म के का जो गाना हमने सुनवाया था और पूछा था कि प्रमुख कलाकार कौन से हैं, राज बब्बर और अनीता राज पर फिल्माया गया है ये गाना और इनकी लिस्ट का ये पांचवा गीत शामिल हुआ, बहुत बहुत बधाई। और एक और श्रोता ने बताया कि जबलपुर का मौसम बड़ा खुशगवार हो गया है, बरखा रानी आज सुबह से ही बरस रही हैं, सुबह सुबह छत पर जाकर सूर्य नमस्कार करने की आदत है, आज जब छत पर गए तो रिमझिम फुहारों और फुहारों के साथ फूलों का झूमना, पंछी की मधुर आवाज़ दिल को अजीब सुकून दे रही थी, ये मंजर हमने वीडियो में कैद कर लिया है। आज की बारिश शायद ये कहना चाह रही है, रजनीगंधा फूल तुम्हारे यूं ही महके जीवन में, ये पल हमें याद आएंगे, मौसम मस्ताना रास्ता अनजाना। अच्छा, इन्होंने कुछ और गीत भी बताए हैं, क्या मौसम है चल कहीं दूर निकल जाएं, हाँ ये भी बहुत सुंदर ही सा गीत है। एक श्रोता ने बताया कि बचपन में जब इंद्रधनुष दिख जाता था तो हम कुछ विश मांगते थे, और एक श्रोता ने कहा है कि वाह क्या सुंदर प्रश्न पूछा आपने, हम तो जब भी वर्षा ऋतु में मेघों का आगमन होता है तो मोबाइल लेकर छत पर चढ़ जाते हैं रूई जैसे सुंदर सुंदर मेघों की क्लिक्स लेने के लिए, खूब सारी क्लिक्स लेते हैं लेकिन फिर वापस भागना पड़ता है भीगने के डर से, स्वयं नहीं मोबाइल के। सच में मोबाइल बचाना बहुत ज़रूरी है इस मौसम में। एक और श्रोता कह रहे हैं, जो हमने छोटे छोटे इंद्रधनुषों वाला एक संदेश पढ़ा था उसी से संबंधित है ये संदेश हमारी एक और श्रोता का लिखा है, ये तो हमने भी देखा क्योंकि कनाडा और अमेरिका दोनों के बीच का नजारा ही है नियाग्रा फॉल्स पर, बड़ा ही प्यारा नजारा, हम कभी नहीं भूल सकते वो इतना प्यारा समा, वो पल मानो हमारे दिल में सदा के लिए बस गया है। एक और श्रोता ने कहा है कि मौसम की बातें हो रही हैं तो आज सभी को गरजते बरसते बादलों का इंतज़ार है, लेकिन कुदरत भी और इंतज़ार करा रही है, इंतज़ार के इस वक्त के लिए इनको गीत याद आया है, कहाँ से आए बदरा, फिल्म चश्मे बदूर का गाना। और एक श्रोता कह रहे हैं कि भाई इंद्रधनुष प्रेमी इंद्रधनुष को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भली भांति देख सकते हैं और अपने अपने दुनिया को मुट्ठी में भरकर खुश हो सकते हैं। भाई ये कुछ मतलब ठीक है देख सकते हैं, लेकिन देखने के साथ जो उसको एक उल्लास जुड़ा रहता है वो कैसे महसूस होगा। ये हमारे एक श्रोता ने मैसेज भेजा है कि आज कालिख वक्त एहसास और यादों के खूबसूरत ताने बाने को बुनता है, ये महज एक कुछ पंक्तियां नहीं बल्कि जिंदगी के सुरीले सफर का एक जीवंत दस्तावेज है, इसमें एक ऐसे रूमानी मौसम का जिक्र है जो अपने साथ सतरंगी ख्वाब लेकर आया है, जहां अनजाने रिश्ते भी सदियों पुराने लगते हैं, जैसे जैसे ही रजनीगंधा की भीनी खुशबू हवाओं में घुलती है जिंदगी का हर बिखरा सुर एक मुकम्मल ताल बन जाता है, ये लम्हा भले ही हमेशा न ठहरे पर जाते जाते दिल में ताउम्र मुस्कुराने वाली एक मीठी कसक छोड़ जाता है। सच में एक और श्रोता ने कहा है कि पुष्प बहार का सुहाना मौसम, सुगंधित फूलों की महक जीवन को खुशियां प्रदान कर रही है, सृष्टि देवता खिलकर प्रसन्नता से हंस रही है, मन भावन गीत तन्मयता से गुनगुना रही हैं, बिल्कुल बादल बिजली चंदन पानी और सुमन सुगंध की तरह, धीरे धीरे यह मस्ताना मौसम एक मीठी मीठी सी चुभन और ठंडी ठंडी सी अगन हमें अर्पित कर रहा है, सुरीले सफर में आज ऐसे ही कुछ मधुर गीत। और इन्होंने कुछ गीतों का भी जिक्र किया है, और बड़ी खुशी की बात है कि शुरुआत में भेजा हुआ संदेश इसमें से कई गाने हमारी लिस्ट से मैच हो गए। एक और श्रोता ने कहा है कि कलियां और बहारों की तो बातें हैं और रजनीगंधा फूल तुम्हारे यूं ही महके जीवन में, आओ मिल जाएं हम सुमन और सुगंध की तरह, ये कुछ इन्होंने गीत लिखे हैं, तो चलिए ये गीत भी शामिल हो।

0: गए। और एक और श्रोता ने कहा है कि फूल और कलियों की बातों पर इन्होंने अपने चारों तरफ उन्हें खिलते हुए महसूस किया है। अब ये कार्यक्रम का आखिरी गीत आपके लिए, इस गीत को सुनिए, बताइए फिल्म का नाम और प्रमुख कलाकारों के नाम।
1: अभी अलविदा मत कहो।

रात हो गई लेकिन यादों के ये चिराग जलते रहेंगे। हमारे श्रोताओं ने बताया निकाह फिल्म का ये गाना आपने सुना। महेंद्र कपूर की आवाज़, हसन कमाल के बोल, रवि का संगीत, राज बब्बर और सलमा आगा की ये फिल्म। और बहुत सारे संदेश भेजे हैं उन फूलों के बारे में। हमारे एक श्रोता ने कहा है, रजनीगंधा तो सच में दिल से दिल की आवाज़ पहुंचाने का जरिया है। मानो हमारी गुरु स्वरूपा दीदी ने जब इतने प्यार से हमारे सत्संगी सखी के लिए रजनीगंधा फूलों का गुलदस्ता भेजा, तो नेत्रहीन हो चुकी और डायलिसिस पर चल रही सखी फूलों को पाकर खुशी से झूम उठी और रजनीगंधा फूल तुम्हारे गीत गुनगुनाने लगी। उनकी खुशी देखकर हम सब भी खुशी से सारे दर्द भूल कर उनके साथ झूमने लगे। ये बदलाव पर व्यंग है जिसकी गिरफ्त में हम सभी प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग का दर्द झेल रहे हैं। हमारे एक और श्रोता ने कहा है, जो उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया पर देख सकते हैं और कर सकते हैं। और हमारे और श्रोता

के भी संदेश हैं, लेकिन अब कार्यक्रम का वक्त हो रहा है। एक श्रोता कह रही है कि फ्लावर वास से ज्यादा हमको ये जो पेड़ों पर फूल अच्छे लगते हैं, पेड़ों पौधों पर अच्छे लगते हैं, क्योंकि फ्लावर वाज में ये जल्दी से मुरझा जाते हैं। हाँ, सच में मुरझा जाते हैं, लेकिन यादों की खुशबू कभी कम नहीं होती और कभी नहीं मुरझाते वो फूल जो मीठी मीठी बातों के साथ हमारे मन में यादों के रूप में सुरक्षित रहते हैं। इन्हीं बातों के साथ अब दीजिए राजुल को इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

नमस्कार दोस्तों, मान सम्मान आदर किसी भी व्यक्ति संस्था या वस्तु के प्रति सकारात्मक भावना या सम्मानपूर्ण व्यवहार होता है। ये किसी के अच्छे गुणों, योग्यताओं या उपलब्धियों के लिए प्रशंसा की भावना को व्यक्त करता है। हर एक मानव स्वभाव के लिए ये एक सार्वभौमिक या सर्वमान्य सच्चाई है कि हर व्यक्ति अपने लिए सम्मान और आदर की अपेक्षा रखता है। सम्मान पाने की ये लालसा किसी भी उम्र, लिंग या पद से परे होती है। सम्मान किसी स्वार्थ या मजबूरी से प्राप्त किया गया है तो ज़्यादा नहीं टिक पाता, कभी ना कभी सच्चाई सामने आ ही जाती है। इसीलिए ये जान लें कि सच्चा सम्मान आपसी विश्वास और प्रेम से ही उपजता है। इस बुनियादी मानवीय मूल्य को समझने की बहुत आवश्यकता है। यदि सम्मान किसी भी व्यक्ति की उम्र, जाति, धर्म, पद प्रतिष्ठा, सामाजिक या आर्थिक स्थिति की वजह से किया जा रहा है तो बस ये एक झूठ है या फिर छलावाई से समझ सकते हैं, क्योंकि सम्मान तो ऐसी हर स्थिति से परे मानवीय गरिमा की निशानी है।

दोस्तों, सम्मान कोई खरीदी जाने वाली वस्तु नहीं, बल्कि इंसान के कर्मों, विचारों और व्यवहार से कमाई गई सबसे बड़ी पूंजी है। ये ऐसा अनमोल उपहार है जो हम दूसरों को दे सकते हैं और बदले में हमें वही वापस भी मिलता है। विनम्रता और आदर के बिना सच्चा सम्मान कभी पाया नहीं जा सकता। हर व्यक्ति अपनी गरिमा और आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहता है और ये एक शाश्वत सत्य है। सम्मान एक दो तरफा प्रक्रिया है। वो इस तरह कि यदि कोई व्यक्ति दूसरों से आदर की अपेक्षा करता है तो उसे खुद भी अन्य लोगों के विचारों, भावनाओं और सीमाओं को सम्मान देना होता है। बाहरी सम्मान की प्राप्ति के लिए हमें खुद की नज़र में सम्मानित और आत्मविश्वासी होना ज़रूरी है। जो व्यक्ति खुद का मूल्य समझता है, दुनिया भी उसकी कद्र करती है। अपने व्यक्तिगत जीवन या कार्य क्षेत्र में सम्मान पाने के लिए दूसरों को सम्मान देने की हमारी भावना बेहद ज़रूरी है।

0: करती है।
1: सम्मान की चाह मानव स्वभाव का एक अंतर्निहित हिस्सा है। हम दूसरों से सम्मान पाना तो चाहते हैं, तो सबसे पहले दूसरों के विचारों, सीमाओं और भावना को सम्मान करना सीखना होगा। किसी भी व्यक्ति से

0: मान की अपेक्षा रखने से पहले आत्मसम्मान करना और अपने मूल्यों पर अडिग रहना बहुत ही जरूरी है। जो व्यक्ति खुद की कद्र करता है, दुनिया भी उसकी कद्र करती है। अपनों से बड़ों का सम्मान करना।
1: हम आकाशवाणी से बोल रहे हैं। 2:10 होने को है, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगी।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची का आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री से अपने कैबिनेट सहयोगियों का परिचय कराया। दोनों नेता 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के तहत आपसी सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे ताकाइची की पहली भारत यात्रा पर उनका स्वागत करके अत्यंत प्रसन्न हैं। प्रदेश में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन यानी वीबी जीराम जी का आज प्रदेशव्यापी शुभारंभ किया गया। सभी जिलों में जन सम्मेलन सह लॉन्च कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें राष्ट्रीय शुभारंभ कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हो रहा है। कार्यक्रमों में नागरिकों को 125 दिवस रोजगार गारंटी, पारदर्शी भुगतान प्रणाली और विकेंद्रीकृत ग्राम स्तरीय योजना निर्माण की जानकारी दी जा रही है। चुनाव आयोग ने दतिया विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई और मतदान 30 जुलाई को होगा, जबकि मतगणना 3 अगस्त को की जाएगी। दतिया विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। ये उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को सजा मिलने के बाद उनकी सदस्यता समाप्त होने की वजह से हो रहा है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक शाह का उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भोपाल स्थित निवास कार्यालय में अभिनंदन किया। दोनों नेताओं के बीच स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों को लेकर चर्चा हुई। डॉक्टर साहब भोपाल में आयोजित 28वें AOMSI मिड टर्म कन्वेंशन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये राष्ट्रीय सम्मेलन आज से 4 जुलाई तक पीपुल्स यूनिवर्सिटी परिसर में क्रिएटिंग अ होलसम सर्जन थीम पर आयोजित किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना 2026 लागू कर दी है, जिसके तहत 29 जून से आंशिक धन निकासी के नियमों में बदलाव किया गया है। नए नियमों के अनुसार सदस्यों को खाते में कम से कम 25% राशि सुरक्षित रखनी होगी। अब घर खरीदने, निर्माण मरम्मत के साथ बीमारी, पढ़ाई और विवाह जैसे खर्चों के लिए भी धन निकाला जा सकेगा। ईपीएफओ जल्द ही यूपीआई और व्हाट्सएप के माध्यम से भी सेवाएं शुरू करने जा रहा है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत इस वर्ष इंदौर जिले में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। ये जानकारी नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में दी गई। पौधरोपण आज से शुरू हो गया है और बीएसएफ परिसर में सर्वाधिक पौधे लगाए जाएंगे। श्री विजयवर्गीय ने कहा कि यह अभियान केवल पौधरोपण नहीं बल्कि प्रकृति और आने वाली पीढ़ियों के प्रति जिम्मेदारी का प्रतीक है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा घोषित स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग 2025-26 में प्रदेश के 10 विद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हुए हैं। शहरी वर्ग में रतलाम के सांदीपनी विद्यालय जावरा ने प्रथम और भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनी विद्यालय ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। प्रदेश की सभी 78,000 से अधिक शालाओं ने इस रेटिंग में सहभागिता की थी। सभी चयनित विद्यालयों को भारत सरकार द्वारा 1 लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ग्रैंड चेस टूर 2026 के तीसरे इवेंट में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने शानदार शुरुआत करते हुए पहले दिन संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर जगह बनाई है। विश्व चैंपियन डी गुकेश एक हार और एक जीत के बाद छठे स्थान पर रहे। वहीं फ्रांस के अलीरेजा फिरोजा 5 अंकों के साथ अकेले शीर्ष पर बने हुए हैं। टूर्नामेंट में अब सुपर रैपिड के 6 राउंड और खेले जाने बाकी हैं। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून लगातार आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने आज के लिए हरदा, नर्मदापुरम, रायसेन और छिंदवाड़ा सहित कई जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं इंदौर में कल तेज बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक सामान्य से करीब 28% कम बारिश हुई है, लेकिन जुलाई में अच्छी बारिश की उम्मीद जताई गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। एम्स भोपाल के अध्यक्ष प्रोफेसर अशोक कुमार महापात्र ने सुश्रुत कॉमन एंडो ट्रेनर फैसिलिटी का उद्घाटन किया। यह सुविधा लेप्रोस्कोपी, एंडोस्कोपी और जटिल सर्जरी का सुरक्षित और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करेगी। निवाड़ी में महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल परियोजना के तहत यूएन वुमेन इंडिया की कंट्री रिप्रेजेंटेटिव शोको इशिकावा ने परियोजना से जुड़ी बालिकाओं से संवाद कर उनके अनुभवों को जाना। डिंडौरी में डेंगू निरोधक माह के अवसर पर डेंगू से बचाव और जनजागरूकता के लिए डेंगू रथ को

हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और गुना के क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय में नए छात्र छात्राओं के स्वागत और मार्गदर्शन के लिए दीक्षारंभ समारोह का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत, दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मॉनसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। फीफा विश्व कप में अमेरिका ने बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। बेल्जियम ने सेनेगल को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान ने आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत जापान जैव गैस पहल के माध्यम से भारत में 1000 जैव गैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे भारत के गांवों में स्थिरता, समृद्धि और ग्रामीण आजीविका को नई शक्ति मिलेगी।
1: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोडमैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी।
0: इससे पहले आज प्रधानमंत्री तकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा 3 दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सर्वमान्य

0: ने कानूनी ढांचे का अभाव वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया।
1: India has been a victim of cross-border terrorism for decades.
2: भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
0: अमेरिका, इसराइल और अर्जेंटीना ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था, जिसमें बालताल रूट के लिए 2,312 और पहलगाम रास्ते के लिए 2,510 लोग शामिल थे, 147 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुए। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, विकसित भारत जयराम जी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावरीपल्ले गांव में विकसित भारत जयराम जी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
3: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जयराम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे, पहले साल ही विकसित भारत जयराम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया, और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
0: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आंध्र प्रदेश के लिए 70,000 से अधिक आवासों की मंजूरी दी। उन्होंने ग्रामीण संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 422 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से 146 ग्रामीण सड़कों और 19 पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र भी सौंपे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक से दूसरी तकनीक की जगह नहीं ले रहा है, बल्कि इससे टिकाऊ औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के साथ जीवन को सुगम बनाने के प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत मॉनसून के मौसम में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। जिले में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के लोकभवन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारी रवि कुमार और जिला चुनाव अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री को सौंपा। उपराज्यपाल ने देश के सभी योग्य पात्रों को जनगणना प्रपत्र सही समय पर भरने की अपील की। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मदपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गया, जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे।

0: कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @XHIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में तथा मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर भागों में पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों के लिए तेज बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है।
1: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर और संभल में बहुत भारी बारिश हुई, जिससे कुछ क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि दिन के तापमान में भी गिरावट आई। ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है और कहा है कि राज्य भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम के हालात बेहतर बने हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: महाराष्ट्र में आज लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी रही।
2: मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, यातायात धीमी पड़ गई है और उपनगरीय रेल सेवाएं कुछ मार्गों पर प्रभावित हो रही है। लगातार बारिश के चलते पवई लेक पूरी तरह भर चुका है। मुंबई विश्वविद्यालय ने पालघर जिला तथा पनवेल महानगरपालिका क्षेत्र के महाविद्यालयों में आज होने वाली परीक्षा रद्द कर दी है। मौसम विभाग ने उत्तर महाराष्ट्र तथा दक्षिण महाराष्ट्र गोवा तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: कनाडा के अधिकतर क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ की समस्या बनी हुई है। ओंटारियो, क्यूबेक, प्रेरीज और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के कुछ हिस्सों के लिए गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, बाहरी गतिविधियों से बचने और वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों का ध्यान रखने की सलाह दी है। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलेमंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। अब अमेरिका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 402 अंक के साथ 77,325 के उच्चतम स्तर पर और निफ्टी 129 अंक बढ़कर 24,135 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और AI सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला।

0: जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। आइए सुने सदाबहार नगमे। सदाबहार नगमे कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का बहुत

आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। आइए सुने सदाबहार नगमे। सदाबहार नगमे कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं अमर फिल्म का ये गाना, लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ, शकील बदायूनी के बोल हैं और नौशाद की धुन।

0: गया।
1: असद भोपाली का लिखा और रवि का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम अपना बना के देखो। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म चार दीवारी का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है शैलेंद्र ने, सुरों में पिरोया है सलील चौधरी ने।

0: एक रास फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। बोल मजरूह सुल्तानपुरी के थे और धुन बनाई थी चित्रगुप्त ने।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं हनीमून फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है शैलेंद्र ने, धुन बनाई है सलील चौधरी ने।

लता मंगेशकर और मन्ना डे के स्वरों में ये गीत आपने सुना। सम्राट चंद्रगुप्त से हसरत जयपुरी ने लिखा था और कल्याण जी आनंद जी ने धुन बनाई थी। और अब आपको सुनवा रहे हैं न्यू दिल्ली फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ। गीत लिखा है शैलेंद्र।

ने शुरू में पिरोया है शंकर जयकिशन ने। यह है आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। दीजिए राजुल को इजाजत, सुनते हैं ये सदाबहार नगमा।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। दीपा आपको भी मेरा नमस्कार।
2: सोनाली आपको और हमारी सभी सखियों सहेलियों श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: और क्या हालचाल है?
2: बिल्कुल अच्छे। और आशा करते हैं कि हमारी सारी सखियां हमारे सभी श्रोता अपना और अपनी सेहत का और अपने परिवार का खूब अच्छा ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि बदलता मौसम है इस वक्त कुछ और एक्स्ट्रा ध्यान रखने की जरूरत है।
1: और झमाझम बारिश हो रही है तो बारिश का हम सभी लुत्फ उठा रहे हैं।
2: बिल्कुल,
1: जिन जगहों पर अभी बारिश नहीं आई है वे बारिश का इंतजार कर रहे हैं
2: और उनके लिए भी ये शुभकामना है कि जल्दी से उनके शहर में भी ये जो ठंडक हम जो एहसास कर रहे हैं उन्हें भी ये एहसास हो।
1: और ये ठंडक का एहसास है ना दीपा, ये तो इस मंच पर आते से ही हमें होने लगता है। भले ही कितनी भी चिलचिलाती गर्मी हो या बहुत ठंड हो या बारिश हो, यहाँ आने के बाद में जो सुखद अनुभूति मिलती है ना उसका हम वर्णन नहीं कर सकते।
2: ये बात तो बिल्कुल 16 आने सही कही तुमने।
1: और जब सुखद अनुभूति कब मिलती है? जब हम अपने घर में पुराने फोटो के एल्बम लेकर बैठते हैं, कह रहे मैं पहले कैसे दिखती थी, कितनी सुंदर दिखती थी, मेरे बाल कितने लंबे थे, मैं कितनी सुंदर दिख रही थी, मेरे बच्चे कितने अच्छे दिख रहे थे, या फिर हमारा बचपन कितना खूबसूरत था। ये सब हम जब पुराने फोटो एल्बम देखते हैं, पुराने फोटो एल्बम देखना अपना एक अद्भुत अनुभव होता है।
2: बिल्कुल, और एक फिल्म से चल जाती है उस दिन को, हम फिर से लगता है जैसे
1: जी रहे हैं
2: और वो वक्त में उस वक्त क्या हुआ था, कुछ बातें भी याद आ जाती हैं और सभी लोग उस बातों को फिर याद कर करके खूब खुश होते हैं और आनंद का जो
1: क्षण
2: होता है वो उसकी अनुभूति, उसका अनुभव ही कुछ अलग है सोनाली।
1: साथ ही कहानी पद्मश्री की, इसके अंतर्गत हम तकदीदा बेगम कांथा कढ़ाई वर्क में जिन्होंने काम किया है बहुत आगे बढ़ी है, तो उनके बारे में हम जानकारी देंगे।
2: और जो आजकल एक बात चली है कि बच्चों की शादी अपनी मर्जी से होना चाहिए या उसमें बड़ों की भी मर्जी शामिल होना चाहिए, सलाह उनकी शामिल होनी चाहिए या नहीं, ये इस बातों पे घर घर में बहुत सारी बातों पर विचार विमर्श चलते रहते हैं जहाँ पे शादी योग्य युवक या युवतियाँ हैं उनके घरों में। तो हम भी कुछ जानेंगे कि कैसा होना चाहिए, बड़ों की सहमति या बड़े दिखाएं या बच्चे ही अपनी मर्जी बता दें, क्या सही है क्या गलत है उनके लिए, इस बारे पे थोड़ी विचार और विमर्श करेंगे।
1: देखिए जब बदलता जमाना है ना, पुराने जमाने में थोड़ी छोटी उम्र में शादी हो जाती थी तो उस वक्त माता पिता जो है वे उनके बारे में अच्छा ही सोचते थे, पर अब बदलते जमाने के नजरिए जो बच्चे हैं ना थोड़ी बड़ी उम्र में शादी करते हैं, 25, 26, 27, 28 के बाद में शादी करते हैं, तो उनकी राय जान लेना उतना ही जरूरी है क्योंकि उन्हें एक साथ जिंदगी गुजारना होता है। तो इस विषय में हमारे श्रोताओं

0: हमारी सखियों ने बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखे हैं, तो उनके हम कमेंट शामिल करेंगे क्योंकि ये श्रोताओं का ही सेगमेंट है। मुझे कुछ कहना है, बच्चों की सहमति से हो शादी, है ना।
1: बिल्कुल,
0: और साथ ही उपयोगी टिप्स अच्छी नींद के लिए, जो आजकल हम सभी को नसीब नहीं होती है। कुछ कुछ खुशकिस्मत होते हैं जिन्हें बस ऐसे बिस्तर पर लेट गए और नींद लग जाती है, पर कुछ कुछ लोगों को बहुत जद्दोजहद के बाद नींद आती है।
1: जी, तो इसके लिए भी बहुत जरूरी है कि भाई एक स्वस्थ नींद अगर मिलेगी तो स्वस्थ तन होगा और उसके बाद आपका अगला दिन उसी तरह से स्वस्थ होगा और साथ में तभी वो सकारात्मक हो सकेगा। तो आगे आने वाले दिनों के लिए या कल के लिए आज की रात सोना बहुत जरूरी है, वो भी एक गुड क्वालिटी स्लीप आपको मिलना चाहिए।
0: और आप क्या करना चाहिए?
1: गीत सुनना चाहिए।
0: तो सुनते हैं गीत।
2: शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

0: तो दीपा बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम कहानी पद्मश्री की, इसके अंतर्गत आज हम जानकारी देंगे तकदीरा बेगम के बारे में।
1: जी, बंगाल की रहने वाली हैं ये, और सोनाली आप तो जानती हैं कि बंगाल राज्य अपनी पारंपरिक और उत्कृष्ट कांथा कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें नक्शी कांथा, लेप कांथा, सुजनी कांथा, बेटन कांथा, ऐसे अलग अलग प्रकार के बहुत सारी शैलियां हैं। ये कला हमारे देश के प्राचीन विरासत का एक अभिन्न अंग है और बंगाल की विशेष पहचान।
0: बिल्कुल सही कहा आपने दीपा, नक्शी कांथा में पुरानी साड़ियों और कपड़ों को एक के ऊपर एक रखकर रंगीन धागों से जटिल कढ़ाई की जाती है, और इस कला में रनिंग स्टिचिंग या कंथा स्टिच का उपयोग करके सुंदर नक्शा यानी कलात्मक पैटर्न बनाया जाता है, और इसका उपयोग अक्सर रजाई, बेडशीट, पर्दे और अन्य घरेलू सामानों के लिए किया जाता है। खास तौर पर इन्हें साड़ियों पर भी उतारा जाता है।
1: बिल्कुल, और तकदीरा बेगम जो है नक्शी कांथा कढ़ाई की माहिर कलाकार हैं। उनका जन्म 1953 में पश्चिम बंगाल के परगना जिले में का एक छोटा इलाका है, नाम है श्री कृष्णापुर, वहां हुआ था। उनकी माँ घर पर बंगाल की जो पारंपरिक ये जो कांथा कढ़ाई है वो किया करती थी। अपनी माँ को काम करता देख तकदीरा को इस कला के लिए, जैसे एक होता है ना कि घर में एक कोई बड़ा आपका कर रहा है तो आपका भी प्यार उस कला की तरफ हो जाता है, तो स्वाभाविक सा हो गया कि तकदीरा का भी जो आकर्षण है इस कांथा कढ़ाई की ओर गया।
0: यानी ये कितनी अच्छी बात है ना कि जब हम कोई अच्छा काम बच्चों के इर्द गिर्द करते हैं तो बच्चों को भी उसमें अपने आप रुचि उत्पन्न हो जाती।
1: जी,
0: और तकदीरा बेगम नक्शी कांथा कढ़ाई की माहिर कलाकार है, तो उनका जन्म तो आपने बता ही दिया कि 1953 में हुआ था, और बचपन में तकदीरा अक्सर स्कूल के बाद अपनी माँ के साथ कंथा कढ़ाई करती, और जिसमें वे रंगीन धागों से पारंपरिक डिजाइन बनाती। 12 या 13 साल की उम्र तक कांथा कढ़ाई की रचनात्मक दुनिया में उन्होंने प्रवेश कर लिया। देखिए 12-13 साल की उम्र कितनी छोटी उम्र होती है ना।
1: बिल्कुल, मतलब उस वक्त तो समझ ही नहीं आता है, लेकिन ये कढ़ाई किया करती थी। और तकदीरा बेगम के पिता मूल रूप से श्री कृष्णपुर के निवासी ही थे, लेकिन बाद में वो जय कृष्णपुर चले गए थे। उन्होंने औस ग्राम के गर्ल्स स्कूल में 10वीं तक की पढ़ाई की थी। सिलाई और कढ़ाई में उनकी रुचि बहुत थी। 5वीं कक्षा से ही उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। अपनी माँ की कांथा कढ़ाई से प्रेरित होकर वे पारंपरिक शैक्षणिक विषयों से परे, यानी उनको शायद पढ़ाई में थोड़ा मन कम लगता होगा, अब जा करके वो सीधे सुई धागे की ये जटिल कला की ओर उनका आकर्षण बढ़ने लगा।
0: पिछले 30 वर्षों से तकदीरा ने अपना जीवन कांथा कढ़ाई की कला को निपुणता प्रदान करने में समर्पित कर दिया है। बचपन के शौक के रूप में शुरू हुआ ये काम धीरे धीरे उनका जुनून और पेशा बन गया। स्कूल के दिनों में उन्होंने जो सिलाई कौशल हासिल किया था उसी शिल्प ने उन्हें उनके आजीवन सफर की नींव रख दी। यानी कितनी अच्छी बात है कि जो काम उन्होंने शौकिया तौर पर शुरू किया उस शौक ने ही उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से
1: जी
0: सम्मानित कर दिया गया उन्हें। जी,
1: और पिछले कई सालों से आप महिलाओं को अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने में बहुत उनकी मदद कर रही हैं। उनका मानना है कि पारंपरिक कलाओं के माध्यम से आर्थिक स्वतंत्रता हम महिलाएं पा सकती हैं, अपना जीवन भी बदल सकती हैं, और साथ ही सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में भी हम मदद कर सकते हैं।
0: और उनका ये मानना था कि मैं कभी खाली नहीं बैठ सकती थी, मुझे काम करना हरदम पसंद था, और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि सरकार ने मुझे पद्मश्री पुरस्कार के काबिल समझा, और वर्ष 2024 में उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
1: और कई सारे उनके इंटरव्यूज हुए, तो उसमें से एक साक्षात्कार में उन्होंने ये भी किया, ये भी बताया था कि मेरी माँ ने कभी सोचा ही नहीं

0: कि वो अपनी इस कारीगरी से इससे बने जो भी उत्पाद थे उससे पैसे कमा पाएंगी। उस समय हमारे परिवार में इसकी इजाज़त भी नहीं थी, ये वो इस तरह से बताती हैं, लेकिन वह कढ़ाई में माहिर थी और उन्होंने मुझे कई दुर्लभ और जटिल डिज़ाइन सिखाए। मैं इस कढ़ाई को एक बड़े मुकाम तक ले जाना चाहती थी, ये मेरा सपना हुआ करता था।
1: और उनका ये मानना था दीपा कि भले ही कई लड़कियां काम करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए उत्सुक भी रहती हैं, लेकिन उनके घर से उनके पति उन्हें घर से बाहर निकलने ही नहीं देते। पर उनका ये कहना था कि उनके पति ने, तकदीरा बेगम के पति ने, उन्हें भरपूर समर्थन किया और अपने दोस्तों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि वे अपनी पत्नियों को काम करने दें और उन्हें आत्मनिर्भरता बनने दें, आत्मनिर्भर होने दें।
0: बिल्कुल, अपनी लगन से तकदीरा बेगम देश की अनगिनत महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन गई हैं। उन्होंने ये साबित

0: कुछ ऐसा ही होता है ना, जब हम पुरानी एल्बम या पुराना कोई अपनी कोई पुरानी तस्वीर हमारे हाथ लग जाती है घर सफाई के समय, तो लगता है कि वही फिर से वही बात कुछ फरमा दे, वही चीज हो जाए हमारा, हम कई बार ऐसे हंसी मजाक में बोलते हैं वैसा ही हो जाए और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे वापस से उतने छोटे हो जाएं जैसे उस वक्त थे जो हम तस्वीर में देख रहे होते हैं।
1: यानी उस वक्त मैंने थोड़ा कम लाड़ दुलार किया, अब ऐसे होते तो मैं और प्यार करती। उस वक्त मैं इतनी उलझनों में थी, इतने कामों में व्यस्त थी कि मैं अपने बच्चों को अच्छी तरह से खिला नहीं पाई, अच्छी तरह से उनका बचपन नहीं देख पाई, तो फिर से वो छोटे हो जाए तो मैं फिर से उन्हें खिला लूं, है ना।
0: और एक दूसरा पक्ष भी हो सकता है कि उस दिन उसने बहुत ज्यादा बदमाशी की थी, तो उसे एक तो थप्पड़ उसे दे ही देना था, तो बाद में वो जिद करता ही नहीं।
1: वैसे दीपा, पुराने एल्बम हमारे जीवन की वो अनमोल धरोहर होते हैं ना, जिनमें केवल तस्वीरें नहीं बल्कि भावनाएं, रिश्ते और बीते समय की खुशबू संजोई रहती है।
0: बिल्कुल। और सोनाली, जब हम किसी पुराने एल्बम को हाथ में लेकर उनके पन्ने पलटते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे समय हमें पीछे ले के जा रहा है और हम अपने ही पुराने दिनों को दोबारा मिल रहे हैं।
1: वैसे दीपा, एल्बम का जो हर पन्ना होता है ना, उसकी एक अलग कहानी होती है। और कहीं बचपन की शरारतें दिखाई देती हैं, तो कहीं माता पिता का स्नेह भरा चेहरा दिखाई देता है, कहीं परिवार के साथ बिताए त्योहारों के पल, कहीं दोस्तों के साथ हंसी मजाक की यादें, तो कहीं स्कूल के पिकनिक के फोटोज होते हैं। तो जो फोटोज, ये अनगिनत यादें होती है ना,
0: बहुत
1: और
0: सारी
1: कुछ तस्वीरें तो ऐसी होती नहीं जो हमारे चेहरे पर मुस्कान लेकर आ जाती है और कुछ आंखों को नम कर देती है।
0: ये बात तो बिल्कुल सही कही तुमने कि कभी कभी एकदम ऐसा लगता है हाय वो दिन कहाँ गए, वो दिन

0: फिर से हमारे लौट आए। और पुराने समय की तस्वीरों में एक अलग ही अपनापन होता है, तस्वीरें कम खींचा करते थे उस वक्त, इसलिए हर फोटो खास होती है और परिवार के सभी लोग एक जगह इकट्ठा होकर फोटो खिंचवाते थे। ये वो जमाना था, है ना, वो इंतजार, वो उत्साह और फिर एल्बम में तस्वीरें सजाने की खुशी। आज के हजारों मोबाइल फोटो से एक अलग ही अनुभव देती है। हमारे मोबाइल में भले ही ढेर सारे फोटो हो, हजारों में होते हैं
1: जी,
0: लेकिन जब हम एल्बम उठा करके बैठते हैं तो घर के भी जो सारे सदस्य होते हैं ना, कि वो कहते हैं अरे क्या देख रहे हो, हमें भी देखना है। और फिर उस पर वापस एक डिस्कशन, एक विचार विमर्श शुरू हो जाता है और फिर वो बातें पता नहीं कहाँ तक चली जाती
1: और
0: है।
1: उस वक्त अगर कोई घटना घटी होती तो उसे भी हम याद करके बहुत हंसते हैं।
0: बिल्कुल,
1: है ना,
0: बिल्कुल सही कहा
1: कि ऐसे हुआ था, ये हुआ था, है ना। एक हमारे सखी ने लिखा है, सच कहा, पहले के फोटो देखना बड़ा ही अच्छा लगता है। सच में पहले के फोटो और उनसे जुड़ी बातें जब याद आती है तो पल मानो उस समय में हमें वापस पहुंचा देते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमने पुराने फोटोज निकाले जिसमें हमारी बेटी बिल्कुल उनकी बेटी की तरह लगी। हमने तुरंत उसकी फोटो खींची और उसके साथ ही उसकी बेटी की भी अभी की फोटो डालकर बेटी को भेजा तो इतनी खुश हो गई, सही में हम कितने सेम लग रहे थे, यानी कितनी सुंदर यादें, है ना।
0: और एक संदेश और कहता है सोनाली कि एल्बम हमें एहसास कराते हैं कि समय कभी ठहरता नहीं। जिन चेहरों पर कभी युवावस्था की चमक थी आज उन पर अनुभव की रेखाएं हैं। कुछ लोग अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन तस्वीरों में उनकी मुस्कान आज भी उतनी ही ताजा है। एल्बम के हर पन्ने से रिश्तों की गर्माहट, घर की खुशबू और बीते दिनों की मीठी जो एहसास है वो महसूस होते हैं। सच तो यह है कि पुराने फोटो के एल्बम केवल कागज पर छपी तस्वीरें नहीं बल्कि जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है।
1: एक साथी लिख कहते हैं कि सच में पुराने फोटोज देखकर तो दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। मुझे भी जिस दिन मन नहीं लगता उस दिन मैं भी अपने बेटे के पुराने एल्बम निकाल कर देखती हूँ। क्योंकि मुझे शुरू से फोटोग्राफी का शौक रहा है तो मेरे पास अपनी या अपने बेटे के हर क्षण की फोटो है। जब मोबाइल नहीं था तब मेरे पर्स में हमेशा एक कैमरा रहता था, जहाँ जो अच्छा लगता था मैं फोटो ले लेती थी। यहाँ तक कि स्कूल में भी वहाँ भी बच्चों की फोटो लेती थी, जिसकी वजह से मैं अपने स्कूल में सेल्फी मैम के नाम से जानी जाती हूँ। सुंदर बात,
0: बहुत सुंदर। और एक संदेश कहता है कि एल्बम के देखने की अनुभूति बेहद खास और भावनात्मक होती है। उस समय में पीछे जाने जैसा होता है, पुरानी यादें, चेहरे और पल आंखों के सामने सजीव हो जाते हैं। खुशी केवल तस्वीरों को देखने तक सीमित नहीं बल्कि यह बीते हुए सुनहरे पल के एहसास को फिर से जीने का एक प्यारा माध्यम है। एल्बम पलटने से अपनों के साथ बिताए गए खास लम्हे, बचपन, शादी, छुट्टियां, त्यौहार, सब यादें ताजा हो जाती हैं।
1: एक साथी कहते हैं कि भाई मेरी तो 10th बोर्ड जो है ना फॉर्म में लगाने वाली पासपोर्ट साइज फोटो है, उसे देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता कि मैं तो तब बिल्कुल लड़की जैसा दिखता था। अभी मैं यहाँ पर अपलोड नहीं कर सकता वरना मैं आपको फोटो जरूर दिखाता।
0: जी, कभी मौका लगेगा तो जरूर हम भी देखना चाहेंगे। और अब क्या करना चाहेंगे?
1: अब गाना सुनेंगे।
0: चलिए

0: रिमझिम रिमझिम सावन की बरसात हो रही है, यानी सावन तो नहीं आया है अभी, पर बरसात ऐसी है कि मानो सावन आ गया है,
1: एहसास तो वो ही करा रहा है।
0: और वो जो है ना सुखद अनुभूति है ना, वो एल्बम देखने जैसी ही है। एक हमारे साथी ने लिखा है कि पुराने एल्बम के पन्ने पलटते ही यादों का कारवा चल पड़ता है, बचपन, परिवार, दोस्त और जीवन के अनमोल पल फिर से आंखों के सामने ताज़ा हो जाते हैं, और हर तस्वीर की एक कहानी होती है, जो अब दुनिया में नहीं उनकी यादें संजोए रहते हैं, शादी ब्याह की शरारतें, नाच गाना चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। सचमुच पुराने एल्बम को देखना बीते हुए खूबसूरत पलों को एक बार जीने जैसा सुखद अनुभव मिलता है। और अब वक्त हो चुका है ब्रेक का, तो लेते हैं एक ब्रेक।
1: चलिए,

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है सखी सहेली, और हमारे बहुत सारे साथियों ने कमेंट्स लिखे हैं। तो एक हमारी सखी ने लिखा है कि एल्बम देखने की अनुभूति बेहद खास और भावनात्मक होती है, उस समय में पीछे जाने जैसा है जहाँ पुरानी यादें, चेहरे और पल आंखों के सामने सजीव हो जाते हैं। ये खुशी केवल तस्वीरों तक देखने तक सीमित नहीं है, बल्कि बीते हुए सुनहरे पल के एहसास को फिर से जीने का एक प्यारा माध्यम है। एल्बम पलटने से अपनों के साथ बिताए गए खास लम्हों, बचपन, शादी, छुट्टियों और त्योहारों की यादें ताज़ा हो जाती हैं। ये चेहरे पर मुस्कान लाने के साथ साथ आंखों में खुशी के आंसू भी लाते हैं। मैं तो बेटे के बचपन का फोटो पोते को दिखाती हूँ, और कभी कभी दोनों का फोटो लगाकर मोबाइल स्टेटस सोशल मीडिया पर लगाती हूँ। पोता फोटो को देखकर खूब खुश हो जाता है और पूछता है, दादी पापा भी मेरी तरह छोटा था। कितना मासूमियत भरा सवाल।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह से जब हम अपने यादों तक वापस उस गलियारों में जब हम गुजरते हैं तो मन प्रसन्न होता है, कहीं सकारात्मक एक धारा भी प्रवाह हो जाती है हमारे अंदर, और एक खुशी की जो लहर अंदर दौड़ पड़ती है। तो सब तरफ हर तरफ हमें अच्छा अच्छा और खुश खुश जैसा माहौल लगने लगता है। और एक माहौल और चल रहा है आजकल कि भाई शादी ब्याह जो है इतना जो नाजुक मसला होने लग गया है, इस पर सहमति तो परिवार की होती ही थी, पहले तो हुआ करती थी, अब बच्चों का सहमत होना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है।
0: यानी पहले बताया जाता था कि सब अच्छा है, और बच्चे जो होते थे उन्हें भी पूरा विश्वास होता था कि हमारे माता पिता कभी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे, वो हमारा अच्छा ही चाहेंगे, और सब कुछ सोच के घर परिवार देख के पूरा उनके दादा नाना नानी सारे लोग बैठ के पूरा इन्हें पूरा परिवार ही कहते हैं कि कुनबा ही इकट्ठा हो जाया करता था, और फिर इस तरह से शादियां तय होती थी। पर अब समाज जो है बदल रहा है, अब बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं, उनकी भी इच्छाओं का हमें ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें किस तरह से, यानी हर किसी की अपेक्षा अलग होती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा होने वाला पति ऐसा होना चाहिए जो मुझे समझे, मेरी भावनाओं की कद्र करे, मैंने जो पढ़ाई की है उसे मुझे आगे बढ़ने का मौका दे, उसे उसमें हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दे। वहीं पर लड़कों को भी अपेक्षाएं होती है कि जो लड़कियां हैं बराबरी से काम में हाथ बटाए और फिर खूब आगे बढ़ने में एक दूसरे का ये मिले,
1: मदद मिले,
0: सहयोग मिले,
1: कि हाँ एक की वजह से दूसरा आगे बढ़े और जो दूसरा है उसकी वजह से, मतलब पति पत्नी दोनों ही ये चाहते हैं कि हम एक दूसरे का सहयोग भी काम में भी करें, घर में भी करें,
0: घर में भी हाथ बटाएं।
1: हाँ,
0: पुराने जमाने में ऐसा होता था कि लड़के घर में काम नहीं करते थे,
1: नहीं
0: काम करते थे,
1: लेकिन अब ये है कि आप अपने जो कार्य क्षेत्र है, ऑफिस है या व्यापार है, जब घर वापस आते हैं तो दोनों मिलकर अब घर रसोई सब कुछ देखते हैं, अपना काम देखते हैं, यहाँ तक कि काम बांट भी दिया जाता है। और इसे कोई गलत या बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अगर वो शहर में नहीं है, अपने माता पिता से दूर है, तो किस तरह से अपने सब चीज़ों का संयोजन बनाएंगे, बैलेंस कैसे बनाएंगे अपने लाइफ में, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इसी तरह से देखो बहुत सारे संदेश इस बात को लेकर आए हैं और बहुत अलग अलग विचार सामने आए हैं। तो ये पहला संदेश हम पढ़ रहे हैं। पुराने जमाने में माता पिता जो तय करें उनके साथ शादी हो जाया करती थी। उन दिनों लड़का लड़की एक दूसरे को देखे बिना छोटी उम्र में ही उनकी सगाई भी हो जाया करती थी। आज की तरह सगाई के बाद एक दूसरे से मुलाकातें भी नहीं हो सकती थी। उस वक्त साथ घूमने का तो सवाल ही नहीं होता था। आज लेकिन माहौल बहुत बदल गया है। लड़के के लिए 21 साल, लड़की के लिए 18 साल वैधानिक आयु होनी अनिवार्य हो चुकी

0: है, माता पिता की मर्जी के बिना लड़का लड़की एक दूसरे की पसंद के अनुसार शादी कर सकते हैं। अब माता पिता का तो रोल सिर्फ आशीर्वाद देना ही रह गया है।
1: एक सखी ने लिखा है, विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो परिवारों और दो जीवनों का मिलन होता है। माता पिता का अनुभव भी अमूल्य होता है, लेकिन बच्चों की इच्छा, उनकी भावनाएं और उनकी सहमति भी महत्वपूर्ण है। माता पिता बच्चों का मार्गदर्शन करें, उनके लिए योग्य जीवन साथी खोजने में सहायता करें, लेकिन अंतिम निर्णय बच्चों की इच्छा का सम्मान करते हुए लें। समय बदल रहा है, बच्चों की सहमति से होने वाला विवाह न केवल रिश्तों को मजबूत बनाता है बल्कि परिवार में प्रेम, सम्मान और खुशियों को भी स्थायी बनाता है।
0: बिल्कुल। वही एक और संदेश ये कहता है कि विवाह जीवन का एक महत्वपूर्ण निर्णय है, इसलिए इसमें बच्चों की सहमति और इच्छा का सम्मान आवश्यक है। माता पिता का अनुभव और मार्गदर्शन अमूल्य होता है, लेकिन जिस व्यक्ति को जीवन भर उस रिश्ते को निभाना है, उसकी राय सबसे अधिक मायने रखती है। आपसी समझ, विश्वास, सहमति पर आधारित विवाह अधिक सुखद और सफल होता है। जब परिवार और बच्चों के विचारों का सम्मान करते हुए निर्णय लिया जाता है, तो रिश्तों में अपनापन, सम्मान और विश्वास भी बढ़ता है।
1: एक सखी ने लिखा है कि बच्चों की सहमति से शादी। आजकल शादी का रिवाज बदल गया है, बच्चे अपने ही पसंद की शादी करना पसंद करते हैं। माता पिता को बस घर परिवार जिसको पसंद किया है उसको देखना होता है, बस माता पिता की मोहर लग जाती है। अगर माता पिता खुद से बच्चों के लिए जीवन साथी का चयन करते हैं, तब भी यही स्थिति होती है। जब तक बच्चे आपस में एक दूसरे को समझ ना ले, तब तक बात आगे नहीं बढ़ती, और जब तक बच्चों की सहमति नहीं होती, तब तक माता पिता को रुकना होता है। पहले के समय में माता पिता खुद ही पसंद करते थे, तब बच्चों की सहमति की जरूरत नहीं होती थी, पर आजकल इन बातों का ध्यान रखा जाता है।
0: एक संदेश कहता है कि आजकल जो माहौल हो रहा है और युवा पीढ़ी हाईली एडुकेटेड होने के बावजूद शादी ब्याह के पवित्र रिश्ते में कोई गलत कदम ना उठा ले, इसलिए ज़रूरी है कि शादी के लायक बच्चों की सहमति लेना बहुत ज़रूरी है। और सोने पे सुहागा वाली शादी का निर्णय होता है जब घर के बड़ों के माता पिता के तजुर्बों का भी सम्मान होता है, यानी कि सबकी सहमति सर्वश्रेष्ठ होती है।
1: और आप क्या करेंगे?
0: अब हमारी सहमति तो ये है कि आप गीत सुनाएंगे तो हम बिल्कुल खुश भी हो जाएंगे।
1: चलिए सुनते हैं गीत।

0: बात चल रही है कि शादी हो सहमति से, यानी घर परिवार की तो सहमति हो ही, आजकल बच्चों का सहमत होना बहुत जरूरी है। एक्चुअली हमेशा से ही सबका सहमत होना बहुत जरूरी है, लेकिन अब जबकि एकल परिवार होने लगे हैं और बच्चे कई बार शादी के बाद तुरंत ही दूसरे शहर जहाँ पे कि वो काम कर रहे हैं वहां चले जाते हैं, ऐसे में अब उनके पास वो शादी ब्याह वाला अनुभव तो होता नहीं है, कैसे जीवन जिया जाना चाहिए वो अनुभव तो होता नहीं है। पहले घर में बड़े साथ में हुआ करते थे, तो कहीं पे पास में बातों में कहीं थोड़ी भी ऊंच नीच हो गई तो संभाल लिया करते थे, अब वो दोनों अकेले रहते हैं, ऐसे में अगर कोई एक गर्म मिजाज हो और एक कोई ठंडा हो तो बात कभी बन जाती है लेकिन कभी कभी बिगड़ भी जाती है।
1: इसलिए दोनों को शादी से पहले थोड़ी बातचीत करके एक दूसरे के स्वभाव को जान ले कि किस तरह से इन्हें कैसे पसंद है, उन्हें कैसे पसंद है, किस तरह से इन्हें जीवन साथी की जो अपेक्षाएं हैं वे फोन पर बात करके उन्हें पता चल जाता है कि लड़की क्या चाहती है कि कैसा हो उसका पति और लड़का भी क्या चाहता है कि कैसा हो। तो ये अगर बातें अगर थोड़ी सी सुलझ जाए ना तो जिंदगी बहुत अच्छी सुंदर हो सकती है। एक हमारी सखी ने लिखा है कि आज के आधुनिक जमाने में युवाओं की आपसी सहमति को शादी का सबसे प्रमुख और अनिवार्य आधार माना जाता है। कानून और सामाजिक बदलाव के अनुसार जब दो वयस्क आपस में शादी करना चाहते हैं तो उनकी सहमति सर्वोपरि होती है। भारतीय कानून के अनुसार बालिग हो जाने पर युवाओं को अपना जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार है। यदि दोनों वयस्क अपनी मर्जी से विवाह करते हैं तो उनकी सहमति ही कानूनी रूप से मान्य है। हमारे समाज में विवाह दो व्यक्तियों के साथ साथ दो परिवारों का भी मिलन माना जाता है। इसलिए लोग कहते हैं कि बच्चों को शादी का फैसला अपनी सहमति से जरूर लेना चाहिए क्योंकि माता पिता के अनुभव और आशीर्वाद से रिश्ता अधिक मजबूत और सुरक्षित बनता है। माता पिता उसे परिवार से भी देख पा रखकर इस तरह शादी का सहमति दे सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, पर दबाव नहीं बच्चों पर। असहमति वाले दबाव वाले शादियों का नतीजा अच्छा नहीं दिख रहा। माता पिता अपने बच्चों का अच्छा ही चाहते हैं पर कभी कभी अपने इंसानी फितरत के चलते अपनी ईगो के चलते कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं और बच्चों पर डालते हैं जिसका परिणाम किसी एक जो है नहीं दो परिवारों कई परिवारों को भुगतना पड़ सकता है। यानी इस मामले में बहुत सोच समझ कर हमें निर्णय लेना चाहिए।
0: जी अच्छा एक और संदेश आया है सोनाली, ये कहती है कि मेरी एक सखी है उनकी बेटी की अभी हाल ही में शादी हुई है और उस शादी में हम सब ने बहुत आनंद लिया था, सब ने बहुत भरपूर आशीर्वाद युगल जोड़े को दिया था, लेकिन अब ये शादी में कहीं कुछ दिक्कतें दिखाई दे रही हैं क्योंकि बेटी जो है वो डॉक्टर है और अब जहाँ वो ससुराल में गई है तो वहाँ ये उम्मीद लगाई जा रही है कि वो क्लिनिक छोड़कर घर का काम करे। घर शादी और इस रिश्ते को निभाने के लिए वो बच्ची वैसा कर भी रही है लेकिन फिर भी समझदारी ज्यादा बड़ों में होनी चाहिए ऐसा हमारी सखी को लगता है। वो कहती है कि बच्चों पर भरोसा ही इस रिश्ते को आगे ले जाया जा सकता था। अब जब कारण सुन रहे हैं कि ससुराल वाले खुशी नहीं है, वो डॉक्टर है, घर में काम भी कर रही है, सब कुछ अपना जो करियर है उसको साइड में रखे हुए है, लेकिन मन में उन लोगों के फिर भी असंतोष रहता है, तो ऐसे में उन्हें ये लग रहा है कि थोड़ा सा हमें जान पड़ताल थोड़ी सी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए थी, थोड़ा सा और समझ लेना चाहिए था, उसके बाद ही इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए था।
1: ये तो बात ऐसी होती है ना दीपा जी कि ये सब बातें कहने की है पर ऐसा होता है कि अभी हमने पढ़ाई लिखाई कर ली है और पढ़ाई लिखाई करने में हमने इतने वर्ष गवाए हैं, इतने सारे वर्ष हमने अपनी ज़िंदगी के उस पढ़ाई के लिए समर्पित किए हैं और उस पढ़ाई से ही हमारा घर चलने वाला है ना, पैसा मिलने वाला है, तो फिर क्यों ना करें नौकरी। नौकरी करना बहुत अच्छी बात है और कभी कभी ऐसा होता है कि एक उम्र के बाद यानी 40-45 के बाद में अगर घर के मुखिया इस दुनिया को छोड़ के चले गए यानी जीवन साथी नहीं रहे तो उस वक्त जो महिला होती है ना उसके ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति आ सकती है कि मेरे पास पढ़ाई है पर अनुभव नहीं है, क्योंकि बिना अनुभव के उस उम्र में कोई नौकरी नहीं देता है।
0: बिल्कुल, और आज के ज़माने में जहाँ इतनी तेज भागती दौड़ती जिंदगी चल रही है और हर जगह कंपटीशन इतना है, दोनों का काम करना बहुत जरूरी आवश्यक हो गया है। आपकी छोटी मोटी खुशियां आपकी छोटी मोटी इच्छाएं भी हम महिलाएं जो होती हैं सारी महिलाओं

0: के बारे में बात हो रही है कि हम आत्मनिर्भर होते हैं अपने पढ़ाई अपने शिक्षा की वजह से, तो हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। जो चाहे वो एक लड़की ले सकती है,
1: अपनी इच्छा पूरी कर सकती है,
0: अपनी इच्छा पूरी कर सकती है, न सिर्फ अपनी वो परिवार की भी इच्छा पूरी कर सकती है। और वो खुशी वो आनंद सिर्फ उस बच्ची को या उस महिला को नहीं होता,
1: पूरे परिवार
0: को होता है।
1: तो इसमें क्या होता है, दोनों खुश रहते हैं कि वो बाहर गई काम के लिए तो पति ने भी थोड़ा सा घर के काम में हाथ बटाया, उन्होंने भी बाहर से गए अच्छे से पैसे कमा कर भी आ गए, पूरा घर खुशहाल रहेगा। बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी, थोड़ी सी एक दूसरे की तरफ समझेंगे, हम एक दूसरे से जुड़ेंगे तो ये रिश्ता और भी खूबसूरत होगा।
0: बिल्कुल।
1: और अब गाना सुन ले,
0: तो सफर और खूबसूरत हो जाएगा।
1: सुनते हैं।

0: आसमां तो झूम रहा है अभी, है ना?
1: आसमान भी झूम रहा है और गीत सुन के मन भी प्रसन्न हो रहा है।
0: मन प्रसन्न हो रहा है पर नींद तो नहीं आ रही दीपा।
1: अभी कैसे आ सकती है? अभी तो हमारी सखियां साथ में हैं भाई।
0: और पर नींद ऐसी है ना कि जब नहीं आना चाहिए तब आती है और जब आना चाहिए तब नहीं आती। बहुत बार ऐसा होता,
1: होता तो है,
0: है ना? हाँ। पर नींद का ना सीधा सीधा संबंध हमारी मानसिक अवस्था पर भी होता है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि रात के समय सोशल मीडिया पे किसी से बहस हो गई या किसी से फोन पर बहस हो गई तो हमारी पूरी रात खराब हो जाती है।
1: उसके
0: तो
1: बारे में
0: सोचते रहते हैं कि यार ऐसा क्यों बोल दिया, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा, मैंने तो ये कभी नहीं चाहता हूँ, फिर ये क्यों बोल दिया, इस तरह से होता है बहुत बार।
1: इसीलिए सोनाली, एक मानसिक स्वास्थ्य और हमारे अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए

0: अच्छी और गहरी नींद बहुत आवश्यक है। और फिर अगर आप रात को चैन की नींद ना सोएंगे तो अगला दिन आपके जो है आपके काम में उसका असर दिखेगा, आप जो भोजन बना रही हैं उसमें भी असर दिखेगा, या फिर आप चिड़चिड़े होंगे, या आप बिना किसी कारण के घर में नाराजगी आपकी दिखाई देगी।
1: और ऐसा है ना, जो चेहरा होता है ना वो हमारा हमारे स्वास्थ्य का दर्पण होता है, कि हमारी नींद नहीं हुई तो हम सामने वाला बराबर पहचान लेगा कि आपकी आंखों में सूजन दिखाई दे रही है, आप ठीक से नींद नहीं ली है,
0: बिल्कुल
1: आप हमेशा की तरह फ्रेश नहीं दिख रही है, आप थोड़ी चिड़चिड़ी नजर आ रही है, तो शायद आपकी नींद नहीं हुई है। और पूरा गुस्सा फिर वो बच्चों पर निकल सकता है, पति देव पर निकल सकता है, पति देव का गुस्सा पत्नियों पर निकल सकता है,
0: ऐसा अक्सर हो
1: होता
0: ही जाता
1: है ना।
0: जब बहुत काम में प्रेशर में होते हैं हम, काम का दबाव बहुत ज्यादा होता है, या कुछ ऐसा घर में कोई त्योहार या शादी ब्याह का माहौल भी आता है ना, बहुत सारे काम होते हैं घर में और हम बिना छोटी सी बात पे, बात छोटी सी होती है और एकदम से हम नाराज हो जाते हैं या बोल पड़ते हैं कि क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हो। वो इसलिए क्योंकि रात को, रोज रात को देर तक काम कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, इस तरह के कभी 2-3 दिन तक भी अगर इस तरह की रूटीन हो जाती है तो देखिए आपके व्यक्तित्व में बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव दिखने लग जाता है।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि अच्छी नींद किसी दवा से नहीं बल्कि अच्छी दिनचर्या और शांत मन से आती है। ध्यान साधना, नियमित समय पर सोना, संतुलित भोजन, हल्का व्यायाम और तनाव कम रखने की आदतें नींद को गहरी और सुकून भरी बताती है। वहीं बहुत सारे साथियों ने कहा है कि स्क्रीन जो है, ये हमारा मोबाइल फोन है, इसको सोने से 1-2 घंटे पहले दूर रख दीजिए।
0: बिल्कुल, बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें से जो निकलने वाली ब्लू लाइट है वो हमारे दिमाग में मेलाटोनिन जो वो हार्मोन जो कि नींद लाने वाला होता है उसकी ये जिम्मेदारी होती है, तो इसका स्तर कम हो जाता है और उसी की वजह से नींद आने में दिक्कत होने लगती है और हमारा दिमाग एकदम अलर्ट रहता है, एकदम सतर्क हो जाता है। तब तक वो जो सोने की अवस्था आनी चाहिए वो पूरी अच्छे से आ नहीं पाती।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि नींद पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि कभी नींद से जागकर सुबह मजाक में सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी से ये गाकर सुनाता हूँ, सारी सारी रात तेरी याद सताए, नींद ना आए मुझे चैन ना आए। और धर्म पत्नी तुरंत कहती, अजी छोड़ी, आप तो घोड़े बेचकर सोए थे, कोई उठाकर ले जाता, आपको मालूम नहीं पड़ता। दोनों इस बात पर हंस लेते हैं। ये कितनी अच्छी बात है कि दोनों इस बात पर हंसते हैं, क्योंकि नहीं तो क्या होता ना, एक उम्र के बाद में लोग हंसना, मुस्कुराना, खिलखिलाना ही भूल जाते हैं।
0: बिल्कुल, और अगर आपकी ये हंसी बनी रहे और नींद अच्छे से आए, ये भी जरूरी है कि उसके लिए आप अपने खान पान की आदतों का भी ध्यान रखें, जैसे कि कैफीन से बचना बहुत जरूरी है। दोपहर के बाद या शाम को, देर शाम को, कभी घर हम देर से आते हैं तो कहते हैं ना थोड़ी सी पहले चाय पी लेते हैं, वो चाय तो आप पी सकते हैं, कॉफी चाय जो भी आपको पसंद है वो पी सकते हैं, लेकिन उसका असर शरीर में कई घंटों तक रहता है। और बहुत जरूरी है कि हम हल्का डिनर खाएं रात के समय, रात का खाना बहुत भारी नहीं होना चाहिए, बहुत मसालेदार नहीं होना चाहिए, और उससे ज्यादा जरूरी सोने और खाने के बीच में कम से कम 2-3 घंटे का अंतर जरूर होना चाहिए।
1: एक साथी ने लिखा है, अच्छी नींद के लिए मेडिटेशन करो, रात को जल्दी और हल्का खाना खाओ और मोबाइल दूर रखो, कमरे में अंधेरा हो, शांति हो, ठंडक हो, बेड आरामदायक हो तो नींद बढ़िया आती है। और जब गर्मियों का मौसम है ना, जैसे बहुत चिलचिलाती गर्मी थी, तब है ना एक नहा ले सोने से पहले, नहा के ढीले ढाले सूती कपड़े पहने, और जब हम जिस चादर पे सोते हैं बिस्तर में, वो चादर एकदम सूती नरम मुलायम चादर हो, ऐसे डार्क कलर के पर्दे हो, तो नींद जल्दी से आ जाती है।
0: और आपने जो बात करी ना कि चादर नरम मुलायम हो, इसी तरह से आपका बिस्तर भी, जो गादी होती है वो और तकिया आरामदायक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें कहीं पे अगर रुई की है तो वो कहीं कहीं उसकी गठाने पड़ जाती हैं, उस तरह की नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल इस तरह हो कि वो शरीर को पूरी तरह से
1: आराम
0: सपोर्ट दे और आराम दे।
1: और अब गाना सुन ले,
0: चलिए।

0: हमारी एक सखी ये कहती है कि एक और जरूरी बात है कि सोने का एक समय बना लेना चाहिए। तो मैं भी समय पर अपने सारे काम निपटा लेती हूँ और बिस्तर पर आ जाती हूँ, उसके बाद कोई टीवी नहीं, कोई फोन नहीं, शांत होकर के आंखें बंद कर लेती हूँ। वो ये सलाह दे रही हैं कि आप भी इस नियम को 21 दिन करके देखिए और फिर देखिए कितनी अच्छी बढ़िया नींद आपको भी आएगी।
1: तो श्रोताओं के आज इतने सारे हमने सुंदर सुंदर कमेंट्स पढ़े, सारे श्रोताओं को दिल से धन्यवाद। आज सखियों के साथ, श्रोताओं के साथ बहुत आनंद आया और अब इजाज़त लेने का वक्त आ चुका है। तो आप सभी को सोनाली पाठक
0: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: हेलो दोस्तों, मौसम ले रहा है अंगड़ाइयां, पूरी हो रही है बरसात में भीगने की ख्वाहिश। विविध भारती के चाहने वालों की तमन्ना भी पूरी होगी, क्योंकि हम लेकर के आ गए हैं आपका पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश। मैं हूं जयंत पात्रिकर और ये है आज का पहला कॉल। हेलो फरमाइश।
1: हाँ सर, नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: पवन कुमार सेन बोल रहा हूँ सर, गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से।
0: बोलिए पवन कुमार जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे सर, आप लोगों के विविध भारती कार्यक्रम के दिन निमित्त श्रोता हूँ मैं, और बहुत अच्छा लगता है सर आप लोगों का जो कार्यक्रम है, आप लोगों का सुमधुर आवाज है, और इसी आवाज से हम दिल लगाए रहते हैं सर।
0: तो पूरा दिन भर आप सुनते हैं विविध भारती?
1: बिल्कुल सर, क्या समय समय में सुनता हूँ सर, मोबाइल के द्वारा काम में भी जाता हूँ, मिस्त्री लाइन के काम करता हूँ मैं।
0: मिस्त्री लाइन का मतलब?
1: तो मकान मिस्त्री का सर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: जी सर, मकान मिस्त्री का ठेकेदारी का काम करता हूँ, और रेडियो तो सर कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ सर मैं।
0: जो अपना काम करते हुए आप मोबाइल ऐप पे जो है विविध भारती सुनते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, बोलिए पवन कुमार जी, क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: आज एक बहुत ही सुंदर आपके केंद्र से एक गीत सुनना चाहूंगा सर, मोहम्मद रफी जी की आवाज में, भरोसा फिल्म का गीत सर, ये झुकी झुकी नैना ये लट बल खाती तो दिल क्यों ना मेरा दीवाना हो तेरा वाला गीत।
0: ये किसके लिए गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: इसमें सर मेरा खास एक परम मित्र परम दोस्त है पन्नालाल सेन जी, वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ सर अपना फरमाइश अपने भाई पन्नालाल सेन तक।
0: कहाँ रहते हैं पन्नालाल जी?
1: बाग बहरा भदरसी रहता है सर, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है, अपने गंडई से कम 200 किलोमीटर आगे है सर उसका घर, और हमारा परम मित्र है सर वो।
0: अच्छा, इनका भी ये गाना पसंदीदा है?
1: बिल्कुल सर, उसी के अनुरूप तो मैं फरमाइश कर रहा हूँ सर आज।
0: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए पवन कुमार जी। ये रहा आपकी पसंद का भरोसा फिल्म का गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ मैं राजस्थान जोधपुर से महबूब खान बोल रहा हूँ।
0: बोलिए महबूब खान साहब, कैसे हैं?
1: आज आपकी दुआ है कि सर, बैंक पार्टनर से बोल रहे हो आप?
0: जी जी जी,
1: आपकी आवाज़ सुनता हूँ। आपका तो बहुत पुराना सोचा हूँ मैं, तो 50 साल से रेडियो स्टेशन सुन रहा हूँ।
0: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए कौन कौन से प्रोग्राम सुनते रहे हैं पिछले 50 सालों में?
1: हाँ मैं सुनता हूँ ज्यादा, और आपकी फरमाइश, आलो फरमाइश।
0: जी जी,
1: और काफी प्रोग्राम सुनता रहता हूँ।
0: और आपके पसंद के गाने कौन से होते हैं? पुराने गाने ज्यादा पसंद करते हैं आप?
1: पुराने गाने शौकीन हूँ सर, मैं बहुत पुराने गाने के शौकीन हूँ सर। मैं मेरे दोस्तों के नाम ले सकता हूँ?
0: हाँ बिल्कुल,
1: ताज मोहम्मद जी, बरकत खां और अकबर खां, और दिनेश भाई, कृष्ण राम जी, दारू भाई मेघवाल, हमारे दोस्त रेडियो श्रोता है, नियमित श्रोता है ये।
0: जी जी जी जी, तो महबूब भाई इन सारे दोस्तों को भी वही गाना पसंद है जो आप आज बताने वाले हैं?
1: हाँ जी हाँ जी, है हमारे बहुत दिल के करीब है ये गाना।
0: कौन सा गाना?
1: ये तुम्ही मेरी मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो,
0: खानदान फिल्म लगे। अच्छा जी
1: जी सर, नूतन सुनिश्चित फरमा है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए महबूब खान साहब। ये रहा आपके और आपके दोस्तों की पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ नमस्ते बंधुवर।
0: नमस्ते नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं गुलम मंडी छत्रपति संभाजीनगर से जगन्नाथ बसे बंधु बोल रहा हूँ। साहेब जी
0: बोलिए, बंधु साहब कैसे हैं?
1: बस पात्रीकर जी, बस देखो हम यहाँ है और आप मुंबई के स्थित जगह पर है
0: जी।
1: हम गुलम मंडी से बात कर रहे हैं, आप मुंबई से बात कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है बहुत दिनों के बाद आपके से वार्तालाप हो रहा है।
0: बस ये जी एक बात बताइए, आपके संभाजी नगर में अभी मौसम कैसा है? बारिश वारिश हो रही कि नहीं?
1: बहुत सुहाना है और वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है।
0: क्या बात है,
1: कुछ गर्मी से राहत महसूस हो रही है। मौसम ठंडा ठंडा है, हरियाला सावन छाया है, झाड़ तो ऐसे हल रहे कि मानो कि एसी की और पंखे की आवश्यकता ही नहीं है
0: जी। बिल्कुल, तो मुझे लगता है आज का आपका जो फरमाइशी गाना होगा वो भी ऐसा ही होगा।
1: अरे साहब मौसम की बात ऐसा है, मैं बता रहा हूँ मौसम के हिसाब से है। ऐसा गीत मैं सुनना चाह रहा हूँ, 1943 में एक फिल्म बनी तानसेन, इसमें स्वयं कुंदन लाल सहगल साहब और खुर्शीद ये कलाकार भी थे और गायक भी
0: सहगल साहब।
1: अब तो बहुत कठिन है ऐसा कार्यक्रम होना, तो साहब फिल्म इतनी चली थी और इसके अंदर के गीत है खुर्शीद जी ने गाया है और केएल सहगल साहब ने गाया है और दृश्य इतना सुंदर है बंधु जी, मैं क्या बताऊं। ये फिल्म जितने बार भी देखे होंगे आपने या ना देखे होंगे तो देखना जरूर
0: जी।
1: क्या सुंदर अभिनय है कुंदन लाल सहगल साहब का और खुर्शीद का, स्वयं अभिनेत्री रोल है। घटा घन घोर घोर मोर मचाए शोर
0: मोरे सज्जन आ
1: जाना, क्या गीत है। जितने बार सुनो ऐसा लगता आग बंद करो और बैठ जाओ तो सब नयन में दृश्य हम बैठ के निसर्ग की सृष्टि में देख रहे हैं सुन रहे हैं। तो ये गीत सुनना हम पसंद करेंगे साहेब जी। और इसके जो है संगीतकार खेमचंद प्रकाश और गीतकार दीनानाथ मधुक।
0: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुनवा रहे हैं तानसेन फिल्म से ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार जयंत जी।
0: नमस्कार
1: जी, आप ठीक हो?
0: बिल्कुल, हम ठीक हैं, आप कैसे हैं?
1: बस मैं भी आपकी दुआ से ठीक हूँ और यही ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि विविध भारती की टीम जहाँ रहे खुश रहे सलामत रहे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बताइए, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: और हमारे लिए ऐसे ही प्रोग्राम सजा कर लाते रहिए जैसे आप सजा कर लाते हो।
0: जी जी जी जी, आपका नाम तो बताइए।
1: जी मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ, साहिल।
0: और साहिल कैसे हैं?
1: बस बढ़िया हूँ सर। श्रीनगर का मौसम तो बहुत ही अच्छा है, आजकल टूरिस्टों का भी रश लगा हुआ है और अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो चुकी है।
0: जी जी जी, और बताइए, विविध भारती से कब से है आपका जुड़ाव?
1: विविध भारती से जुड़ाव है 2005 से सर।
0: अच्छा जी, 21 साल हो गए।
1: जी बिल्कुल।
0: तो उससे पहले क्या सुनते थे?
1: जब से होश संभाला है सर विविध भारती सुना है तब से।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, सबसे ज्यादा आप क्या सुनते हैं, सिर्फ फिल्म के गाने या इसके अलावा भी कुछ?
1: मैं सबसे ज्यादा प्रोग्राम सुनता हूँ जो 4 बजे आता है पिटारा।
0: ओके।
1: उसमें हर दिन एक नया प्रोग्राम होता है सर। कभी सेलुलॉइड के सितारे, कभी डॉक्टर होता है, कभी कभार आप किसी सेलिब्रिटीज को लाते हो तो उनकी जो जिंदगी में उन्होंने किया होता है तो उनके बारे में हमें पता चलता है सर।
0: जी जी, और फिर हफ्ते में एक दिन हेलो फरमाइश भी आता है जिसके लिए आपने कॉल किया है। बताइए क्या सुनना चाहते हैं?
1: बिल्कुल, और आपने एक प्रोग्राम फिर से चालू किया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मन चाहे गीत।
0: तो आपने खत भेजे कि नहीं मन चाहे गीत के लिए?
1: जी सर, मैंने खत भेजा है सर।
0: चलिए बताइए, आज के लिए कौन सा गीत आपने सेलेक्ट किया?
1: फिल्म का नाम है डोली, आशा जी की आवाज में। आज मैं देखूं जिधर जिधर, ना जाने क्यों उधर उधर, मुझे दो दो चार नजर आए मेहताब उधर मेहताब।
0: बढ़िया गाना है, आपको सुनवा रहे हैं डोली फिल्म का गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी, मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: बोलिए राकेश जी।
1: मेरे बात में कॉल लग गया, मेरा बहुत बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं आपके सभी प्रोग्राम को सुनता हूँ और आप जितनी भी बात के प्रोग्राम आते हैं हेलो फरमाइश तो सुनते हैं और मन चाहे गीत भी आपने शुरू किया वो भी अच्छा लगता है। सभी प्रोग्राम जो है हम विविध बात के सुनते रहते हैं।
0: बहुत अच्छा लगा जान करके। और राकेश जी ये बताइए शिमला में क्या करते हैं आप?
1: शिमला में तो अभी हम तो घर पे रहते हैं और सेब की जो है बागवानी वो करते हैं और अभी हमारे जो सेब के जो बाग है छोटे छोटे हैं, छोटे तो क्या है अभी तो सैंपल आ गए हैं, छोटे छोटे फूल आना शुरू हो गए हैं सेब के और अब जो है जुलाई तक जो है हमारे सेब जो है पूरे भारत में तो निकली आ जाएगी।
0: अच्छा अच्छा, साल में एक बार आते हैं पेड़ों को?
1: साल में एक बार आते हैं और कहना चाहता हूँ कि जो आप तक जो सेब मिलते हैं और स्टोरेज की वो सेब जो है मिल जाते हैं तो तब जाके ये पूरे भारत में पहुँचते हैं, कई सेब जो होते हैं जो स्टोरेज की हो जाते हैं।
0: अच्छा अच्छा, आपके बाग के सेब जो है वो कहाँ कहाँ तक जाते हैं?
1: हमारे सेब जो है हमारे स्थानीय मंडी में भी जाते हैं, अगर स्थानीय मंडी में ज्यादा होते तो फिर विदेश भी भेज देते हैं और बम्बई में भी इसकी जो है डिमांड ज्यादा रहती है महाराष्ट्र और बम्बई में।
0: अच्छा अच्छा, तो हम जो अब सेब खा रहे हैं उसमें हो सकता है कोई एक सेब आपके बाग से भी आया हुआ होगा?
1: बिल्कुल, क्योंकि सेब तो पहचान कैसी होती है क्योंकि सेब तो कश्मीर से भी आते हैं और हिमाचल से भी आते हैं, लेकिन ये है कि कश्मीर से लेट आते हैं, हमारे हिमाचल के जो सेब होते हैं वो जल्दी आ जाते हैं।
0: जल्दी आ जाते हैं।
1: मैं कहना चाहता हूँ कि शिमला जो है एक पर्यटक केंद्र भी है और हमारा कोटखाई क्षेत्र भी बहुत अच्छा है और मैं कहना चाहता हूँ मैं छोटे से एक गांव में रहता हूँ, मेरे गांव का नाम है गुंडा और तहसील कोटखाई और बहुत अच्छा मतलब क्षेत्र है, मैं 400 लोग हमारे गांव में रहते हैं।
0: अच्छा जी, बताइए आज के प्रोग्राम के लिए आपने कौन सा गीत चुना है?
1: आज मुझे मोहब्बत मूवी का गाना सुना है और आईना बता कैसे ये गाना सुनना है।
0: राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए और आपको सुनवा रहे हैं मोहब्बत फिल्म का आपकी पसंद का ये गाना।

0: हूँ, बच्चों को संभालती हूँ।
1: बहुत बड़ा काम है ये भी, और इसके साथ साथ घर का सारा कामकाज करते हुए आप रेडियो सुनती है ना?
0: जी सर, विविध भारती सुबह से चालू होती है तो 11 बजे रात में बंद होती है।
1: अच्छा, और इसमें से सुबह से लेकर रात तक कौन सा प्रोग्राम आपको ज्यादा पसंद है?
0: सर मुझे छाया गीत ज्यादा अच्छा लगता है, और आज के मेहमान, पत्रकार सब सुनती हूँ मैं, हालू फरमाइश भी सुनती हूँ।
1: जी चलो, बहुत अच्छा लगा जान के आप इतना पसंद से, इतने चाव से सुनती हैं विविध भारती। बताइए आज क्या सुनना चाहती हैं आप?
0: सर मुझे आज की तू का गाना सुनना है, मैं चाहूँ ना।
1: ये रहा आपकी पसंद का गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: क्या लम्हों का इश्क नहीं सदियों की हिफाजत है? लम्हों का इश्क नहीं सदियों की हिफाजत है, कैसे करूं शिकायत हर सांस को तेरी चाहत है।
0: ओहो हो हो, क्या बात है। और ये शेर कहने वाले हैं कौन? आप क्या नाम बताइए?
1: सर मैं उत्तर प्रदेश जिला रामपुर ग्राम खंडिया गेट कॉलोनी से अमरजीत बात कर रहा हूँ।
0: अमरदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। बताइए क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: मैं गीत सुनूंगा, फिल्म का नाम रहेगा साजन, और इसमें जो गीत मैंने चुना है, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार।
0: अच्छा जी, ये गाना आपने क्यों चुना, कोई खास बात है?
1: जी बिल्कुल खास बात है सर, ये गीत मुझे अच्छा लगता है और इसके वर्ड ऐसे हैं, अगर एक एक वर्ड को हम समझते हैं तो काफी अच्छा, दिल को सुकून देता चला जाता है।
0: चलिए तो फिर आपको सुनवाते हैं साजन फिल्म का गाना अमरदीप जी।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्कार, मैं पप्पू ठाकुर कटिहार थाना जिला गोपालगंज बिहार से बोल रहा हूँ।
0: बोलिए पप्पू जी, कैसे हैं?
1: है जी, अपना बताइए।
0: हम तो बहुत अच्छे हैं, बस श्रोताओं के बारे में जानना चाहते हैं। अलग अलग जगह
1: जी,
0: से
1: जी।
0: आप लोग फोन करते हैं, तो आपके
1: जी।
0: इलाके में मौसम कैसा है? बारिश पड़ रही है?
1: जी सर, आज कितने दिनों के बाद से आज बारिश हुई है सुबह में। और मैं शहरी इलाका नहीं है, गाँव का इलाका है हमारा, एक छोटा सा जिला है।
0: जी जी पप्पू जी, वहाँ गांव में आप क्या काम करते हैं बताइए।
1: गांव में सर, मैं तो अभी बाहर गांव में काम करता था, अभी घर पे आया, एक साल हो गया हमको। मैं दुबई, कतर और कांगो, एक अफ्रीका जगह है ना, वहाँ पे मैं काम किया है, मैकेनिक का काम मैं करता हूँ सर।
0: अच्छा, तो फिर अब पिछले साल भर से आप घर में हैं, तो यही अपना कुछ नया काम धंधा शुरू करने का इरादा है?
1: जी जी, हमारा एक सैलून का शॉप है, हमारे पिताजी चलाते हैं, तो कभी काल हम चले जाते हैं वहाँ पे। मेरा एक सपना था सर कि मैं कभी विविध भारती में मेरा कॉल लग जाए हेलो फरमाइश में, क्योंकि मैं बहुत दिनों से ट्राई करता था।
0: क्या बात है, आज सपना पूरा हो गया आपका।
1: बहुत खुश हूँ, मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि 2005-06 से जब रेडियो पे मैं सुनता था, हमारे बड़े पापा के पास एक फिलिप्स का रेडियो हुआ करता था, छोटा वाला, उसको हम शॉर्ट वेव पे उसको सुना करते थे। उस समय से मैं विविध भारती को बहुत चाहता हूँ, बहुत चाहता हूँ, बहुत सुनता हूँ, अभी मोबाइल पे सुनता हूँ मैं।
0: क्या बात है, मोबाइल ऐप डाउनलोड किया आपने?
1: जी जी, न्यूज एनआईआर वाला,
0: बहुत बढ़िया है।
1: कोई भी ऐसा फरमाइश नहीं गया हो जो मैं नहीं सुना हूँ, ऐसा नहीं होता तो रिकॉर्डेड में मैं सुन लेता हूँ उसको।
0: बताइए पप्पू जी, आज के लिए आपने कौन सा गाना चुना है?
1: फिल्म का नाम है पत्थर के सनम, मनोज कुमार सर पे फरमाया गया है, वो गाना है पत्थर के सनम तुझे मैंने मोहब्बत का खुदा जाना, रफी साहब की आवाज में है।
0: चलिए, तो आपके जो कॉल लगने की खुशी हो रही है आपको, उसके और दुगना कर देते हैं। तो सुनिए अपनी पसंद का गाना पत्थर के सनम फिल्म से।

0: हेलो फरमाइश।
1: कैसे हैं आप सर?
0: हम अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं और अपना नाम बताइए पहले, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं फहीम बोल रहा हूँ, श्रीनगर कश्मीर से।
0: फहीम भाई बोलिए।
1: जी सर, आज आपसे पूरे 2 महीने के बाद बात हो रही है। हम
0: जी जी
1: इंतजार में रहते हैं कि कब हमारे 2 महीने कंप्लीट हो जाएं और हम आपसे बात करें और विविध भारती के चैनल VBS पे अपने पसंद के नगमे सुने।
0: जी जी बाकी पूरे देश में तो गर्मी का मौसम खत्म हो के अब बारिश शुरू होने वाली है, बहुत लेट हालांकि आई है, मगर श्रीनगर में कैसा है मौसम?
1: श्रीनगर में इन दिनों थोड़ी सी गर्मी है। यहाँ पे 40 दिनों का एक समय होता है, 30 जून से लेकर जो है फुल मंथ जुलाई तक रहता है। 40 दिनों को हम कश्मीरी में बारात बोलते हैं।
0: अच्छा,
1: बारात के समय यहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है और वैसे ही यहाँ पे 21 दिसंबर से लेकर फुल मंथ जनवरी तक 40 दिनों का एक और समय होता है, उसको हम कश्मीरी में चिलाई कलान बोलते हैं।
0: अच्छा,
1: गर्मियों के 40 दिन वहरात और सर्दियों के 40 दिन चिलाई कलान। ये 40 दिन जो है हमारे यहाँ पे बहुत स्पेशल होते हैं गर्मियों के हिसाब से और सर्दियों के हिसाब से। तो अभी हम ऐसे समय में चल रहे हैं जो पे अभी हमें कुछ ही दिन हुए हैं वहरात में चल रहे हैं। तो अभी कुछ दिनों के बाद बच्चों की स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में छुट्टी रहेगी।
0: अच्छा, तो ये बहरात में क्या कुछ खास कुछ रवायत होती है, कुछ त्योहार होते हैं?
1: के समय जी जी त्योहार भी होते हैं बहुत सारे। बहरात के समय में यहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है, बच्चों को सब छुट्टियाँ मिलती है, तो हम कश्मीरी लोग भी जैसे आपके वहाँ पे आते हैं घूमने, हम भी यहाँ पे घूमने।

0: निकलते हैं बच्चों के साथ, तो बारात के समय हमें जो है ना यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज्यादा ठंड ही रहती है, मौसम ठंडा ही रहता है, तो अभी हम गर्मियों को एंजॉय कर रहे हैं बारात के समय फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ।
1: आपकी नज़र से वो गर्मियां हैं, मगर फिर भी एवरेज टेम्परेचर तो वहाँ 20 से कम ही रहता होगा।
0: हाँ जी, हाँ जी, नॉर्मली 25-30 तक हो जाता है, और जिस दिन 30 होता है उसी शाम बारिश भी आती है, ये हमारे यहाँ पे स्पेशल एक बात है। जिस दिन 30 होता है तो उसी शाम हल्की सी बारिश भी आती है, अगले दिन फिर से वही नॉर्मल 25-27 तक जाता है।
1: जी, मुल्क के दूसरे इलाकों के लोग घूमने जाते हैं श्रीनगर, मगर श्रीनगर के रहने वाले कहाँ जाते हैं घूमने, आप कहाँ आते हैं पूरे देश में?
0: हमारे यहाँ पे स्पेशली कुछ जगहें हैं कश्मीर में ही है, दूध पथरी नाम की जगह है, वहाँ पे हम जाते हैं, सोनमर्ग भी जाते हैं, पहलगाम भी जाते हैं, गुलमर्ग भी जाते हैं।
1: नहीं, वो तो है, आपके यहाँ आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप जब घूमने निकलते हैं तो आपकी ख्वाहिश क्या होती है कि देश के किस इलाके में जाए, क्या देखें?
0: हम ज्यादातर पसंद करते हैं एक तो बैंगलोर जाना, और दूसरा जो है ना हमारा थोड़ा मुंबई भी जाते हैं, और केरला भी जाते हैं यहाँ के लोग, और कोलकाता भी जाते हैं। देश के बहुत सारे, सबका टेस्ट अलग अलग है।
1: जी जी जी,
0: बहुत सारे लोग यहाँ से जाते हैं, जब आउट ऑफ स्टेट जाते हैं तो इन्हीं जगहों पे जाना पसंद करते हैं। गोवा भी जाते हैं यहाँ से काम के सिलसिले में भी और घूमने के सिलसिले में भी।
1: वाह वाह, बड़ा अच्छा लगा जान करके। और आपने टेस्ट सबका अलग होता है कहा, तो ऐसे ही म्यूजिक का टेस्ट सबका अलग होता है ना, तो अगर फिल्म म्यूजिक की बात की जाए, फिल्म संगीत की बात की जाए, तो आपका टेस्ट कैसा है, क्या सुनना चाहते हैं आप?
0: मैं दोनों नगमे पसंद करता हूँ, पुराने भी सुनते हैं नए भी सुनते हैं, लेकिन अभी का जो ये हमारा अभी ट्रिप चल रहा है, हम भी घूमने निकले हैं।
1: जी जी,
0: तो मुझे एक वीर जारा का नगमा बार बार याद आ रहा है, ये हम आ गए हैं कहाँ, लता मंगेशकर और उदित नारायण जी की आवाज में, ये बहुत ही प्यारा नगमा है। तो मैं यही हम अपने विविध भारती के चैनल पे सुनना चाहेंगे, और साथ में जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं, जो अभी घूमने निकले हैं, वो कश्मीर के नजारे देखकर यही बोल रहे होंगे आपस में, अरे यार ये हम आ गए हैं कहाँ।
1: क्या बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत बहुत धन्यवाद इस गीत को चुनने के लिए, और आपको हम सुनवा रहे हैं वीर जारा फिल्म से यही गीत।

0: हेलो, फरमाइश।
1: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से सर जी मनोज नामदेव।
0: मनोज नामदेव जी कैसे हैं?
1: बस सर बढ़िया हैं, जब आपका आशीर्वाद है भगवान कृपा से मैं बहुत बढ़िया हूँ सर।
0: बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं हैं और ऊपर वाले का भगवान का आशीर्वाद है, उसी की दुआ से सब कुछ चल रहा है ना।
1: बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हो।
0: और मनोज नामदेव जी, आपका कामकाज कैसा चल रहा है?
1: जी जी बिल्कुल सर, कामकाज बढ़िया चल रहा था। मैं अपने शॉप पर काम कर रहा था और फोन लगा रहा था, एक हाथ से काम कर रहा था तो लगाते लगाते लग गया फोन। और कहें कि सर आकाशवाणी मुंबई सर इतना अपार प्रेम हो चुका है, सर इतना अपार प्रेम हो चुका है कि रह ही नहीं सकते। जे कहो सर,
0: कौन सा प्रोग्राम सुने बगैर नहीं रह सकते?
1: सर जी आपके सारे कार्यक्रम सुनते रहते हैं, सुबह से रात 11 बजे तक आपका कार्यक्रम बराबर सुनते हैं सर।
0: जी जी, तो सुबह से लेकर रात तक अलग अलग इरा के गाने हम बजाते हैं, अलग अलग युग के गाने बजाते हैं, है ना, पुराने हैं
1: सर। और सोमवार को आता है कार्यक्रम सेहतनामा, और शनिवार को और रविवार को आपका मनचाहे गीत, इतना अच्छा कार्यक्रम लगता है सर, इतना अच्छा कार्यक्रम कि मेरे पास धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं आपको, और जान के हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना आप पसंद करते हैं विविध भारती के अलग अलग कार्यक्रमों को। और अब ये उत्सुकता है कि आज के इस कार्यक्रम के लिए आपने किस गीत की फरमाइश लिख रखी है अपने डायरी में?
1: बिल्कुल सर, डायरी में लिख रखी है, मूवी का नाम है विजयपथ और गाने की बोल रहेंगे, आइए आपका इंतजार है।
0: तो आपका इंतजार खत्म करते हैं और आपकी पसंद का गाना आपको सुनवाते हैं।

0: दोस्तों ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध निवेदन है कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल ना करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार को दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारा फोन नंबर नोट करें, हमारा नंबर है 02228670288 और दूसरा नंबर है 02240024662। फोन नंबर एक बार फिर नोट करें 02228670288 और दूसरा नंबर है 02240024662। चलते चलते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया जयंत पात्रिकर के साथ, रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल और किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिलमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन छाया गीत कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, आग की त्रासदी है कि वो हमें झुलसा देती है। हाँ, आग का क्या है, पल दो पल में लगती है और बुझते बुझते एक जमाना बीत जाता है। हम ता उम्र किसी आग में जलते रहते हैं, नफरत की आग या फिर प्रेम की अगन। धुआं धुआं सा लग रहा है इन दिनों, धुआं धुआं सा लग रहा है इन दिनों, लगता है किसी का इश्क जल रहा है इन दिनों।

कहते हैं नफरत आग लगा देती है और प्रेम की एक बूंद बड़ी से बड़ी आग बुझा देती है। जिनके दिलों में नफरत होती है उनकी जुबां सिर्फ आग ही उगलती है और ये आग सिर्फ धुआं ही छोड़ती है। धुआं दर्द बयां करता है और राख कहानियां छोड़ जाती है।

हमारा प्यार जैसे जंगल की आग था, और कहते हैं अगर इश्क की आग दिल में लगी हो तो सुकून कभी मिलता नहीं है। अब आग को अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता। चूल्हे में लगी आग खाना पकाती है और पेट की आग को शांत करती है, लेकिन यही आग जब रिश्तों में लग जाए तो घर जलकर खाक हो जाते हैं। यानी आग का अपना एक गुण है, आग ठंड में राहत देती है और यही आग गर्मी में झुलसा देती है। ये सीने की आग है साहेब, यहां पानी का क्या काम। ये सीने की आग है साहेब, यहां पानी का क्या काम। किया हमने महज इश्क ही तो था कमबख्त, किस्मत ही निकली बेईमान।

इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आग, जी हाँ, आग कुछ नहीं बोलती। वो अपने को समेटकर चुपचाप माचिस की डिबिया में पड़ी होती है, पर कभी कभी ना राख उड़ती है ना उठता है धुआं। कुछ रिश्ते बस चुपचाप जला करते हैं। हालांकि खुद को अगर हमने परिश्रम की भट्टी में झोंक दिया तो हीरा बनकर बाहर निकलते हैं, यानी ये आग आपको जलाकर खाक भी कर सकती है और यही आग कांच को हीरा भी बना देती है।

ये आग की बात है, तूने ये बात सुनाई है, ये जिंदगी की वही सिगरेट है जो तूने कभी सुलगाई थी। कहते हैं आज केवल आग में ही नहीं पाई जाती, कभी एकांत में स्वयं के भीतर के तापमान को जांच कर देखना। भीतर का मौसम भभक रहा होता है कई बार, और मन उस आंच में सिकता रहता है, सिकता रहता है धीरे धीरे धीरे धीरे। इन दिनों मौसम जैसे धुआं धुआं सा है, हर तरफ एक आग और फुगा सा है।

आग को साधते हुए कई बार आग से खेल जाते हैं हम, और यही है वो आग, सना है जिसका ताप जीवन की खुशबू से। हाँ, लक्षित नहीं होता है जीवन के ठंडे और धूसर राख भरे अवसाद के नीचे। हमारे भीतर भी एक आग बची होती है, और इसी आग में प्यार और नफरत सिकते रहते हैं। इसी आग में जलते हैं सपने, ख्वाबों का जंगल भी इन्हीं लपटों से झुलस जाता है, और जंगल में फैली ये आग जल्दी बुझती भी तो नहीं।

0: तो क्या है ये दुनिया, अगर मिल भी जाए तो क्या है।
1: और अब छाया गीत समाप्त करने की मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
2: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
3: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं विमलेश, उमंग कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं।
0: और मैं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, मित्रता एवं रिश्तेदारी परस्पर सम्मान पर टिकी होती है।
0: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटियां कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से।

0: उम्र रिश्तेदारी परस्पर सम्मान पर टिकी होती है।
1: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
0: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवनी प्रियांशी रियांशी ओजस अनाया गुरदीप और बेबी किरत अवाना ने लिखा है।
1: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। कार्यक्रम उमंग के तहत 3 जून 2026 को प्रस्तुत गोबी शीत मरुस्थल की भौगोलिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक जानकारी हमारे लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक रही। साथ ही प्रेरणादायी कहानी दोस्त की पहचान ने सच्ची मित्रता के गुणों को समझने की महत्वपूर्ण सीख हमें दी। ऐसे रोचक शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कार्यक्रमों की भविष्य में भी आपसे अपेक्षा है। आपके उत्कृष्ट प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद।
0: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी लिखते हैं।
1: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। समावेशी शिक्षा पर प्रोफेसर भारती जी द्वारा दी गई ज्ञानवर्धक जानकारी महत्वपूर्ण थी। साथ ही गुजरे सप्ताह शीत मरुस्थल पर बेहद शानदार जानकारी दी गई। ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी को हमारे बच्चों ने छुट्टियों में बड़े ध्यान और लगन से सुना और वे इस पर अमल भी कर रहे हैं, इसलिए हम उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम का हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं।
0: हम भी आपका हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं संदेश भेजने के लिए।
1: अगला संदेश हमें मिला है नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा ऋषभ कनक और भावना वर्मा जी का।
0: ग्राम बंगला माटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे।
1: आप सभी श्रोताओं को हमारी ओर से आभार खूबसूरत संदेशों को भेजने के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं कल हमने चर्चा की थी बहुमूल्य खनिज सोने के बारे में
0: और अब चलते हैं आगे और चर्चा करते हैं एक और खनिज के बारे में। तो अजीत जी जरा उस खनिज का नाम तो बताइए।
1: जी विमलेश जी वो तो बताऊंगा लेकिन इस बार कुछ हिंट के साथ।
0: तो दीजिए हिंट।
1: हिंट है ये खनिज सोने से भी अधिक मूल्यवान माना जाता है। इसकी चमक अत्यंत आकर्षक है
0: जी।
1: इसे तराशा जाता है और हाँ ये कांच काटने के काम भी आता है।
0: जी अजीत जी मैं समझ गई, ये कहीं हीरा तो नहीं?
1: बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ श्रोताओं ये हीरा है। ये खनिज पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी प्राकृतिक पदार्थ से अधिक कठोर है। हीरे के बारे में तो सभी जानते हैं लेकिन प्रश्न ये है कि कितने लोग ये जानते हैं कि ये बनता कैसे है। तो आइए देते हैं इस रोचक चर्चा को विस्तार।
0: श्रोताओं हीरे का निर्माण होता है पृथ्वी की गहराइयों में। अगर आप पूछें कि कितनी गहराइयों में तो हम आपको बता दें कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर नीचे पृथ्वी की परत मेंटल में बनता है।
1: आपको हम ये भी बता दें कि कोयला और हीरा दोनों ही मुख्य रूप से कार्बन से बने होते हैं
0: जी।
1: लेकिन हीरा बनने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है।
0: श्रोताओं जैसा कि अभी हमने सुना था कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर से भी अधिक गहराई में बनता है, आइए जानते हैं क्या होता है उन गहराइयों में।
1: श्रोताओं पृथ्वी की गहराइयों में लगभग तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है और वहाँ का दबाव वायुमंडलीय दबाव से हजारों गुना अधिक होता है।
0: इन अत्यधिक दबाव वाली परिस्थितियों में कार्बन के परमाणु एक विशेष क्रिस्टलीय संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं जिसके कारण हीरा बनता है। इस प्रक्रिया में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। लेकिन अजीत जी श्रोताओं की ओर से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अभी हमने जाना कि हीरे पृथ्वी की सतह से 150 से भी अधिक गहराई में बनते हैं, इतनी गहराई तक उत्खनन तो असंभव है, तो फिर हीरे तक हम कैसे पहुँचे?
1: सचमुच ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है विमलेश जी। यदि हीरे इतनी गहराई में ही बने रहते तो हम उन्हें कभी देख ही नहीं पाते। होता ये है कि ज्वालामुखीय विस्फोटों के कारण मैग्मा यानी धरती के अंदर की पिघली चट्टानें तीव्र गति से ऊपर उठती हैं और वे साथ साथ हीरों को भी पृथ्वी की सतह के बहुत करीब ले आती हैं
0: और फिर हम उन्हें उत्खनन द्वारा निकाल लेते हैं। श्रोताओं वैज्ञानिक दृष्टि से हीरा शुद्ध कार्बन है। आपको बता दें कि हीरा और आपके घर में पाई जाने वाली पेंसिल की नोक ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन से बने हैं। अंतर केवल परमाणुओं की व्यवस्था का है।
1: पता है श्रोताओं हीरे को यदि अत्यधिक ताप पर ऑक्सीजन में जलाया जाए तो अंत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वो बदल सकता है। श्रोताओं एक बात और आपको बता दें, आजकल आभूषणों और उद्योग में इस्तेमाल होने वाले हीरे प्रयोगशालाओं में ही बनाए जाते हैं।
0: लेकिन एक खास बात यह है कि कृत्रिम रूप में हीरों को बनाने के लिए छोटा प्राकृतिक हीरा इस्तेमाल किया जाता है जिसे डायमंड सीड कहा जाता है। इस सीड के द्वारा प्राकृतिक प्रक्रिया की नकल करके हीरा बनाया जाता है। एक बात जरूर है कि प्राकृतिक रूप से हीरा बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं लेकिन कृत्रिम रूप में इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है।
1: लेकिन इसे बनाने की विधा या फॉर्मूला हमें प्रकृति से ही मिलता है, तो हम याद रख सकते हैं कि पृथ्वी की गहराइयों में अत्यधिक ताप और दबाव के कारण जो कार्बन के क्रिस्टल बनते हैं उन्हें हम हीरा

0: कहते हैं।
1: तो श्रोताओ, आप कह सकते हैं कि आपके हाथ में चमकता हुआ हीरा वास्तव में पृथ्वी की गहराइयों में लाखों करोड़ों वर्ष पहले बना हुआ एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार है।
0: जी, तो श्रोताओ ये थी जानकारी हीरे की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, डायमंड सीड किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: डायमंड सीड किसे कहते हैं?
0: आप हमारे प्रश्नों के उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है जिसके द्वारा पशु पक्षियों के प्रति दया और प्रेम भाव रखने का संदेश दिया गया है।
2: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो उस पेड़ पर कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है, अति सुंदर। और तनिक उधर देखो, उद्यान के बाहर कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
3: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे जो शाक्य गणराज के राजा थे जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
2: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
4: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं।
2: ओह, देखो एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है। हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
4: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया, भला इसका क्या दोष है?
5: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
4: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है? प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो। मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राजवैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
2: हाँ मित्र, अभी जाता हूं।
3: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे। वे इधर उधर देख रहे थे मानो कुछ खोज रहे हों।
6: कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था, वो इधर ही कहीं आया है। तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है। ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
4: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी

0: प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
1: तो हंस तुम्हारे पास है, लाओ उसे मुझे दे दो।
0: क्यों दे दो?
1: ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है भाई। इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
0: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
1: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
2: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
3: महाराज की जय हो,
4: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
2: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
5: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
6: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
5: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
0: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
5: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
0: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
6: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
0: जी, पहले मारा था, तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
5: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
7: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
5: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे आज्ञा है?
7: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
2: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
8: ये हंस कैसे बताएगा?
9: गली में बैठ कर सिद्धार्थ को मिलना चाहिए।
8: इसके पास
9: नहीं
8: जा रहा है।
9: देवदत्त
7: कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
1: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
2: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
7: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
0: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
2: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी। हंस ने अपने पंख फैलाए

0: और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
1: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूँ कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
2: महाराज की जय हो।
3: महाराज की जय हो। महाराज की जय हो।
4: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय।
5: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलारू मैं चल चल।

0: तो सुनी आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है हमारा आदित्य।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें भारत के सौर मिशन की विस्तार से जानकारी दी गई है।
3: 5, 4, 3, 2

0: 1 0.
1: दिन था 2 सितंबर 2023, स्थान इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, समय भारतीय समयानुसार ठीक 11:50, जब अंतरिक्ष यान आदित्य L1 की गगनभेदी गर्जना से आकाश गूंज उठा। लाखों करोड़ों लोगों ने सारी दुनिया में इस दृश्य को टेलीविजन पर देखा।
2: श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 के पहले सूर्य मिशन को लॉन्च कर दिया गया।
1: रेडियो पर समाचार प्रसारित हुए और दूसरे दिन के सभी अखबारों ने इसे अपने मुख पृष्ठ पर प्रमुखता से छापा। शीर्षक था, आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत विश्व की चौथी महाशक्ति बना। आज कक्षा में बड़े उत्साह का वातावरण है, क्योंकि विद्यालय के विशेष निमंत्रण पर आज जाने माने स्पेस जर्नलिस्ट श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं, जो सौर्य यान आदित्य के बारे में बातचीत करेंगे।
3: क्या तुम्हें पता है कि श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं?
4: क्या वो चंद्रयान के बारे में बात करेंगे?
3: मुझे लगता है वो आदित्य यान के बारे में बात करेंगे।
4: चलो देखते हैं वो किस यान के बारे में बात करेंगे।
5: हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब?
6: हम अच्छे हैं।
5: तो बच्चों, शुरू करते हैं बातचीत। आप तैयार हैं?
6: जी हम तैयार हैं।
5: तो आज हम बातचीत करने जा रहे हैं भारत के सौर्य यान आदित्य L1 के बारे में।
7: बच्चों शांत हो जाओ, आप बारी बारी सर से सवाल पूछ सकते हैं।
4: सर, इसका नाम आदित्य क्यों पड़ा?
5: बहुत अच्छा सवाल। देखो, आदित्य एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है सूरज यानी सूर्य। अच्छा चलो बताओ, सूर्य के लिए और कौन कौन से शब्द हैं?
3: सर, टीचर ने बताया था कि सूर्य को रवि और भास्कर भी कहते हैं।
5: बहुत अच्छे। चलो अब मेरी ओर से एक खास सवाल। अच्छा तो अब ये बताओ कि क्या तुमने किसी वैज्ञानिक का नाम सुना है जिनके नाम में भास्कर शब्द जुड़ा है?
4: जी सर, उनका नाम है भास्कराचार्य।
5: अरे वाह, तुम्हारा क्या नाम है बेटी?
4: जी, मेरा नाम श्रुति है।
5: शाबाश श्रुति। तुम्हें बता दूं कि भास्कराचार्य प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। हाँ, तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। क्या आप जानते हैं कि सूर्य क्या है? मेरा मतलब है कि सूर्य ग्रह है या तारा है?
8: सूर्य ग्रह है या तारा?
5: अरे सोचो सोचो, जो जवाब देगा या प्रश्न पूछेगा वो सबसे पहले अपना नाम बताएगा।
4: सर, मेरा नाम सुमित है, सूर्य एक ग्रह है।
5: सुमित, तुमसे जरा सी भूल हो गई, सूर्य असल में एक तारा है।
6: अच्छा सर।
3: सर, मेरा नाम सोहम है, मेरा प्रश्न यह है कि सूर्य इतनी गर्मी कैसे देता है? क्या वहाँ आग जलती है?
4: और अगर जलती है तो वहाँ आग किसने लगाई होगी?
5: बच्चों, दरअसल सूर्य में गर्मी आग जलने से नहीं होती। सूर्य ऐसी गैसों से बना है जो बहुत गर्म होती हैं, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन।
3: हीलियम और हाइड्रोजन सर?
5: हाँ, सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैसों का एक विशाल गोला है।
3: विशाल गैसों का गोला? अब समझ आया कि सूर्य इतना गर्म कैसे होता है।
5: शाबाश, समझ गए ना?
6: जी सर।
4: सर, जिस तरह से चंद्रमा पर जाया जा सकता है, क्या उसी प्रकार सूर्य पर भी जाया जा सकता है?
5: बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखो, सूर्य का तापमान इतना अधिक है कि वहाँ चंद्रमा की तरह नहीं जाया जा सकता। हाँ, एक निश्चित दूरी से सूर्य का अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए तो हमारे देश ने सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए आदित्य L1

0: को अंतरिक्ष में भेजा?
1: सर, आदित्य अंतरिक्ष यान के बारे में हमें विस्तार से बताइए ना।
0: जरूर बच्चों, देखो आदित्य L1 चंद्रयान की तरह ही एक यान है जिसका कार्य है सूर्य के बारे में जानकारी जुटाना।
2: जी जी सर।
0: जैसे ये किस समय कैसा होता है, इसका तापमान स्थिर रहता है या घटता बढ़ता है, और इसका क्या प्रभाव हमारी पृथ्वी या सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर पड़ता है।
3: सर, हमने आपके लेख में ही पढ़ा है कि आदित्य यान ने सूर्य के कई फोटोज पृथ्वी पर भेजे हैं।
0: हाँ सही कहा, आदित्य यान का मुख्य उद्देश्य सूर्य की बाहरी परतों का अध्ययन करना है। इन तस्वीरों से हमें तूफानों और अंतरिक्ष के मौसम की बेहतर जानकारी मिलेगी, जिससे भविष्य में संचार और उपग्रह सेवाओं को सुरक्षित रखने में हमें बड़ी मदद मिलेगी।
1: सर, मेरा नाम दिवाकर है।
0: भाई वाह, दिवाकर का मतलब भी तो सूर्य ही होता है ना।
2: जी सर।
0: जी दिवाकर, आपका प्रश्न क्या है?
1: सर, मेरा प्रश्न है, यदि सूर्य इतना गर्म है तो आदित्य यान उसके पास जाकर तस्वीरें कैसे भेज रहा है? क्या वो जल नहीं जाएगा?
4: अरे भला जलेगा कैसे, आदित्य यान सूर्य से एक सुरक्षित दूरी पर है, करोड़ों किलोमीटर दूर, समझे?
3: जी सर। सर, आदित्य यान का पूरा नाम आदित्य L1 क्यों है? L1 का क्या मतलब है?
0: देखो बेटी, L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। ये बिंदु अंतरिक्ष का एक विशिष्ट स्थान होता है जो सूर्य और पृथ्वी के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा पर होता है। इस स्थान से सूर्य को लगातार बिना किसी रुकावट के देखा जा सकता है, और ये देखा गया है कि अंतरिक्ष यान लगभग स्थिर रहता है। लैग्रेंज बिंदु 1 से 5 तक होते हैं।
1: सर, एक बार जब सूर्य ग्रहण लगा था तो हमें विशेष प्रकार की किट दी गई थी और कहा गया था कि इसी किट के द्वारा सूर्य को देखें। ऐसा क्यों?
0: बेटा सोहम, सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय ही नहीं, सूर्य को कभी भी प्रत्यक्ष आंखों से देखना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन आदित्य यान ने जो तस्वीरें हमें भेजी हैं, उन्हें देखकर हमें पता चलता है कि सचमुच कितना अद्भुत है हमारा सूर्य।
3: सर, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी बड़े होकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनूंगी, चंद्रमा और दूर दूर के तारों के बारे में पढ़ूंगी और अंतरिक्ष यान भी भेजूंगी।
0: शाबाश बच्चों, शाबाश। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, और देश का नाम हमेशा रोशन करो।
5: आप सुन रहे थे श्रोताओ NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। FM 101.2 MHz पर हम आकाशवाणी खंडवा से बोल रहे हैं, और अब आपके लिए प्रस्तुत करेंगे युववाणी कार्यक्रम।

भीगे मौसम की भीगी सी खुशबू दिल में जगाती है पुरानी आरजू। मौसम का ये सुहानापन तो बस एक बहाना है, हमें तो हर शाम आपसे मिलने जो आना है। हेलो दोस्तों, अ वेरी गुड इवनिंग। स्वागत आप सभी का इस सुहानी सी शाम में, और स्वीकार कीजिए आपकी रेडियो दोस्त सिमरन गार्गव का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज है गुरुवार और क्रम है इंद्रधनुष। पर दोस्तों इस शाम मौसम और रंगों में आप खो जाइए। इससे पहले आपसे पूछ लेते हैं हमारे आज के सामान्य ज्ञान के दो प्रश्न, जिसमें हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत का ऐसा राज्य कौन सा है जहां सबसे पहले सूर्योदय होता है। और हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, भारतीय सेना ने हाल ही में किस स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड को लॉन्च किया। दोस्तों इन प्रश्नों के उत्तर हम आपको बताएंगे।

0: कार्यक्रम के अंत में। तब तक आप सुनिए युववाणी। जीत की खुशी है या हार का वो मंजर, हर पल खेल का वो पन्नों पर सटीक उतरना, निष्पक्षता और जज्बे की अनोखी मिसाल है। खेल पत्रकार ही तो खेलों की असली जान है। विश्व खेल पत्रकार दिवस, दोस्तों जिसे वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे कहा जाता है, हर साल 2 जुलाई को मनाया जाने वाला यह दिन खास है। यह विशेष दिन दुनिया भर के खेल पत्रकारों के योगदान, उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण को सम्मानित करने के लिए समर्पित है, जो हमें खेल जगत की कहानियों और रोमांच से रूबरू करवाते हैं। दोस्तों, इस दिवस की स्थापना वर्ष 1994 में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन AIPS द्वारा की गई थी। साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि यदि यह पत्रकार ना होते तो हमें हर खबर की जानकारी कौन पहुंचाता? दोस्तों, खेल पत्रकार अपने सटीक विश्लेषण और ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से खेलों को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, यह दिन मीडिया कर्मियों को और अधिक पूर्ण समर्पण के साथ काम करने और करते रहने की प्रेरणा देता है, और आज के दिन का मुख्य उद्देश्य खेल पत्रकारिता में निष्पक्षता, पारदर्शिता, उच्च नैतिक मानकों को प्रोत्साहित करना है। ये दोस्तों आपको सुनवाते हैं अरुण कनारे जी से की गई बातचीत, जो कि MBPSC के बच्चों को शिक्षा देते हैं।
1: आकाशवाणी के सभी सम्मानित श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। मैं अरुण कनारे विगत 8 वर्षों से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी MBPSC परीक्षा के अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन और शिक्षण से जुड़ा हूं। आज मुझे MBPSC के तैयारी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर आपसे अपने विचार साझा करने का अवसर मिला, इसके लिए आकाशवाणी खंडवा का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी अरुण जी, हमारे आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जैसा कि आपने भी बताया कि आप बच्चों को MBPSC की तैयारी करवाते हैं, जिसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कहा जाता है
1: जी,
0: तो इसके अंतर्गत आप हमें बताइए कि कौन कौन सी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है और आप किन किन परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं?
1: जी, दरअसल MBPSC एक संवैधानिक संस्थान है जो अलग अलग फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है। मेडिकल फील्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए अलग रहता है, इंजीनियरिंग फील्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए अलग रहता है। मैं जिस एग्जाम्स की तैयारी करवाता हूँ वो मुख्य रूप से राज्य सेवा परीक्षा है
0: जी।
1: राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी करवाता हूँ।
0: तो इसके अंतर्गत कोई एग्जाम्स होती है?
1: जी, ये राज्य सेवा परीक्षा ही एक एग्जाम है अपने आप में, जिसके 3 चरण होते हैं। पहले प्रारंभिक परीक्षा होती है, उसके बाद में जब आप प्रारंभिक परीक्षा को क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपको मुख्य परीक्षा देने का मौका मिलता है, देन आप इंटरव्यू दे सकते हैं अगर आप पास हो जाते हैं परीक्षा में भी। तो 3 चरण होते हैं इसके, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और फिर साक्षात्कार।
0: अरुण जी, जैसा कि आप भी जानते होंगे कि एक व्यक्ति को सफल करने में एक शिक्षक का बहुत बड़ा हाथ रहता है, तो आप कैसे बच्चों को इस परीक्षा की तैयारी करवाते हैं?
1: जी, चूंकि मध्य प्रदेश लोक सेवा द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी शासकीय नौकरियों में इसके माध्यम से चयन किया जाता है, तो इस परीक्षा में बहुत धैर्य की जरूरत होती है, पेशेंस के साथ में स्टूडेंट्स को मेहनत करनी पड़ती है। तो हमारे लिए भी चुनौती का काम तो है ही, लेकिन हम पहले जब हमारे पास में स्टूडेंट्स आते हैं तो हम उनके लेवल को देखते हैं कि किस कैसा लेवल है उनका, उस हिसाब से हम उसको उनके लेवल के उनके स्तर पर जाकर उनको समझाने का प्रयास करते हैं। कभी कभी बच्चे डिमोटिवेट होते हैं तो उनको मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं लगातार। इस प्रकार से हम हर बच्चे को उनके स्तर से जाकर समझने की कोशिश करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं।
0: अरुण जी, ये जो एग्जाम होती है इसमें कुछ आयु सीमा होती है?
1: जी, इसमें न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होती है और अधिकतम आप 40 से 42 वर्ष तक ये परीक्षा दे सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा जो MBPSC की एग्जाम्स है, तो इसके जो विद्यार्थी है वो 12वीं के बाद में

0: प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं।
1: जी
0: चूंकि इसका सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए 12वीं के बाद में अगर कोई स्टूडेंट तैयारी स्टार्ट करता है तो अपने कॉलेज के टाइम में, जो 3 साल का उनको कॉलेज करने का टाइम मिला है, तो आसानी से फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 2 साल में अपनी एग्जाम तैयारी वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और जैसे ही फिर उनकी एज 21 की होती है और उनका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद में वो एग्जाम्स अपने दे सकते हैं। तो ये जो टाइम रहता है फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक का, तो उसमें वो टेंशन फ्री होकर पूरा एग्जाम पर फोकस होकर तैयारी कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों को मेरी यही सलाह रहेगी कि अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, सिविल सर्विसेज में आना चाह रहे हैं, तो आप 12वीं के बाद में तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं।
1: जी अरुण जी, मतलब इस एग्जाम के लिए 12वीं बेस पर भी आप तैयारी कर सकते हैं या फिर ग्रेजुएशन होना कंपलसरी होता है?
0: एग्जाम्स देने के लिए ग्रेजुएशन और 21 की एज कंपलसरी है,
1: जी
0: लेकिन चूंकि इसकी तैयारी एक लंबी प्रक्रिया है, तो उसके
1: जी
0: लिए आपको प्रिपरेशन पहले से ही करना पड़ेगा। क्योंकि अभी बच्चे, जैसे कि हम देख रहे हैं कि नीट, जेई, इनकी प्रिपरेशन के लिए 10th से ही प्रिपरेशन करने लग गए हैं,
1: जी
0: और इसमें भी 10th से ही बच्चे आने लग गए हैं। लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन 12वीं के बाद अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो एक बहुत अच्छा समय है आपके पास में तैयारी करने का।
1: अरुण जी, अंत में आप हमारे युवा साथियों से क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों से यही कहना चाहूंगा कि सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, और यदि आपका लक्ष्य एमपीपीएससी है तो सबसे पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें, सिलेबस को समझें और प्रतिदिन अनुशासित होकर पढ़ाई करें। दूसरों से तुलना करने के बजाय स्वयं को हर दिन बेहतर बनाने का प्रयास करें। असफलता आए तो उसे अंत नहीं बल्कि सीखने का अवसर समझें। याद रखिए, आज की छोटी छोटी निरंतर कोशिशें ही कल बड़ी सफलता का आधार बनती है। यदि आपका संकल्प मजबूत है तो सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी।
1: जी अरुण जी, आज आप हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और आपने हमारे युवा साथियों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे MPPSC एग्जाम्स के बारे में अरुण कनारे जी से की गई बातचीत।
1: हाँ।

न जाने कब आसमान से कोई मेहमान उतर आए, किताबों के एलियंस सच में हमें डराने आ जाएं। आज के दिन जरा संभल कर देखना आसमान की ओर, पता चला कोई उड़न तश्तरी हमें ही उठा ले जाए। हा हा हा, दोस्तों आप डरिए मत, ये सिर्फ एक शायरी है। और आज के दिन इस शायरी का मतलब कि आज विश्व यूएफओ दिवस है, वर्ल्ड यूएफओ डे। दोस्तों हर साल 2 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को ब्रह्मांड में जीवन की संभावनाओं पर विचार करने और अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं यूएफओ के रहस्यों के बारे में जागरूक करना है। दोस्तों वैसे तो यह दिवस 2 अलग अलग तिथियों 24 जून और 2 जुलाई को मनाया जाता है, जो यूएफओ इतिहास की 2 सबसे प्रसिद्ध घटनाओं से जुड़ी है। 2 जुलाई 1947 में हुई प्रसिद्ध रॉसवेल घटना की याद दिलाता है और 24 जून 1947 को अमेरिकी पायलट ने आसमान में एक बड़ी वस्तु देखी थी। दोस्तों इस दिन की शुरुआत 2001 में हुई थी। WUFO DO के अनुसार आज के दिन का मुख्य उद्देश्य सरकार से यूएफओ और एलियंस से जुड़े गुप्त दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग करना और ब्रह्मांड में मानव के अकेले न होने के विचार को प्रोत्साहित करना है। और दोस्तों हम आपको सुनवाते हैं ये गीत।

मिट्टी की खुशबू, चाय की प्याली और तुम्हारी याद, बारिश के मौसम की यही सबसे प्यारी है बात। दोस्तों, बारिश पानी की वह बूंदे जो बादल से होकर पृथ्वी पर गिरती है। हाँ, बारिश कुछ खास होती है, जैसे चाय पकौड़ों और कुछ अपनों की याद संजोती है। दोस्तों, बारिश का मौसम अपने साथ ताजगी, सुकून और एक खास एहसास लेकर आता है। यह न सिर्फ प्रकृति को हरा भरा बनाता है, बल्कि मन को शांत करने, पुरानी यादों को ताज़ा करने का बेहतरीन मौका भी होता है। दोस्तों, हमारा बचपन कितना खास था बारिश की उन गलियों में। आज भी बचपन छुपा बैठा है, जहाँ कागज़ नावें सपनों से भरी होती थी और भीग जाने का डर तो नहीं था, पर उन गलियों में खुशियाँ बेशुमार होती थी। ठंडी हवा, बादलों की गरज और बारिश की रिमझिम बूंदों की आवाज़ एक शांत और आरामदायक माहौल बनाती है। दोस्तों, बारिश की पहली बूंदों के बाद सूखी मिट्टी से आने वाली सौंधी सी वो महक मन को तरोताज़ा कर देती है। दोस्तों, खिड़की पर बैठकर वो बारिश की बूंदों को आसमान से गिरते देखना, वो पत्तों की सरसराहट, वो ठंडी हवा, मानो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुश होकर हमसे कुछ तो कह रही हो।

दोस्तों, वन महोत्सव भारत में 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाने वाला एक बहुत ही अच्छा वार्षिक वृक्षारोपण उत्सव है। साथियों, यह कार्यक्रम सप्ताह भर चलता है और इसकी शुरुआत 1950 में हुई थी। दोस्तों, हमें एक पौधा ज़रूर लगाना चाहिए ताकि वह बड़ा होकर हमें हरियाली, ठंडी छांव और अन्य चीज़ें दे सके। वृक्ष हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, वे हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं कि हमने वृक्ष लगाया और उसे छोड़ दिया, जिस तरह हम हमारे घर में रहने वाले सदस्य की देखभाल करते हैं, ठीक उसी तरह हमें वृक्ष लगाकर उसे ज़रूरी पोषण जैसे पानी, मिट्टी, खाद समय समय पर देना चाहिए और जितना हो सके संकल्प लें कि मैं वर्ष में एक वृक्ष ज़रूर लगाऊंगा। दोस्तों, वन महोत्सव मनाने का उद्देश्य नागरिकों, विद्यालयों और संगठनों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करना है, वनों की कटाई को रोकना और पर्यावरण के प्रति जागरूक होना है। दोस्तों, यह अभियान खास मौसम की शुरुआत के साथ मनाया जाता है ताकि जो पौधा हम लगा रहे हैं वो अगले वर्ष हमें एक पेड़ के रूप में मिल सके। साथियों, वादा करते हैं चलिए कि आप और हम एक वृक्ष ज़रूर लगाएंगे और प्रकृति को

भरा बनाएंगे। आइए प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाहन करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। अंत में आपको बता देते हैं हमारे आज के सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के उत्तर, जिसमें हमारा आज का पहला प्रश्न था, भारत का ऐसा राज्य कौन सा है जहां सबसे पहले सूर्योदय होता है? इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। और हमारा आज का दूसरा प्रश्न था, भारतीय सेना ने हाल ही में किस स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड को लॉन्च किया है? इसका उत्तर है सक्षम। दोस्तों, ये तो थे हमारे आज के सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के उत्तर। इसी के साथ दे अनुमति कार्यक्रम समाप्त करने की, आपकी दोस्त सिमरन गार्गव को नमस्कार।

श्रोताओ, आप सुन रहे थे युववाणी कार्यक्रम FM 101.2 MHz पर। ये आकाशवाणी खंडवा है। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। श्रोताओ, विद्याधर मुले आप सबको नमस्कार करता है और पेश करता है आज के प्रोग्राम का ये पहला गाना मोहित चौहान की आवाज में।

आप सुन रहे हैं गुरप्रीत सैनी का गीत मोहित चौहान की आवाज में। रोचक कोहली ने इसे संगीतबद्ध किया है। फिल्म आप जैसा कोई।

आप जैसा कोई। इस फिल्म के गीत के बाद आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म गुजारिश का एक गाना जो कुणाल गांजावाला की आवाज में। विभू पुरी का ये गीत है, संगीतबद्ध किया संजय लीला भंसाली ने। आइए सुने श्रोताओं।

श्रोताओं, फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आके अब आपको सुनवाए श्रेया घोषाल की आवाज। मनोज मुंतशिर का गाना है, रोचक कोहली का संगीत, फिल्म नाम शबाना।

0: बधाई हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है।
1: सच?
0: हाँ हाँ सच। लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके कंधों पर। आपको माँ और उसके होने वाले बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा और जल्दी से जल्दी HIV की जांच भी करवाना, क्योंकि HIV का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
1: डॉक्टर, अगर HIV पॉजिटिव आए
0: तो बिना कोई देरी किए ART केंद्र से ART ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
1: डॉक्टर, हम आज ही जाकर HIV की जांच कराते हैं।
0: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
2: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

श्रेया घोषाल, मीनल जैन और अन्वेषा की आवाज में हम इरशाद कामिल का गाना सुन रहे हैं। ए आर रहमान का संगीत है, फिल्म रांझणा।

और अब बनारस के बाद हरिद्वार और ऋषिकेश, इन दो जगह पर शूट हुई फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं, दम लगा के हईशा। इस फिल्म का गाना कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में है। वरुण ग्रोवर का गाना संगीतबद्ध किया अनु मलिक ने।

और अब श्रोताओं हम पहुंच गए हैं कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में, एक गीत आप तक और पहुंचा सकते हैं, तो चलिए जिस्म 2 इस फिल्म का गाना आपको सुन पाते हैं आवाज के की।

0: यह आकाशवाणी खंडवा है। शाम के 7 बजे हैं, आइए दिल्ली से सुनते हैं हिंदी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आज नई दिल्ली में वार्ता के दौरान कई क्षेत्रों में आपसी संबंध मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों नेताओं की बातचीत से ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक जगत इस समय आपूर्ति श्रृंखला अड़चनों, व्यापार अनिश्चितता और वैश्विक मांग में गिरावट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
2: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और

0: ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की रिफाइनिंग क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रति वर्ष तक बढ़ाया जाएगा। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर चंदा घोटाला मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण के सचिव ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण नोटिस जारी किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खमेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा, वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 101.2 MHz पर श्रोताओं, हम आकाशवाणी खंडवा से बोल रहे हैं।
3: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
4: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा

0: बने रहिए हमारे हमसफर और सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
1: FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रोग्राम्स का खजाना।
2: तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला।
1: तो सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: मीठी मीठी निमाड़ की सुरीली धड़कन,
2: जहाँ होती है मीठी मीठी बातें और सुनाए जाते हैं प्यारे प्यारे गाने।
3: इश्क़ दी चाशनी, ओ मीठी मीठी चाशनी।
1: तो आप भी इसकी मिठास में खो जाएं, सुनते रहें निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: FM 101.2 MHz पर ये आकाशवाणी खंडवा है। शाम के 7:10 होने को हैं। आपको सुनवाते हैं श्रोताओं भोपाल केंद्र से प्रादेशिक समाचार।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री ताकाइची की शिखर वार्ता। आर्थिक, रक्षा और AI क्षेत्र में हुए कई समझौते। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में अल्प वर्षा की तैयारियों के साथ नर्मदा समग्र

0: की समीक्षा की। मनरेगा की जगह लेने वाली वीबी जीरामजी योजना का प्रदेशव्यापी शुभारंभ। अब मिलेगी 125 दिन रोजगार की गारंटी। और दतिया विधानसभा उपचुनाव का ऐलान, 30 जुलाई को होगा मतदान और 3 अगस्त को मतगणना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के बीच नई दिल्ली में वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता हुई। भारत और जापान ने आर्थिक, ऊर्जा, सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल, रक्षा और एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों ने पहली सह विकास परियोजना पर भी समझौता किया। ऊर्जा सुरक्षा के तहत भारत जापान जैव गैस पहल से देश में 1000 जैव गैस और आर्थिक जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। हमने हरियाणा के खरखौदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती है और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मंत्रालय में अल्प वर्षा की संभावना को देखते हुए विभिन्न विभागों की तैयारियों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मसूर और उड़द जैसी कम पानी की फसलों के प्रति व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए तथा अलनीनो के प्रभाव को देखते हुए एडवांस प्लानिंग की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने अगले 2 वर्षों की कार्य योजना के तहत जलाभिषेक 2.0 के माध्यम से तालाबों और बावड़ियों के पुनर्जीवन के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने नर्मदा समग्र विभिन्न मिशन की भी समीक्षा की। इस मिशन का उद्देश्य नर्मदा नदी का संरक्षण और जल संवर्धन करना है। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले से विकसित भारत जीरामजी योजना का राष्ट्रीय शुभारंभ किया। श्री चौहान ने कहा कि इस योजना के तहत मनरेगा के 100 दिनों की तुलना में अब 125 दिन रोजगार की गारंटी दी जाएगी।
2: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जीरामजी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। केंद्र ने जो अपना शेयर दिया है, पैसा दिया है, वो है 95,600 करोड़ रुपया और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया। इतनी बड़ी धनराशि मजदूरों को काम और गांव के विकास के लिए दी जाएगी।
0: वहीं प्रदेश में भी विकसित भारत जीरामजी योजना आज से मनरेगा का स्थान ले चुकी है। सभी जिलों में आज जन सम्मेलन सह लॉन्च कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा का उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भोपाल स्थित निवास कार्यालय में अभिनंदन किया। दोनों नेताओं के बीच स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में नवाचारों को लेकर चर्चा हुई। डॉक्टर साहा 28वें AOMSI मिड टर्म कन्वेंशन में शामिल होने के लिए भोपाल आए। ये राष्ट्रीय सम्मेलन 2-4 जुलाई तक पीपुल्स यूनिवर्सिटी परिसर में क्रिएटिंग अ होलसम सर्जन थीम पर आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश में महिला सशक्तिकरण और पोषण प्रबंधन को मजबूत करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के कुल 2,548 पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें 781 पद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और 1,767 पद सहायिकाओं के लिए हैं। स्थानीय पात्रताधारी महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन MP ऑनलाइन के जरिए 13 जुलाई तक स्वीकार किए जाएंगे। दोनों पदों के लिए 12वीं उत्तीर्ण और 18 से 35 वर्ष आयु सीमा निर्धारित की गई है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। चुनाव आयोग ने दतिया विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई और मतदान 30 जुलाई को होगा, जबकि 3 अगस्त को मतगणना होगी। दतिया विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। ये उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को सजा मिलने के बाद उनकी सदस्यता समाप्त होने की वजह से हो रहा है। प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास विभाग के ई नगर पालिका पोर्टल को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार की साइबर सुरक्षा श्रेणी में रजत पुरस्कार मिला है। जयपुर में आयोजित समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह सम्मान आयुक्त संकेत भोंडवे को प्रदान किया। आयुक्त श्री भोंडवे ने कहा कि विभाग ने आधुनिक तकनीकों और सुदृढ़ साइबर सुरक्षा उपायों से डिजिटल नागरिक सेवाओं को प्राथमिकता दी है। प्रदेश के

सहकारिता खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने आज भोपाल में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय सहकारी प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। ये प्रदर्शनी सहकारिता मंत्रालय के 5 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित सहकारी सप्ताह के तहत लगाई गई है। उन्होंने हस्तशिल्प कारीगरों और महिला स्वसहायता समूहों को सिलाई मशीन सहित टूल किट भी वितरित किए। ये प्रदर्शनी 4 जुलाई तक आम नागरिकों के लिए खुली रहेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री और धार सांसद सावित्री ठाकुर ने आज पीथमपुर में निर्माणाधीन रेलवे टनल का निरीक्षण किया। इस दौरान वे करीब 70 फीट नीचे उतरकर टनल के भीतर पहुंची। उन्होंने कहा कि रेल परियोजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस परियोजना के पूरी होने के बाद क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत अब तक 25,892 जनजातीय घर विद्युतीकृत किए जा चुके हैं। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने सर्वाधिक 13,058 घरों को विद्युतीकृत किया है। यह योजना आदिवासी बाहुल्य गांवों में परिवारों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसमें 40% व्यय राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश की पुलिस के लिए 1 जुलाई से EHRMS का ई लीव मॉड्यूल लागू कर दिया गया है, जिसमें पुलिसकर्मी अब ऑनलाइन अवकाश आवेदन और उनकी स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा के निर्देश पर प्रदेश की करीब 120 पुलिस इकाइयों में यह व्यवस्था लागू की गई है। भारतीय रेलवे ने जून 2026 में पिछले वर्ष की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस दौरान 63,81,00,000 यात्रियों ने रेल यात्रा की, जो कि पिछले वर्ष से अधिक है। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में आज भोपाल समेत 11 जिलों में तेज बारिश हुई। खरगोन के कसरावद में 2 घंटे की मूसलाधार बारिश से सड़कें और खेत जलमग्न हो गए। शाहजहांपुर के अकोदिया में लंबे इंतजार के बाद हुई बारिश से किसानों को राहत मिली। वहीं मानसून ने 24 जून को प्रदेश में एंट्री की थी और 9 दिनों में पूरे प्रदेश को कवर कर लिया है। मौसम विभाग ने हरदा, नर्मदापुरम, रायसेन, छिंदवाड़ा, पांडुना और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा घोषित स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग में प्रदेश के 10 विद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हुए हैं। शहरी वर्ग में रतलाम के सांदीपनी विद्यालय जावरा ने प्रथम और भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनी विद्यालय ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत इंदौर में इस बारिश में 21,00,000 पौधे लगाए जाएंगे। BSF परिसर सहित देवगुराड़िया, लिम्बोदी और कृषि कॉलेज परिसर में बड़े पैमाने पर पौधरोपण होगा। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नागरिकों से माँ के सम्मान से कम एक पौधा लगाने की अपील की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार जिले में केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण का शुभारंभ किया। रायसेन जिले के 1800 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों पर स्कूल रेडीनेस मेला 2 का समापन उत्सव का आयोजन किया गया। बैतूल जिले के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भैंसदही की छात्रा पद्मा मरस्कोले ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में प्रवेश पाकर जिले का नाम गौरवान्वित किया है। देवास जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 3 दिनों में 1,84,000 से अधिक बच्चों को पोलियोरोधी दवा पिलाई गई। शिवपुरी के कृषि विज्ञान केंद्र पर किसानों के लिए टमाटर और मिर्च की उन्नत खेती को लेकर एक विशेष किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। भिंड में फसल बीमा माह के अंतर्गत जिला स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया और आगरमालवा के शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय में युवा संगम के तहत कल युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री ताकाइची की शिखर वार्ता, आर्थिक, रक्षा और AI क्षेत्र में हुए कई समझौते। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में अल्प वर्षा की तैयारियों के साथ नर्मदा समग्र मिशन की समीक्षा की। मनरेगा की जगह लेने वाली VB जीराम जी योजना का प्रदेशव्यापी शुभारंभ। अब मिलेगी 125 दिन रोजगार की गारंटी और दतिया विधानसभा उपचुनाव का ऐलान। 30 जुलाई को होगा मतदान और 3 अगस्त को मतगणना। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाला सभी भाई बहनों को स्वागत है आपका अपना कार्यक्रम में। ना आज का कार्यक्रम में आपका साथ है आपकी बहन स्मिता भरोले। तो सभी भाई बहनों का हमारी राम राम। भाई बहनों होने किसान भाई ना खरीफ की बोनी करी दीज, ना अभी कहीं कहीं बोनी हुई भी रही। हमारा किसान भाई खेती कार्य में लगेल छे, न साथ बारिश भी अच्छा सी हुई जाए तो फसल भी अच्छी होएगा, ना उत्पादन भी अच्छा होएगा। फसल का अच्छा उत्पादन का लेना किसान भाई खाद उर्वरक न को उपयोग करज। फसल न ख कीट रोग मुक्त रखना का लेना कीटनाशक न को प्रयोग करज। भाई बहनोहनी हम रासायनिक खाद उर्वरक न रासायनिक कीटनाशक न की जगह जैविक कीटनाशक न जैव उर्वरक न को उपयोग भी करी सकाज, जेकासी खेती की मिट्टी की सेहत अच्छी बनेल रहे, हमारो स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। न अभी खेत बचाओ अभियान चली रोज। खेत बचाओ अभियान भारत सरकार द्वारा मिट्टी की सेहत सुधारना और रासायनिक उर्वरक न पर किसान न की निर्भरता कम करने का लेना चलायो जय रोज। न ये एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता कार्यक्रम छे, एक उद्देश्य किसान न ख प्राकृतिक न जैविक की ओर प्रेरित करनु और आने वाली पीढ़ी न का लेना कृषि योग्य भूमि ख सुरक्षित रखनु छे। न ये अभियान को मुख्य उद्देश्य छे रासायनिक खाद को का प्रयोग से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता घटी रही, तो किसान नख मृदा स्वास्थ्य परीक्षण का आधार पर संतुलित मात्रा में खाद डालने का लेना जागरूक करनु छे। किसान नख गोबर खाद हरी खाद अरु प्राकृतिक कृषि पद्धति ख अपनावना का लेना प्रोत्साहित करनु छे। प्राकृतिक उर्वरक अरु सटीक मात्रा में कीटनाशक न को प्रयोग से खेती में कम खर्च करनु, न किसान न की आय ख दुगनो करनु, न उमा वृद्धि करनु छे। साथ ज किसान नख बाजार में मिलना वाला नकली कीटनाशक न की पहचान करावनु, न अरु प्रमाणित उत्पादन न को उपयोग करनु भी सिखायो जाए, तो ये कार्यक्रम का किसान भाई सफल बनाई सकज, न प्राकृतिक खेती ख अपनाई सकज। न भाई बहन नहुनी अब सुनी ले माजे एक निमाड़ी लोकगीत जेखा गायोज फतेह सिंह परमार राहीना।

0: हेलो।
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: सर 2 लाख?
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा न्यूनतम

0: कम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
1: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
0: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
1: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
0: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: भाई बहन नहुनी, अब आपसे पूछ लेवांज आज को प्रश्न। हमारा आज को प्रश्न छे कि कुटकी श्री अन्न की खेती को उपयुक्त समय कौन सो छे। प्रश्न एक बार फिर से सुनी लो। कुटकी श्री अन्न की खेती को उपयुक्त समय कौन सो छे। इना प्रश्न को उत्तर तो हम आपको जरूर बतावांगा, लेकिन कार्यक्रम का अंत में। भाई बहन नहुनी, बारिश को मौसम छे, न बादल न की गड़गड़ाहट का साथ, कहीं तेज तो कहीं धीरा धीरा बारिश हुई रही। न मई जून की तपती गर्मी का बाद जब बारिश की बूंद न गिरज तो धरती खतो ठंडक देज, भांज हमारो मन भी प्रसन्न हुई जाय। न सबई जीव जंतु भी खुश हुई जाय, न हम सबई ख गर्मी सी राहत मिलज, न धरती भी हरी भरी हुई जाय, पेड़ पौधा न म नया पत्ता आई जाय, न जो पेड़ गर्मी सी सूखी जाए वो फिर सी हरा भरा हुई जाए। भाई बहन नहुनी, हरा भरा पेड़ पौधा हमारा मन ख मोहि लेज, न पेड़ पौधा न नदी झरना ईज तो धरती को असली श्रृंगार छे, न हमेशा ई श्रृंगार बनेल रहे असो हम ख प्रयास भी करनु चाहिए। न एका लेना एक जुलाई सी 7 जुलाई तक पूरा देश में वन महोत्सव सप्ताह मनायो जय रोज। इस सप्ताह देश का सभी संस्थान न मिली न मनाई रही, न वृक्षारोपण का बढ़ावो दई रहा। पर्यावरण संरक्षण का लेना एकजुट होने का संदेश देज, न हम सभी ख प्राकृतिक को महत्व और पर्यावरण संतुलन ख बनाए रखना की प्रेरणा देज। न वन महोत्सव का अंतर्गत कई जागरूकता कार्यक्रम चलाया जय राज्य में। वृक्षारोपण अभियान, पर्यावरण जागरूक

0: चलाया। जय राज्य में वृक्षारोपण अभियान, पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम, प्राकृतिक भ्रमण, स्वच्छता अभियान, हरित क्षेत्र को संरक्षण जैसा अनेक कार्यक्रम आयोजित किया जाए। भाई बहन नोहनी, हम भी कार्यक्रम में आगे आवाना वृक्षारोपण करा, एक पेड़ जरूर लगावा। न पेड़ हमारा जीवन को आधार छे, जहाँ ही हमका ऑक्सीजन देज वहाँ जल संरक्षण करज, मिट्टी को कटाव रोकज, न जैव विविधता का संरक्षित करज, जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करज। न सातज भाई बहन नहुनी देखने में भी आवज कि हम पेड़ तो लगावाज पर उनको संरक्षण पर ध्यान नहीं देता ही। पेड़ जरूर लगावा पर उनको संरक्षण भी करा, उनका समय समय पर पानी देवा, खाद उर्वरक देवा, न जानवर नसी बचावा ताकि वो बड़ा हुई ना हमका ठंडी छाव दे सका, उनकी देखभाल करा। न जब वो थोड़ा बड़ा हुई जाएगा तो अपना आप वो पनपी जाएगा। भाई बहन नहुनी, पौधा लगाउनु जहाँ बहुत महत्वपूर्ण छे वहाँ पौधा न को संरक्षण करनु भी जरूरी छे, तबज तो वन महोत्सव अभियान सफल हो पावेगा। तो भाई बहन नहुनी, ये तो थी आज की हमारी बातचीत। न भाई बहन नहुनी, अब सुनी ले माज एक भेंट वार्ता, विषय छे वर्षा जल संरक्षण आज की आवश्यकता। इना विषय पर जानकारी दे रहा है डॉक्टर डी के वाणी, वरिष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र खंडवासी। न आपसी बातचीत करीज राजेश पाठक न। तो सुनाज ई भेंट वार्ता।
1: किसान भाइयों, राम राम। वर्षा जल संरक्षण आज की आवश्यकता एवं भविष्य की जरूरत, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हम अपने कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र खंडवा के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉक्टर डी के वाणी जी को आमंत्रित किया है। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: हम जल संरक्षण की बात करें, छत का पानी रूप वाटर हार्वेस्टिंग की बात करें, या हम खेत का पानी खेत में संरक्षित करें, किसान भाइयों को भी खेत में काफ़ी ध्यान देना होगा। रूप वाटर हार्वेस्टिंग तभी संभव होगा जब हर घर, प्रत्येक घर पूर्ण हो जाए रूप वाटर हार्वेस्टिंग से। वर्षा जल संरक्षण क्यों जरूरी है, हमारे किसान भाइयों को थोड़ा बतलाएंगे।
2: किसान भाइयों, जैसा कि बरसात हमारे खंडवा ज़िले में लगभग 800 मिलीमीटर या 1000 मिलीमीटर के आसपास होती है, और अगर ये 1000 मिलीमीटर को हम देखें तो 100x100 मीटर के या एक हेक्टेयर के क्षेत्र में लगभग 7 से 12 लाख लीटर पानी गिरता है, और इतना पानी किसी भी फसल की ज़रूरत के लिए या किसी भी परिवार की ज़रूरत के लिए बहुत होता है, और उसमें सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। लेकिन अगर हम इस पानी को बहने दें तो ये वर्षा का जल जो बह कर के जाता है वो खुद तो बहता ही है, वो तो व्यर्थ होता ही है, साथ ही साथ हमारे खेत की मिट्टी को भी बहा करके ले जाता है, और वो मिट्टी होती है जो कि हमारे फसल के उत्पादन को प्रभावित करती है, बहुत बारीक मिट्टी होती है और हवा और पानी के साथ चली जाती है। तो इस पानी को और इस मिट्टी को रोकने के लिए हमें वर्षा के जल को रोकना जरूरी है, और वर्षा के जल को रोकने से दोनों फायदे होंगे, हमारी मिट्टी भी रुकेगी और साथ ही साथ वर्षा का जल जो है हमारे संरक्षित जगह पर रहेगा और भविष्य में हमको ही काम में आएगा।
1: डॉक्टर साहब, खेत का पानी खेत में अगर हम संरक्षित करते हैं तो जल स्तर, जो अंडरग्राउंड वाटर है, उसके भू जल स्तर में बढ़ोतरी होती है, और गर्मी के दिनों में सिंचाई जो हम पंप चलाते हैं पानी मिल जाता, अगर हम इसका संरक्षण नहीं करते हैं तो काफ़ी कठिनाई आती है। भू जल स्तर जो गिर रहा है इस पर हमें ध्यान देना होगा, तो भूमि के प्रबंधन से हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं।
2: वर्षा जल का संरक्षण करना है तो निश्चित रूप से हमारी जो भूमि है उसका हमें इस तरह से प्रबंधन करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो वर्षा जल को सोख सके। इस सोखने के क्रम में सबसे पहली बात आती है कि खेत बहुत अच्छी तरह से जूते हों, ऊपर की पपड़ी जो है वो इस तरह की हो कि पानी को ज़्यादा से ज़्यादा सोख सके। तो गहरी जुताई, गर्मी की जुताई और जुताई की संख्या, ढलान के विपरीत जुताई, बुआई, ये सब चीज़ें जो हैं वो भू प्रबंधन में आती है, जिनके द्वारा वर्षा का जल ज़्यादा देर तक खेत में रुकता है, और ज़्यादा देर तक रुकने के कारण वो हमारी ज़मीन में नीचे तक रिसता है, और यही रिसन जो है हमारे जो प्राकृतिक स्रोत हैं या हमारे जो कुएँ हैं, जो बावड़ियाँ हैं, उनको पुनर्जीवित करती हैं।
1: जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि फसल के प्रकार या

0: प्रबंधन से किस प्रकार वर्षा जल को हम संरक्षण कर
1: पाएंगे? किसान भाइयों, जैसे फसल है, आप भी जानते हैं कि जो दलहनी फसलें रहती है उनकी जड़ें ज़्यादा फैलती हैं, और दलहनी फसलों में ही जो फसल को ढकने की प्रवृत्ति है वो ज़्यादा होती है, ज़्यादा जगह को घेरती हैं और ज़्यादा अच्छे से ढकती हैं, ज़मीन के ऊपर भी और ज़मीन के अंदर भी। इस तरह से दलहनी फसलें अगर हम अपने खेतों में लेते हैं तो वो हमारे वर्षा जल को संरक्षित करने में योगदान देती हैं, और भी जैसी फसलें जो कि ज़मीन को ज़्यादा ढकती हैं, आच्छादित कर लेती हैं पूरी ज़मीन को जल्दी से वर्षा के मौसम में ही, ऐसी फसलें हमारे वर्षा जल को रोकने के काफ़ी काम आती हैं। और फसल
0: इस तरह की फसलें कौन कौन से हैं आच्छादन करने वाले?
1: आच्छादन फसलें जैसी सभी दलहनी फसलें आती हैं, और इसमें घास का भी विशेष योगदान रहता है। हर तरह की घास जो बहुत जल्दी से फैलती है वो भी जमीन को अच्छे से ढकती है,
0: क्योंकि जो भूमि होता है कुछ सेंटीमीटर तक ही उपजाऊ रहता है
1: जी,
0: और तेज अगर बारिश होती है तो ऊपर के जो उर्वर जो भूमि होते हैं उसके कण बह के चले जाते हैं।
1: हाँ।
0: इसलिए आच्छादित फसलों हाँ, की आवश्यकता है।
1: आच्छादित फसलें एक तो वर्षा जल के प्रवाह को जो ऊपर से गिरता है पानी उसके वेग को कम करती है, और दूसरा जो जड़ें हैं वो मिट्टी को बांधे रखती हैं, तो ये दोनों जमीन के ऊपर भी और जमीन के नीचे भी ये वर्षा जल का संरक्षण करती हैं और उसकी जो क्षारण करने की क्षमता है उसको कम कर देती है
0: जी। खेती के अन्य उपाय जिससे वर्षा जल संरक्षित होता है?
1: एक तो हम फसल चक्र अपना सकते हैं, पौधों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी खेत में वो रख सकते हैं, बुआई का समय भी हम थोड़ा सा जल्दी कर सकते हैं, जैसे कि हम सोयाबीन की बुआई करते हैं तो 25 जून के आसपास कर लें, और जितना जल्दी होगा यानी मानसून के आते ही हमारी बुआई हो जाए तो वो जल्दी जल्दी ज़मीन को ढक लेगी और हमारा वर्षा का जल ज़्यादा संरक्षित होगा। हमारी जो फसलें हैं उसको अगर हम ढक के रखते हैं, यानी कि फसलों की कतारों के बीच में मल्चिंग करना, पलवार बिछाना, उससे क्या होगा कि वर्षा का जल हमारी मिट्टी को नहीं काट पाएगा, दूसरा उसके नीचे नींदा भी नहीं उग पाएंगे, तो नींदा या खरपतवार से भी हमें इसमें कमी होगी। अन्य उपाय जो हैं उनमें हम इस तरह की अलग अलग फसलें, अंतर्वर्ती फसलें या मिश्रित फसलें भी ले सकते हैं, जैसे हमें मक्का उगाना ज़रूरी है तो साथ में हम मूंग या उड़द लगा सकते हैं, अगर हमें कपास लगाना ज़रूरी है तो हम उसमें सोयाबीन भी लगा सकते हैं। इस तरह के अंतर्वर्ती फसलें जो कि हमारी ज़मीन को जल्दी से ढक ले, जो हमारी ज़मीन में जल्दी से जड़ें फैला दे, ऐसी फसलें जो है हमारे काम की है, और इसमें हम जैविक खादों का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैविक खाद जब ज़मीन में मिलती है तो ज़मीन के घनत्व को कम करती है, उसमें खाली जगह की संख्या बढ़ जाती है, और जब खाली जगह बढ़ती है तो उसमें बरसात के सीजन में हवा की जगह पानी घुस जाता है, और इस तरह से पानी बहुत अधिक मात्रा में संरक्षित होता है, रिसता है, और वो हमारे भविष्य में काम आता है
0: जी। जैसे हम बात करते हैं बोरी बंधान की, नाला बंधान या पोखर निर्माण, ये किस प्रकार सहायक है?
1: अगर हमारे खेत में कोई डिप्रेशन है या कहीं मतलब पहले से गड्ढा वगैरह भरता है और हमारा खेत एक हेक्टेयर से ज़्यादा है तो हम एक छोटा सा पोखर बना सकते हैं, यानी कि जहाँ पे गड्ढा या जहाँ पानी भरता है या जो खेत का सबसे निचला सिरा है वहाँ पर हम एक छोटा सा पोखर बना सकते हैं, जो कि हमें चने में सिंचाई देने के काम में आ सकता है। इस तरह से मतलब जीवनदायी अगर सिंचाई भी देनी पड़ी सोयाबीन में, कपास में, तो वो काम भी कर सकता है, और अगर वो ज़रूरत नहीं पड़ी तो ये पानी जो है हमें कपास की पूरी फसल दिलवा सकता है, तो इस तरह से पोखर निर्माण हो सकता है। दूसरा, नाला बंधान की बात की है तो अगर हमारे खेत के आसपास से कोई नाला बहता है या छोटी सी नाली भी बहती है तो हम उसमें बंधान बना करके उसके पानी को रोक करके जो हमारे खेत की मिट्टी उस नाले से बह करके जा रही है उसको भी बचा सकते हैं, साथ ही साथ वर्षा का जल भी उसमें संरक्षित रहेगा और उस पानी का, उस जल का हम उपयोग अपने खेती में सिंचाई में कर सकते हैं। नाला बंधान के लिए हम अच्छे बोल्डरों से भी तैयार कर सकते हैं और एक गेबियन भी बनाए जाते हैं। गेबियन इस तरह से बनते हैं कि उसके लिए हमको किसी बाइंडिंग मतलब किसी सीमेंट की ज़रूरत नहीं है, पत्थरों की कोई कटाई छटाई करने की ज़रूरत नहीं है, जाली रहती है GI वायर की और उसके बक्से जैसे बना लिए जाते हैं और उसमें जो बेडोल पत्थर रहते हैं, गोल पत्थर रहते हैं, वो सारे भर दिए जाते हैं, तो वो एक तरह की दीवार बन जाती है जो पानी वर्षा जल बह रहा है उसके लिए भी और जो मिट्टी बह रही है उसके लिए भी। धीरे धीरे इन जो

0: बोल्डर्स हैं, गोल बोल्डर्स हैं, उनके बीच में मिट्टी जमती जाती है और धीरे धीरे बरसात का जब सीजन ख़त्म होने लगता है तब तक तो ये गेबियन जो है पूरी तरह से भर जाता है पानी से और उसका उपयोग हम करने लगते हैं।
1: जी, सूखे हुए कुएं को रिचार्ज करने का जो तरीका है, खास करके परकोलेशन पिट के बारे में थोड़ा बतलाएंगे।
0: जो कुएं सूख जाते हैं या जो नलकूप सूख जाते हैं वो फिर काम में नहीं आते, तो जो कुएं हैं अगर हमको उनको रिचार्ज करना है, फिर से जीवित करना है, तो उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं कि कुएं से 3 मीटर दूर एक परकोलेशन पीट बनाते हैं। वो पीट अपनी ज़मीन के साइज से लगभग 2 से 3 मीटर गोलाई में और 2 से 3 मीटर गहरा बनाते हैं और उसके अंदर, जैसे 3 मीटर गहरा है तो 1 मीटर तक बड़े बड़े बोल्डर जो 4 इंच के आते हैं, जो बड़े पत्थर हैं, उसके बाद में 1 मीटर तक गिट्टी यानी कि 1 इंच तक की गिट्टी इस तरह से भर देते हैं और सबसे ऊपर लगभग आधा मीटर तक अपन रेत भरते हैं और रेत के ऊपर जो बड़े चौड़े पत्ते आते हैं उन पत्तों को बिछा देते हैं। अब इसमें हम जो आसपास का पानी है उसकी आवक करते हैं, ये जो परकोलेशन पीट है इसके ऊपर। अब इस परकोलेशन पीट के ऊपर जब ये पानी आता है वो धीरे से छन करके हमारे कुएं के जो झिरियां हैं उन झिरियों के द्वारा कुएं में प्रवेश करता है, तो इस पानी को हम अच्छी तरह से और पीने के पानी के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर केवल हमको स्टोर करना है, केवल भंडारण करना है, तो हम इस परकोलेशन पीट को कुएं के चारों तरफ गोल घेरा बना करके लगभग 1 मीटर का, 1.5 मीटर, 2 मीटर का कुएं के चारों तरफ गोलाई में एक 2 मीटर गहरा तक बना सकते हैं और उसमें इसी तरह से नीचे बड़े बोल्डर, फिर गिट्टी और फिर रेत इस तरह से भर करके कुएं के चारों तरफ भी अपन एक परकोलेशन पीट जैसा बना सकते हैं जिसमें से कि पानी रिस करके सीधे अपने कुएं में भर जाएगा और उसका हम उपयोग कर सकते हैं।
1: अब बात करते हैं डॉक्टर साहब नलकूप रिचार्जिंग की, तो वर्तमान समय में इसकी आवश्यकता है, हमारे किसान भाइयों को बतलाएं इसके बारे में।
0: नलकूप रिचार्जिंग में भी ये देखा गया है कि उससे 3 मीटर दूर अगर हम एक इस तरह का सोक पीट या परकोलेशन पीट बनाते हैं जो कि 1.5 से 2 मीटर गोलाई में रहता है और नलकूप से 2 से 3 मीटर दूर और 3 मीटर गहराई तक उसको खोद करके उसमें पहले बड़े बोल्डर, फिर छोटे बोल्डर, उसके ऊपर रेत, उसके ऊपर पत्ते इस तरह से बिछा करके वहाँ पर जो आसपास का पानी है, नाला है या छत का पानी है, वो उसमें डालेंगे, तो ये पानी रिस करके जो नेचुरल झिरियाँ हैं उस नलकूप की वहाँ तक जाएगा और उसमें समा जाएगा। दूसरा हम एक काम कर सकते हैं कि नलकूप के चारों ओर जो सूखे नलकूप हैं उसमें नलकूप के चारों ओर 1 से 1.5 मीटर गोलाई का 1-3 मीटर गड्ढा करते हैं और उसमें जो नलकूप का पाइप लगा है जो कि जनरली 20 फीट तक लगाते हैं प्लास्टिक के पाइप या दूसरे पाइप, उसके अंदर हम छेद करते हैं, करीबन 100 छेद करते हैं और इन छेदों के ऊपर हम नारियल की रस्सी लपेट देते हैं जिससे कि कोई कचरा अंदर नहीं जाए, तो बिल्कुल पानी छन करके अंदर जाता है और ये जो हमने छेद किया है जो कि 1 से 1.5 मीटर चौड़ाई में पूरी गोलाई में नलकूप के चारों तरफ है, उसमें हम नीचे बड़े बोल्डर, फिर छोटे बोल्डर, फिर रेत, और ये अगर ज़्यादा मिट्टी गहरी है तो हमको मुरम तक जाना है और उतना नीचे तक जाना पड़ेगा, मतलब 2 मीटर गहराई पर्याप्त नहीं होगी, अगर जहाँ ज़्यादा मिट्टी है, काली मिट्टी है, तो हमको थोड़ा और नीचे तक जाना पड़ेगा जहाँ तक मुरम आती है और वहाँ तक के ये हमको सोक पीट या परकोलेशन पीट बनाना पड़ेगा और इसका जो पानी है सीधा छन करके पाइप के सहारे नलकूप में उतर जाएगा, तो इसमें जाने से जो सूखे हुए नलकूप हैं उसके भी रिचार्ज होने की संभावना बढ़ जाती है और पुनर्जीवित हो जाते हैं नलकूप।
1: डॉक्टर साहब जैसा कि आपको पता है हमारा जो जिला है कैच द रेन कार्यक्रम में पूरे देश में अव्वल है और पूरा जिला प्रशासन से लेके मैदानी कार्यकर्ता सभी लोग इसमें लगे हुए थे, पूरे वैज्ञानिक कृषि अधिकारी सभी लोग लगे हुए हैं, तभी यह संभव हो पाया है। शहर का आकार बढ़ता जा रहा है और इसके कारण क्या है कि पक्कीकरण जो है शहरों में ज़्यादा है गाँव की तुलना में, तो ऐसे में छत के जो वर्षा जल संरक्षण है माने रूप वाटर हार्वेस्टिंग की अगर बात करें,
0: बिल्कुल,
1: तो इसके बारे में हमारे किसान

0: भाइयों को बतलाएं, हमारे जो शहर में जो लगे हुए गांव हैं
1: जी
0: उसको भी फायदा हो सके और शहर में पानी की जल संकट भी ना हो सके, क्या तरीका है, कैसे करते हैं?
1: जो जल ग्रहण परियोजनाएं चलती थी वो जनरली जो अरहवासी क्षेत्र थे या जंगल थे वहाँ पे चली हैं जल ग्रहण क्षेत्र में, क्योंकि उसको एक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र मानते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है वो किसानों के खेत हैं। ये किसानों के खेत से जितना पानी उनमें गिरता है अगर हम उसको संरक्षित करने में कामयाब हो जाएं तो हमें जल की कोई कमी नहीं रहे। अब बात आती है शहरों में जो घर बने हैं, मकान बने हैं, या अब सड़क का कंक्रीटीकरण वगैरह इतना हो गया है कि यहाँ पर ज़मीन में पानी नहीं उतर रहा है, और इस कंक्रीटीकरण के कारण हमारे जो जलवायु है और जो हमारे शहरों का जो वातावरण है वो काफ़ी गर्म हो जाता है क्योंकि ज़मीन ठंडा नहीं कर पाती है। तो इसलिए हमें अपने आसपास से, हमारी छतों से भी, हमारे बगीचों से भी पानी को रिसने के लिए ज़मीन में व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसको हम सोक पीट बोलते हैं। सोक पीट से हम ज़मीन के कई फीट गहरे तक हम पानी को, वर्षा जल को उतार सकते हैं। मान लो हमारे घरों में एक सामान्य से घर में 20x50 का अगर मकान है, 20x50 की छत है, तो उससे हम जल सोखना चाहते हैं तो वहाँ का जो भी अपवाहित जल है उसको हम अपनी दीवार के पास में एक गड्ढा करेंगे 1 मीटर बाय 1 मीटर और 1 मीटर गहरा, और इसको हम 1.5 मीटर बाय 1.5 मीटर बाय 1.5 मीटर गहरा भी कर सकते हैं जहाँ तक हमारी अलाउ करे ज़मीन, क्योंकि ज़्यादा मुरम या कड़े पत्थर आगे तो वहाँ पर गड्ढा नहीं हो पाएगा। तो अगर 1x1 मीटर का भी गड्ढा करते हैं, 1 मीटर गहरा करते हैं, और ये 20x50 फीट की जो छत है उससे अगर हम पानी उतारते हैं, और अगर हमारे यहाँ पे 1000 मिलीमीटर बरसात होती है तो लगभग 1,00,000 लीटर हम इससे संरक्षित कर पाएंगे, और ये पानी
0: जब भी जिंदा रहेगा।
1: जी हाँ, आसपास के जो भी प्राकृतिक स्रोत हैं या मैन मेड सोर्सेस हैं पानी के, वो आसपास अगर कुआं है तो वो ज़्यादा उसमें आने लगेगी आवक, और नलकूप है तो वो भी पुनर्जीवित हो सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, आज आप हमारे कार्यक्रम में भाग लिए और वर्षा जल संरक्षण, आज की आवश्यकता एवं भविष्य की जरूरत, इस विषय पर इतनी अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: भाई बहनोहनी, अभी हम सुने रहा था भेंटवार्ता, विषय था वर्षा जल संरक्षण, आज की आवश्यकता। इन विषय पर जानकारी दे रहा था डॉक्टर डीके वाणी, वरिष्ठ वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र खंडवासी। आपसी बातचीत करी थी राजेश पाठक ने। भाई बहन नहुने, अब आपका बताए देवांश, खंडवा उपज मंडी से प्राप्त कृषि उपज का भाव की जानकारी। सोयाबीन को न्यूनतम भाव रहे 5001 रुपया प्रति क्विंटल, न अधिकतम भाव रहे 6736 रुपया प्रति क्विंटल। गेहूं को न्यूनतम भाव रहे 2350 रुपया प्रति क्विंटल, न अधिकतम भाव रहे 2661 रुपया प्रति क्विंटल। भांज लोकवन गेहूं को न्यूनतम भाव रहे 2711 रुपया प्रति क्विंटल, न अधिकतम भाव रहे 2830 रुपया प्रति क्विंटल। तुअर को न्यूनतम भाव रहे 5101 रुपया प्रति क्विंटल, न अधिकतम भाव रहे 7301 रुपया प्रति क्विंटल। चना को न्यूनतम भाव रहे 4800 रुपया प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव रहे 5805 रुपया प्रति क्विंटल। न वहाँ डॉलर चना को न्यूनतम भाव रहे 6199 रुपया प्रति क्विंटल, न उच्चतम भाव रहे 6600 रुपया प्रति क्विंटल। ज्वार को न्यूनतम भाव रहे स्थिर थो, जो कि 2031 रुपया प्रति क्विंटल। मूंग को न्यूनतम भाव रहे 7151 रुपया प्रति क्विंटल, न अधिकतम भाव रहे 7450 रुपया प्रति क्विंटल। मक्का को न्यूनतम भाव रहे 2003 रुपया प्रति क्विंटल, न अधिकतम भाव रहे 2200 रुपया प्रति क्विंटल। सरसों को भाव भी स्थिर रहे 6400 रुपया प्रति क्विंटल। तो भाई बहन नहुनी, ये तो था खंडवा उपज मंडी से प्राप्त कृषि उपज का भावना की जानकारी। न अब आपको बताई देव आज का मौसम की जानकारी। आज सूर्योदय प्रातः 5:45 पर हुए, न सूर्यास्त शाम 7:12 पर हुए। आज का दिन को अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहो, न न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना छे। तो भाई बहन नहुनी, ये तो थी मौसम की जानकारी। न भाई बहन नहुनी, अब सुनी लेवाज एक अरुणी।

भाई बहनों, अभी हम सुनी रहा था निमाड़ी लोकगीत न। कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसी पूछो तो एक प्रश्न कि कुटकी श्री अन्न की खेती को उपयुक्त समय कौन सो छे। तो भाई बहनों, कुटकी श्री अन्न की खेती को उपयुक्त समय ये छे न। अभी खरीफ की फसल छे न, वर्षा की शुरुआत होने का तुरंत बाद कुटकी की बोनी किसान भाई करी सकज न। ये कुटकी हर प्रकार की भूमि में उगाई जा सकज। ये फसल उतार चढ़ाव वाली, कम जल धारण क्षमता वाली न उतली सतह वाली जमीन में आसानी से यह उगाई जा सकज। भाई बहन नहुनी, इना प्रश्न का उत्तर का साथ आज को किसान वाणी कार्यक्रम यहाँ समाप्त हो। आज्ञा देव, राम राम।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: अभी किसान वाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। अब अगला कार्यक्रम राष्ट्रीय विविध भारतीय सेवा से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: आइए सुने कार्यक्रम हवा महल।

0: हवा महल कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं प्रहसन सिलसिला बहानों का। लेखक हैं सुरेंद्र कौशिक, निर्देशक सुशील बैनर्जी।
1: हे भगवान, 7:30 बज गए, सारी दुकानें बंद हो गई होंगी। लड़के ने आंखें सुजाली रोते रोते, रोए नहीं तो क्या करेगा भागा, कैसे स्कूल जा पाएगा कल वो बेचारा बिना जूते। और ये श्रीमान सिकंदर खुसट विलंबित जी उर्फ हमारे लेज लतीफ पतिदेव अभी तक नहीं लौटे।
2: सिकंदर भाई, सिकंदर भाई।
1: कौन कौन है? अरे भट भैया आप।
2: नमस्ते भाभी। सिकंदर भाई घर में ही होंगे ना? क्या हाल है अब नरेश बेटे का? अरे कैसी गिरी इमाम दस्ते की इतनी भारी मूसली पांव पर?
1: इमाम दस्ते की मूसली? हाय हाय, चुप चुप बोलो बट भैया, नरेश तो अभी अभी ट्यूशन पढ़ने गया है। अच्छा भला
2: ट्यूशन पढ़ने? तू नरेश बेटे को कोई चोट या फ्रैक्चर नहीं हुआ?
1: नहीं तो।
2: और सिकंदर भाई कहाँ है?
1: वो तो मैं आप ही से पूछने वाली थी, अभी तक नहीं लौटी है दफ्तर से।
2: दफ्तर से? मगर दफ्तर से तो वो 3 बजे ही निकल गए थे, छुट्टी लेकर नरेश बेटे के पांव पर इमाम दस्ते की।
1: फिर वही इमाम दस्ते की मूसली? अरे भैया हमारे यहाँ तो इमाम दस्ता ही नहीं है, वो मरी मिक्सी है।
2: मिक्सी? इमाम दस्ता वो?
1: पर भट भैया बात क्या है, कुछ कुछ बताओ तो भट भैया।
2: अब क्या कहूँ भाभी, आज मिस्टर सिकंदर जब फिर देर से पहुंचे तो उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। एक हाथ में लंच बॉक्स और दूसरे में चप्पल।
1: चप्पल?
2: जी हाँ, और वो भी टूटी हुई। बुरी तरह हांफते हुए घबराए घबराए कमरे में दाखिल हुए।
3: शुक्र है सुपरिंटेंडेंट साहब नहीं है सीट पर, शायद आए भी ना हो अभी तक। फिर तो झट से 9:55 की हाजिरी लगा दूं। आए हैं, मर गए, मेरे नाम के आगे तो इतना बड़ा लाल चौराहा यानी कि क्रॉस लगा है।
4: भी सर। तो आज भी आप पूरे 1 घंटे लेट आए हैं मिस्टर सिकंदर खुसट विलंबित।
3: सर वो
4: देखा मिस्टर भट्ट,
2: विलंबित जो ठहरे सुप्रीम।

0: टेंडेंसा है।
1: तो श्रीमान विलंबित जी,
2: जी
1: अब आज के दिन आपके विलंब का क्या कारण है?
2: जी सुप्रिंटेंडेंट साहब बात
1: हाँ,
2: है
1: कि बोलो बोलो मगर ध्यान रहे पिछले किसी बहाने को इतनी जल्दी रिपीट मत कर जाना।
2: जी जी मैं बेहद शर्मिंदा हूँ सुप्रिंटेंडेंट साहब।
1: अरे मगर क्यों? अभी तक तुमने ऐसा कोई बहाना रिपीट तो किया नहीं।
2: जी वो मैं समझा नहीं सर।
1: मैं तुम्हें वो सिलसिला याद दिला देता हूँ जिस पर तुम रोजाना बाकायदगी के साथ अमल करते आ रहे हैं।
2: कैसा कैसा सिलसिला?
1: अरे भाई बहानों का सिलसिला विलंबित जी। कल आप लेट इसलिए आए थे कि आपके पड़ोस में एक बुढ़िया की मौत हो गई।
2: जी हाँ जी हाँ।
1: और उसे कंधा देने वाले चौथे व्यक्ति सिर्फ आप ही थे।
2: जी हाँ।
1: क्योंकि बाकी आसपास के लोग सब तब तक अपने दफ्तर जा चुके।
2: जी हाँ जी हाँ। ये तो मेरा सामाजिक और नैतिक कर्तव्य था सर।
1: परसों आप इसलिए लेट थे कि आपने कुछ ब्राह्मणों को विधि पूर्वक भोजन कराया अपने ससुर जी की पहली बरसी।
2: मिस्टर भट्ट माइंड योर ओन बिजनेस।
3: मगर सिकंदर भाई अपने ससुर की पहली बरसी और तुमने खुद मनाई, तुम्हारे तो शायद दो दो साले हैं।
2: मगर हाँ वो दोनों साले वो कनाडा गए हुए हैं, वहाँ शराब खाने के लिए कौन सा पंडित आएगा।
1: ओ आई सी।
2: जी सुप्रिंटेंडेंट साहब ऐसे में क्या मुझे वो धार्मिक कर्तव्य पूरा नहीं करना चाहिए था?
3: जी हाँ सुप्रिंटेंडेंट साहब, आखिर ससुर भी तो पिता समान ही होता है। जैसे पिता का श्राद्ध वैसे ही ससुर का, पत्नी का पिता अपना पिता।
2: आप चुप रहिए मिस्टर भट्ट। देख लिया सुप्रिंटेंडेंट साहब किस तरह मजाक उड़ा रहे हैं ये लोग मेरी धार्मिक और सामाजिक कर्तव्य परायणता का। क्या इनके यहाँ आस पड़ोस में या रिश्तेदारी में कभी कोई नहीं मरा या कभी कोई नहीं मरेगा कब?
1: छी छी छी, इतने ओछे और घटिया शब्दों पर उतर आए तुम मिस्टर सिकंदर। एक तो आप लेट आए।
2: तो इन लोगों को क्यों दर्द होता है सर? क्रॉस लगाए मेरे नाम के आगे, डांटने का हर सारा आपको है, सेक्शन इंचार्ज को है, ये क्यों टकराते हैं मेरे लेट आने पर? दे शुड सी देयर ओन वर्क, अपना काम देखें।
3: हमें अपने काम के अलावा आपका काम भी देखना पड़ता है मिस्टर सिकंदर जब आप सीट पर नहीं होते।
2: ऐसी कौन सी आफत आ रही है?
1: टॉक सेंस मिस्टर सिकंदर। ऐसे अर्जेंट मामलों के भी लटके रहने या लेट हो जाने के कारण ये नहीं है कि हम लोग वक्त जरूरत अपने काम पर नहीं होते। घंटों अपनी सीटों से गायब रहते हैं या फिर आपकी तरह हमेशा लेट आते हैं और जल्दी चले जाते हैं। काम के प्रति तुम्हारे मन में कोई कर्तव्य भावना नहीं है?
2: नहीं।
1: चलिए चीफ के पास।
2: नहीं सुप्रिंटेंडेंट साहब, कर्तव्य की भावना नहीं होती तो क्या इतनी भयंकर स्थिति में मैं ऑफिस आता?
1: क्यों आज क्या हुआ बोलो।
2: वो सर मेरे छोटे लड़के के पैर में फ्रैक्चर हो गया सर।
1: What? अरे ये कैसे हो गया सिकंदर भाई?
2: सीधा अस्पताल से भागता चला आ रहा हूँ मिस्टर भट्ट, रास्ते में चप्पल भी टूट गई।
1: और तुम्हारा लड़का क्या प्लास्टर चढ़ा?
2: हाँ सर, प्लास्टर चढ़ने के बाद उसे उसकी माँ टैक्सी में डालकर घर ले गई और मैं इधर ऑफिस को भागा। मुझे पता था सर के अर्जेंट पेपर डील करने।
1: ओह आई एम सॉरी मिस्टर सिकंदर।
2: ऑलराइट सर।
3: मगर भाई फ्रैक्चर हुआ कैसे?
2: वो इमाम दस्ते की मूसली गिरा दी मेरी लड़की ने उसके पैर पर।
1: ओह माय गॉड, अब कैसा है तुम्हारा लड़का?
2: क्या मालूम कैसा है सर, मैंने तो रोते रोते छोड़कर उसे दफ्तर की ओर लपका था, अब तो घर शाम को पहुंच कर ही देखूंगा।
3: अरे अरे बेचारा मासूम बच्चा। अरे भाई तुम चाहो तो साहब से कहकर बेशक जल्दी घर चले जाना सिकंदर। क्यों सुप्रिंटेंडेंट साहब?
1: हाँ हाँ हाँ कोई बात नहीं, मगर मिस्टर सिकंदर की सीट पर कई अर्जेंट पेपर है।
3: वो मैं देख लूंगा सर, आप इसे जल्दी जाने दीजिए। हाजिरी तो इसने लगाई दी है सर।
1: अच्छा मिस्टर सिकंदर, अभी तो चीफ का राउंड होने वाला है, एक दो घंटे बाद चले जाना।
2: थैंक यू सर, मैं 3 बजे चला जाऊंगा सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।
4: हाय राम, 3 बजे के चले अब तक घर नहीं पहुंचे, और भैया 7 बजे दुकानें बंद होती है। नरेश कल से स्कूल के सफेद जूतों के लिए रो रहा है।
3: आप कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं सब समझ गया हूँ। हद होती है बहानेबाजी की भी, मैं तो बच्चे की खैर खबर लेने आया था और
4: उन्हें खुद अपने घर की खबर नहीं।
3: तो सिकंदर भाई वाकई पक्के बहानेबाज बन चुके हैं।
4: पक्के से पक्के कहो बट भैया, कई बार तो हमारा भी दिल दहल जाता है उनकी झूठी बातों को सच समझ कर। उधर दफ्तर वाले हम औरतों को ही दोषी मानते होंगे अपने पतियों के लेट कराने के लिए। अरे भैया तुम उनके साथ ही हो, किसी तरह खत्म कराओ ना उनकी बहानेबाजी की आदत, हम तो भट्ट भैया बहुत परेशान हो चुके हैं।
3: और उधर दफ्तर के लोग भी भाभी जी, उनका रोज रोज का लेट आना, नित नए बहानों का सिलसिला, वो भी ऐसा तगड़ा कि बस क्या कहें।
4: मगर झूठ तो झूठ ही होता है भट्ट भैया।
3: अगर उस झूठ को झूठ साबित करने के लिए क्या दफ्तर के अफसर रोज रोज घरों में जाकर जांच पड़ताल करें, बीवी बच्चों से सच्चाई उगलवाएं? घर वालों का भी कोई फर्ज होता है।
4: नहीं नहीं भैया, यहाँ घरों में तो हमें ही उनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है।
3: कभी तो पकड़ में आएंगे सिकंदर भाई, बुरा तो मानेंगे मगर राहे रास्ते पर तो आ जाएंगे।

0: अरे नजर लगे कौन गटवा न जाए, गटवा न जाए।
1: हाय राम, अभी तक गुसलखाने के फवारे के नीचे भरत नाट्यम कर रहे हैं। अजी सुनते हो?
0: अरे क्या है, नहा रहा हूँ।
1: घंटे भर इस फवारे की भागीरथी को अपने सिर पर धारण करके तुम्हारा गटवा गीला नहीं हुआ? मैंने कहा निकल आओ, 10:30 बज चुके हैं, तब तो नहीं जाना आज क्या? अरे छुट्टी लेनी है आज की।
0: अरे क्या मैं बेवकूफ हूँ जो उस दिन की छुट्टी लूँ जिस दिन खुद अफसर छुट्टी पर हो।
1: अजी वाह, बड़े कर्तव्य परायण हो गए हो, जो अफसर की गैर हाजिरी में दफ्तर जाना और भी खास तौर से जरूरी समझने लगे।
0: बिल्कुल
1: हो। मगर जब इतनी वफादारी की भावना जाग उठी है तो फिर लेट भी क्यों जाते हो? सुनो जी, कब तक उल्टे सीधे बहाने बनाते जाओगे? फंसोगे किसी दिन बुरी तरह, श्रीमान सिकंदर खूसट विलंबित जी।
0: अरे जा जा, बरसों बीत गए नौकरी करते करते, पूरी मौज मस्ती से है। अरे ऐसे ऐसे बहाने आते हैं कि अफसर नाराज होने की बजाय सक पका कर हमदर्दी जगाने लगता है और जितने लेट पहुंचे उतनी जल्दी छुट्टी पर जाने की कह देता है।
1: हाय राम, कैसे ढीठ होते हैं ये लेट लतीफ।
0: और फिर आज तो हम खुद ही अपने अफसर होंगे। अरे पहुंच जाएंगे टहलते टहलते और लौट आएंगे जब तुमसे मिलने को दिल बेताब होगा।
1: चलो हटो भी, चलकर नाश्ता कर लो और दफ्तर पहुंचो वक्त से। हम औरतों को बदनाम मत करो। हाँ।
0: अरे वाह, दफ्तर लेट पहुंचे हम और डरो तुम लोग। चलो बेटा सिकंदर भाई, पत्नी का दर। ओके बाय।
2: ये सर, मैं सुपरिंटेंडेंट बोल रहा हूँ।
0: अरे सुपरिंटेंडेंट साहब, तो वो बैठे भीतर कमरे में।
2: यस सर, मैं तो आपका मैसेज मिलते ही दफ्तर पहुंच गया था सर, मगर मैं क्या करूं सर, वो उस अर्जेंट केस की फाइल शायद मिस्टर सिकंदर की मेज की ड्रॉअर में लॉक्ड है सर। जी हाँ, मिस्टर सिकंदर अभी तक नहीं आए सर। आई एम सॉरी सर, मैं कोशिश करता हूँ सर। जी मैं कोशिश करता हूँ सर।
0: अरे बाप रे, यहाँ तो नजारा ही दूसरा है। फंसे बेटा सिकंदर, आज तो साहब मेरा ही अर्जेंट केस बना देंगे। अरे अब क्या करूँ, क्या बहाना बनाऊँ लेट आने का। हाँ चुपचाप यहाँ से दबे पाँव घर लौट जाऊं और बीमारी की छुट्टी मार दूं। अरे नहीं, वो फाइल तो मेरी ड्रॉअर में बंद है। ये चाबी लेने मेरे घर पहुंचे तो इस अर्जेंट केस के लिए तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अब क्या करूं इस इमरजेंसी की घड़ी में। अरे वो मारा, ये कुछ हुई ना नई बात है। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर।
3: ओ यू विलंबित के बच्चे।
0: यस सर।
3: आज तुमने मेरी सारी इज्जत मट्टी में मिलवा दी।
0: नो सर।
3: मेरी इतने वर्षों की नौकरी को कलंकित कर दिया।
0: नो सर।
3: मैं तुम्हें डिसमिस कराकर छोड़ूंगा।
0: नो सर।
3: यस डिसमिस, नॉट लेस देन दैट।
0: मगर कुछ मेरी भी तो सुनिए सुपरिंटेंडेंट साहब।
3: क्या सुनिए तुम्हारी?
0: मेरे साथ भी तो कोई इमरजेंसी हो सकती है।
3: व्हाट इमरजेंसी? क्या हुआ, कौन मर गया, कौन अस्पताल चला गया, बोलो।
0: सर मेरी पत्नी सर।
3: क्या?
0: मेरी बीवी।
4: क्या कह रहे हो सिकंदर भाई, कल शाम तक तो भाभी बिल्कुल ठीक ठाक थी, मैंने खुद देखा। अरे भाई एकदम क्या हो गया?
0: एकदम से वो उल्टियां सर उल्टियों पर उल्टियां सर, दम घुटने लगा, फिर उल्टियां, उल्टियों पर उल्टियां सर। मैं घर आ गया, टैक्सी पकड़ी और फौरन इमरजेंसी वार्ड में ले गया। मगर जब तक सर,
4: तब तक क्या हुआ तब तक? हाँ बोलो भाई
0: सर।
4: हाँ बोलो।
0: उल्टियां बंद हो चुकी थी और डॉक्टर ने अच्छी तरह मुआयना करके बताया सर। सर के वो,
4: हाँ बोल भाई बोल।
0: वो पाँव भारी है।
4: पाँव भारी है, यानी कि नए बच्चे की माँ बनने वाली
0: है। आपको कोई तकलीफ है?
3: आई से शट अप
0: जी,
3: यू लायर, झूठे बहाने बात मत कर।
0: सुपरिंटेंडेंट साहब, आप मुझे गालियां दे रहे हैं, ये ऑफिस है सर।
3: अरे मेरा बस चले तो गोली से भी उड़ा दूं तुम जैसे झूठे मक्कारों। वाह क्या बहाना बनाया है, बीवी का पांव भारी है।
4: मिस्टर सिकंदर भला इसमें भी क्या झूठ बोल सकते हैं?
0: वो सर
4: सच्चाई तो कुछ महीने बाद सामने आई जाएगी सर।
3: सच्चाई? अरे ऐसे झूठे बहाने बाजों के कारण तो सच्चे

0: पर से भी विश्वास खत्म हो गया। सच्चाई जानना चाहते हो?
1: यस सर।
0: तो ये देखो, ये रही सच्चाई।
2: ये कैसा कागज है सर?
0: तुम ही पढ़कर बताओ मिस्टर सिकंदर।
1: यस सर। अरे सर, ये तो मेरे स्पेशल इंक्रीमेंट का ऑर्डर है सर।
0: ऑर्डर नहीं, अभी ड्राफ्ट है, खुद मैंने तैयार किया।
1: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर।
2: स्पेशल इंक्रीमेंट का?
1: यस
2: सर। कौन हकदार होता है स्पेशल इंक्रीमेंट का?
0: जो कर्मचारी अपने और सारे देश की भलाई और खुशहाली का राज समझते हैं और ठीक समय पर सही कदम उठाते हैं।
2: मिस्टर सिकंदर, इतने समझदार कब से हो गए सर?
0: ये भी जानना चाहते हो? ये रहा दूसरा कागज। बताओ सिकंदर, क्या है ये कागज? बोलो।
1: ये तो मेरा फैमिली प्लानिंग, यानी सर वो ऑपरेशन कराने का सर्टिफिकेट।
0: छी छी सिकंदर, तुम्हारे बहानों का सिलसिला इतने घनों ने झूठ तक पहुंच सकता है?
1: बस सर, मेरी बात तो सुनिए सर, मैं कहता हूँ मेरी बात सुनिए।
0: आई विल सी दैट यू आर डिसमिस्ड। आई विल नॉट
1: मर जाओगे सरकार, मर जाओगे सरकार। मैं अगर नौकरी छूट गई साहब, कहीं का नहीं रहूंगा। मेरा गली में बंदा था, ये बंदा उठा मेरी गली में।
3: सिलसिला बहानों का। अभी आप सुन रहे थे सुरेंद्र कौशिक का लिखा ये प्रहसन। निर्देशक थे सुशील बैनर्जी। ये थी आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति।

आइए सुने चित्रलोक। सुनिधि चौहान की आवाज में चमेली फिल्म का गाना, इरशाद कामिल के बोल, संदेश शांडिली की तरह से।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं चित्रलोक।
1: आज शब जो चांद ने है रूठने की ठान, गर्दिशों में है सितारे, बात हमने मान ली। अंधेरी स्याह जिंदगी को सूझती नहीं गली के आज हाथ

परिणीता फिल्म का गीत सुनिधि चौहान की आवाज में आपने सुना। अब मोहित चौहान और ए आर रहमान की आवाजों में ये गाना सुनिए। फिल्म का नाम है रॉकस्टार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रिया होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती है और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी।

0: इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
1: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
2: नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है। वे आज एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एशियाई सदी को आकार देने संबंधी विषय पर भारत जापान रणनीतिक संवाद को संबोधित कर रहे थे।
3: ट्रेड ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पार्टनरशिप।
4: भारत के कुशल कार्यबल के लिए अवसर खुल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
3: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायमेंशन।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। श्री पुरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमतों में 6.23% की ही वृद्धि हुई है। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष जून में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है।

0: मंत्रालय ने बताया कि रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस वर्ष जून में यात्री आवागमन में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने कोयला खंड आवंटियों को अधिक वित्तीय सुविधा प्रदान करने और कोयला क्षेत्र में व्यापार को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किया है। कोयला खंड आवंटन संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत मंत्रालय ने कोयला खंड और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत आवंटित कोयला खंडों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के स्थान पर बीमा गारंटी बॉन्ड के उपयोग को सक्षम बनाया है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। केरल में शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने वाले नशीले पदार्थों के गिरोहों पर राज्य पुलिस की कार्रवाई में 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। केरलम पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने राज्य में 5,353 मामले दर्ज किए हैं और 5,736 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलीथीन लाओ चाय पाओ नाम की एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक बनाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में नुनवान और गांदरबल जिले के बालताल स्थित दोहरे शिविरों में पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: यात्रियों का पहला जत्था आज दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री शामिल हैं। इसमें से 2,510 यात्री पहलगाम के रास्ते से यात्रा करेंगे, जबकि 2,312 यात्री बालतल से होते हुए बाबा बर्फानी की गुफा का रुख करेंगे। नुनवन और बालतल कैंप पहुंचते ही प्रशासन ने यात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यात्रा के मद्देनजर दोनों रास्तों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दोनों रास्तों पर पुलिस, अर्धसैनिक बलों और आर्मी जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं, मौसम की जानकारी के लिए प्रणाली, अहम जगहों पर क्विक रेस्पॉन्स टीमें, बड़े पैमाने पर CCTV निगरानी और RFID आधारित प्रणाली भी लगाई गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
0: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी आकलन जारी है और इसके पूरा होने पर केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन बल SDRF और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के मानदंडों के अनुसार राहत सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: विभाग ने अगले 2-3 दिनों में गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। इसी दौरान छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में भी मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। हालांकि दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजल्स स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं

0: टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। स्क्वाश में विल्वन सेंथिल कुमार और तन्वी खन्ना ने मुंबई में पीएसए चैलेंजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेंथिल कुमार ने मिस्र के अब्दुल्ला हाफिज और को जबकि तन्वी ने जापान की जोई फू को हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

लीजिए पेश है प्रोग्राम आज के फनकार। सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों आज के फनकार हैं जाने माने पार्श्व गायक मोहम्मद

0: लखन।
1: दोस्तों, लखन नाम तो फिल्म राम लखन में अभिनेता अनिल कपूर का नाम था, लेकिन इस गाने की मकबूलियत ने पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज को सुनने वालों के दिलों में इस तरह बसा दिया जैसे सीप में मोती और किसी अंगूठी में कोई शानदार नगीना।

0: 2 जुलाई 1954 को गुमा वेस्ट बंगाल में जन्मे मोहम्मद अजीज का पूरा नाम था सैयद मोहम्मद अजीज उन नबी। शुरुआती कुछ फिल्मी गाने उन्होंने मुन्ना अजीज के नाम से भी गाए, बाद में उनकी पहचान बनी बतौर पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज के नाम से। मोहम्मद अजीज जाने माने पार्श्व गायक मोहम्मद रफी के बड़े प्रशंसक थे।
1: न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, न फनकार तुझसा

0: मोहम्मद अजीज को अपने जीवन में फिल्मी गायन का पहला मौका मिला बंगाली फिल्म ज्योति से। दोस्तों, आपको यहाँ याद दिलाना चाहेंगे कि बंगाली फिल्मों में मोहम्मद अजीज के तमाम गाए गीत बेहद मशहूर हुए। उसके बाद 1984 में हिंदी फिल्म अंबर में भी उन्होंने पार्श्व गायन का सिलसिला जारी रखा, लेकिन हिंदी फिल्म संगीत जगत में उनकी पहचान बनी मर्द फिल्म के इस गाने से।
1: मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, हे मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त है ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला, ओ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त है ऊपर

0: जानवर से नहीं वफादार। ओ खत्म तेल को तोड़ दे दम, मरते दम तक चले ये टम टम। अरे क्यों भाई बादल क्यों भाई मोती, मैं सच कहता हूँ मर्द टंगे वाला मैं हूँ, मर्द टंगे वाला। मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त ऊपर वाला। मर्द टंगे वाला मैं हूँ, मर्द टंगे वाला। मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त ऊपर वाला।
1: अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म मर्द का ये सुपरहिट गीत गाकर मोहम्मद अजीज रातों रात पार्श्व गायन की ऊंची पायदान पर जा पहुंचे। इस फिल्म का संगीत दिया अनु मलिक ने और लोगों ने पहले तो ये समझा कि ये गाना शब्बीर कुमार ने गाया, लेकिन जब गौर किया गया तो पता चला मोहम्मद अजीज की आवाज है और बाद में इस आवाज ने धूम मचा दी।

मोहम्मद अजीज का बंगाली और उड़िया फिल्म इंडस्ट्री से भी जो गहरा नाता रहा है उसका जिक्र हम शुरू में ही कर चुके हैं। हिंदी फिल्म जगत की नामी संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ भी मोहम्मद अजीज का जुड़ाव दोस्तों लंबी अवधि तक बना रहा।

मोहम्मद अजीज ने अपने गायन जीवन में अपनी समकालीन दिग्गज गायिकाओं के साथ गीत गाए। लता जी के साथ उनका गाया ये गीत हम कैसे भुला सकते हैं, जो सिंदूर फिल्म का है।

दोस्तों, मोहम्मद अजीज ने, जैसे कि हम बता चुके हैं, अपनी समकालीन हिट सुपरहिट गायिकाओं के साथ भी गाने गाए हैं, तो उसमें अलका याग्निक का जिक्र ना हो तो प्रोग्राम थोड़ा अधूरा सा लगेगा। आइए सुनवाते हैं आपको बंजारन फिल्म का ये गाना।

दोस्तों यहाँ ये भी जिक्र करना जरूरी होगा कि मोहम्मद अजीज ने हिंदी फिल्म जगत के तमाम बड़े सितारों के लिए पार्श्व गायन किया है, जैसे अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, अनिल कपूर और गोविंदा के साथ साथ और भी कई कलाकार हैं। ऋषि कपूर के लिए मोहम्मद अजीज का गाया फिल्म नगीना का ये गीत बेहद मकबूल रहा है।

बहुमुखी गायन प्रतिभा के मालिक मोहम्मद अजीज ने विभिन्न भारतीय भाषाओं में लगभग 20,000 गीत गाए हैं। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी बर्मन, नौशाद, ओपी नैयर, राजेश रोशन, राम लक्ष्मण और रविंद्र जैन से लेकर उषा खन्ना, आनंद मिलिंद, नदीम श्रवण, जतिन ललित, अनु मलिक, आनंद राज आनंद और आदेश श्रीवास्तव तक तमाम संगीतकारों के निर्देशन में मोहम्मद अजीज ने गीत गाकर सभी को लुभाया है, बहलाया है। अनुराधा पौड़वाल के साथ मोहम्मद अजीज का गाया ये गीत आज भी 90 के दशक के फिल्म संगीत की यादों को ताजा कर देता है।

मोहम्मद अजीज ने हमारे देश के अलावा विदेशों में भी जाकर मंच पर अपने कई प्राइवेट कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। उड़िया और बांग्ला भाषाओं में कई फिल्मी गाने उन्होंने अनुराधा पौडवाल के साथ भी गाए और तमाम कई फीमेल सिंगर के साथ भी उनके गाए गीत मकबूल हुए हैं। और जहां तक भजन का सवाल है तो आपको हम ये बता दें कि उड़िया भाषा में उनके कई भजन मशहूर रहे हैं और कई अवसरों पर गाए जाते हैं।

27 नवंबर 2018 को अचानक हुए हृदयाघात यानी हार्ट अटैक की वजह से मोहम्मद अजीज हमारे बीच नहीं रहे। दोस्तों कहते हैं ना, जिस्मानी तौर पर भले ही कलाकार हमारे बीच ना हो, लेकिन अपनी विधा के बल पर वो अपने चाहने वालों के दिलों में बसा करते हैं। इसी तरह पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज भी अपनी आवाज के जरिए हमेशा हमेशा अपने चाहने वालों के मन में जीवित रहेंगे।

0: लगे।
1: तो दोस्तों ये था आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज पर। तकनीकी सहयोग दिया वंदना ठाकुर ने और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। अब दीजिए अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।
2: आज के फनकार।

माया गीत के सुनने वालों को नेहा आगरकर देसाई का नमस्कार। तेरी यादों की डोर से बंधा मेरा मन न जाने कितने सपने बुनता रहता है। कभी तेरी एक मुस्कान इन धागों को और मजबूत कर देती है, तो कभी तेरा इंतजार इन्हें और भी अनमोल बना देता है। नजर तो नहीं आते ये प्यार के धागे, मगर हर धड़कन में इनकी छुअन महसूस होती है। शायद इसी बंधन का नाम मोहब्बत है, जो दूरियों में भी साथ निभाती।

रोज एक ही ख्वाब मेरी आंखों में चला आता है। उस ख्वाब में तुम होते हो और तुम्हारे साथ कुछ अधूरी सी प्यारी सी बातें होती हैं। कभी तुम मुस्कुराकर पास आ जाते हो तो कभी बिना कुछ कहे ही दिल की बात कह जाते हो। सुबह आंख खुलती है तो ख्वाब टूट जाता है, लेकिन तुम्हारी वही मुस्कान मन में ठहर जाती है। शायद इसी का नाम प्यार है, जब हकीकत से पहले कोई अपने ख्वाबों में बसने लगे।

मैंने आज दिल से तुझे अपना माना है, तेरी हर सांस को ही अपना जाना है। तू भी मेरी धड़कनों का हिस्सा बन जा, मेरे हर ख्वाब का सच्चा किस्सा बन जा। ना मैं तुझसे दूर जाऊं, ना तू मुझसे कभी, ये साथ हमारा टूटे न चाहे आए कैसी भी घड़ी। हम दोनों का ये रिश्ता बस यूं ही रहे, हर जन्म में तेरा हाथ मेरे हाथ में रहे।

अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का छाया गीत कार्यक्रम में स्वागत है। तुझे देखकर मन में एक अजीब सा अपनापन उतर आता है, जैसे तेरी हर खामोशी भी मुझसे कुछ कह जाती हो। तू सावन है तो मैं किसी सूखी नदी सी हूँ, तेरे आने से ही जैसे मैं पूरी हो जाती हूँ। तेरी हंसी में मुझे अपना बचपन दिखता है, तेरी आंखों में मेरा हर सपना सजता है। और सच कहूँ तो तुझे देखते ही लगता है कि मैं तुझे युगों युगों से जानती हूँ।

मैं उस बात से अनजान हूं जिसने मेरी रातों की नींद चुपके से ले ली। अब हर रात लंबी लगती है, जैसे समय भी मुझसे रूठ गया हो। दिल में एक अजीब सी बेचैनी है, पर वजह कोई नहीं बता पाता। खामोशी भी अब कुछ कहती सी लगती है, पर मैं समझ नहीं पाती। बस इतना एहसास है कि कुछ तो है जो मुझे अंदर ही अंदर जगा रहा है, और मैं अब उस नए एहसास को और करीब से जानना चाहती हूँ।

दो नैन है उसके, पर उनमें मेरी ही एक कहानी बसी है। कुछ उसके होठों ने कभी कहा नहीं, पर मैं उसे हर बार आंखों में पढ़ लेती हूँ। कुछ बातें वो छुपा लेता है और कुछ मैं भी मुस्कुराकर अनसुना कर देती हूँ। लिखा हुआ नहीं है, फिर भी हर एहसास मुझे साफ साफ समझ आता है, जैसे कोई अधूरी किताब हो जिसे हम दोनों मिलकर जी रहे हों, और मैं हर बार उसके नैनों में खुद को उसकी मोहब्बत बनकर देख लेती हूँ।

0: जाए रात।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
0: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन
2: कौन लाया, कौन लाया।

0: ये थी ऋचा शर्मा की आवाज़। और आइए अब आपको सुनवाते हैं सुलक्षणा पंडित और आरती मुखर्जी का गाया हुआ ये गाना। लिखा है माया गोविंद ने, धुन बनाई है राज कमल ने।
1: धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: रंग तरंग कार्यक्रम में अब सुनवा रहे हैं राजेंद्र मेहता और नीना मेहता की गाई ये गजल।

जुबिन नौटियाल की आवाज में आपने सुना ये गाना, गुरुप्रीत सैनी के बोल थे, रोचक कोहली का संगीत था। और आइए अब आपको सुनवाते हैं दिलराज कौर की आवाज, मोहसिन नकवी का कलाम।

0: डिस्पैच कर दिया है नैट सिवर ब्लंट ने गेंद को 4 रनों के लिए।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: यकायक परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई दे रही हैं और जैसा दर्पण इशारा कर रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि दोनों बैटर्स की आंखें जम चुकी हैं और एक जो गेंदबाजी अटैक था उसमें पूरी गेंदबाजी में जो धार होनी चाहिए। अगली गेंद एक बार फिर से उसे फाइनल लेग बाउंड्री की और 4 रनों के लिए डिस्पैच कर दिया गया है।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: कहते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, परिस्थितियां किस तरीके से बदलती हैं इसका नमूना पेश करते हुए नैट सिवर ब्रांट और हैदर नाइट, पर्टिकुलरली नैट सिवर ब्रांट, लेग स्टंप की दिशा में शॉर्ट डिलीवरी, लगातार 2 गेंदों पर बैक टू बैक बाउंड्रीज, पिछले ओवर में 10 रन बनाए गए और पलक झपकते ही इन दोनों बैटर्स ने 50 रन की साझेदारी पूरी कर ली है। एक बार फिर से गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला गया है ड्राइव करने के अंदाज में, हालांकि वहां पर शबनम स्माइल मौजूद थी, गेंद को उन्होंने फील्ड किया, 1 रन का इजाफा, पहली गेंद डॉट डिलीवरी, दूसरी गेंद पर चौका, तीसरी गेंद पर चौका, चौथी गेंद पर सिंगल, 45 गेंदों में 54 रन।

0: इन दोनों खिलाड़ियों द्वारा जोड़े गए हैं, जिनमें नैट सिल्वरब्रंड का योगदान 31 रन का और हेदर नाइट का योगदान है 21 रनों का। 77 तीन विकेट के नुकसान पर इस बार फुल लेंथ डिलीवरी थी। अंतिम क्षणों में अपने स्ट्रोक को चेक किया, धीमे से पुश किया और स्ट्रोक खेलते ही दौड़ पड़ी थी नैट सिल्वरब्रंड और हेदर नाइट और नैट सिल्वरब्रंड के बीच में एक जो अंडरस्टैंडिंग देखने को मिल रही है, एक जो साझेदारी जिस तरीके से पुष्पित पल्लवित हो रही है, वो साउथ अफ्रीका के लिए एक डेंजरस सिग्नल हो सकता है। मिडिल और लेग स्टंप पर ऑन साइड में मोड़ा, मिड विकेट की दिशा में खिलाड़ी डीप में बाउंड्री लाइन के आसपास तैनात है, बड़ी आसानी के साथ रन मिलेगा। 11 ओवर के बाद 79 रन तीन विकेट के नुकसान पर।
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
2: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
4: Last two overs have produced 21 runs. Heather Knight and Nat Sivabrant have shifted gears. South Africa need to be careful or this game will slip out of their hands. Ayobonga Khaka comes back into the attack, delivers this one on a good length. However, it goes down the leg side and Nat Sivabrant has helped it along to the fine leg boundary for 4.
5: Ye laga Abha ka choka.
4: Yes, a poor ball, but Nat Sivabrant, after the ball had left the bowler's hand, she squared up in her stance and then played the scoop shot or the lap shot, as they call it these days. And the ball went to the right of the short fine leg fielder. Excellent placement. That is why she's so highly rated. Next delivery, what is Kaka's response going to be? She shortens her length, delivers it in line with the stumps. And there comes out the short arm pull from Nat Sivabrant. And before the ball is fielded in the deep mid-wicket region, once again, the batters hustle quickly between the wickets to take 2 runs. Once again, good hustle, good running between the wickets. This is what they are known for. Remember, folks, Sivabrant was out with a calf injury, yet she's running as if her life is on stake. This is what good athletes do when the stakes are high, when it is the semi-final, when it is the big stage. Slower delivery this time around from Khaka, outside the off stump, on a foolish length. However, Sivabrant was able to press towards it and then use her wrists to whip it towards long on and pick up a comfortable single. And just like that, Sivabrant has moved to 41 in just 31 balls. That strike rate now, Shivendra, is giving a handsome reading.
0: 2023 के बाद से नैट सिवरब्रंट ने एक आंकड़ा हमारे स्क्रीन पर आया था जिसमें ये रिफ्लेक्ट हो रहा था, इसी बीच बैकफुट पर जाकर कट कर दिया। थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर जा चुकी है गेंद 4 रनों के लिए। हेदर नाइट के बल्ले से निकला है बेहतरीन चौका।
5: ये लगा आभा का चौका।
0: 90 रन तीन विकेट के नुकसान पर 11.4 ओवर की बल्लेबाजी के बाद। और जतिन सूद बता रहे हैं कि नैट सिवरब्रंट और हेदर नाइट के बीच आयरलैंड के खिलाफ 64 रनों की साझेदारी हुई थी इसी विश्व कप में, जबकि आयरलैंड के खिलाफ टीम खेल रही थी। और आज तो खैर ऐसी साझेदारी की बहुत ज्यादा शिद्दत से तलाश थी। 41 रन 31 गेंदों में नैट सिवरब्रंट, 22 गेंदों में 26 रन हेदर नाइट, 11 चौके पारी में लगाए जा चुके हैं। पहली गेंद पर चौका, उसके बाद कपल एक सिंगल और उसके बाद फिर से चौका। परिवर्तन के तौर पर आयाबोंगा खाका की ये गेंद डॉट डिलीवरी में कन्वर्ट होती हुई, बाउंड उसको फॉलो थ्रू में ही फील्ड किया गया था उनके द्वारा, रन बनने की कोई संभावना नहीं थी। तो ये दोनों खिलाड़ी, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कुछ प्रण कर रखा है, निश्चय कर रखा है कि आज हम इंग्लैंड के नैया को पार लगाएंगे।
4: एब्सोल्युटली, दैट इज व्हाट द टीम नीड्स, दैट इज व्हाट ऑल ऑफ इंग्लिश क्रिकेट फैन बेस is expecting from them. This delivery on a full length on the pads has been flicked away towards deep square leg for a comfortable single. That single takes Heather Knight to 27. We come to the end of the 12th over. 91 for 3 is what the score is. And this over was once again an expensive one from South Africa's perspective. It produced 4 plus 2 plus 1, if my math is right, about 12 runs out of it. So 33 runs in the last 3 overs. The momentum has shifted. South Africa desperately need a wicket or else they will see England running away with this match. Let us tell you, folks, that the average first inning score in the

0: women's T20 Is played at the Oval is 152. However, in the England-New Zealand match that was played here last week, we saw New Zealand score 164 and England chased it down with 16 balls to spare. So it's a good track for batting. Malaba delivers this one on the pads. It has been flicked away towards square leg, and before the fielders in the deep can converge and throw the ball back, once again the two batters have haired back and forth and converted this into a couple. Once again, fabulous, enthralling running between the wickets. Watch out for it. Malaba gets ready to deliver what will be the second ball of the 13th over, delivers this one on the shorter side of good length, outside the off stump, has been chopped towards extra cover where Laura Wolfart does the fielding. No runs to be had of that ball. However, what South Africa need is a wicket.
1: 93 रन 3 विकेट के नुकसान पर मलाबा की गेंद स्टेप आउट किया हाफ वाले बल्ले कर इनसाइड आउट के अंदाज में खेला है. हालांकि फील्डर डीप में तैनात थी लेकिन गेंद को रोक नहीं पाई है. गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है 4 रनों के लिए.
2: ये लगा आभा का चौका.
1: हैदर नाइट एंड नैट सिल्वरब्रंट दे आर ऑन फायर. उन्होंने प्रण कर रखा है कि आज कुछ खास करके दिखाना है. और साथ ही एक और खास बात देखने को मिल रही है कि इंग्लैंड की बल्लेबाजी में जो डेप्थ है उसका आज नमूना पेश किया जा रहा है मिडल ऑर्डर में इन दोनों बैटर्स के द्वारा.
0: द लास्ट बाउंड्री दैट वॉज हिट बाय हैदर नाइट बिफोर द बॉल हिट द बाउंड्री कुशंस और सो वी फेल्ट, नदीन डी क्लर्क रन अक्रॉस फ्रॉम लॉन्ग ऑफ, पुट इन अ big dive towards her right and tried to flick it away from the boundary cushions. We felt that the ball had already hit the boundary cushions, and now comes the confirmation from umpire Eloy Sheridan, albeit it comes after a delay because a boundary check was happening. It has been signaled a 4, 97 for 3 after 12.3 overs. Next delivery, Malaba this time delivers it with a slightly flatter trajectory so that the batter cannot step out on a good length around the off stump, and once again brilliant use of wrist from Heather Knight, who tucks it away into the gap between long on and deep mid wicket. And once again these two running like two cheetahs between the wicket convert it into a couple. 99 for 3 after 12.4 overs. The running between the wickets has been exhilarating.
1: 28 गेंदों में 35 रन पर पहुंच गई है हैदर नाइट. और बड़ा संयोग वाली बात यह है कि काफी देर से नैट सिल्वरब्रंट को बहुत ज्यादा स्ट्राइक नहीं मिल रही है. उन्होंने 31 गेंदें खेली हैं, 41 रन पर पहुंची है और 29 गेंदों में 35 पर पहुंच गई हैं हैदर नाइट. और चौथे विकेट के लिए 58 गेंदों में 76 रन इन दोनों बैटर्स द्वारा जोड़े जा चुके हैं. क्या बेहतरीन साझेदारी हुई है. 99 रन इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, स्टेप आउट किया, ऑन साइड में खेला और मिड विकेट की दिशा में जब तक गेंद को फील्ड किया जाए आसानी के साथ एक रन. इसके साथ ही 13 ओवर के बाद 100 रन पूरे होते हुए इंग्लैंड के 13 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा है 100 रन 3 विकेट के नुकसान पर.
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
3: तुम हो ही भुलक्कड़.
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली.
5: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में.
6: आभा
5: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
0: Last four overs have produced 42 runs. South Africa need a breakthrough. They go to Nadine D. Clerk, who is obviously an experienced campaigner. Hasn't done a lot of things with the ball in this tournament. However, here she induces an LBW appeal. However, the impact to my untrained eye seemed to be outside the off stump. Nat Sivabrant, beg your pardon, it was Heather Knight, the batter in question, and the umpire has turned Nadine D. Clerk's appeal down. She ran in from over the wicket, delivered this one on a full length. The replay on my monitor suggests that she released it with a cross seam grip, and Heather Knight had planted her foot outside the off stump before trying the cross batted swish. She missed the ball hit her pad, and the umpire showed no interest. Let us remind you, South Africa ran out of reviews very early because they burnt two reviews wastefully. Anyhow, the next delivery outside the off stump on a full length has been driven towards deep cover for a comfortable single, which takes Heather Knight to 37 and brings Nat Sivabrant back on strike. This losing of reviews, we told you that it is going to be an interesting subplot in this story. Next delivery, a low full toss, flicked away for 4.
2: ये लगा आभा का चौका.
0: डी क्लर्क

0: was probably searching for a yorker, ended up drifting on the pads, failed to land this one, and Natsiva Brunt, who is now watching the ball like a football, was quickly onto it and flicked it away towards the deep backward square leg boundary to pick up four. Next delivery, again a very full length delivery. This time Nadine de Klerk pretty much lands it where she wanted it to, outside the off stump, and Natsiva Brunt squeezes it towards the backward point fielder Anari Dirksen, will ensure that the ball doesn't pass her. A dot ball for our scorer Sunil Dighe to mark.
1: Production ने इस गेंद को रोका जरूर, लेकिन ऐसा लगा कि हाथ झटकती हुई नजर आई, शायद इस बार स्कूप करने की कोशिश, और कोशिश कामयाब होती हुई, विकेट कीपर के सिर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है चार रनों के लिए।
2: ये लगा आभा का चौका।
1: Natsiva Brunt की जितनी तारीफ की जाए कम है, बड़े संकट की घड़ी में वो आई थी जब इंग्लैंड की हालत खराब थी और तीन विकेट गिर चुके थे। इनफैक्ट 6 ओवर के बाद 35 रन बने थे तीन विकेट के नुकसान पर। अब पिछली तीन गेंदों में उन्होंने दो चौके लगा दिए हैं और 49 पर पहुंच गई हैं, और इसके साथ ही अगली गेंद को इन्होंने मिड विकेट की दिशा में खेला है, दो फील्डर्स को बायसेक्ट करते हुए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है चार रनों के लिए।
2: ये लगा आभा का चौका।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
0: Natsiva Brunt with that boundary has completed a half century, 53 and 35 balls, out of which 9 came, 9 boundaries were scored, all in enthralling fashion, all in riveting fashion. It's been a captain's knock, as Shivendra was just talking. She came out to bat when England were in a deep, deep spot of bother. However, she exhibited maturity, responsibility at the start, provided sturdiness to the innings, but once she got her eye in, she started exhibiting what she's known for, those innovative shots behind the square, that quick, lightning quick running between the wickets, and it has been a joy to watch and call this innings live. England 113 for 3 at the end of the 14th over. Drinks are currently on the field, and I believe, Shivendra, South Africa will be scratching their heads because they need to find a way to get this partnership broken.
1: ऐसा लग रहा है कि साउथ अफ्रीका की जो गेंदबाजी है पूरी तरीके से डिरेल हो चुकी है, और अगर थोड़ा सा अगर वैगन व्हील हमारे पास सामने आएगा तो उससे लगता है, ऐसा दर्पण पता चलेगा कि मिडिल और लेग स्टंप की दिशा में ही गेंदों को, गेंदबाजी को केंद्रित किया गया है, और Natsiva Brunt ने खासतौर पर उसका बेहतरीन भरपूर मजा लिया है। उन्होंने स्कूप शॉट्स खेले हैं, उन्होंने मिड विकेट की दिशा में स्ट्रोक्स खेले हैं, जब जब शॉर्ट डिलीवरीज आई हैं तब उन्होंने पुल करने के अंदाज में स्ट्रोक्स खेले हैं। 19वां अर्धशतक है T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बल्लेबाजी करना बहुत पसंद करती हैं, चौथा अर्धशतक है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और T20 वर्ल्ड कप में उनका 8वां अर्धशतक है। ये आंकड़े जतिन सूद ने हम तक पहुंचाए हैं हमारे स्टैटिस्टिशियन के द्वारा, और ये आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि Natsiva Brunt आज सोफिया डंकली की जगह पर उनको टीम में शामिल किया गया था। हालांकि सोफिया डंकली का जो प्रदर्शन था पिछले मुकाबले में वो कहीं से भी खराब नहीं था, लेकिन सच्चाई ये है कि आज जब टीम में वापसी हुई है Natsiva Brunt की, तो उन्होंने साबित कर दिया है कि क्यों उनको लंबी रेस का घोड़ा कहा जाता है, और उन्होंने बड़ी सेवा की है। उनके साथ साथ हैदर नाइट, जो कि इस समय क्रीज पर मौजूद हैं, चौथे विकेट के लिए इन दोनों खिलाड़ियों ने एक अविस्मरणीय साझेदारी निभाई है, और साउथ अफ्रीका का जो गेंदबाजी आक्रमण जिसमें मैरिजन कैप आई, शबनम स्माइल आई, इनफैक्ट अयाबोंगा खाका भी उस तिकड़ी की बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हैं, मलाबा इसी बीच नया ओवर लेकर के आई हैं, और लगातार मिडिल और लेग स्टंप की दिशा में ही गेंदबाजी की जा रही है। ये अलग बात है कि इस बार स्ट्रोक अच्छे से खेल नहीं पाई हैदर नाइट, लेकिन 113 रन तीन विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका है, 15वां ओवर प्रगति पर है।
0: दैट डिलीवरी stayed low from where I saw it, Shivendra. It was drifting on the pads and Heather Knight went for a cross-batted swipe, but it stayed low and struck her pad. Next delivery, this one generates a bit of extra bounce. This time Heather Knight was looking to go for the reverse swish or the

0: midfielder in the team who dives forward but isn't able to catch it. It is Nadine de Klerk who has made a valiant effort but dropped the catch and buries her face into her palm, the Shabnam Ismail. This was a good length delivery, but once again an off-base ball in line with the stumps went towards her left, did Heather Knight, to allow the bat to come through, then swung her bat hard, and the replay on my monitor tells me that I jumped the gun. Nadine de Klerk did dive forward, but she ended up collecting the ball on a half volley. She did not exactly reach the ball, so it's a valiant effort and not a drop catch. Anyhow, the last ball of the over, Nat Sivabrant now on strike. Good length delivery, angling in towards the off stump. Sivabrant backs away and chops it towards cover. End of the 16th, 123 for 3.
1: 23 रन पर 3 इंग्लैंड का स्कोर था और अब 100 रनों की साझेदारी हो चुकी है नैट सिवब्रंट और उनके साथी हैदर नाइट के बीच में. और जतिन सूद बता रहे हैं कि चौथे विकेट के लिए इस विश्व कप में ये सबसे बड़ी साझेदारी है. 101 रन न्यूजीलैंड बनाम स्कॉटलैंड के बीच में 101 रन बनाए गए थे इनफैक्ट शार्प और हैलिडे के बीच में, और अभी फिलहाल 100 रन बने हैं. तो जाहिर सी बात है जिस अंदाज में बल्लेबाजी हो रही है ये जो आंकड़ा है ये भी पीछे छूटने वाला है. 16 ओवर के बाद 123 रन है, 3 विकेट के नुकसान पर 7.69 रन प्रति ओवर के औसत से रन बनाए जा रहे हैं. मिडिल और लेग स्टंप की दिशा में एक बार फिर से आया बोंगा काका आई हैं. नए ओवर की उन्होंने शुरुआत की है, लगभग 89-90 किलोमीटर की स्पीड से गेंदबाजी करती हैं और कोई मुश्किल नहीं इसे नेगोशिएट करने में. ऑन साइड में खेला, हालांकि गेंद बाउंस करती हुई हवा में थी लेकिन फील्डर के पास नहीं, नो मैंस लैंड में गिरती हुई. बड़ी आसानी के साथ रन दिए गए और नैट सिवब्रंट ने जिस अंदाज में चौके लगाए हैं, खासतौर पर उन्होंने ऑन साइड में मिडिल और लेग स्टंप पर जब उनको गेंद फेंकी गई है, पुल शॉट बहुत ही बेहतरीन खेलती है लेकिन इस बार डीप में बहुत अच्छी फील्डिंग. 2 रन तो खैर मिल ही जाएंगे और जहां सिंगल आ रहे थे 1 रन को 2 रन में बदला है, 2 को 3 में बदला है, खराब गेंदों को चौकों में बदला है. और इंटरेस्टिंग बात एक और है, दर्पण की पूरी पारी में एक भी ओवर बाउंड्री या एक भी छक्का नहीं आया है. यह भी जाहिर करता है कि बल्ले को बड़ी सावधानी से गेंद के साथ कनेक्ट किया गया है. और ओवर बाउंड्रीज कई बार ऐसा भी होता है कि मिसक्यूट शॉट की बदौलत भी आ जाती है, वैसा कुछ देखने को नहीं मिला. पारी का 17वां ओवर चल रहा है और रन बनाने की रफ्तार 7.70 रन प्रति ओवर. ओवल के मैदान पर यह मुकाबला इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीमों के बीच खेला जा रहा है. दूसरा सेमीफाइनल है महिला टी20 विश्व कप का, जहां दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया. आया बोंगा काका की गेंद, लो फुल टॉस पर, और ऐसा लगता है कि हैदर नाइट ने हमारी बात सुन ली थी. लो फुल टॉस पर उन्होंने गेंद को बाउंड्री के बाहर डिस्पैच कर दिया है. 6 रनों के लिए पहला छक्का.
2: ये लगा आभा का छक्का.
1: जी हां, पारी में लगने वाला पहला छक्का 42 गेंदों में 52 रन पर पहुंच गई है. हैदर नाइट 123 से ऊपर का उनका स्ट्राइक रेट.
0: हर 10th T20I 50. She also has 100 to her name and the first against South Africa in this long illustrious career of hers. And now unfurls a delectable inside-out drive which fetches her another 4.
2: Ye laga abha ka choka.
0: This was a slower delivery, perhaps the attempted leg cutter from Ayobonga Khaka outside the off stump, however on a drivable length. Nat and Heather Knight pressed backwards so that she could get underneath the ball, and then whilst flaunting that high elbow of hers unfurled that delectable inside out drive towards the extra cover region. She moves to 56, England 137 for 3, looking at a score perhaps in the excess of 175 from here on in. Another slower delivery, this time it has been driven along the carpet in the same direction in the deep extra cover region. It will be fielded by Nadine de Klerk, who runs towards her left to cut it off. 138 for 3 at the end of 17.
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
3: तुम हो ही भुलक्कड़.
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली.
5: मरिए मत, जानिए आभा के बारे में.
6: आभा
5: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.

0: इंग्लैंड की टीम एक समय संघर्ष करते हुए नजर आ रही थी। सेमीफाइनल में 23 रन थे 3 विकेट के नुकसान पर, और जो शुरुआती 3 बैटर्स थी डैनी वियर्ड फॉज, एमी जोन्स और एलिस कैप्सी आउट होकर पवेलियन वापस लौट चुकी थी, लेकिन उसके बाद नैट सिवर ब्रंट और हेदर नाइट का आगमन हुआ क्रीज पर। 138 रन 3 विकेट के नुकसान पर फिलहाल स्कोर है। एडीन डी क्लार्क नए ओवर को लेकर के आई हैं, स्लोअर डिलीवरी थी, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, उसका ड्राइव किया लॉन्ग मिड ऑफ की दिशा में 1 रन के लिए। दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदल लिया। पारी का ये कुल मिलाकर के 18वां ओवर है और नदीन डी क्लार्क अपना 3रा ओवर लेकर के आई हैं। तो शबनम इस्माइल ने अपना गेंदबाजी का कोटा पूरा कर लिया है, मैरिजन कैप ने गेंदबाजी का कोटा पूरा कर लिया है, अयाबोंग खाका दरअसल ये जो टिकरी है जिसने इस मैच से पहले 25 विकेट हासिल किए थे, आज अयाबोंग खाका बहुत ही निष्प्रभावी रही। इसी बीच अगली गेंद को मिड विकेट की दिशा में डिस्पैच कर दिया है सिवर ब्रंट ने 4 रनों के लिए।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: तो चौकों की बरसात हो रही है ओवल के मैदान पर, खराब ओवरऑल गेंदबाजी का नमूना पेश किया जा रहा है। ओवर पिच डिलीवरी एक कदम आगे बढ़ाकर हाफ वॉली पर लेकर मिड विकेट की दिशा में गेंद को डिस्पैच किया गया 4 रनों के लिए 143 3 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से स्टेप आउट करके हाफ वॉली पर लेकर गेंद को ओवर बाउंड्री के रूप में कन्वर्ट किया है। 6 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है।
1: ये लगा आभा का छक्का।
0: दोनों बैटर्स के बीच में कॉम्पिटिशन चल रहा है। 18 चौके और 2 छक्के लगाए जा चुके हैं नैट सिवर ब्रंट और हेदर नाइट। तू डाल डाल मैं पात पात वाली कहानी दोहराते हुए, और दोनों के बीच में ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन है कि कौन स्कोरिंग के मामले में दर्पण एक दूसरे से आगे निकलेगा।
2: दैट सिक्स वॉज ह्यूज, 85 मीटर्स far the ball went. Oh, Natsiva Brunt has not only shifted into the top gear, might as well add that she has now turned on the nitro boosters. 149 for 3 England in 17.3 overs. Looks like she smacked the ball so hard that it has gone out of shape. The two umpires have converged and they are having a close look at the ball. Natsiva Brunt, this is why they were so desperate to play her. Remember, she missed the ODIs against New Zealand played earlier. She missed the T20Is played against New Zealand earlier. And then she featured in the practice matches, featured in the first couple of games they played in this tournament. However, after that, she had to sit out due to an injury. Yet, in this big match, on the big stage, they brought her in because they know the value that she brings to this 11. The fans who have been following WPL also know how important a cog in the wheel she has been for the Mumbai Indians, who she represents in the WPL. She is an excellent, excellent player, one of the most consistent performers over the years. Meanwhile, reserve umpire Candice Labode is out there in the middle with a box of spare balls. We are going to have a change in ball, and South Africa will hope, their fans will hope, that the change in ball brings about a change in fortunes for them, because currently it's all going England's way. We still have 15 legal balls to go, and in those 15 legal balls they want to limit the damage as much as possible.
0: पिछले 5 ओवर में 56 रन बनाए गए हैं इंग्लैंड के बैटर्स के द्वारा। रन बनाने की रफ्तार रही है 11.20 रन प्रति ओवर। नदीन डी क्लार्क की गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी थी, ऑन साइड में खेला है उसे, और गेंद 4 रनों के लिए मिड विकेट बाउंड्री के बाहर जा चुकी है।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: 153 रन 3 विकेट के नुकसान पर इस चौके के साथ ही 150 रन पूरे होते हुए इंग्लैंड के। तो कहां तो टीम स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही थी, और कहां ऐसा लग रहा है कि दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी की जो धार है वो तार तार हो चुकी है, पूरी तरीके से कुंद हो चुकी है। डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में लंबा फासला था। इस बार यॉर्क करने की कोशिश, अच्छी वापसी नदीन डी क्लार्क की, लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद को खेला है, 1 रन मिलेगा। 154 3 विकेट के नुकसान पर इस ओवर में 2 चौके 1 छक्का और 2 कपल, यानी कुल मिलाकर के 16 रन बनाए जा चुके हैं दोनों बैटर्स के द्वारा। रन बनाने की रफ्तार लगभग 9 रन के आसपास पहुंचती हुई, 8.64 रन प्रति ओवर टू बी प्रिसाइज। 17.5 ओवर के बाद 154 3 विकेट के नुकसान पर नैट सिवर ब्रंट 45 गेंदों में 73 रन पर पहुंच चुकी हैं। हेदर नाइट के बल्ले से निकलता हुआ यह स्ट्रोक डिफेंसिव स्ट्रोक था, रन बनने की संभावना नहीं। 46 गेंदों में 58 रन उनके नाम पर। 18 ओवर के बाद इंग्लैंड 154 3 विकेट के नुकसान पर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है

0: और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: 12 balls to go, 156 for 3, England, beg your pardon, 154 for 3, how many more can they get? This partnership, which is now worth 131 runs, is the highest ever in a knockout fixture in the T20 World Cup, as far as the women's are concerned. The next delivery, it's going to be bowled by Malaba, the left-arm spinner, who will be bowling her final over of the evening. Delivers this one on the shorter side of good length, angles it towards the body. Natsiva Bruns hangs back and then lofts it, chips it towards deep backward square leg to pick up a couple of runs. Next delivery, she goes for the big slog sweep, hasn't quite got it in the middle of the bat, and it will be caught at deep mid-wicket. Finally, this partnership has come to an end. Natsiva Brunt is out for 75, which happens to be the second highest score by a captain in the history of the ICC Women's T20 World Cup. Only person ahead of her is Amy Watkins of New Zealand, who scored 89 not out. Natsiva Brunt is out for a score of 75, and she will get a standing ovation, not just from the England dugout, but also from all the spectators that are present at the Oval. 75 of 47, which included 11 attractive fours and one huge 85 meter six. England are 156 for four.
2: नैट सेवरब्रंट ने अपना काम कर दिया है और उन्होंने इंग्लैंड को उस स्थिति में पहुंचा दिया है जहां से वो इस मुकाबले में जीत की सुगंध को महसूस कर सकते हैं, ये कहा जा सकता है। हालांकि क्रिकेट गौरवमयी अनिश्चितताओं का खेल है और कुछ भी कहना इस समय जल्दबाजी होगी। प्रिया कैम का आगमन हुआ है, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, लेग स्टंप की दिशा में चली गई थी, हालांकि विकेटकीपर भी उसको रोक नहीं पाई, गैदर नहीं कर पाई, लेकिन अच्छी बात है कि बैकअप था, शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में एक रन का इजाफा।
1: Yes, that has been signalled as byes by the on-field umpire. That takes England's score to 157. Heather Knight once again back on strike. Malaba at the top of her mark, running into ball what will be the fourth ball of the over. Steps out, does Heather Knight, and completely miscues it. An easy catch for Laura Wolfart at extra cover. And both set batters have now been dismissed. This was a clever piece of bowling from Malaba. Just 70.4 kilometers per hour is the reading on the speed gun, which tells us that she slowed it up, hung it up, allowed the batter to come forward, but eventually Heather Knight got deceived in the flight. She was probably looking to hit it more towards long off, but ended up slicing it, and an easy catch for the South African skipper. Yes, Heather Knight has done her job with this excellent, responsible, mature 58 of 47. However, the fact that England have lost both the set batters with still about 8 deliveries to go means it could be a difference of nearly 10 runs, if not more, in their final score. And that sometimes can be the difference in the end. Danny Gibson is the new batter.
2: ये जो दो बैटर अब दर्पण आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, दो बेहतरीन बैटर्स के पवेलियन लौटने के बाद, फ्रेया कैंप ऑलराउंडर हैं, 173 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है, और डैनी गिब्सन 163 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है। तो ये दोनों बहुत ही सक्षम क्रिकेटर हैं, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, जहां शायद सिर्फ सिंगल होना चाहिए था उसे कपल में कन्वर्ट किया दोनों बैटर्स ने, फ्रेया कैंप और डैनी गिब्सन। तो ये भी एक संयोग है, क्रिकेट के मैदान पर बहुत बार देखने को ऐसा मिलता है कि जब दो बैटर्स बड़ी साझेदारी होती है, उसके बाद जैसे गेंदबाजी एक पेयर में की जाती है, कई बार क्या होता है कि जो बल्लेबाजों का आगमन क्रीज की ओर होता है या पवेलियन की ओर होता है वो भी एक साथ होता है। 19 ओवर फिलहाल समाप्त हो चुके हैं, 160 रन, 5 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड।
1: Malaba finishes off with 2 for 25 in her 4 overs. Excellent bowling figures, courtesy that brilliant final over. Before that, her penultimate over also yielded 3. So it was an expensive start from her. But again, it is not about how you start, it is about how you end. South Africa did not start this tournament on the right note. They started off with a drubbing against Australia. But can they finish on the right note? That is the question. England.

0: might not start this innings on the right note, but can they finish on the right note? A slow over penalty has been applied. South Africa have not bowled their overs in time, which means now they will have to have an extra fielder inside the 25-yard circle, which means they can only have three boundary riders, deep backward square leg, deep mid-wicket, and long on are currently those three fielders. Ayobonga Khaka, who has been expensive today, 35 runs off her three overs, is going to be bowling the final over. The keeper is up to the stumps. Danny Gibson, who's known for those big hits, is currently on strike. Delivers this one on a very full length, does Ayobonga Bongo Khaka, ensuring that the batter cannot get underneath it and hence cannot get the elevation. She does swing the bat hard and the ball goes skipping away towards deep mid-wicket, where Nadine de Klerk does the fielding and she ensures that there is no more than a single to be had. 161 for 5, 5 balls to go in the innings.
1: आयाबोंगा खाका अपने कोटे का आखिरी ओवर लेकर के आई हैं। 36 रन उन्होंने खर्चे हैं, पहली सफलता की तलाश है। मलाबा का पिछला ओवर साउथ अफ्रीका के लिहाज से बड़ा सुनहरा ओवर कहा जा सकता है, जहां उन्होंने दो विकेट हासिल किए थे। फिलहाल फ्रेया कैंप और डैनी गिब्सन क्रीज पर हैं। कैंप ने अभी सिर्फ एक गेंद खेली है, रन बनाने का सिलसिला उनको शुरू करना है। और जैसा हमने जिक्र किया, दर्पण बता रहे थे कि जो स्लो ओवर पेनल्टी है उसके लिहाज से केवल तीन खिलाड़ी 25 गज का जो घेरा है, सर्किल है, उसके बाहर तैनात किए जा सकते हैं। अन्यथा आमतौर पर सामान्य स्थिति में आप चार खिलाड़ियों को सर्किल के बाहर तैनात कर सकते थे। 161 रन 5 विकेट के नुकसान पर, रन बनाने की रफ्तार 8.40 रन प्रति ओवर। अच्छी वापसी करते हुए आयाबोंगा खाका ऑफ स्टंप की लाइन पर गेंद को केंद्रित रखा है। हल्का सा मूवमेंट भी स्लैश करना चाहती थी उसको, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क हुआ नहीं। और ऐसे समय पर कोई डॉट डिलीवरी जिसका मोल जो है वो सोने के भाव से तो कम हो नहीं सकता, और वो डॉट डिलीवरी डाली गई है आयाबोंगा खाका के द्वारा 161 5 विकेट के नुकसान पर 19.2 ओवर की बल्लेबाजी के बाद। और जब इनिंग्स ब्रेक होगा, स्टूडियो से आप हमारा कार्यक्रम सुनेंगे फ्री हिट 2020, जहां पर विशेषज्ञ मौजूद होंगे और आप उनसे उनका विवेचन सुन सकते हैं किस तरीके से इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की पारी आगे बढ़ी है गेंदबाजी में और बल्लेबाजी में। कैंप इस समय शून्य पर क्रीज पर हैं, स्ट्राइक पर हैं, सामने हैं गिब्सन। 3 दिनों में 4 रन बनाकर ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई वाइड की अपील करते हुए जैकलिन विलियम्स ने अपने दोनों हाथ हवा में समानांतर उठा दिए हैं, जो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आयाबोंगा खाका की ये गेंद उसे वाइड करार दिया गया है। और पिछली गेंद भी ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी, इस बार उससे भी ज्यादा बाहर। एक जो बाउंड्री लाइन है जहां पर वाइड का निर्धारण होता है, ब्लू लाइन, उसके बाहर टिप्पा गेंद खाती हुई। तो अभी भी अतिरिक्त रनों की संख्या हो चुकी है 10। इंग्लैंड 162 5 विकेट के नुकसान पर। ऑफ स्टंप की दिशा में गेंद ऑन साइड में खेला है, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद पहुंची है। 1 रन से संतुष्ट होंगे दोनों बैटर्स। साउथ अफ्रीका के लिहाज से दर्पण अच्छी वापसी कही जा सकती है।
0: यू कैन सी व्हाट शी इज ट्राइंग टू डू। खाका इज ट्राइंग टू टेक द बॉल अवे फ्रॉम फ्रेया कैंप्स आर्क। फ्रेया कैंप इज नोन फॉर that bat swing of hers. She's known to unfurl those golf swings. She might not appear as the most powerful person, but this youngster can strike the ball big due to her bat swing. However, she was able to shuffle across and work that one towards the leg side on the previous occasion. Next delivery, Gibson this time shuffles to the leg side. However, very intelligently, Khaka delivers this one outside the off stump of the right hander, and therefore in the end, even with a stretch, Gibson can not reach the ball. Yet another dot ball, intelligent bowling from Khaka. Next delivery, this time she delivers it in line with the leg stump. Gibson swings the bat hard, gets a top edge, the ball comes swirling down towards Chloe Tryon, who was running towards her left from short third, and looks like she hasn't quite been able to catch it. Also in her peripheral vision was Malaba, who ran in from fine leg, and both of them converged. However, it looks like the ball has hit the hands of Chloe Tryon and then spilled. And Tryon also tells Malaba, it was my catch, you did not need to be as close. 2 runs meanwhile were taken. Next delivery, which was the final delivery of the innings, it is outside the off stump and looks like Danny Gibson has got an edge. No, she hasn't. Jacqueline Williams says that it is a bye. The ball trickles away to fetch England 4 more.
2: ये लगा आभा का चौका।
0: इट वॉज अ गुड लेंथ डिलीवरी इन लाइन विद वॉट वुड हैव बीन द ट्रैम लाइन फॉर द एम्पायर टू डिसाइड। इट वॉज अ वाइड बॉल, हाउएवर द बैटर शफल्ड टुवर्ड्स इट एंड हेंस इट हैजंट बीन सिग्नल्ड वाइड। इवेंचुअली

0: रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
1: Having lost 3 wickets for 23 runs, England staged a comeback with a stand of 133 of 90 for the fourth wicket between current and former captains Natsibo Brunt and Heather Knight, but subsequently South Africa striking back as England score 169 for 5. Hello and welcome to Free Hit 20. I am Megha and join me in studio as my co-host is Dharmendra.
2: Ji, aur hamare saath mehman hai hamare Khyati Gulani, purv cricketer, Jishanul Yaqeen, purv cricketer aur G Rajaraman, varishth khel patrakar. Raja, ये जो 169 रन बनाया है इंग्लैंड ने, क्या आपको लगता है कि थोड़ा कम रह गई इंग्लैंड की टीम, क्योंकि जिस तरह की बल्लेबाजी उनकी चल रही थी उन पावर प्ले के ओवर्स के बाद ऐसा लग रहा था कि 180-185 तक स्कोर जा सकता है।
3: 180 तो बनता था, लेकिन दोनों विकेट जो सेट बल्लेबाज थे दोनों एक साथ आउट होना, एक ही ओवर में आउट होना, शायद वो थोड़ा सा भारी पड़ा है। लेकिन इंग्लैंड के पास रन काफ़ी है। मुझे लग रहा था शुरुआत में, मुझे लग रहा था कि 150 का स्कोर डिफेंडेबल स्कोर होगा, 169 काफ़ी है उनके पास। और इंग्लैंड के पास वो गेंदबाज है जो साउथ अफ्रीका को रोक सके।
1: क्या थे इंटरेस्टिंगली दैट स्टैंड ऑफ 130 बिटवीन करंट एंड फॉर्मर कैप्टन्स, बट ऑन आइदर साइड ऑफ इट नॉट मच कॉन्ट्रीब्यूशंस।
4: Yeah, definitely. The way they have started and like losing 3 wickets in just 23 runs is like something odd for this big game. But after that, the way this Catherine Brunt and Heather Knight have played and the way they have stood up, it's amazing. It's commendable.
2: और जिशान, क्या यहाँ पर रणनीतिक चूक हुई है थोड़ी सी साउथ अफ्रीका के कप्तान से, क्योंकि अगर पावर प्ले की बात करें तो उनके जो फ्रंट लाइन गेंदबाज थे दोनों के 3-3 ओवर समाप्त हो चुके थे और कैप का 4th ओवर 7th ओवर तक समाप्त हो चुका था। इसके बाद ही इंग्लैंड ने अपनी जो पारी है वो बिल्ड किए है, क्योंकि 3 विकेट तो उन्होंने पावर प्ले में ही गंवा दिए थे।
5: बिल्कुल, थोड़ी सी कमी तो रही है साउथ अफ्रीका की, खासकर जो फील्डिंग को भी मैं देख रहा था कि उनका जो फील्डिंग का सेट करने का जो भी जगह होती है वो नहीं किया उन्होंने। आई डोंट नो कैसे क्या स्ट्रैटेजी उनकी रही आपस में, उन लोगों के कैप्टन की क्या सोच थी, क्योंकि जहां तक मैं समझ रहा हूं कि उन्होंने ज़्यादातर रन जो बनाए हैं दोनों जो बैटर हैं उन दोनों ने जो ज़्यादातर रन बनाए हैं वो मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच के एरिया में और स्वीप करके इसी लेग साइड में ज़्यादा रन बनाए हैं उन्होंने। तो उनको कहीं ना कहीं वो एक सोच होनी चाहिए थी कि या तो ये है कि 3 विकेट उन्होंने ले लिए थे पावर प्ले में, तो उस वजह से थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हुआ उन्हें, या उस तरह की कोई चीज़ हुई जहां वो मेंटल लैक किया उन्होंने वहां पे अपने उन चीज़ों को स्ट्रैटेजी में। उनको वो ज़रूर से ध्यान रखना चाहिए था कि चाहे दोनों बैटर जो थे उनके जो बैट आ रहे थे, अगर आप वॉच करेंगे उनकी बैटिंग को तो जो भी बैट उनके आ रहे थे वो मिड विकेट के एरिया की तरफ ज़्यादा उनकी कोशिश थी मारने की। और उनका जो बिल्ट है दोनों का ही, एक लंबी है, उनके जो रेंज उनको मिल रहे थे वो भी बहुत आराम से उनको मिल जा रहे थे रेंज, तो वो हमेशा कोशिश कर रहे थे मिड विकेट की तरफ मार के रन बनाने के लिए। तो वो स्ट्रैटेजी उन्होंने नहीं समझा बैटर को, जब तो बाय द टाइम वो समझते उन्होंने, या तो इनको ये करना चाहिए था कि बीच में ही स्पिनर को कोशिश करनी चाहिए थी एक बार और एक ओवर और डाल करके, एक ओवर और उनको रोकना चाहिए था, दो ओवर कराना चाहिए था, दो ओवर बीच बीच में ऐसे करके कुछ स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए थी, तो मुझे लगता है कि वो इंग्लैंड टीम को 140-150 के आसपास रोक सकते थे जहाँ तक बॉलिंग साइड की बात है। लेकिन जहाँ तक बैटिंग साइड की बात है, ऑब्वियस है, मुझे लगता है कि जिस हिसाब से उन दोनों ने बैटिंग की है और साउथ अफ्रीका को उन्होंने उनकी जो बॉलिंग अटैक था उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया था उन लोगों ने। अब यहाँ पे यह था कि एक कोई बैटर को रहना चाहिए था, देखा था जब उन्होंने कि वो आउट हो गए हैं तो दूसरे एक को रहने की कोशिश करनी चाहिए थी आखिरी बॉल तक, अगर वो रहते तो हो सकता है कि वो जो 10-15 रन का जो लैक किया है वो भी आता और 180 और 185 के आसपास स्कोर होने चाहिए थे, जो कमी है। लेकिन मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि यह क्रिकेट है, अगेंस्ट इंडिया साउथ अफ्रीका ने 170 प्लस कुछ रन किए थे, इंडिया को रोका था उन्होंने, तो मुझे लगता है कि उनको एक जो माइंडसेट है साउथ अफ्रीका बैटर्स का कि 170-180 रन

0: बनाने का जो उनका अपना है, वो अगर थोड़ा सा वो करेंगे तो एक मैच बहुत अच्छा बेहतरीन मैच देखने को मिलेगा आखिर तक मेरे ख्याल से.
1: Now, in fact, extending Zeeshan's point, overwhelming number of runs were scored on the leg side, all variants of sweeps and then flicks being used, Raja.
2: I think they played some creative shots. You can't, I will not blame the captain too much because they were moving outside the off stump and playing the sweep or playing the reverse sweep. And you can't be setting fields for unorthodox shots, so it's tough. And I think what England did was played very smart. After they lost the three wickets, they stayed at the wicket and they played out the one big bowler that South Africa had. In fact, two of them, they played them out very carefully and went after the others. And I think South Africa bowlers did not have a plan, or maybe they had a plan and they were not able to execute it. The other bowlers, the new ball bowlers, did a fantastic job for South Africa, but they needed somebody to back that up. And England was just biding its time and knew that it can go after the other bowlers, and they did a fabulous job of that.
3: जी और ख्याति, अगर बात करें इंग्लैंड की इस पारी की, कप्तान नैट सीवरब्रंट की वापसी, जिस तरह से वो पिछले कुछ मैचों से बाहर थी, और उसके बाद ये पारी, क्या आपको लगता है कि मैच का सबसे निर्णायक पहलू साबित हो सकता है?
4: डेफिनेटली काफ इंजरी के बाद वो वापस आई हैं और उन्होंने जिस तरीके की ये पारी खेली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लीग स्टेज में भी खेलना इस टाइप की इनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट नॉकआउट्स में जहाँ हर गेम इंपॉर्टेंट होती है, अगर वहाँ पर अगर आप अपनी नर्व्स को कंट्रोल करके अपनी जो भी इंजरी है पास्ट की उसको भूल के इस तरीके से अगर कॉन्ट्रीब्यूट करें, और जहाँ पर आपके जो टॉप थ्री बैटर्स लीग स्टेज में अच्छी प्रदर्शन देते हुए और यहां आके अगर जब वो फेल हो जाए, और आपकी ये पारी कितनी इंपॉर्टेंट होती है वो आज दिख गया.
1: They do exhibiting what value experience holds in such games where nerves are involved at a very high intensity. Now turning our attention to the second innings, and we've talked about experience. Zeeshan Wolfart बहुत time से runs नहीं आए उनके बल्ले से, considering कि विश्व कप से पहले कितने शानदार धुआंधार फॉर्म में थी.
0: बिल्कुल, देखिए क्रिकेट है, मुझे लगता है कि ये एक बड़ा मैच है आज के दिन में, तो मुझे उम्मीद है कि वो वापस रन बनाने का उनका आज का दिन, हो सकता है कि आज का दिन उनका हो जाए. बहुत बार ही ऐसा देखने को मिला है कि कोई एक बैट्समैन या एक कोई बैटर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, लेकिन एक सर्टेन जगह पे जहाँ पे जरूरत टीम को होती है वहाँ पे वो परफॉर्म करके अपनी टीम को निकाल के लिए, तो आज उनका हो सकता है कि वो आज दिन वापस आए और साउथ अफ्रीका के लिए एक अच्छी पारी खेल करके साउथ अफ्रीका को लेकर के जाएं. लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि टीम उनकी अच्छी है, बैटर्स उनके पास भी अच्छे हैं साउथ अफ्रीका के पास में, और जहाँ तक मैं एनालाइज कर रहा हूँ कि इंडियन बॉलर्स भी हमारे बहुत ही एक्सपीरियंस बॉलर्स थे, उसके बावजूद उनके जो बैटर्स थे उन्होंने 170 प्लस रन किए थे इंडिया के अगेंस्ट में, तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा है कि उन्हें दिक्कत होगी करीब तक जाने में इस मैच में. इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि ये एक मैच ज़रूर से एक बेहतरीन मोड़ की तरफ, हाँ ये ज़रूर है कि शुरुआत के जो 6 ओवर हैं वो बहुत डिपेंड करेंगे साउथ अफ्रीका के जीत और हार के ऊपर में.
3: राजा, 170 रन का लक्ष्य, पिच में आपको ऐसा कुछ अभी दिखा है जिससे परेशानी हो सकती है साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को?
2: बाउंस कुछ खास नहीं है और मुझे लगता है कि फिरकी गेंदबाज उसका पूरा फायदा उठाएंगे. देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, हमारे कमेंटेटर्स हमें सुनाएंगे कि पिच में जो बाउंस, एक आध बॉल जो बाउंस हुआ था उसमें विकेट जरूर मिला था दक्षिण अफ्रीका को, लेकिन यू विल सी दैट इंग्लैंड के स्पिनर्स जो है वो हावी होंगे दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों पे.
1: खास करके एक्लिप्सन हमने देखा है कि विश्व कप में अपना ए गेम लेकर आती हैं, शानदार प्रदर्शन इस विश्व कप में भी अब तक उनका रहा है.
4: जी बिल्कुल, ये अब कॉन्टेस्ट अब सेकेंड इनिंग में इट विल बी बिटवीन द बैटर्स ऑफ साउथ अफ्रीका एंड द स्पिनर्स ऑफ इंग्लिश टीम. डेफिनेटली इट विल बी अ वेरी गुड कॉन्टेस्ट, एंड लॉरा वुलवर्ट एंड ब्रिट्स एंड मैरिसन काप और एलिस कैप्सी, एक्लिस्टन और सारा ग्लेन के बीच में कॉन्टेस्ट होगा. बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कौन इस कॉन्टेस्ट को जीतता है.
3: तो जीशान, क्या रहेगा पहला लक्ष्य इस समय साउथ अफ्रीकन टीम की, जब बल्लेबाजी आएगी वो क्या चाहेंगे? पार प्ले में कम विकेट गंवाएं, कम रन भले बने, कोई बात नहीं.
0: देखें आजकल के जमाने के हिसाब

0: अगर मैं कहूं तो ये है जरूर कि वो कोशिश करेंगे कि पावर प्ले में 6 ओवर में हम 50-55 रन बना लें और कुछ विकेट भी ना गिरे, वो कोशिश रहती है उन लोगों की, स्ट्रैटेजी ऐसी हो सकती है। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, ये विकेट ऐसा है कि ये इसमें बहुत ज़्यादा बाउंस नहीं है, इस विकेट में स्लो विकेट है। इस स्लो विकेट के हिसाब से अगर वो मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, अपने आप को मेहनत करेंगे, अगर रन दौड़ के बनाने की वो जो कोशिश होती है एक सिंगल और डबल और उस, तो वो अगर वो कॉन्सेंट्रेट करेंगे उसके ऊपर में, तो मुझे लगता है कि वो इस जो टारगेट है इसको अचीव करने के लिए वो काबिल होंगे। लेकिन अगर वो जाएंगे बिग हिट करने के लिए, तो आपने फर्स्ट इनिंग में भी देखा है कि जो टॉप स्कोरर हैं इस वर्ल्ड कप की, जिन्होंने 100 भी किया है, उन्होंने रन नहीं कर पाए हैं वो। तो बेहतर होगा हमारे ख्याल से कि जो शुरू का 6 ओवर है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बार बार ये कह रहा हूँ कि शुरू का 6 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस मैच में खासकर। जैसे जैसे ये मैच एंड की तरफ जाएगा, साउथ अफ्रीका के जो बैटर्स हैं उनके ऊपर प्रेशर डेवलप होता चला जाएगा, तो बेहतर होगा कि वो विकेट कम गिराएं, आखिर तक जाने की कोशिश करें। अगर आखिर तक जाने की कोशिश करेंगे तो मुझे यकीन है कि एक बहुत बेहतरीन मैच देखने को मिलेगा।
1: South Africa chased down 158 against India and collected 2 crucial points in the group stage. Now, Detson, we've seen her bat at number 3 in this World Cup, barring that game against India where she couldn't open her account. She's been chipping in with important runs.
2: So, this is a game where everybody has to contribute. It's not a small score, chasing 170 to win. Everyone has to contribute, and if the top orders, the top three can get those runs, well and good for South Africa. It's going to be a challenge, Megha. I think no matter what your form is, the pressure of the scoreboard, that is going to be weighing very heavily on the batters' minds. Normally, you would want to get about 45 runs in the first 6 overs without losing wickets, but South Africa will push for to make the best use of the new ball and to make the best use of power play and to try and get a good score, try and get 50-55 runs on board, and in the process they will lose wickets. And that's the nature of the beast of T20, and I think we will get to see a very fascinating contest, with England being smart, England playing the strategic game better than South Africa at this point of time.
3: Khyati, इंग्लैंड की कप्तान ने तो अपना काम कर दिया है, अब बारी है साउथ अफ्रीका की कप्तान की। उनकी अच्छी पारियां अभी तक आई नहीं है, कितना अहम रोल होगा इस बड़े रन चेज में?
4: डेफिनेटली उनको थोड़ा सा पिच इन करना होगा आज के मैच में, और बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज ही उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, बिकॉज अच्छा स्कोर है, अच्छा टोटल है, अब देखिए किस तरीके से इसको कॉन्ट्रीब्यूट कर पाती है।
1: एंड राजा, वी हैव सीन लॉरेन बेल, barring one game in the group stage, give South Africa, rather England, early wickets.
2: This is a big game, semi-final. They will have to play at their best and think of contributing to the team. If you can pick up a few early wickets, nothing like that for England. But they've got a good score to defend.
1: Absolutely. 170 is what South Africa would be out in the pursuit of. Thanks a lot to each one of you for your analysis. As we turn our attention to the second innings, now South Africa are eyeing third successive finals. England looking to win the World Cup at home.
5: Pre-hitch 20. मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास।
6: ओवल का मैदान, जहां पर फाइनल में पहुंचने की जद्दोजहद T20 महिला विश्व कप के मुकाबले में, जिसका आयोजन इस वर्ष इंग्लैंड और वेल्स में हो रहा है। दूसरा सेमीफाइनल है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीमों के बीच, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है। लॉरा वॉलवर्ट साउथ अफ्रीका की टीम की कप्तान, और उनके साथ हैं तैजमिन ब्रिट्स दूसरे छोर पर, और इंग्लैंड के सामने है, इंग्लैंड ने इनफैक्ट 169 रन बनाए, तो साउथ अफ्रीका के सामने 170 रन का लक्ष्य रखा गया है इस मुकाबले को जीत करके फाइनल में पहुंचने के लिए। ओवर की दूसरी गेंद लिंसे स्मिथ आई है गेंदबाजी करने के लिए, और उनकी गेंद को पंच किया गया था लॉन्ग ऑफ की दिशा में, एक रन के लिए छोर बदला है। लॉरा वॉलवर्ट ने स्कोरिंग की शुरुआत की है, तैजमिन ब्रिट्स अब स्ट्राइक पर होंगी। तैजमिन ब्रिट्स एक बहुत ही करिश्माई क्रिकेटर हैं, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, बल्कि बहुत ही करिश्माई स्पोर्ट्स पर्सन हैं, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उनके बारे में

0: Big Shot whacks it over mid-on for four.
1: ये लगा आभा का चौका.
0: She's a powerful, powerful batter is Tasmin Brits. That bicep of hers on the right arm has the tattoo of the Olympics logo. And Shivendra was about to tell you about her story. She was a javelin thrower. Am I right, Shivendra? That's what you were coming to.
2: Yeah, बिल्कुल जेवलिन थ्रोअर थी और अपने देश के लिए वो वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं. अनफॉर्चुनेटली बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से ओलंपिक्स की उनकी यात्रा अधूरी रह गई थी. लेकिन ओलंपिक्स में जो कुछ अधूरा रह गया था उसे क्रिकेट के मैदान पर पूरा करने का उन्होंने संकल्प लिया है. और आज बहुत ज़रूरत है साउथ अफ्रीका को उनकी एक बेहतरीन पारी की. एक बहुत ही शानदार पारी वो खेल भी चुकी हैं इस मुकाबले में. इस विश्व कप में 69 गेंदों में 114 रन नीदरलैंड के खिलाफ उन्होंने बनाए थे और फिलहाल 101.5 ओवर के बाद 11 रन बने हैं साउथ अफ्रीका के सामने. टारगेट 170 रन का है. इस ओवर में एक चौका, दो वाइड डिलीवरी, लॉरेन बेल का ओवर समाप्त हुआ. दो ओवर के बाद 11 बिना किसी नुकसान के दक्षिण अफ्रीका.
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी, कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है.
0: A boundary on the fourth ball of the over. After that, Lauren Bell adjusted her line, delivered the next one on the pads, which was flicked away for a single. And then the last delivery was on a length to Laura Wolfart, who punched it towards cover. So a single and a dot ball after the boundary, which means at the end of the second over, 11 without loss are South Africa. Next over will be bowled by Lindsay Smith, who starts off with a delivery which is wide off. And it has been flayed away through the backward point region for four.
1: Ye laga abha ka choka.
0: So Tasmin Brits on the prowl. This time around the ball did not swing in with that release of hers as it had been doing in the first over. This one spun away and Brits was ready, went onto the back foot and slashed it away to the boundary. The next delivery on a good length, this time closer to the off stump, and therefore drives it off the back foot. Does Brits picks up a single, moves to 13, and what a story it has been that Shivendra was telling you. She was very close to playing in the 2012 London Olympics. Of course that did not materialize, but here in that same country, in the city of London, today she has the opportunity to do good for South Africa.
2: स्ट्राइक पर है कप्तान लॉरा वॉलवर्ट. तीन गेंदों में एक रन. स्टेप आउट किया, मिडल और ऑफ स्टंप की लाइन पर गेंद थी. मिड विकेट या लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलना चाहती थी. गेंद ठीक तरीके से बल्ले पर आई नहीं, लेकिन अच्छी बात यह कि कारपेट के सारे गेंद लुढ़कती हुई दूर गई थी. और लिंसे स्मिथ कई सवाल पहले ओवर में पूछती हुई नजर आई थी दोनों बैटर्स से. दूसरे ओवर में अभी तक अपेक्षाकृत कामयाब नहीं हुई. पहली गेंद पर चौका, बाद की दोनों गेंदों पर सिंगल, यानी कुल मिलाकर के 6 रन 3 गेंदों में बनाए जा चुके हैं. इस बार ऑफ स्टंप के बाहर हाफ वॉले पर लिया, ड्राइव किया डीप बैकवर्ड पॉइंट, बाउंड्री की ओर गेंद जा रही है. दो फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं, रोक नहीं पाएंगे. गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए.
1: ये लगा आभा का चौका.
2: लिंसे स्मिथ का ये ओवर अच्छा खासा प्रोडक्टिव साबित होता हुआ. फुल लेंथ डिलीवरी हाफ वॉली पर लेकर डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में पंच किया था. दो फील्डर प्रयास कर रहे थे, प्रयास असफल रहा और कामयाब हुई बैटर. 4 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर. कवर और बैकवर्ड पॉइंट के बीच में लगभग 18-19 मीटर का फासला था. उस गैप का इस्तेमाल किया टैस्मिन ब्रिट्स ने. 12 गेंदों में 17 रन पर पहुंच चुकी हैं. एक बार फिर से इस बार पैर से टकराई है उनकी गेंद. थोड़ी सी मुश्किलों में तो हैं क्योंकि एक बार गेंद उनके थाई पैड के आसपास लगी थी, तब थोड़ा सा मुश्किल में दिखी थी. ऐसा लगा था एब्डोमेन की साइड में बॉल लगी थी. इस बार पैर पर लगी थी. स्ट्रेट बल्ले से इस बार खेला, मिड ऑफ की दिशा में गेंद सीधे फील्डर के पास पहुंचती हुई. तो डॉट डिलीवरीज जो भी आती हैं वो उनका मोल सोने से कम नहीं होता है. और खासतौर पर ऐसे मुकाबले में जहां फाइनल में पहुंचना दांव पर लगा हुआ हो. और 170 रन का लक्ष्य है दक्षिण अफ्रीका के समक्ष, लेकिन उन्होंने अच्छी सधी हुई शुरुआत की है ये कहा जा सकता है. और जब तक साउथ अफ्रीका का जो टॉप ऑर्डर है अगर वो डिलीवर करता है, जिसके लिए डिलीवर करना आज बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है, तभी फाइनल की उनकी राह कुछ आसान हो सकती है.
0: Right, 21 without loss after 3 overs. Tasmin Brits has done the bulk of scoring. She has been the chief aggressor so far. 17 of 14 deliveries against her name. 3 boundaries.

0: has been hit, and she has been hit on the body a couple of times as well. In the previous over, there was an occasion where she inside edged one ball onto her boot and then hobbled, but she's a tough nut to crack, and that is exactly what she's exhibiting. Meanwhile, the next delivery from Lauren Bell, the first of the fourth over, is down the leg side, and very deftly Wolfart tries to get a tickle on it. She even gets a tickle on it. However, Amy Jones, the wicketkeeper, moves to her left in order to cut it off and end the possibility of any sort of a run. So dot ball to start off with. The next delivery onto the stumps on a fuller length, and a delectable on drive from Laura Wolfart, which has been cut off superbly by Sophie Eccleston at mid-on, who moves towards her left and puts in a nimble slide in order to ensure that the South Africans do not get any more than a single. Now remember, folks, England lost to South Africa in the semi-final of the 2025 World Cup. They lost to South Africa in the semi-final of the 2023 T20 World Cup as well. And there was a commonality between those two games. What it was, I'll tell you after this ball. The next delivery on a fuller length, in line with the middle pole, and nudges it towards mid-wicket, does Tasmin Bridge to pick up another single. That takes the score to 23 without loss in 3.5 overs. In both those matches, Laura Wolfart and Tasmin Bridge were the heavy scorers. Wolfart scored 169 and Bridge scored 45 in the ODI World Cup semi-final. And in the 2023 T20 World Cup semi-final, Wolfart scored 53, Bridge scored 68. And just as I say that, Laura Wolfart picks up her first boundary. Ye laga, abha ka choka. Delivered on the fuller side of good length. In fact, I would say it was a full delivery in the channel outside the off stump. And Laura Wolfart pressed forward and then unleashed a robust off drive. Nat Siva Brunt moved towards her right and put in a dive at mid off. However, she wasn't able to stop the ball. Such good was the timing of the bat of the South African skipper, who has now moved to 7. Next delivery, Lauren Bell pulls her length back to a good length, angles this one in towards the leg stump, 114 kilometers or thereabouts on the speed gun, and a defensive dab from Laura Wolfart. So both Wolfarts and Brits in both those semi-final victories for South Africa were the heavy scorers, which means England cannot take them lightly. They need to get them out as soon as possible. It goes without saying, doesn't it? Fourth over's last ball. Lauren Bell runs in over the wicket and Laura Wolfart steps out. And after seeing her step out, Bell adjusts into a short ball, delivers this one outside the off stump. However, Wolfart was also able to adjust to the steeply rising delivery. She ends up cutting it towards deep backward point and picks up a comfortable single to mark the end of the fourth over. 28 without loss.
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
4: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: 170 रन का लक्ष्य है दक्षिण अफ्रीका के समक्ष। उन्होंने बनाए हैं 28 रन 4 ओवर के समाप्त होने के बाद, यानी रन बनाने की रफ्तार है 7 रन प्रति ओवर। और टॉरा वुडवर्ट और टैस्मिन ब्रिट्स बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना पेश करते हुए। चार्ली डीन का आगमन हुआ है, आते ही उनका स्वागत किया गया। लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है। 4 रनों के लिए लॉरा वुडवर्ट के बल्ले से निकलता हुआ बेहतरीन चौका।
4: ये लगा आभा का चौका।
5: शानदार अंदाज में बल्लेबाजी इन दोनों बैटर्स पर, कितना दारोमदार है। अभी दर्पण ये डेटा आपके साथ साझा कर रहे थे। एक्स्ट्रा कवर की दिशा में इस बार ड्राइव किया गया, स्टेप आउट करके हाफ वॉली पर लेकर 2-3 कदम आगे बढ़ते हुए लॉरा वुडवर्ट बेहतरीन फॉर्म में दिख रही हैं। हालांकि इस पूरे टूर्नामेंट में अभी तक उनके बल्ले ने वो आग नहीं उगली है जिसके लिए वो जानी जाती हैं, लेकिन आज साउथ अफ्रीकन फैंस उम्मीद कर रहे होंगे कि वो डिलीवर करेंगी। मिड विकेट की दिशा में अगली गेंद को खेला गया है, दोनों बैटर छोर बदलेंगे। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद डॉट डिलीवरी, तीसरी गेंद पर सिंगल। और टैस्मिन ब्रिट्स के बारे में हम आपको बता रहे थे, जिन्होंने कि पूर्व जैवलिन थ्रोअर हैं और उन्होंने 2007 में 16 वर्ष की आयु में विश्व युवा एथलेटिक्स में जैवलिन का गोल्ड मेडल जीता था अपने देश के लिए। पूरा परिवार खेलों को समर्पित है। अगली गेंद स्ट्रेटिश डिलीवरी थी, क्या बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा है, देखना दिलचस्प होगा रिप्ले में।

0: लेकिन न केवल बैटर बल्कि विकेटकीपर एमी जोन्स भी पूरी तरीके से बीट हुई इस पर और बाई करार दिया गया, यानी गेंद और बल्ले में संपर्क हुआ नहीं था लेकिन बड़ा नजदीकी मामला था और गैदर भी नहीं कर पाई थी एमी जोन्स विकेट के पीछे। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई नुकसान नहीं हुआ। साउथ अफ्रीका को क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलने की जो टेंडेंसी है वो फटाफट क्रिकेट का संस्करण है उसमें आमतौर पर देखने को मिलती है, कई मरतबा उसे लाजमी भी समझा जाता है क्योंकि आपको किसी भी तरीके से रन्स बनाने हैं, जो स्कूप शॉट है या पैडल स्वीप है उस अंदाज में खासतौर पर कुछ खिलाड़ी तो जाने ही जाते हैं, जैसे नरसिंहर ब्रंट की बल्लेबाजी में हमने देखा आज। चार्ली डीन के ओवर की अगली गेंद स्ट्रेटेज डिलीवरी बैक टू द बॉलर ड्राइव फॉलो थ्रू में फील्ड किया गया, रन बनने की कोई संभावना नहीं। पांच ओवर के बाद साउथ अफ्रीका 36 रन बिना किसी नुकसान के।
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ले।
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
4: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: Charlie Dean's last over produced 6 runs and now looks like Lindsay Smith is going to be bowling the final over of the power play, which is interesting because her previous over was a little bit expensive. However, Natsiva Brunt has trusted her, starts off with that arm ball which pitches outside the off stump and then angles in towards the stumps. However, Tasmin Brits brings out her own version of the reverse sweep. It's not quite a conventional reverse sweep, if there is anything conventional about the reverse sweep. It's her own version where she doesn't really crouch, doesn't really touch her knee on the floor, but in a half crouch position swishes it away towards deep third and picks up a couple. That takes her beyond 20. Next delivery angled in towards the stump of a good length, and this time Brits stays beside the line of the ball and elevates it towards mid wicket where Danny Gibson is stationed at the boundary. She runs across towards her left in order to mop it up, and a couple, beg your pardon, only a single has been taken, which means that this is some good work from the fielder. She was able to save what should have been 2 runs. Next delivery, Laura Wolfart steps out, puts her dancing shoes on and lofts it over long on. One bounce and over the ropes for 4.
6: Ye laga abha ka choka.
5: Has Lindsay Smith become just a little bit predictable with her length? On a good length, not too far from the off pole, Wolfart jumped out of her crease and lofted it over mid-on. Currently long off and deep in wicket are the 2 fielders outside the 25-yard circle. Once again steps out, and this time she won't be able to clear the mid-on fielder. Sophie Eccleston has leaped towards her right and caught this. Laura Wolfart's innings has been cut short. South Africa lose their first wicket.
0: जोर का झटका लगता हुआ दक्षिण अफ्रीका को, कप्तान लॉरा वुल्फर्ट आउट होकर के पेविलियन का रुख करेंगी। पिछली गेंद पर उन्होंने बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक लगाया था, सिंगल बाउंस पर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई थी। इस बार भी उन्होंने सर्कल को क्लियर करने की कोशिश की मिडॉन की दिशा में। सोफी एक्लिस्टन तैनात थी, गेंद हालांकि हवा में थी, अच्छी खासी हाइट थी, लेकिन अपने स्थान पर उछलते हुए छलांग लगाते हुए एक्लिस्टन ने एक बहुत ही दर्शनीय कैच लिया। 15 गेंदों में 17 रन बनाकर 3 चौकों की मदद से वो रन बनाए थे लॉरा वुल्फर्ट ने, और वो उन्होंने पवेलियन का रुख किया है। और एक बहुत बड़ा विकेट है ये, साउथ अफ्रीका को बहुत जोर का झटका, इंग्लैंड के लिए बहुत ही अच्छी सफलता। और पावर प्ले के आखिरी ओवर में ये विकेट मिला है, तो 6 ओवर के बाद 35 रन बनाए थे 3 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड की टीम ने, और दक्षिण अफ्रीका की टीम इस समय एक प्राइज्ड विकेट गंवा चुकी है।
5: दे आर 43-1 विद द 2 डिलीवरी स्टिल रिमेनिंग इन द पावर प्ले। ड्रिंक्स हैव बीन कॉल्ड ऑन द फील्ड एंड जतिन सूद टेल्स मी दैट द फर्स्ट विकेट पार्टनरशिप फॉर साउथ अफ्रीका इन दिस वर्ल्ड कप हैज नॉट एग्जैक्टली बीन वेरी प्रोडक्टिव। दे स्कोर्ड 2 रन्स फॉर द फर्स्ट विकेट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन द ओपनिंग गेम, 11 अगेंस्ट पाकिस्तान, 25 अगेंस्ट इंडिया, 121 अगेंस्ट नेदरलैंड्स, बट आफ्टर दैट 0 अगेंस्ट बांग्लादेश। एंड हेयर अगेन 43 runs, which is a decent return but not exactly an overwhelming return. It's a decent platform that has been set. Anari Dirksen has walked out to bat at number 3, but here the bottom line is that Natsiva Brunt's move

0: to give Lindsay Smith that extra over in the power play has brought fruits. Remember, her second over was slightly expensive. She had delivered a probing first over where she had given away only two runs, but in her second over she was hit for two boundaries and ended up giving away 10 runs in totality. Despite that, Siva Brunt stuck to Smith and it yielded rewards. South Africa currently need 127 more of the remaining 86 balls.
1: तो परिस्थितियां बहुत आसान नहीं, लेकिन साथ ही कुछ भी असंभव नहीं क्रिकेट के मैदान पर, न जीत न हार। और जाहिर सी बात है कि प्रयास तो करने होंगे दक्षिण अफ्रीका को। जिस तरीके से इंग्लैंड की शुरुआत हुई, बेहद खराब शुरुआत हुई, 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर, इनफैक्ट 23 रन के स्कोर पर 3 विकेट गिर गए थे। और उसके बाद क्या साझेदारी हुई नैट सिवर ब्रंट और हैदर नाइट के बीच में, और इन दोनों ही बैटर्स ने उसी क्रम में अपने अर्धशतक पूरे किए, इंग्लैंड की टीम को 169 के स्कोर पर पहुंचाया। हालांकि दोनों खिलाड़ी लगातार एक के बाद एक आउट हुई और अपनी टीम की ओर से बहुत ही बढ़िया कंट्रीब्यूशन रहा। नैट सिवर ब्रंट ने 75 रन बनाए 46 गेंदों में और हैदर नाइट ने 58 रन बनाए 47 गेंदों में। एंड्री डक्सन का आगमन हुआ है, 6 पारियां खेली हैं इस विश्व कप में। और जैसा हम इशारा कर रहे थे कि दर्पण ने भी इस ओर इशारा किया कि जो एक ओपनिंग पार्टनरशिप है वो उतनी ज़्यादा पुष्पित पल्लवित हुई नहीं साउथ अफ्रीका की ओर से जितनी उम्मीद की जा सकती है। नई बल्लेबाज डक्सन हाफ वॉले पर लेकर ड्राइव एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, नैट सिवर ब्रंट के पास गेंद पहुंची है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया है और रन बनने की तो कोई संभावना है नहीं। एक अजीबोगरीब शॉट खेला गया था, हालांकि बात वही है अगर सर्किल क्लियर हो जाता तो शायद परिस्थितियां डिफरेंट हो सकती थी। सिमिलर डायरेक्शन में जाती हुई बॉल रन के लिए नहीं। 6 ओवर के बाद साउथ अफ्रीका 43 एक विकेट के नुकसान पर।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें, कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
0: 43-1 at the end of the power play, which means South Africa have had a better return than what England had of their first 6 overs. As Shivendra was telling you, they scored 35 for the loss of 3 wickets in their batting innings. However, the big wicket of Laura Wolfart has just fallen, and we are saying it's a big wicket because all of you remember what she did in the 50 over World Cup. All of you must remember what she even did in the 2023 T20 World Cup semi-final. Anyhow, England go to who is arguably their best bowler, or renowned so throughout the world. Sophie Eccleston, the left-arm spinner, begins her spell, delivers the first one on a drivable length in line with the stumps that allows Tasmin Brits to press forward and push the ball towards long on and pick up a comfortable single. So a single to start off what is the 7th over, 44-1 are South Africa in pursuit of 170. Anuri Dirksen now on strike. The next delivery is slightly flighted and the catch has been dropped. Looks like it's Charlotte Dean who has put this one down. Yes, indeed, it is the England vice captain. Flighted delivery from Eccleston, inviting the big shot from Anuri Dirksen. Dirksen went for the lofted drive over mid-off and stationed at the edge of the circle. Charlotte Dean backpedaled a couple of steps before leaping up in the air. She got one hand on the ball, but the ball did not stick. So an opportunity goes down and a single has been added. Next delivery on a good length from Eccleston has been drilled down to long off for a single, which takes Brits to 24 in South Africa. 46-1 after 6.5 overs. A big opportunity has just been squandered.
1: इस तरीके के जो मौके आते हैं, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कैचेस विन मैचेस, तो अगर इस तरीके के अवसर गंवाए जाते हैं तो कई मरतबा आपको पछताना भी पड़ सकता है। इस बार मिडल ऑफ स्टंप की लाइन पर गेंद थी, शॉर्ट ऑफ टेंड डिलीवरी, बैकफुट पर जाकर के पंच किया एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, डीप में प्रोटेक्शन है, एक रन मिलेगा बड़ी आसानी के साथ। तो लॉरा वुलवर्ट का विकेट 6th ओवर में लिया गया, लिंडसे स्मिथ की गेंद पर वो आउट हुई। सोफी एक्लिस्टन का आगमन हुआ है, इस बार फिर से क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलने की कोशिश, मिडल और ऑफ स्टंप की लाइन पर गेंद है, लगभग फुल लेंथ डिलीवरी है और उसे मिड विकेट की दिशा में खेलना चाहती थी। टैडमिन ब्रिट्स भाग्यशाली हैं कि गेंद और बल्ले में संपर्क हुआ नहीं, कोई मिस

0: क्यूट शॉट नहीं गया, उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 22 गेंदों में 24 रन बना करके खेल रही हैं। डॉट डिलीवरी 1-4 सिंगल आ चुके हैं इस ओवर में। पारी का सातवां ओवर है, इस बार बैकफुट पर जाकर के कट किया, शॉट थर्डमैन की दिशा में गेंद को फील्ड किया गया। इसके साथ ही ओवर समाप्त होता हुआ। सात ओवर के बाद दक्षिण अफ्रीका 47 रन एक विकेट के नुकसान पर।
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
4: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: साउथ अफ्रीका नीड अनदर 123 रन्स टू विन इन 78 बॉल्स। बिग न्यूज, अनरी डर्कसन वाज ड्रॉप्ड, वाज गिवन अ लाइफलाइन व्हेन शी वाज ऑन जीरो। शी हैज मूव्ड टू टू नाउ। एट द अदर एंड इज तास्मिन ब्रिट्स बैटिंग ऑन 24 ऑफ 23 एंड लुक्स लाइक फ्रेया केम्प हैज बीन गिवन द बॉल इन हैंड। फ्रेया केम्प लेफ्ट आर्म सीमर, सो प्रोवाइड्स अ बिट ऑफ variety in this particular attack. She starts off over the wicket with the keeper up to the stumps, delivers this one on the middle stump on a good length, and Dirksen was looking to flick it away towards the onside. However, she ended up closing the face of the bat a little too early. The leading edge takes the ball into the cover region and allows a comfortable single. However, Dirksen will not be happy with the way things have started for her. That was not a convincing shot. Now remember, Sune Luse is a part of this playing 11 today, who used to open for South Africa. She hasn't come out to bat thus far. South Africa have a deep batting lineup, and hence nobody is saying that they are out of the game just yet. But England are squeezing a few tidy overs over here. Good length delivery in line with the body has been nudged towards the square leg region for yet another comfortable single. So two singles of the first two balls to get the eighth over started. South Africa are 49 for 1. The previous over fetched four runs, which included one drop catch. Before that, the successful over which produced Wolfart's wicket fetched only 7 runs. So a quiet phase for England this, and there comes another miscued shot from Dirksen. This time the catch will be taken. It is the experienced palms of Heather Knight which complete the catch in the backward point region. A length delivery which was angled away towards outside off, slanting away from the right-hander. Anneri Dirksen pressed forward and swung her bat with ambition, only to connect with the outer half of it, and the ball went flying towards backward point, where Heather Knight had ample time to settle herself underneath it and eventually complete the catch. She is as safe as a bank, and that scratchy knock from Anneri Dirksen comes to an end. 49 for 2 after 7.3.
0: निश्चित तौर पर एक खराब स्ट्रोक खेला गया एनी डक्सन के द्वारा, और ऐसे समय जब इतने हाई स्टेक्स हो, देखने में ये आ रहा था कि पिछली 2-3 गेंदों पर भी उन्होंने जो स्ट्रोक्स खेले थे वो उतने कन्विंसिंग नज़र नहीं आए थे, और तारीफ करनी पड़ेगी कैंप की कि उन्होंने आते ही अपनी टीम को एक अच्छी सफलता दिलाई है, और बहुत ही शानदार अंदाज में शुरुआत की गई थी साउथ अफ्रीका की ओर से। जबकि एक तरफ खेल रही थी तास्मिन ब्रिट्स और दूसरी ओर थी कप्तान लॉरा वुलवर्ट। उसके बाद लॉरा वुलवर्ट के आउट होने के बाद अभी अभी कुछ देर पहले एक दूसरा विकेट गिरा, और अब मैरिजन कैप का आगमन हुआ है। मैरिजन कैप 5 पारियों में 119 रन बनाने में कामयाब हुई हैं इस विश्व कप में, और चूंकि बार्टले समाप्त हो चुके हैं तो 4 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के बाहर तैनात किए जा सकते हैं, सर्कल के बाहर इनफैक्ट तैनात किए जा सकते हैं। कैंप को अपनी तीसरी गेंद पर विकेट मिला है। मिडल और लेग स्टंप की दिशा में शॉर्ट ऑफ लेंथ करायों का इस्तेमाल करके मोड़ा उसे फाइन लेग की दिशा में। खिलाड़ी डीप में तैनात थी, जब तक आए गेंद को फील्ड करें, थ्रो करें एमी जोन्स के पास, तब तक एक रन लेने का मौका। दोनों बैटर्स ने छोर बदल लिया है, और खराब स्ट्रोक था, क्रॉस बैटेड, बल्ले के ऊपरी सिरे से गेंद टकराई थी, लेकिन अच्छा कैच लिया गया और कैंप को मिलती हुई ये पहली सफलता, इंग्लैंड को मिलती हुई दूसरी सफलता। तास्मिन ब्रिट्स 24 गेंदों में 25 रन बनाकर खेल रही हैं। स्लोअर डिलीवरी इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, कट करने का प्रयास था, अंतिम क्षणों में स्ट्रोक को चेक किया था। 88-89 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कैंप के द्वारा, बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रही हैं। जेंटल मीडियम पेस है, लेकिन यहां

0: पर स्लोअर डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर और डॉट डिलीवरी में कन्वर्ट होती हुई। 25 गेंदों में 25 रन, साउथ अफ्रीका का स्कोर 50 रन दो विकेट के नुकसान पर। शॉर्ट डिलीवरी थी, फाइन लेग की दिशा में खेला है, एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। थ्रो आ रहा था बॉलर से एंड पर, कैंप हालांकि थोड़ा एडवांस कर गई थी, लॉरेन बेल ने बड़ी तेज रफ्तार में थ्रो किया था, एक रन लेने में कामयाबी। 8 ओवर के बाद साउथ अफ्रीका 51 दो विकेट के नुकसान पर।
1: राइट, 119 मोर नीडेड ऑफ द रिमेनिंग 72 बॉल्स। हाउएवर इन द लास्ट 3 or 4 ओवर्स यू कांट हेल्प बट फील दैट इंग्लैंड हैव टाइटन देयर ग्रिप ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट। द लास्ट बाउंड्री केम इन द 6th ओवर, विच मीन्स वी हैव हैड 15 deliveries without any boundary now, and the momentum seems to be shifting towards the home team. Remember, England have won every World Cup that they have ever hosted. It goes back to 1973, the first World Cup in the sport of cricket that was ever organized was a Women's World Cup. They won it. They won it in 1993. They won it in 2017. These are obviously the 50-over World Cups. And they won the inaugural T20 World Cup in 2009 too. Good length delivery from Sophie Eccleston, who begins her second over in line with the off stump. The batter advances and drills it down towards long off to pick up a comfortable single. That single takes Brits to 27 and brings Marizan Karp back on strike. Marizan Karp prepares to face what will be the second ball of the 9th over. Fuller delivery from Eccleston in line with the middle pole has been warded off to mid on. So a single and a dot ball to start the proceedings. Next delivery slightly shorter outside the off stump, opens the face of the blade, does Marizan Karp. She was looking to thread it through the gap between short third and backward point. However, the fielder at point moved swiftly to her left in order to cut it off. Looks like it was Danny Wyatt Hodge who did the fielding, and that keeps the batters down to one. Next delivery backs away to the leg side. The Tasman Brits picks it off the stumps, drives it towards the deep point boundary. Lindsay Smith, who was stationed at cover, runs towards the fence and then puts in a dive. And whilst she goes over the ropes, she ensures that on her way, she is able to flick the ball away from the boundary cushion. Brilliant piece of fielding this. This is the modern way of fielding. You do not go around the ball and slide it, thereby saving yourself a fraction of a second. Some people like to call it the Brendan McCullum way, but this has become very, very common. She saved a run for her team. Only 3 is what South Africa got of that delivery. Well done, Lindsay Smith. Next delivery, slightly fuller than the previous one on the pads, and this has been tucked away, clipped away neatly towards deep backward square leg. Another single to be added. So this over has thus far produced 6 runs, one ball remaining in it. But the most important thing, South Africa have still not found the boundary. Next delivery, it has been drilled down to long on. In fact, jackhammered down to long on, should I say. That's how hard the batter hit it on that occasion. In fact, the non-striker was lucky to get out of the way. It was Tasmin Brits who fetches a single to herself with that. And that marks the end of the 9th over, 58 for 2.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
5: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: ओवल के मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के सामने लक्ष्य है 170 रन बनाकर के इस मैच को जीतने का, सेमीफाइनल जीतने का, फाइनल में प्रवेश करने का। और इंग्लैंड की ओर से कैंप आई है नया ओवर लेकर के। हालांकि उनकी पहली गेंद मिडल और लेग स्टंप की लाइन पर है, पैड से टकराई है। सामने है टैस्मिन ब्रिट्स, विचार विमर्श चल रहा है। हालांकि लग नहीं रहा कि इंग्लैंड की टीम रिव्यू के लिए जाएगी, क्योंकि कैंप जिन्होंने पहले ही ओवर में एक विकेट हासिल किया था और जेंटल मीडियम पेस गेंदबाजी करती हैं, काफ़ी सवाल पूछते हुए मैदान पर उत्सव सा माहौल है। और खासतौर पर इंग्लिश खेमे में इस समय काफ़ी जोश देखने को मिल रहा है। कैंप की ये गेंद इस बार शॉर्ट डिलीवरी ऑन साइड में पुल करने के अंदाज में खेला, गेंद ठीक तरीके से बल्ले पर आई नहीं। ब्रिट्स के स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद छिटक करके रह गई, एक रन लेने का अवसर दोनों

0: हिटर्स के पास, तो जो गेंद की रफ्तार है उसमें कैंप बहुत ही चतुराईपूर्ण परिवर्तन करती हुई नजर आती हैं, और इसी का परिणाम है कि उनकी गेंदों पर आजादी के साथ दोनों बैटर्स, चाहे मैरिजन कैंप हो जो अभी अभी आई हैं बल्लेबाजी करने के लिए, और तैस्मिन ब्रिट्स जो कि सलामी बैटर के तौर पर आई थी, दोनों ही खुलकर खेल नहीं पा रही हैं। इस बार हाफ वॉली पर लेकर खेला गया स्ट्रोक है, स्क्वायर लेग की दिशा में खेला गया है, बाउंड्री लाइन पर लिंसे स्मिथ मौजूद थी, अंदर की ओर दौड़ी और एक रन लेने से तो नहीं रोक पाएंगी दोनों बैटर्स को। लेकिन इस समय ऐसा लगता है कि इंग्लैंड की टीम, क्योंकि ये कंसोलिडेशन फेज है सातवें ओवर से लेकर के 14 ओवर के बीच का, जहां पर इंग्लैंड ने बनाए थे 78 रन, उन्होंने कोई विकेट नहीं खोया था, और इस समय जब दो विकेट दो टॉप ऑर्डर बैटर पवेलियन में विश्राम कर रहे हैं साउथ अफ्रीका की ओर से, मैरिजन कैप बहुत ही अनुभवी और उनके साथ तैस्मिन ब्रिट्स, उनकी कोशिश होगी कि वो पारी को सजाएं सवारे। अगली गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला गया है, एक रन के लिए दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदल लिया है, 61 रन स्कोर हुआ है दो विकेट के नुकसान पर, अभी भी 170 रन का जो लक्ष्य है वो किसी भी हालत में न तो आसान कहा जा सकता है ना ही कठिन कहा जा सकता है। इवन स्टीवंस मामला लग रहा है, अगर हम स्कोर के लिहाज से कंपैरिजन देखें तो भी लगता है कि दोनों टीमें लगभग बराबरी की स्थिति में हैं। इस बार एक रन के लिए दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदला है, ऑफ साइड में धीमे से पुश भर किया गया था गेंद, हालांकि स्ट्रोक जरूर खेलना चाह रही थी एक्स्ट्रा कवर की दिशा में मैरिजन कैप, लेकिन गेंद ठीक तरीके से बल्ले पर आई नहीं, एक रन लेकर के उन्होंने छोर बदल लिया। तो स्ट्राइक तो रोटेट हो रही है, 108 रनों की अभी भी आवश्यकता है, 61 गेंदें फेंकी जानी शेष है, भले ही कोई वाइड या नो बॉल नहीं हो। तैस्मिन ब्रिट्स 32 गेंदों में 33 रन बनाकर के सामने है, इस बार बहुत जल्दी गेंद की लाइन को पकड़ लिया था, शॉर्ट डिलीवरी थी, हालांकि जो डिजायर्ड रिजल्ट था यानी जो बाउंड्री तलाश रही थी ब्रिट्स वो तो नहीं मिली, लेकिन सिंगल के साथ उन्होंने ओवर समाप्त किया। 10 ओवर के बाद इंग्लैंड के सामने जब 169 रन उन्होंने बनाए थे और 10 ओवर के समाप्त होने के बाद दो विकेट गंवा चुकी है टीम साउथ अफ्रीका की, थोड़ी सी स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है, और इन दोनों बल्लेबाजों पर, इन दोनों बैटर्स पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अभी भी 100 रन से ज़्यादा का स्कोर बनाना बाकी है। 8 विकेट ऑफकोर्स सुरक्षित हैं, लेकिन क्रिकेट के मैदान पर जैसा हम कहते हैं कि कुछ भी निश्चित नहीं है, कुछ भी अनिश्चित नहीं है, 6.3 रन प्रति ओवर के औसत से टीम रन बना रही है।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें, कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: No boundaries for 27 balls and just as I say that, steps out of a crease and flays it towards the extra cover region. The Tasman Brits picks up a 4.
3: ये लगा आभा का चौका।
2: Charlie Dean, the English vice captain, starting the 11th over with a good length ball outside the off stump. Brits put her dancing shoes on, converted this into a half volley and punched it towards the left of long off and picked up a boundary. The next delivery, a full toss, and it has been bunted back towards the bowler who collects it on a bounce. So a couple of really loose balls from Charlotte Dean to start this over. Next ball, she shortens the length and the batter tries to go cross batted swipe and doesn't quite make the connection that she desired. The ball goes aerial and falls in no man's land in the forward square leg region, and a single has been added. So 4-0-1 to start off the 11th over. Next delivery, this time Marizan Kapp steps out, miscues, and she has been caught in the extra cover region. Natsiva Brunt completes the catch, and there's an explosion of joy in the English camp. They have got the big fish. Marizan Kapp has been dismissed. 68-3 are South Africa, and Charlotte Dean's over, which did not begin on the right note, has produced something invaluable for South Africa. All the Indian fans know how important Marizan Kapp is. She played that magnificent innings to knock India out of the competition. And over here, however, she has not been able to deliver. She scores only 5 of 7 balls. She jumped out of her crease. However, Dean saw her coming and hence went wider

0: finished near the tram line, but the batter failed to lay bat on ball. The keeper failed to gather it, and the ball trickled away into the ropes behind the wicketkeeper. So by signal, 12 overs done, 79 for 3 South Africa, still needing 91 more to win.
1: तो जब इस मुकाबले की शुरुआत हुई थी दर्पण, तब साउथ अफ्रीका की कप्तान लॉरा वॉलवर्ट ने टॉस जीता था और उन्होंने ये कहा था कि एकमात्र परिवर्तन टीम में है और वो है सुनील लुईस का आगमन, जो कि एक टैक्टिकल चेंज है। और सुनील लुईस ऐसे मौके पर बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर पहुंची हैं जब शायद उस टैक्टिकल चेंज की सबसे बड़ी परीक्षा हो रही है। सोफी एक्लिस्टन का आगमन हुआ है गेंदबाजी के लिए। इंग्लैंड की ओर से इस विश्व कप में सबसे सफल गेंदबाज हैं। 8 विकेट उन्होंने आज के मैच से पहले हासिल किए थे 5 मैचेस में। इकोनॉमी रेट 5.90 का रहा था और एक छोर पर बैटर लगातार नियमित अंतराल पर कहा जाए पेविलियन का रुख करते रहे हैं और 3 खिलाड़ी पेविलियन में विश्राम कर रहे हैं। दूसरी ओर टैस्मिन ब्रिट्स 40 गेंदों में 45 रन बना करके नाबाद हैं। इस बार स्वीप शॉट खेला गया है डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री पर, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर इनफैक्ट फील्डर तैनात हैं और बड़ी आसानी के साथ उसे फील्ड किया गया। कैंप थी वहां पर, रन बनने की संभावना थी, उसका पूरा फायदा उठाया। सिंगल से दोनों बैटर्स ने छोर बदला। तो क्रिकेट में परिस्थितियां किस तरीके से करवट लेती हैं ये इस बात की ओर इशारा करता है। इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की पारी का कुछ विवेचन किया जाए, एनालिसिस किया जाए, तो उससे पता चलेगा कि इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी की, उन्होंने 35 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर में। साउथ अफ्रीका ने बनाए 43 रन 1 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर के बाद। इंग्लैंड ने बनाए 68 रन 3 विकेट के नुकसान पर और दक्षिण अफ्रीका ने बनाए 63 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार स्टेप आउट किया, फुल टॉस पर लिया टैस्मिन ब्रिट्स ने। एक्लेस्टन की इस गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला, चार्ली डीन वहां पर मौजूद हैं। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बैटर्स को। साउथ अफ्रीका का स्कोर हुआ 82 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 88 रन चाहिए, 43 गेंदें फेंकी जानी शेष हैं। इंग्लैंड का पलड़ा फिलहाल तो भारी लग रहा है, इस बार स्वीप करने के अंदाज में खेला है। कारपेट के सहारे गेंद बाउंड्री लाइन की ओर पहुंची थी, टैस्मिन ब्रिट्स के बल्ले से निकला है 1 रन। 13 ओवर के समाप्त होने के बाद दक्षिण अफ्रीका 83 3 विकेट के नुकसान पर।
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: जानिए आभा के बारे में।
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: Nearly 12 and a half runs per over required by South Africa if they are to win this match. They are chasing 170, 83 for 3 after 13 overs, and Lauren Bell has been brought into the attack. Lauren Bell, who throughout this tournament we have seen has dedicated a couple of overs towards the death phase, has been brought back in today in the 14th over. Interesting move by England. They want to kill the game right now. They do not want to take it deep. Starts off with a good length ball, which is in line with the imaginary fourth pole. Sunil Lewis backs away to the leg side, and that allows her to work it away towards the backward point region. The ball goes straight to the fielder, and hence there is no run to be had. With every dot ball, the pressure will mount on South Africa. 83 for 3 in 13.1. Lewis has scored 4 of 9 balls, which is not ideal by any means at this stage. Next delivery, a slower ball. She steps out and plays it towards the extra cover region. There could be a run out, however the wicketkeeper has failed to gather the ball cleanly, and Tasmin Brits gets a life. This time around Luce converted this one into a half volley and then punched it towards Charlotte Dean at extra cover, who was quick to pick it up and hurl it towards Amy Jones. However, Amy Jones was not able to gather it cleanly, or else it would have been curtains for Brits. So Brits gets a life. Can she make the most of it? Next delivery, banged in short, in line with the middle pole. Brits stays besides the line, attempts a pull, connects with the bottom edge of the blade, and the ball goes trickling away towards the backward square leg region. Only a single. The first half of the over has produced only 2 runs. That is not ideal from South Africa's perspective. They've reached halfway the target, but

0: have only 39 balls to score 85 more. Bell runs in, delivers another short ball outside the off stump. Sunil Lees brings out a pull, which is not a very robust one, not a very vigorous one. The ball trickles away into the gap between long on and deep mid-wicket, and that allows for a couple. However, ones and twos are not going to hurt England. South Africa need to find boundaries. Sunil Lees needs to up the ante. 7 of 11 against her name. Lauren Bell runs into bowl what will be the penultimate ball of her over. It's a slower ball on the shorter side of good length at the middle pole, and Lees brings out a robust short arm pull. The ball goes to the fence, gets her 4.
1: Ye laga abha ka choka.
0: Almost had to wait for the ball to arrive and delay her bat swing. However, Lees did it in accordance with the slowness of the ball, and in the end placed it well too. This is what they need more of. She placed it between mid-wicket and long on. There's a gaping gap towards it. Next delivery, short ball. This time she wasn't in control of the pull shot, and Sophie Eccleston completes another fantastic catch. Lauren Bell has delivered the goods. She has done exactly what Nat Siverbrunt asked her to do, brought in earlier in the 14th over, because England wanted to kill the game, and with the wicket of Lees, they might have done it. South Africa reeling, crumbling under pressure. They are 4 down for 91 as we head into a drinks break.
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: मुश्किल परिस्थितियों में दक्षिण अफ्रीका, और जैसा हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, 170 रन का लक्ष्य था उनके सामने, क्योंकि इंग्लैंड ने टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 169 रन बनाए थे निर्धारित 20 ओवर्स में इस दूसरे सेमीफाइनल में, जो कि इंग्लैंड के ओवल मैदान पर खेला जा रहा है, और सामने है इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीमें। इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीमों के बीच जब भी मुकाबले हुए हैं तो जैसे कहते हैं कि बिल्कुल अंत समय में ही फैसला हुआ है, और यहाँ पर लेकिन ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड ने बहुत ही शानदार वापसी की है। पहले उन्होंने बल्लेबाजी में अच्छी वापसी की हैदर नाइट और नैट सेवरब्रंट की बदौलत। नैट सेवरब्रंट ने 75 रन बनाए, हैदर नाइट ने 58 रन बनाए, 46 गेंदों का सामना किया नैट सेवरब्रंट ने, हैदर नाइट ने 47 गेंदों में 58 रन बनाए, और शतकीय साझेदारी ताबड़तोड़ अंदाज में पूरी हुई, जिसके बदौलत इंग्लैंड पहुंचे 169 रन पर। 170 रन के लक्ष्य की तलाश में जब साउथ अफ्रीका की पारी की शुरुआत हुई तो विकेट नियमित अंतराल पर गिरते रहे। कप्तान लॉरा वॉलवर्ट आउट हुई, टैजमिन ब्रिट्स एक छोर से संभाले हुए हैं पारी को, लेकिन अभी सोनल लूस कुछ देर पहले आउट होकर के पवेलियन वापस लौटी हैं, और चौथा विकेट तो 6 ओवर के बाद 43 रन एक विकेट के नुकसान पर, 7 से 14 ओवर के बीच में सिर्फ 48 रन बनाए गए हैं दक्षिण अफ्रीका के द्वारा, और उन्होंने 3 विकेट गंवा दिए हैं। और इसी परिस्थिति में, यानी 7 से 14 ओवर के बीच में, इंग्लैंड ने बनाए थे 78 रन और उन्होंने कोई विकेट नहीं खोया था, और ये वो मौका था, ये वो कंसोलिडेशन स्टेज थी जहां पर नैट सेवरब्रंट और हैदर नाइट इंग्लैंड की पारी को सजाने संवारने का काम कर रहे थे, और वही जो सजाना संवारना था 7 से 14 ओवर के बीच में, ऐसा लगता है कि किसी भी तरीके से मुकम्मल नहीं हो पाया है दक्षिण अफ्रीका की इस पारी में, जहां मैरिजन कैप आउट हो चुकी हैं, सोनल लूस आउट हो चुकी हैं, और कप्तान लॉरा वॉलवर्ट तो सबसे पहले आउट होकर पवेलियन वापस लौटी थी। तारीफ करनी पड़ेगी गेंदबाजी के रोटेशन की, जिस अंदाज में अपने बॉलर्स को रोटेट किया गया है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। इंग्लिश कैप्टन नैट सेवरब्रंट के द्वारा आज टीम में उनका आगमन हुआ था, और जैसा हम आपको बता रहे थे, आंकड़े बता रहे थे, 48 रन बनाए हैं 7 से 14 ओवर के बीच में साउथ अफ्रीका ने, और उन्होंने 3 विकेट गंवा दिए हैं। चार्ली डीन का आगमन हो रहा है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही है। 79 रनों की आवश्यकता है। दक्षिण अफ्रीका को 36 गेंदें फेंकी जानी शेष है, 14 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 91 रन है 4 विकेट के नुकसान पर। टैजमिन ब्रिट्स 43 गेंदों में 47 रन बनाकर के खेल रही है, बैकफुट पर जाकर के पंच

0: अक्षय कुमार बाउंड्री के बाहर गेंद जा चुकी है चार रनों के लिए।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: इसके साथ ही तैजमिन ब्रिट्स का अर्धशतक पूरा हुआ, 44 गेंदों में 51 रन बना करके वो क्रीज पर हैं, 115 से ज्यादा का उनका स्ट्राइक रेट है। तो क्या अकेला चना कुछ कर सकता है? टैस्मिन ब्रिट्स इसका जवाब देने के लिए फिलहाल क्रीज पर मौजूद हैं। दूसरे छोर से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, एक और मिसक्यूट शॉट है, गेंद हवा में उछली है, मिड ऑफ की दिशा में कैच लिया गया है, वहां पर कप्तान नेट सिवरब्रंट मौजूद है और इंग्लैंड के खिलाफ साउथ अफ्रीका को लगता हुआ ये पांचवां झटका। 95 रन 5 विकेट के नुकसान पर चार्ली डीन को एक और सफलता। टैस्मिन ब्रिट्स की पारी का भी अंत हो चुका है।
2: The hopes are dwindling. The target of 170 looks further and further away. Looks like South Africa's wait for that elusive ICC trophy in women's cricket will continue if they continue to bat like this. Tasmin Brits, who scored her 16th 50 in T20Is and is the second leading run scorer, consumed 45 deliveries, and just when the required rate was getting to intolerable levels, she tried to go big, stepped out, tried to go for a ambitious swing of the bat, completely miscued it, and an easy catch for Nat Sivabrant. South Africa are 95 for 5. Two batters who are yet to face a ball are out in the middle, albeit two very credible batters, two very credible lower order hitters, Chloe Tryon and Nadine de Klerk. Chloe Tryon is currently on strike, and we have seen both these batters pull South Africa out of dire situations before, and they need it more than ever today. Charlotte Dean continues, delivers this one on a good length, the ball spinning in towards the middle end leg. The batter Chloe Tryon presses forward and then uses her wrists to turn it towards mid-wicket and picks up a comfortable single. We saw the wicket of Sune Luce in the previous over, where a short ball from Lauren Bell got too big on Sune Luce, and Luce went for that pull shot which she wasn't able to control. A good catch was taken by Sophie Eccleston at short fine leg. After that, in this over, we saw the wicket of Tasmin Brits, who had scored a half century. Flatter trajectory this time around from Charlotte Dean, delivers this one on a good length in line with the off and the middle stump. Nadine de Klerk gets a stubborn full face behind the ball and blocks it. Of course, she will need a couple of balls to get her eye in, to gauge what the surface is doing. You can't expect her to explode from ball one. Next delivery onto the pads, it has been nudged in a deft manner, bunted away almost towards the front of square leg. There is no fielder there, and hence Charlie Dean runs across to field the ball herself and ensures that the batters do not get more than a single. So it has turned out to be a good over for England once again. The required rate going over 14 and over. South Africa need boundaries and need plenty of them. Good length delivery on the middle stump, which Chloe Tryon gets forward to and bunts it towards long on. Picks up a single, end of the 15th, 98 for 5.
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
3: तुम हो ही भुलक्कड़।
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
5: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
6: आभा
5: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: 15 ओवर के बाद 98 रन 5 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य है 170 रन का, यानी अभी भी 72 रन चाहिए दक्षिण अफ्रीका को अगर ये मैच जीतना है, और 30 गेंदें फेंकी जानी शेष है बशर्ते कोई वाइड या नो बॉल नहीं होती है। 15 ओवर के बाद 98 रन 170 रन का लक्ष्य पहाड़ सा दिख रहा है, और नैडिन डी क्लर्क और क्लोई ट्रायन इस समय मैदान पर मौजूद हैं, क्रीज पर मौजूद हैं। दोनों ही बैटर्स ने 2 और 3 गेंदें खेली हैं, यानी दोनों ही नए बैटर्स हैं समय क्रीज पर, और दक्षिण अफ्रीका पर पूरा दबाव बनाने की कोशिश में कामयाब होते हुई इंग्लिश टीम। नैट सिवरब्रंट ने न केवल आज बल्लेबाजी बेहतरीन की है, बल्कि उन्होंने गेंदबाजों को भी बहुत अच्छी तरीके से रोटेट किया है, जिसका सुपरिणाम उनको मिला है, और 2 कैच भी उन्होंने लिए हैं। मेडलो लेग स्टंप की दिशा में गेंद, लेग स्टंप के बाहर ड्रिफ्ट करते हुए जैकलिन विलियम्स की ओर निगाहें जा रही थी कि

0: क्या वो वाइड करार देंगी इस बॉल को, और काफी विस्मृत से दिख रही हैं, अचंभित से दिख रही हैं क्लोट्रॉयन, क्योंकि उन्होंने एम्पायर की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखा कि शायद इसे वाइड करार दिया जाएगा, लेकिन एम्पायर का फैसला कि संभवतः पैड से या किसी तरीके से बॉल का कनेक्शन हुआ था और इस वजह से उसे वाइड करार नहीं दिया गया। अगली गेंद मिडल और ऑफ स्टंप पर थी, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, उसे बल्ले से टकराने पर दिया, कोई अटैकिंग स्ट्रोक ऑफर नहीं किया, एक रन के लिए छोर बदल लिया दोनों बैटर्स ने। चार्ली डीन आज जो विकेट ले चुकी हैं उसको मिला करके लीडिंग बॉलर्स की कैटेगरी में वो पांचवें पायदान पर आ गई हैं, उन्होंने 9 विकेट अब तक हासिल किए हैं इस T20 विश्व कप में, 3 गेंदें उन्होंने इस ओवर की डाली हैं और काफी प्रभावशाली गेंदबाजी उनकी रही है। 71 रन अभी भी चाहिए, 27 गेंदें फेंकी जानी शेष हैं, 99 रन 5 विकेट के नुकसान पर। बाएं हाथ से जेंटल मीडियम पेस गेंदबाजी करती हैं, पॉइंट की दिशा में गेंद पहुंची थी, नैडिन डीक्लर्क के बल्ले से निकला था ये स्ट्रोक, लेकिन रन के लिए नहीं। कैंप इस समय गेंदबाजी कर रही हैं, जिनका हमने जिक्र किया था कि जेंटल मीडियम पेस गेंदबाजी करती हैं और कोई बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट उनकी गेंदबाजी में नहीं है। बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी, लगभग 7-8 कदम का उनका रन अप यॉर्क करने की कोशिश थी, लो फुल टॉस पर उसे पिक किया गया है एडिन डीक्लर्क के द्वारा, एक रन मिलना चाहिए। पारी का यह 16वां ओवर है और 100 रन पूरे हो गए हैं, हालांकि तालियों से उसका अभिनंदन किया जा रहा है ओवल के मैदान पर मौजूद दर्शकों के द्वारा, साउथ अफ्रीका के डगआउट में भी, लेकिन सच्चाई यही है कि इस समय परिस्थितियां बहुत ही खराब और गंभीर कही जा सकती हैं साउथ अफ्रीका के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस ओवर में 3 डॉट डिलीवरीज कैंप के, और इस बार फिर से वो लेग स्टंप की दिशा में ड्रिफ्ट करती हुई गेंद पैड से टकराई है, दोनों बैटर्स ने छोर बदल लिया है, सुरक्षित पहुंच चुके हैं। 16 ओवर्स के समाप्त होने के बाद स्कोर 101 रन 5 विकेट के नुकसान पर, यानी अभी भी 69 रन चाहिए, 24 गेंदें फेंकी जानी शेष। कैंप ने एक बहुत ही प्रभावशाली ओवर समाप्त किया, 3 ओवर उन्होंने फेंके हैं, सिर्फ 11 रन खर्चे हैं और 1 विकेट उन्होंने हासिल किया है। तो इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीमों के दरमियान जो मुकाबले अब तक होते रहे हैं, कुछ अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें नॉकआउट मुकाबलों के बारे में, तो 2017 में लॉर्ड्स के मैदान पर भारत को हरा करके इंग्लैंड ने मुकाबला जीता था, आखिरी बार वर्ल्ड कप जीता था। तब से जो कंप्लीट मैचेस हुए हैं, 6 कंप्लीट होने वाले नॉकआउट मैचेस में इंग्लैंड ने 4 हारे थे और 2 जीते थे, लेकिन आज लग रहा है कि वो उस आंकड़े को बेहतर करने की ओर अग्रसर हैं, और देखना होगा कि बाकी बचे हुए 4 ओवर्स में साउथ अफ्रीका की पारी कहां तक पहुंच पाती है। फिलहाल 69 रन चाहिए 24 गेंदों में।
1: Charlie Dean to bowl her final over. It's now or never for South Africa. First delivery from over the wicket on a good length, drifting in towards the middle pole. Chloe Tryon steps out of a crease and then drives it along the carpet towards the long on fielder. Picks up only a single. But I, at the risk of sounding like a broken record, will reiterate that ones and twos are not going to hurt England. Next delivery, slightly flatter trajectory on a length at the stumps. De Klerk backs away to the leg side and then flays her hands away from the body to push it towards the cover region and picks up a couple before Natsiva Brunt chases it down. Interestingly, Natsiva Brunt has been running around like a free spirit right throughout this match, even when she was batting, even when she's fielding. The reason why I point that out is because, remember, she is recovering from a calf injury and we were assuming that she might not be 100% fit, but she has laid all those demons to the bed. Around the wicket, this time around from Charlotte Dean, delivers this one in line with the body of Nadine de Klerk, who had backed away to the leg side. In the end, de Klerk was only able to adjust into a dink towards mid-wicket, picks up a single. Next delivery back over the wicket and Chloe Tryon unfurls a big shot and gets a boundary. ये लगा आभा का चौका। A quicker delivery from Charlie Dean. She fired this one in at the stumps on a foolish length. However, the batter, almost as if she was anticipating it, shuffled to the onside in order to give herself the room to swing her arms, went inside out over extra cover, and the ball bounced only once in the outfield before crossing the ropes. Changes her angle once again. That's

0: Dean will be looking to bowl in line with the body, exactly what she does, and there's a misfield which produces another boundary for South Africa.
1: ये लगा आभा का चौका.
0: As soon as the bowler changed her angle, Tryon was expecting it to be delivered in line with her body. She shuffled half a step towards the onside only after the ball had left the bowler's hand, and thereby there was no opportunity for Dean to adjust. She drilled it towards long off where it should have been an easy stop for Lindsay Smith. However, she fumbled and allowed a boundary. Next delivery in line with the body. Tryon crouches and swishes across, ends up finding Lauren Bell at short fine leg. No runs to be had. 17 done. South Africa still needing 57 more to win.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
2: तुम हो ही भुलक्कड़.
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली.
4: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में.
5: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
6: 17 ओवर के बाद 113 रन 5 विकेट के नुकसान पर इस बार हाफ वॉली पर लेकर इनसाइड आउट शो खेला. एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की दिशा में जा रही है गेंद. डीकला के बल्ले से निकलता हुआ बेहतरीन चौका.
1: ये लगा आभा का चौका.
6: 117 रन 5 विकेट के नुकसान पर नए ओवर की शुरुआत चौके से की है. स्टेप आउट किया था, 2-3 कदम हाफ वॉली पर पिक किया था बॉल को, सर्किल को क्लियर किया था. तीन खिलाड़ी जो कि ऑफ साइड में सर्किल के अंदर तैनात हैं. 4 रनों का इजाफा डीकला के स्कोर में. लो फुल टॉस पर ड्राइव किया, बेहतरीन फील्डिंग सर्किल के मुहाने पर, अच्छा बैकअप भी आता हुआ. कैंप बहुत ही सक्षम क्रिकेटर के तौर पर उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है, तो थोड़ी कोशिश हो रही है फ्लरिश की, कुछ रनों की रफ्तार बढ़ाने की, लेकिन परिस्थितियां बड़ी डिफिकल्ट हैं क्योंकि आधी टीम पेवेलियन में है. हालांकि इस समय दोनों जो बैटर क्रीज पर मौजूद हैं वो काफी कुछ कर गुजरने की क्षमता रखते हैं. इस बार फाइनल की दिशा में गेंद को खेला गया है और जब बॉलर देख रही हैं कि बैटर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो शफल करें, लेग स्टंप के बाहर निकल जाएं, ऑफ स्टंप के बाहर जाएं, स्टेप आउट करें, कुछ रिदम जो है उसको तोड़ने की कोशिश करें गेंदबाज का, तब उसी अंदाज में जवाब देने की कोशिश भी हो रही है गेंदबाजों के द्वारा. क्लोए ट्रायन 10 गेंदों में 12 रन बनाकर के क्रीज पर हैं. बोल्ड हो गई हैं, क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी, स्ट्रेट इज डिलीवरी. तारीफ करनी पड़ेगी सोफी एक्लिस्टन की, जिनके बारे में हमने आपको बताया था कि सफलतम गेंदबाज है इंग्लैंड की ओर से. पहली गेंद पर चौका लगा जरूर था लेकिन उसके बाद क्या शानदार वापसी की है. स्ट्रेट इज डिलीवरी बाएं हाथ से, राउंड द विकेट गेंदबाजी, थोड़ी सी लो रहती हुई गेंद, क्रॉस बैटेड स्ट्रोक ट्राई किया, गेंद की लाइन में आए बगैर, और बोल्ड हो गई है तो ट्रायन. उनकी पारी का अंत हो चुका है. 118 रन 6 विकेट के नुकसान पर 17.4 ओवर की बल्लेबाजी के बाद ट्रायन ने 11 गेंदों में 12 रन बनाए, 2 चौके उनकी पारी में शामिल, और अब साउथ अफ्रीका के डगआउट में सिर्फ और सिर्फ निराशा पढ़ी जा सकती है. और इसके लिए जरूर निश्चित तौर पर डेफिनेटली विदाउट एनी डाउट तारीफ करनी पड़ेगी नैट सिबर ब्रंट के करिश्माई प्रदर्शन की, जिन्होंने आज, जिनका आगमन हुआ इंग्लैंड की टीम में, उन्हें शामिल किया गया. काफ इंजरी से जूझ रही थी, पिछले 3 मुकाबले खेली नहीं थी, उसके पहले 2 मैचेस खेली थी, लेकिन आज आते ही उन्होंने चमत्कार किया. जब इंग्लैंड पर संकट के बादल मंडरा रहे थे, 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर था, 4th विकेट के लिए शतकीय साझेदारी निभाई हैदर नाइट के साथ. अब जैफ्टा का आगमन हुआ है जो कि मूल रूप से एक विकेटकीपर हैं, लेकिन विकेटकीपर बैटर के तौर पर उनको जाना जाता है. एक्लेस्टन की गेंद मिडल और ऑफ स्टंप पर तेजी से रन चुराने का प्रयास था, कामयाब होती हुई जैफ्टा, उन्होंने स्कोरिंग का सिलसिला शुरू कर दिया है. 119 रन 6 विकेट के नुकसान पर एक हताशा में खेला गया स्ट्रोक कहा जा सकता है, जहां पर आपकी कोशिश होती है कि आड़ा तिरछा कोई भी स्ट्रोक खेल करके रन बनाने की कोशिश की जाए. हालांकि क्रिकेट के मैदान पर बहुत बार ऐसा संभव नहीं हो पाता है. थ्रो आता हुआ विकेट कीपर के पास, 18 ओवर के बाद 119 रन दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर.
7: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें, कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद

0: बस एक कॉल दूर है।
1: It's nearly 9:30 p.m. in London. The sun went down 10 minutes ago and looks like at the same time the sun went down for South Africa too. 12 balls remaining. They need an improbable 51 runs to win. England have plenty of options. They go to Lauren Bell for the penultimate over. It's Sinalo Jafta on strike. 119 for 6 South Africa. And the over starts with a comical incident, slower delivery from Lauren Bell, but almost as if Jafta was expecting a pace on delivery. She swished into a horse straddling stance, stood outside the off stump waiting for the ball to arrive and play the lap shot, but the ball never arrived. It was a slower ball. She kept on waiting, and then eventually when she played her shot, she was still early into it. So a dot ball to begin the penultimate over. Next delivery, another slower one, possibly the leg cutter from Lauren Bell. It finishes outside the off stump. Jafta was looking to drive it on the up, possibly through the cover region, but wasn't able to lay bat on ball. Two dot balls means 51 runs now needed off 10 balls. If my math serves me right, that's 5.1 per ball. It is getting out of South Africa's reach. Next delivery, another slower ball. By now, Jafta should be anticipating it. Oh, she's got run out. She pushed it towards Danny Wyatt-Hodge at backward point and set off for the run. Wyatt-Hodge took her time, aimed for the bullseye at the striker's end, and then scored a direct hit. She punches the air in delight. She wasn't able to contribute with the bat in her hand in the manner she has been doing in the group stages, but she has contributed in the field. Danny Wyatt-Hodge effects that run out. Sinalo Jafta, after an innings which lasted 4 balls, she scored 1 run, and now she's walking back to the dugout. South Africa in dire straits, 119 for 7. It won't be wrong to say that they are on the brink of elimination.
2: Yeah, बिल्कुल. दक्षिण अफ्रीका के फैंस जो हैं उन्होंने ओवल मैदान से अब प्रस्थान करना भी शुरू कर दिया है, और इबारत ऐसा लग रहा है कि लिखी जा चुकी है. दक्षिण अफ्रीका हार की कगार पर और इंग्लैंड जीत की दहलीज पर ओवल के मैदान पर इस दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में आयाबोंगा खाका का आगमन हुआ है, जो कि मूल रूप से एक गेंदबाज हैं. बल्ले से क्या कुछ खास योगदान रहा है, उनका स्ट्राइक रेट है 61 का और सर्वोच्च स्कोर है 12 नाबाद रन जो उन्होंने बनाए थे. दूसरे छोर पर नैडिन डी क्लार्क हैं, 10 गेंदों में 10 रन बनाकर खेल रही हैं. लॉरेन बेल ओवर की अगली गेंद लेकर, दो डॉट डिलीवरीज हैं. पिछली गेंद पर एक रन आउट आया था, बहुत ही बढ़िया स्लोअर डिलीवरीज का कितना बेहतरीन इस ओवर में उन्होंने इस्तेमाल किया है. और डैनी वियाट-हॉज, जैसा कि दर्पण बता रहे थे कि भले ही बल्ले से योगदान नहीं कर पाई हो, लेकिन जो एक कंप्लीट टीम बनती है, क्रिकेट कहते हैं कि टीम गेम है, फ्लैशेज ऑफ ब्रिलियंस आते हैं, लेकिन जब कंप्लीट टीम, हर खिलाड़ी अपने अपने अंदाज में अपने अपनी तरफ से योगदान देता है, तब वो सूरत हाल निभर कर सामने आती है जो इस समय इंग्लैंड के इस मुकाबले में उनकी ओर से उभर करके सामने आ रही है. पटकी हुई गेंद थी, आंख मून करके खेला गया स्ट्रोक, बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर के गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर जा चुकी है 4 रनों के लिए.
3: ये लगा आभा का चौका.
2: ज्यादा कुछ समझ में आया नहीं था आयाबोंगा खाका को. पटकी हुई गेंद थी, कंधे की ऊंचाई तक आई थी और उन्होंने आगे बढ़ करके ऑन साइड में स्ट्रोक खेलने का उपक्रम किया था. हालांकि गेंद की लाइन से हट गई थी, अपना चेहरा भी उन्होंने दूसरी ओर घुमा लिया था. और इसी बीच नॉन स्ट्राइकर एंड पर नैडिन डी क्लार्क जो खड़ी हुई हैं, उनका भी बल्ला गिर गया. तो काफी कुछ हो रहा है, लेकिन वो सब कुछ ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड के पक्ष में जाता हुआ प्रतीत हो रहा है और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जाता हुआ दिख रहा है. नैडिन डी क्लार्क, चेहरे पर उनकी मुस्कुराहट है, लेकिन दिल में कहीं बहुत दर्द होगा कि आज भी टीम उनकी कामयाब नहीं हो पाई है. यॉर्क करने की कोशिश थी, परफेक्ट यॉर्कर लॉरेन बेल ने बोल्ड कर दिया है आयाबोंगा खाका को, और 19 ओवर के बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर अब पहुंच चुका है 123 रन 8 विकेट के नुकसान पर, यानी सिर्फ दो खिलाड़ी आने बाकी। लॉरेन बिल की कितनी तारीफ की जाए, क्या बेहतरीन गेंदबाजी इस पर्टिकुलर ओवर में उन्होंने की है। बैक ऑफ द हैंड से फेंकी गई उनकी गेंद, परफेक्ट।

0: यॉर्कर लेंथ की डिलीवरी, एक माइटी हीव का प्रयास मिड ऑन, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट की दिशा में, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। अयाबोंगा खाका की इस पारी का अंत हुआ जहां पर एक मिस्क्यूड चौका उनके बल्ले से निकला था, तीन गेंदों में चार रन बना करके वो पवेलियन वापस जा चुकी हैं। और अब कह सकते हैं, वैसे क्रिकेट के मैदान पर ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन जीत दर्पण सिर्फ एक औपचारिकता इंग्लैंड की टीम के लिए।
1: Of course, 47 needed of the final over. Let's do the math. It's not possible, you know it. 123 for 8 South Africa, and possibly for the last time in international cricket, Shabnim Ismail makes her way to the 22-yard playing strip, albeit as a batter. She's not in the side for her batting. She announced her retirement in 2023, came back specifically for this tournament, but it looks like South Africa will not be able to go all the way. Semi-final coming to fruition, last six deliveries remaining. South Africa need an improbable 47 to win, and Nadine de Klerk is on strike. Lindsay Smith to bowl the final over. Starts off with an arm ball slanted in towards the leg stump off a good length. The batter backs away and then works it through the gap between backward point and cover. And Freya Kemp, who was stationed at cover, runs across to the boundary and then puts in a slide to pick up the ball and keep the batters down to two. 125 for 8, 5 deliveries remaining, and South Africa need a bazillion runs to win. Only going through the motions here. 5 balls before the match comes to an end. There comes a slog sweep from Nadine de Klerk. The ball's in the air and it will land safely. Danny Gibson ran in from the mid-wicket boundary and could not get to the ball. A comfortable single taken. However, it's not going to haunt England. 126 for 8 after 19.2.
0: 19.2 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है इंग्लैंड की ओर से, यानी आखिरी चार गेंदें फेंकी जानी शेष हैं इस सेमीफाइनल मुकाबले में। और जैसा हमने पिछले ओवर के आखिर में कहा कि जीत अब सिर्फ औपचारिकता लग रही है इंग्लैंड के पक्ष में, और वो T20 विश्व कप जो कि उनकी ही मेजबानी में इंग्लैंड और वेल्स में खेला जा रहा है, फाइनल में पहुँचने की दहलीज पर हैं। अगली गेंद जिस पर शबनम इस्माइल ने ऑन साइड में धीमे से खेला है, गेंद को एक रन के लिए दोनों बैटर्स ने छोर बदल लिया है। और इस मुकाबले में मैरिजन कैप ने सबसे ज़्यादा डॉट डिलीवरी डाली थी, लेकिन लॉरेल बेल ने उनको मैच कर लिया है। 12-12 डॉट डिलीवरीज डाली गई हैं दोनों गेंदबाजों के द्वारा। लिंसे स्मिथ आई हैं इस पारी का आखिरी ओवर लेकर, फ्लैटेस्ट डिलीवरी है, अंदरूनी किनारा लिया है, लॉरेल बेल के पास पहुंची है। शॉर्ट फाइनल की दिशा में रन बनने की कोई संभावना नहीं, 127 रन 8 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में चार रन बने जरूर हैं, लेकिन मुकाबला लगभग समाप्त। और मैच के समाप्त होने के बाद आप सुनेंगे स्टूडियो एंड से हमारा कार्यक्रम हीरो 2020।
1: नेक्स्ट डिलीवरी आउटसाइड द ऑफ स्टंप ऑन अ गुड लेंथ गोज फॉर अ लॉफ्टेड शॉट। डज नदीन डी क्लर्क फाइंड्स एब्सोल्युटली नोवेयर नियर द डिजायर्ड टाइमिंग। द बॉल लैंड्स वेल शॉर्ट ऑफ द लॉन्ग ऑफ फील्डर, एंड बिफोर द फील्डर कैन पिक इट अप, थ्रो इट बैक टू द 22 यार्ड प्लेइंग स्ट्रिप, अ कंफर्टेबल सिंगल हैज बीन टेकन। दैट टेक्स द स्कोर टू 128, and that brings Shabnim Ismail on strike. Final ball of the second semi-final. The result is a foregone conclusion, but possibly for the last time in international cricket, we will see Shabnim Ismail in action. Here comes the arm ball, which pitches outside the leg stump and then moves towards the stump. Ismail tucks it towards backward square leg, picks up a single, and just as the ball becomes dead, the celebrations begin in the England dugout. 129 for 8 is what South Africa have managed. There's a sonic explosion in the stands at the Oval as the home crowd celebrates the victory of their women's team. England's men's team's former World Cup winning skipper Owen Morgan, who's in attendance, gives the women's team a standing ovation. They won this match by 40 runs and moved one step closer to achieving that dream which they have waited for a while now. It was in 2017 last time England's women's team achieved an ICC trophy. Will they be able to do it in 2026? The last time they won a T20 World Cup was back in 2009 under the captaincy of Charlotte Edwards, who's currently on the park hugging and delivering handshakes congratulating

0: the English players. She's the head coach of the team currently. And with these joyous scenes, it is time for us to say goodbye here from the Akashvani commentary box. You were listening to Darpan Tikya in English, Shivendra Chaturvedi in Hindi. We had the company of scorer Sunil Dige and statistician Jatin Sood, who provided you intriguing facts from around the game. The final would be played on 5th of July between ARC rivals England and Australia at the Lords. With that, we leave you. However, don't go too far, because our special program Hero 20 is coming up next.
1: तुम रिपोर्ट्स लाए हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
4: आभा?
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: Player of the match.
6: England continue with their ruthless run to hand South Africa a 40-run loss in the second semi-final, which now means that two unbeaten teams would be facing off in the summit clash, Australia and England. Hello and welcome to Player of the Match. I am Megha, and join me in studio as my co-host is Dharmendra.
7: And Megha, our mehman, Khyati Gulani, former cricketer, Jishanul Yaqeen, former cricketer, and G. Rajaraman, varishth khel patrikar. Raja, शुरुआत फिर से आप ही से करते हैं। कंडीशन का बेहतर फायदा उठाया इंग्लैंड की टीम ने साउथ अफ्रीका के मुकाबले, क्योंकि गेंदबाजी भी देखें बिल्कुल प्लानिंग के अनुसार हुई। जो फील्ड थी उसके अनुसार गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, कप्तान ने धीमी गति के गेंदबाजों का ज्यादा इस्तेमाल किया, सब कुछ इंग्लैंड के फेवर में रहा।
8: बहुत चालाक अप्रोच था, बहुत ही चतुर अप्रोच था। आई थिंक सेंसिबल और स्मार्ट है कि गेम जीतना है आपको और उसके लिए जो करना है, इंग्लैंड ने वो सारी चीजें की है सिवाय टॉस जीतने वाली बात। देखिए, टॉस में भी इंग्लैंड की कप्तान बोल रही थी कि वो भी गेंदबाजी करना चाह रही थी पहले, लेकिन उनके लिए फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि जैसे जैसे मैच चलता गया, पिच और धीमी होती गई एंड बॉल वॉज कीपिंग लो, तो उनके लिए फायदेमंद साबित हो गया। 40 रन बहुत ज़्यादा होते हैं सेमीफाइनल में, 180 और 140 की बात हम कर रहे थे, लेकिन 40 रन से काफ़ी आसानी से जीता है। वन साइडेड मैच रहा, फैंस निराश रहेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा निराश तो साउथ अफ्रीका होगी कि दो बार लगातार फाइनल खेलते हुए तीसरी बार हैट्रिक नहीं कर पाए, लेकिन दे ओनली हैव देमसेल्फ टू ब्लेम फॉर दैट।
6: Khyati, continuing that conversation about England's bowling attack, all-round show from the bowlers, every bowler contributed their bit in creating pressure on the batters.
9: Yeah, definitely. If you see this Eccleston and Lauren Bell, they have participated really well, and their batters as well. And if we talk about fielding also, I mean, they are far ahead from the other team. And the bowlers like Lauren Bell, she brings little flavor in that. Eccleston, she's known for her breaking the partnerships. I think it was a very good performance by the bowlers.
7: Aur Jishan, agar hum baat karte hain ballebazi ki, jo South Africa ki ballebazi rahi, khas taur par kaptan Wolfhard अच्छे टच में आज दिखाई दे रही थी, पावर प्ले के जो ओवर्स चल रहे थे उसमें ठीक ठाक रन भी आ रहे थे। आपको लगता है कि थोड़ा सा वक्त उनको और बिताना चाहिए था, क्योंकि सब कुछ उस समय तक उनके हक में जा रहा था?
10: बिल्कुल, ये तो जाहिर सी बात है कि अगर आप ये सोचेंगे कि आपके पास यही दो बैट्समैन थे जो कि परफॉर्म करते आ रहे थे शुरू से, और साउथ अफ्रीका के जीत में सबसे बड़ा अहम किरदार जो था इन्हीं दोनों का था खासकर, तो मेरे ख्याल से इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आज लेनी चाहिए थी, इसलिए कि ये एक बड़ा मैच था सेमीफाइनल। एक किसी भी बैट्समैन को ये कोशिश करनी चाहिए थी कि वो आखिर तक लेकर के मैच को जाना चाहिए था, बाकी बैट्समैन जो भी बैटर्स थे उन बैटर्स को उनको चाहिए था कि उनको वो उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से यूटिलाइज करके उनसे रन निकाल करके मैच को जीतने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं प्लानिंग्स जो उनकी थी या जो कुछ भी था, या ये आप कह सकते हैं कि कोई एक ऐसा ज़रूर प्रेशर इनके ऊपर डेवलप करता चला गया, जैसे बातें हो रही थी हम लोगों की पीछे भी कि जैसे जैसे ओवर गुजरता जाएगा और रन का जो एवरेज

0: किस तरीके से आपको कौन से स्ट्रोक्स यहाँ पे आपके ऑन रहेंगे, कौन से स्ट्रोक्स आपको रोकने हैं। और बॉलर्स भी बहुत अच्छा यूटिलाइज करते, अपने फील्ड सेटिंग बहुत अच्छी थी। इनफैक्ट द वे द फील्डर्स वर फील्डिंग वॉज ऑल्सो कमेंडेबल।
1: जीशान अपेरेंटली प्लान ए बी सी साइमल्टेनियसली लेकर चल रही थी साउथ अफ्रीकन टीम, क्योंकि एक सवाल जो लगातार उठ रहे थे, क्योंकि फाइनल्स सेमीफाइनल तक पहुंच गई तो शायद फिर वो सवाल कम हो गए थे, वो ये था रोल क्लैरिटी का, क्योंकि खिलाड़ियों को एक सेट ऑर्डर नहीं दिया जा रहा था, एक सेट रोल वहां पे नहीं दिया जा रहा था।
2: बिल्कुल, देखें मैं क्रिकेट का एक बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं क्रिकेट में, और मुझे नहीं मालूम कि उनके जो सपोर्ट स्टाफ हैं या जो कोई भी उनको समझाते होंगे कि कैसे खेलना है क्या है, वहाँ मुझे नहीं लगा कि कहीं कोई उनको कोई गाइडेंस मिल रहा था, इसलिए कि जो भी बैटर आ रहे थे वो अपने हिसाब से खेल रहे थे, मुझे नहीं लगा कि कोई कहीं से गाइड करने की उनको कोई दी जा रही थी। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर प्लान ए ख़राब होता है कि कैप्टन अगर उनकी शुरू में आउट हो जाती हैं और एक बैटर अगर खेल रही है, तो कोशिश ये होनी चाहिए थी कि ज़्यादा ये होना चाहिए था। मैंने पहले भी कहा कि अगर इस मैच को जीतना है तो इनको रोटेट करना पड़ेगा, इनको मेहनत करनी पड़ेगी, दौड़ के रन बनाने पड़ेंगे। अगर ये कोशिश करेंगे ये कि हम 4 से और 6 से कोशिश करके और निकालेंगे मैच को, तो वो बहुत मुश्किल है। इसलिए कि इनके जो बाकी जो बैटर रहे हैं उनके जो परफॉर्मेंस इस सीरीज़ में है बहुत ज़्यादा नहीं रहे हैं। यही दो जो ओपनर्स थे इन्होंने सबसे ज़्यादा रन भी बनाए हैं और बैटिंग करके अपनी टीम को जिताने की कोशिश की है। जब इन्होंने देखा कि इनके कैप्टन आउट हो गए हैं, तो इन्हें कोशिश ये करनी चाहिए थी कि जो एक तरफ अगर वो खेल रही थी तो उनको ये कोशिश करना चाहिए कि वो हिट करती, दूसरा जो बैटर आता उससे ये बात करना चाहिए था कि इनको रोटेट करो, ये प्लान बी होने चाहिए थे, जो कि नज़र नहीं आए मुझे यहाँ पे कहीं से भी कुछ भी। वो एक बिखरी सी टीम नज़र आ रही थी, और वो बिखरी सी टीम अगर सेमीफाइनल जैसे स्टेज पे आने के बाद से ऐसे बिखर जाना, थोड़ा सा मुझे अफसोसनाक ये रहा है इस मैच को देखने के बाद। लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे इंग्लैंड के जो की जो कैप्टनशिप रही है इसमें, उनकी फ्लीट प्लेसमेंट, उनकी फील्डिंग्स, उनकी बॉलिंग का वो तरीका जहां बॉल डालना चाहिए था स्पेशली, मुझे खासकर रमन सर अगर आप याद होगा कि हम लोग भी बात कर रहे थे पीछे भी इस सिलसिले में कि कैसे क्या होगा आगे की वो चीज़ों को लेकर के, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लैक किया है।
1: बिल्कुल, और इस पे कैसे देखते हैं दो कप्तान, इसे कैसे इसका आकलन करते हैं, आइए सुनते हैं पहले साउथ अफ्रीकन कप्तान लॉरा वॉल्फार्ट और उसके बाद इंग्लिश कप्तान को।
3: Today by a really good England side, and yeah, I think they played really well.
4: You've been in situations like this before and you've been able to get over the line, so what was different this evening?
3: Not too sure. I think the main difference between our innings and theirs is just they had so many more partnerships. Obviously we started really well with the ball and then they had that really big partnership, and I think we just didn't have any partnerships to sort of speak of, and didn't really have any batters that really got going. So frustrating to lose this way on a big stage, but yeah, we'll go back to the drawing board.
4: Did the pitch play as you expected to in that second innings, and what did you feel was chaseable at the halfway stage?
3: Yeah, I thought it was a pretty decent pitch, coming on quite nicely. Thought 170 was about par, pretty happy with that. Yeah, I thought, especially with the outfield as well, it's lightning, I thought it was going to be tough to defend. But yeah, I think they bowled pretty well, clearly had different plans for us, and yeah, we weren't able to step up.
4: How difficult is it to play against a team that have so much home support as well at a ground like this?
3: Yeah, I think it does play a role, but it was so cool to see so many fans here tonight. I think it just adds sort of to the vibe and the energy. A couple of South Africans as well that I saw, so yeah, that was nice.
4: And just lastly, just on South Africa on the whole through this tournament, you know, a lot of positives obviously for you to get to this point. How will you reflect on, you know, what you put and what you brought to the table?
3: Yeah, a decent campaign for us. I think happy to have made it out of this group stages. I think upon reflection, our batting never really fired throughout the competition. We had some glimpses here or there, some special innings throughout the tournament, but I think as a whole, we just weren't quite clicking. So yeah, and I think that showed again a bit today, but yeah, I think our bowling and our fielding was pretty good throughout. So yeah, I think we'll have a look at what we've done wrong and hopefully be better next time.
4: A lot of experienced players within that squad, but a lot of young players coming through. Do you see that they've learned enough lessons here to be able to take forwards?
3: I hope so. Yeah, I think we've got an exciting mix at the moment. Got some really senior players who have

0: फेवरेट टीमों में ऑस्ट्रेलिया होगी, इंग्लैंड होगी?
1: ऑस्ट्रेलिया तो हमेशा ही होती है, आई थिंक ऐसा कोई क्रिकेट टूर्नामेंट हो नहीं सकता जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का महिला टीम आप उनको फेवरेट ना माने। साउथ अफ्रीका का चैलेंज काफ़ी स्ट्रांग हो सकता था, लेकिन क्योंकि इंग्लैंड घर पे खेल रहा है और वो दे हैव गॉट अ वेरी गुड टीम, तो इंग्लैंड वॉज ऑल्सो वन ऑफ द फेवरेट टू मेक इट टू द फाइनल। और यही देखने मिला है कि दो अच्छे टीम होंगे फाइनल में, और उम्मीद यही कर सकते हैं फैन बन के फाइनल अच्छा मुकाबला हो। क्रिकेट डिजर्व्स गुड कॉन्टेस्ट, नॉट वन साइडेड मैचेस, खास करके T20 में जब आप 40 रन से जीत रहे हो और दोनों सेमीफाइनल काफ़ी वन साइडेड रहे हैं, तो होपफुली फैंस विल गेट अ गुड फाइनल।
0: और श्रोताओं, आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं हमारे इस कार्यक्रम के साथ, सवाल कोई करना चाहते हैं हमारे विशेषज्ञों के साथ, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई राय है आपकी, तो हमें कॉल कर सकते हैं 0112342104 और 0112342108 पर। और हमारे इस कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका।
2: हेलो
0: जी, नमस्कार, क्या नाम है आपका?
2: सर, मैं अरविंद कुमार बोल रहा हूँ, राजस्थान के झुंझुनू जिले से।
0: जी अरविंद जी, क्या कहना चाहते हैं, क्या सवाल करना चाहते हैं?
2: सर, सवालों से पहले मैं आपसे जरूरी बात करना चाहता हूँ।
0: जी
2: सर, ये जो ICC टूर्नामेंट के अलावा जो अन्य मैच है वो उनकी कमेंट्री क्यों नहीं आकाशवाणी पर आती?
0: जी, और सवाल कोई आपका?
2: सर, सवाल ये है कि साउथ अफ्रीका बड़े मैचों में क्यों घबरा जाती है?
0: जी, ये बहुत अहम सवाल है कि दक्षिण अफ्रीका की टीम बड़े मौकों पर अक्सर जो है फिसल जाती है, हालांकि पिछले दो मौके ऐसे जरूर रह के आती जब इंग्लैंड की टीम को साउथ अफ्रीका की टीम ने शिकस्त दी थी, लेकिन ये एक बार फिर ऐसा मौका आया जहां साउथ अफ्रीका की टीम लड़खड़ाई और फिर टूर्नामेंट से बाहर हो गई है।
3: जी बिल्कुल, अगर आप देखेंगे कि इंग्लैंड की जो टीम है वो पूरे प्रॉपर प्लान के साथ आई थी, हर चीज़ का उनका एक प्लान रेडी था, बॉलर्स के लिए प्लान ए प्लान बी था, सेम वे उनका बैटर्स के लिए भी प्लान ए प्लान बी था, तो वो वहाँ पे आई थिंक थोड़ी सी चूक हुई है साउथ अफ्रीकन टीम से जो होती रही है। थोड़े बेटर होमवर्क के साथ वो आ सकते हैं कि अगर आप इस सिचुएशन में पहुँचते हैं तो आपको किस टाइप का गियर लगाना है और आपके कौन से प्लेयर्स आपको एज अ बॉलर्स यूज़ करने हैं अगर कोई अच्छी पार्टनरशिप बन रही है। इतने अच्छे 3 विकेट स्टार्टिंग में लेने के बाद जो पेसर्स ने काफ़ी अच्छा आई थिंक प्रदर्शन दिया, उसके बाद जो उनके स्पिनर्स उतना पिच इन नहीं कर पाए।
4: 2011 के विश्व कप से पहले पुरुषों के विश्व कप में किसी भी मेजबान टीम ने जीत नहीं हासिल की थी, उसके बाद एक सिलसिला सा शुरू हो गया जहां पे कई बार मेजबान टीम ने खिताब जीता। महिलाओं के विश्व कप में हालांकि 2009 में जब पहली बार T20 वर्ल्ड कप हुआ था इंग्लैंड ने खिताब जीता, 2017 में ODI विश्व कप अपने नाम किया घर पे, अभी वापस घर पे खेल रही है इंग्लैंड की टीम, तो काफी सारे बॉक्सेस इस नैरेटिव में टिक हो रहे हैं। जीशान,
5: कह सकते हैं इस चीज़ों को। खैर, ये तो एक मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक ऐसा
4: कोइंसिडेंट
5: माने इसको या आप ये कहें, लेकिन सच ये है कि होम सीरीज कोई भी अगर होती है या होम कोई टूर्नामेंट बड़ा होता है तो उसका थोड़ा सा फ़ायदा ज़रूर से वहाँ की होम टीम को होती है। उसकी वजह है कि बहुत सारे खासकर जो वुमेंस की टीम का ये टूर्नामेंट वर्ल्ड कप हो रहा है, तो आप ये समझें कि कहीं ना कहीं बड़े जो क्रिकेटर्स हैं वो कहीं अगर कमेंट्री भी कर रहे हैं और अपनी कमेंट्री में भी कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो कि सपोर्ट स्टाफ को आइडिया लगता है और उसके ऊपर में भी अमल करने की कोशिश करते हैं, तो आप समझें कि वहाँ पर इनको बहुत सारे सपोर्ट्स हैं इंग्लैंड को आज के दिन में, अगर होम सीरीज़ होती है तो। हमारे यहाँ भी होता है, अगर हमारे हिंदुस्तान में भी अगर इस तरह का कोई होम सीरीज़ होता है तो वहाँ हमारे यहाँ भी जो बड़े लीजेंड जो कमेंट्री में बैठे होते हैं वो कुछ अपने हिंट इससे देते हैं जिससे कि उससे फायदा होता है। तो मैं ये जरूर से कहूँगा कि ऑब्वियस है 2009 के बाद से 2026 का जो ये टूर्नामेंट है कहीं ना कहीं वो रिपीट होने की तरफ बढ़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है।
0: और मेघा हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, हम स्वागत करते हैं उनका। स्वागत है आपका, नाम बताइए।
6: हेलो, नमस्कार सर।
0: नमस्कार,
6: ये मैम को भी नमस्कार और सभी एक्सपर्ट्स को भी नमस्कार।
5: नमस्कार,
6: मैं संजय बोल रहा हूँ दिल्ली से।
0: बताइए सवाल।
6: सर, मेरे कुछ सवाल है और कुछ सुझाव भी है।
0: जी,
6: तो सबसे पहले तो मेरा सुझाव है कि जो आप विमेंस क्रिकेट या फिर विमेंस जो भी स्पोर्ट्स होते हैं, सभी स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, जो अवार्ड्स मिलते हैं, मैं प्लेयर ऑफ द मैच या टूर्नामेंट जो भी होते हैं, इसमें चयन मेरा मानना सिर्फ

महिलाओं को करना चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए चयन समिति में। और दूसरी बात यह, क्योंकि ये सवाल मैंने इसलिए किया था कि एक जो प्लेयर ऑफ द मैच मिला था स्मृति मंधाना को शायद नीदरलैंड के मैच में, मुझे बिल्कुल भी उचित नहीं लगा था। शेफाली वर्मा का पूरी तरह से बन रहा था, 3 विकेट और 50 रन भी थे। और तो ये एक बात है। और दूसरी बात ये, मेरा सवाल ये है, जो अंपायरिंग होती है, ठीक है, चाहे मेंस क्रिकेट हो, मेंस स्पोर्ट्स हो या फीमेल कोई भी स्पोर्ट्स हो, इसमें अब क्यों नहीं हम सैटेलाइट वगैरह का या ऐसे चीजों का निर्णय वो करते हैं? क्योंकि जो है इसमें होता यह है कि अब यह करोड़ों लोगों की भावनाएं हाथ होती है एक

0: सवाल ये है, जो अंपायरिंग होती है ठीक है, चाहे मेंस क्रिकेट हो, मेंस स्पोर्ट्स हो या फीमेल कोई भी स्पोर्ट्स हो, इसमें अब क्यों नहीं हम सैटेलाइट वगैरह का या ऐसे चीजों का निर्णय वो करते हैं? क्योंकि जो है इसमें होता यह है कि अब यह करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत होती है एक छोटे से फैसले से, तो इसमें क्यों नहीं ऐसे AI वगैरह या सैटेलाइट वगैरह का मदद हम लेते हैं? क्योंकि एक आप न्यूजीलैंड का फाइनल देख सकते हैं 2019 न्यूजीलैंड इंग्लैंड का, जो एक रन से ड्रामा हुआ था और न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप जीता जीता हार गया। तो मेरा मानना है ये सैटेलाइट वगैरह ऐसे चीजों का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि एक एक रन बहुत भारी पड़ते हैं ऐसे चीजों में। तो ये न्यायिक प्रणाली में ये मशीनों का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, जो क्लियर।
1: So Sanjay ji advocating for further innovation. Now the two things that he touched upon involve a lot of subjectivity, because wherever humans are involved in decision making, obviously there'd be that subjective perspective. I think this was better, you think that was better, Raj?
2: So we'll never be satisfied any amount of technology. Let's take LBW. Pehle to technology aaya, usme bhi humko we are finding gaps there. The DRS is supposed to have improved the decision making, lekin I think we are still only 95%. We can never be 100%. Aur cricket ek aisa khel hai mega jahan pe humans khelte hain, to human ka judging element zaruri hai. I am of the firm opinion that we should leave everything to the umpires. Technology bahut zyada use karne se dikkatein aane lagi. I think we are relying too much on data and very little on emotion. I think sport is about emotion, and if we can go back to keeping it an emotional thing, it will be good. Lekin there is also some kind of validity in asking for data and for data to be used in decision making processes. But I think ye bahut simple game hai, hum isko complicate kar rahe hain by getting in too much technology.
3: Aur khyati agar aaj ke match par laute, बहुत ज़बरदस्त जीत रही है इंग्लैंड की, और कंडीशन की बात हो रही थी और तमाम चीज़ों की बात हो रही है, ऑस्ट्रेलिया के साथ अब फाइनल मुकाबला होना है, ऑस्ट्रेलिया अपने ग्रुप की टॉपर, सेमीफाइनल में आसान जीत, और इधर इंग्लैंड के साथ भी बिल्कुल वही हाल, अब फाइनल कैसा होने वाला है?
4: देखिए अगर आप देखेंगे उनकी जो टॉप ऑर्डर बैटर है वो काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन टीम का, वहीं पे इंग्लैंड टीम को आई थिंक अपने जो टॉप थ्री बैटर्स हैं उनको थोड़ा और बेटर प्लान के साथ आना होगा, कि इस टीम के साथ आप इतना रिस्क नहीं ले सकते कि आपके पहले तीन बैटर्स जल्दी आउट हों, क्योंकि उनके पास वैसा बॉलिंग लाइनअप भी है जो वो कम बैक कर सकते हैं। तो आई थिंक अगर आपके पास आपको एक अच्छा फाउंडेशन मिलता है विद योर ओपनिंग बैटर्स, डेफिनेटली देन आप उस कॉन्टेस्ट में होंगे, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट विद द टीम्स लाइक ऑस्ट्रेलिया।
1: जीशान, हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी में जो विविधता है, उनके पास लेफ्ट आर्म एंगल है लूसी हैमिल्टन का पेस में, और स्पिन में भी देव गॉट ऑल द बेसिस कवर्ड।
5: देखें प्लेयर्स जो भी हैं उनके पास में, आप जिनके भी नाम ले रहे हैं सारे हैं, और भी सारे उनके अच्छे प्लेयर्स हैं उनके पास में ऑस्ट्रेलिया के पास। जो सबसे बड़ी जो खासियत है उनमें, कि उनके पीछे में 6 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप का एक बहुत बड़ा मोरल बूस्ट करने की उनके पास में एक चीज़ है, जो कि इंग्लैंड के पास में नहीं है। तो ये एक प्लस पॉइंट उनके साथ में ज़रूर से है ऑस्ट्रेलिया के साथ में। लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की टीम और अगर इंग्लैंड की टीम, दोनों टीमों को हम देखेंगे अभी के वक्त में, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज भी हम जो देख रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि ये धीरे धीरे धीरे धीरे इंग्लैंड टीम जो है वो अब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर निकलने की कोशिश कर रही है। जिस हिसाब से उन्होंने आज परफॉर्मेंस किया है, तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जो फाइनल मैच है वो बहुत बेहतरीन मैच होगा, और कहीं ना कहीं मुझे अब एहसास ये हो रहा है, या इंट्यूशन से हो रहा है मुझे, कि कहीं वो 2009 वापस जो कह रही थी कि क्या घर वापसी होएगी क्या, तो मुझे लगता है कि वो घर वापसी होने का वक्त आ गया है 5 तारीख को।
1: Well, those chants are emerging from the US as well, where yesterday night England handed DR Congo a defeat in the dying minutes, but today England completing a comprehensive victory over South Africa to romp into the finale. Thanks a lot to each one of our analysts.
5: Thank you very much.
1: Thank you, Dharmendra.
3: Shukriya.
1: And now we'd be back with that final clash, where on one hand, Australia, having been knocked out in the semi-finals of the 50 overs and 20 overs World Cup, would be extremely hungry. So would be England, who got knocked out in 2024 in the league stage itself, despite being